FM 102 और 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की पांचवी तिथि तदनुसार 26 मई सन 2026 सुबह के 5:59 हो रहे हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है। कुछ ही पलों में श्रोता हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न

0: पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के अंतर्गत विदेश मंत्री पिछले वर्ष वाशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। 29 मई को श्री शाह गुजरात जाने का कार्यक्रम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के व्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। श्री जाधव ने बताया कि देश भर में प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान के 70 से अधिक कॉलेज तथा 5000 से ज्यादा योग प्रशिक्षण संस्थान हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई एसओपी जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइन को मास्क, पीपीई किट, दस्ताने और सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री का पर्याप्त भंडार रखने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। मोहाली में कल एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। और भारत ने कल गोवा में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102 और 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर ये प्रसारण आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से किया जा रहा है। सुबह के 6:05 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

इस भजन में यह वर्णन है कि भगवान का नाम लिए बगैर हमारा जीवन अंत में व्यर्थ सिद्ध हो जाता है, और यही समझाने के लिए कुछ बड़े सुंदर उदाहरण दिए हैं जिससे ये बात स्पष्ट होती है, समझ में आती है।

और श्रोताओं, इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब यहीं संपन्न होता है। आज की अर्चना में जिन कलाकारों को आपने सुना वो थे अनूप जलोटा, सुरेश वाडकर, सीमा मिश्रा और हरिओम शरण।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। FM 102 और 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर यह प्रसारण आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से किया जा रहा है। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान।

राजा जनक के यज्ञ में शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर वहां भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम का आगमन हुआ, जिन्हें देखकर उपस्थित राजाओं के समुदाय में हलचल मच गई। फिर सब कुछ देख जानते हुए भी अनजान की तरह परशुराम ने जनक जी से पूछा, ये भारी भीड़ कैसी है? सीता स्वयंवर का समाचार सुन मुनि ने जो दूसरी ओर देखा तो शिव जी के धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े दिखाई दिए। ये दृश्य देख परशुराम का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया। रे चढ़ जनक, बता धनुष किसने तोड़ा? उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट कर रख दूंगा। सभा में आतंक छा गया, किसी को उत्तर देते ना बना। ये देख श्री राम ने निवेदन किया, हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का संगीतमय प्रसारण। स्वरता भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह का और संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। ये प्रसारण आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से किया जा रहा है। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं चिंतन। चिंतन में आज का विषय है, कैसे करें व्यक्तित्व का विकास।
1: कैसे करें व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व में व्यक्ति के विचारों, लोगों के साथ उसके व्यवहार, उसके कार्य करने के तरीके, जीवन शैली, जीवन के प्रति उसके दृष्टिकोण आदि शामिल हैं। व्यक्तित्व का आकलन इससे भी होता है कि व्यक्ति कितना विश्वसनीय है और उसकी सोच में कितनी परिपक्वता है। बेशक व्यक्ति के कुछ पहलू आनुवांशिक होते हैं, पर व्यक्तित्व निर्माण में सामाजिक, पारिवारिक परिवेश, शिक्षा दीक्षा और संस्कारों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। कुल मिलाकर व्यक्ति के नैसर्गिक, मनोवैज्ञानिक एवं व्यवहारतम पहलुओं का संबंध में ही व्यक्तित्व है। आकर्षक व्यक्तित्व से हर कोई प्रभावित होता है। ऐसे व्यक्तित्व वाले को सफलता भी जल्दी और आसानी से मिलती है। ज्यादातर मामले में व्यक्तित्व का आकलन व्यक्ति के बाहरी पहलुओं से किया जाता है। हमें ऐसे अनेक उदाहरण मिलेंगे जब एक सुसंगठित शरीर, आकर्षक चेहरे, मोहरे वाले एवं अच्छे कपड़े पहने व्यक्ति को देखकर लोग उसके व्यक्तित्व को प्रभावी बताने लगते हैं। व्यवहार विज्ञानियों के अनुसार व्यक्तित्व का आकलन सिर्फ इस आधार पर कि व्यक्ति देखने में कैसा है, किस तरह के कपड़े पहनता है अथवा उसके अन्य भारी पहलुओं से करना सही नहीं है। जीवन या कैरियर आदि में व्यक्ति की सफलता बहुत कुछ उसके व्यक्तित्व की सकारात्मक एवं प्रभावशीलता पर निर्भर करती है। ऐसे उदाहरण मुश्किल से मिलेंगे जहां किसी के व्यक्तित्व को सभी दृष्टियों से पूर्ण माना जा सके। कहने का तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति संपूर्ण नहीं हो सकता।

0: सकता, तथापि हम अपने व्यक्तित्व को निरंतर बेहतर बना सकते हैं। वास्तव में हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने में ऐसी प्रवृत्तियों को शामिल करें जो हमारे व्यक्तित्व को सकारात्मक एवं कारगर बनाने में मदद करें। इससे न केवल हमारी सफलता की संभावना बढ़ेगी, अपितु हम लोगों के साथ अपने संबंधों में संतोष एवं सार्थकता का भी अनुभव करेंगे। व्यक्तित्व को स्थिर एवं गतिहीन मान लिया जावे तो एक बहुत बड़ी भूल होगी। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति अपनी अस्वस्थ धारणाओं एवं दृष्टिकोणों में सुधार या परिवर्तन ला सकता है ताकि उसके व्यक्तित्व में संतुलन स्थापित हो। व्यक्ति में नैसर्गिक, मनोवैज्ञानिक एवं व्यवहार परक तत्वों का समन्वय एवं संयोजन संपूर्ण व्यक्तित्व की पहचान होता है। एक विकास परक व्यक्तित्व के लिए संसार एक ऐसा मंच है जिसकी विविधताएं मनुष्य रूपी कलाकार को असंख्य अवसर प्रदान करती हैं। इसलिए वर्तमान की आवश्यकता को समझें, अपना सही मूल्यांकन करने के बाद ही व्यक्तित्व विकास के लिए उपाय किए जा सकते हैं। इसके लिए हमें अपनी प्रतिभा और कमियों का ज्ञान होना चाहिए ताकि हम प्रतिभा को और निखार सकें और अपनी कमियों को दूर कर सकें। जीवन में हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते, परिस्थितियां कभी अनुकूल हो सकती हैं तो कभी प्रतिकूल। जीवन की चुनौतियों से मुंह चुराने की बजाय हमें सामना करना चाहिए। अपनी उपलब्धियों पर ना तो अभिमान करना चाहिए, ना ही असफलताओं से निराश होना चाहिए। असफलता के अनुभव से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। व्यक्तित्व विकास में यह महत्वपूर्ण है कि सम्मान हम अपने व्यवहार में स्नेह और भावनाओं का दें। अगर हम लोगों की और जरूरतों का ख्याल रखेंगे तो सकारात्मक व्यक्तित्व को अन्य लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई नहीं होगी। इसके साथ ही विनम्रता, धैर्य, आत्मविश्वास जैसे गुण हैं जो हमारे व्यक्तित्व के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं और हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफल बनाते हैं। किंतु ये तभी संभव है जब वे ठीक स्थान पर हों और उनमें किसी प्रकार का दिखावा ना हो। अतः यदि जीवन में सफलता पानी है तो अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बनाएं। और व्यक्तित्व विकास के रास्ते में अनेक बाधाएं हैं, लेकिन आप ये भी महसूस करेंगे कि आपको बहुत सी स्वतंत्रताएं भी मिली हुई हैं।
1: चिंतन में अभी आप सुन रहे थे कैसे करें व्यक्तित्व का विकास, इस विषय पर चिंतन और स्वर था संजय बाठिया का। ये प्रसारण आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से किया जा रहा है। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण में अब आपको जानकारी दे दें हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की।

और श्रोताओं सभा में सुबह 7 बजे सुनिएगा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार कोटा। इस कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय होगा क्षमा वर्णन को चाहिए, साथ ही व्यक्तित्व के अंतर्गत बात करेंगे राम किंकर बैज की। सुबह 7:30 पर श्रोता सुन पाएंगे फिल्म संगीत और 8:15 पर सुनिएगा सेहत से जुड़ा कार्यक्रम उत्तम स्वास्थ्य। इस कार्यक्रम में आज का विषय होगा स्किज़ोफ्रेनिया और अन्य मानसिक रोगों का कारण व उपचार, और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में होंगे डॉक्टर मदन लाल अग्रवाल।

सुबह 9:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम घर आंगन। इस कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय होगा रिश्तों की सार संभाल महिलाओं के हाथ। साथ ही आप सुन पाएंगे भेंट वार्ता संजय कुमार बाठिया से। विषय होगा आकाशवाणी का 90 सालों का सफर। साथ ही जानकारी का विषय होगा गेहूं और मसालों का भंडारण कैसे करें। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनिएगा दोपहर 12:00। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी प्रसारित होगा शाम 5:00। इस

कार्यक्रम में आज संवाद का विषय होगा प्रसिद्धि की चाह में अनैतिक तरीके ना अपनाएं। साथ ही विज्ञान धारा के अंतर्गत बात करेंगे क्या होती है गुरुत्वाकर्षण तरंगे इस विषय पर, और नॉलेज कॉर्नर में जानिएगा जोधपुर के महान स्वतंत्रता सेनानी छगन राज चौपासनी वाला के विषय में। शाम 6:05 पर श्रोता आनंद ले सकेंगे फिल्म संगीत का।

कार्यक्रम चौपाल सुनिएगा शाम 7 बजे। इस कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय होगा फसल अवशेष प्रबंधन। साथ ही आप सुन पाएंगे भेंट वार्ता, विषय होगा पशुपालन को लाभकारी कैसे बनाएं। साथ ही साथ कार्यक्रम चौपाल में जानकारी का विषय होगा पीएम सुरक्षा बीमा योजना। लोक संगीत श्रोता सुन पाएंगे शाम 7:30 पर और रात्रि 8 बजे का समय रहेगा चित्रपट संगीत का।

तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है। कुछ ही पलों में श्रोता हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत समाचार सुनेंगे।

रात चुप थी मगर सुबह कहानी ले आई, कि रात चुप थी मगर सुबह कहानी ले आई, थोड़ी धूप और थोड़ी उम्मीदें पुरानी ले आई। आज उठो तो बस इतना कमाल करना, कि आज उठो तो बस इतना कमाल करना, खुद भी मुस्कुराना और औरों को भी हंसाना। और इसीलिए कहते हैं कि हंसना भी एक थेरेपी होती है। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल, प्रोग्राम है नमस्कार कोटा, और इस प्यारी सी सुबह में आप तक आ रही है निशा की आवाज। तो जी गुड गुड मॉर्निंग, वेलकम है आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम में। और दोस्तों, किसी ने बड़ा खूब कहा है कि हंसना शरीर को चाहिए और मुस्कुराना दिमाग को। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों एक ही बात तो है। नहीं जनाब, बिल्कुल भी नहीं। होता क्या है कि कई लोग दिन भर हंसते हैं, लेकिन रात को वही लोग चुप हो जाते हैं, बिल्कुल गुमसुम, बिल्कुल शांत, क्योंकि शरीर तो हंस रहा था पर दिमाग थक चुका।

चुका था। पर ठीक इसके उलट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज्यादा हंसते नहीं हैं पर अंदर से शांत होते हैं, क्योंकि उन्होंने फर्क समझ लिया होता है। जी हाँ दोस्तों, आजकल जिंदगी इतनी फास्ट हो गई है कि लोग ठीक हूँ बोलना तो सीख गए हैं पर सच में ठीक रहना भूल गए हैं। हर रोज की भागा दौड़ी में हम अपने दिमाग को आराम देना भूल जाते हैं। और कभी नोटिस करके देखिएगा, जब मन परेशान होता है तो फनी से फनी बात भी आपको फनी नहीं लगती है, हंसी नहीं आती है, क्योंकि शरीर जो है खुश रहे उससे पहले जरूरी है कि हमारा दिमाग शांत रहे। और इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस छोटे छोटे से बदलाव अगर हम करें तो ये मुमकिन है। जैसे कि सुबह की हवा को हम महसूस करें, 5 मिनट अकेले खुद के साथ बैठें शांत जगह पर चुपचाप, अपनों से दोस्तों से खुलकर बातें करें और अपने इमोशंस को अपनी फीलिंग्स को बाहर आने दें, क्योंकि इंसान मशीन नहीं है। अगर मन शांत नहीं होगा तो दुनिया की बड़ी से बड़ी सक्सेस भी हमें खुश नहीं कर सकती। तो दोस्तों, मसला यहाँ पर मन का ख्याल रखने का है, क्योंकि चेहरे की हंसी कुछ पल की कहानी है, चेहरे की हंसी कुछ पल की कहानी है, असली सुकून तो मन की रवानी है।

और दोस्तों सच कहा इस गाने में कि कभी कभी हमें अपने दिमाग को साइड में रख करके अपने मन की, अपने दिल की भी सुन लेनी चाहिए, क्योंकि खुशी जो है ना वो मन का विषय होती है। तो अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो कभी कभी सभी चीज़ों से परे, सभी सोच से परे अपने मन का करके देखिएगा, आपको खुशी, आपको सुकून ज़रूर मिलेगा। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम नमस्कार कोटा। सुबह के 7:10 समय हमारे स्टूडियो की घड़ी बता रही है और एक बार फिर से आप सभी को गुड गुड मॉर्निंग।

और श्रोताओं, तापमान की बात करें तो कल का जो अधिकतम तापमान था वो दर्ज किया गया 44.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 32.2 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ गर्मी के बढ़ने की संभावनाएं लगातार आ रही है, तो श्रोताओं अपना पूरा ख्याल रखें, इस गर्मी में धूप से अपना बचाव करें, बहुत सारा पानी पिए, अपने आप को हाइड्रेट रखें, और बहुत ज़रूरी ना हो तो दिन के समय में घर से बाहर निकलने से बचें, और अगर जाना ज़रूरी है तो अपने आप को अच्छे से कवर करके आप धूप में निकलें, और साथ ही साथ अपने खान पान का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।

आपका रेडियो धड़क रहा है एफएम 102 और 103.6 मेगाहर्ट्ज़ पर और आप बने हुए हैं हमारे साथ आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल पर। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब आप तक पहुंचा देते हैं एक सूचना। और श्रोता आपको बता दें कि राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में साल 2026-27 के लिए एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और आपको बता दें कि कॉमर्शियल आर्ट, टेक्सटाइल डिजाइन

और दोस्तों कहते हैं ना कि रूठना मनाना लड़ना झगड़ना वहीं पर होता है जहां पर हम लोगों से प्यार करते हैं, और वो चाहे हमारे दोस्त हों, हमारे भाई बहन हों, ऑफिस में काम करने वाले हमारे साथी हों, या फिर हमारे मम्मी पापा ही क्यों ना हो। कभी ना कभी किसी ना किसी बात पर हमारी सबसे अनबन होती ही है। आप भी कभी ना कभी किसी ना किसी से नाराज हुए होंगे। जी हाँ, बिल्कुल हुए होंगे। लेकिन सवाल यह है कि आप कितनी देर तक नाराज रहते हैं? जल्दी आप मान जाते हैं, माफ कर देते हैं, या फिर दिल में गुस्सा लिए बैठे रहते हैं? क्योंकि सच कहें तो नाराजगी सिर्फ सामने वाले को ही नहीं, हमें भी अंदर से परेशान करती है। हम बिल्कुल नॉर्मल दिखते हैं, हंसते हैं, काम करते हैं, बाकी सब चीजें चलती रहती है, पर अंदर मन में वही सब बातें घूमती रहती है। हम उन्हीं बातों को सोचते रहते हैं और फिर छोटी छोटी चीजों पर हम इरिटेट होने लगते हैं, और इसीलिए माफी बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, ये माफी सिर्फ रिश्ता बचाने के लिए नहीं होती, बल्कि मन की शांति के लिए भी होती है। और दूसरों को माफ करना ही सिर्फ काफी नहीं होता है। ऐसा होता है ना कि कई बार हम अपनी खुद की पुरानी गलतियों का बोझ भी सालों तक दिल पर लिए रहते हैं। बार बार हम खुद को दोष देते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर हम ऐसा नहीं करते तो वैसा नहीं होता। पर खुद को माफ करना और दिल के इस बोझ को उतारना भी उतना ही जरूरी होता है दोस्तों, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान गलती करके ही सीखता है, और एक वक्त के बाद उन गलतियों की माफी जरूरी हो जाती है ताकि हमारा दिल हल्का हो सके। अक्सर हमारी छोटी छोटी नाराजगी हमारी आपस में एक दूसरे से बातें कम कर देती है, और उसके बाद चुप्पी हमारे रिश्तों में आ जाती है। चुप्पी जब आती है तो दूरियां बढ़ जाती है, गलत फहमियां पैदा होने लगती है, और बात फिर धीरे धीरे हमारी ईगो पर आ जाती है। तो दोस्तों बेहतर तो यही होगा ना कि नाराजगी अगर हमें है भी किसी से, तो हम बैठकर उस पर बात करें, उसे सुलझाने की कोशिश करें, माफ कर दें या फिर माफी मांग लें, क्योंकि एक छोटा सा सॉरी बड़ी नाराजगी को भी पिघला सकता है। तो दिल की गांठें जितनी जल्दी हमारी खुल जाए उतना ही बेहतर होगा, उतना ही अच्छा होगा। और दिल साफ रखना इसलिए भी जरूरी है ताकि तकरार का बोझ ना तो हमें लगे और सामने वाला जो है वो भी हमें मनाने की कोशिश कर सके।

जी हाँ, हक बनता है, बिल्कुल हक बनता है बिगड़ी बातों को बनाने का, रूठे यारों को फिर से मनाने का और जिंदगी में एक और मौका पाने का। हम सभी का हक बनता है। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम नमस्कार कोटा।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार कोटा। आप बने हुए हैं हमारे साथ और श्रोताओं, कार्यक्रम में हर दिन हम बात करते हैं किसी खास व्यक्तित्व के बारे में। और श्रोताओं, आज हम बात करेंगे राम किंकर बैज की। जी हाँ श्रोताओं, राम किंकर बैज जो थे भारतीय आधुनिक कला के सबसे महान और क्रांतिकारी मूर्तिकारों में से एक थे, जिन्होंने भारतीय कला को पारंपरिक सीमाओं से निकालकर एक नया आधुनिक स्वरूप दिया। उनका जन्म पश्चिम बंगाल के बांकुरा में हुआ था और उनका परिवार साधारण था, लेकिन उनकी कला की सोच असाधारण थी। उन्होंने शांति निकेतन में रहकर कला की शिक्षा ली और एक रचनात्मक यात्रा की दिशा पकड़ ली। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति संथल परिवार भारतीय मूर्ति कला का मील का पत्थर मानी जाती है, जिसमें उन्होंने आदिवासी जीवन की सरलता, संघर्ष और ऊर्जा को बहुत ही जीवंत रूप से प्रस्तुत किया। उनकी कला की खास बात ये भी थी कि वे किसी भी कठोर नियम या परंपरा में बंधे नहीं रहे। उन्होंने मिट्टी, सीमेंट और प्राकृतिक सामग्री का उपयोग करके अपनी मूर्तियों में वास्तविक जीवन की भावना भर दी। श्रोताओं, भारतीय कला में उनके अतुल्य योगदान के लिए 1970 में भारत

सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। विकासशील जीवन के विषयों को ही उन्होंने मूर्तिमान किया और उन्हें हमेशा एक ऐसे कलाकार के रूप में याद किया जाएगा जिन्होंने कला को केवल सौंदर्य नहीं बल्कि जीवन का अनुभव बना दिया।

और दोस्तों कहते हैं ना कि हमारा जो देश है वो पर्व त्योहारों का, तीज त्योहारों का देश है और हर दिन कोई ना कोई पर्व, कोई ना कोई उत्सव हम मनाते हैं। और श्रोताओं आज मनाया जाता है बुढ़वा मंगल पर्व। जी हाँ, उत्तर भारत खासकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में मनाया जाने वाला एक धार्मिक और सांस्कृतिक पर्व है बुढ़वा मंगल, जिसे बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये पर्व आमतौर पर हनुमान जी को समर्पित होता है और मंगलवार के दिन विशेष पूजा पाठ, हनुमान चालीसा पाठ, भंडारे और शोभा यात्राओं का आयोजन किया जाता है। इसे बुढ़वा मंगल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि मान्यता है कि इस दिन हनुमान जी का आशीर्वाद और शक्ति बहुत विशेष रूप से प्राप्त होती है और भक्त अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए व्रत और पूजा करते हैं। कई जगहों पर इस दिन विशाल भंडारे लगाए जाते हैं जहां लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं और सामूहिक रूप से भक्ति में शामिल होते हैं। ये जो पर्व है ये भक्ति, सेवा और सामाजिक एकता का प्रतीक भी माना जाता है, जहां लोग हर भेदभाव से ऊपर उठकर एक साथ पूजा और सेवा में भाग लेते हैं। श्रोताओं इसके ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो इसकी शुरुआत लगभग 400 वर्ष पहले लखनऊ के अलीगंज स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर से होती है। और पौराणिक कथाओं की अगर हम बात करें तो ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग में प्रभु श्री राम और हनुमान जी की पहली मुलाकात ज्येष्ठ के मंगलवार के दिन ही हुई थी। ये ज्येष्ठ ही महीना है। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि महाभारत काल में हनुमान जी ने वृद्ध वानर का रूप लेकर भीम का अहंकार तोड़ा था, इसीलिए इसे बुढ़वा मंगल भी कहते हैं।

जी हाँ दोस्तों, खुशहाल जिंदगी का फलसफा बस यही है कि अपने हर पल को हम ये सोच कर जिए कि ये आखिरी पल है, जो है वो आज है, अभी है। तो अपने जो भी ज़रूरी काम है, जो भी आप करना चाहते हैं, उन्हें कल पर ना टालें, कोशिश करें कि उन्हें आज ही पूरा कर लें। और इसी के साथ प्रोग्राम में आज का जो हमारा वक्त है वो हमें इजाज़त नहीं दे रहा है कि आपसे थोड़ी और बातें की जाए। तो प्रोग्राम का आज का सफ़र बस यहीं तक। और चलते चलते आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का संयोजन किया तेजराम मीणा ने, प्रस्तुति थी राजेश महावर की। और इसी के साथ इजाजत दीजिए निशा को कार्यक्रम नमस्कार कोटा से। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आपका अपना आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार कोटा, FM 102 और 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। यह प्रसारण आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से किया जा रहा है। सुबह के 7:30, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत, और फिल्म संगीत का पहला गीत आपके लिए लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है दिल एक मंदिर। गीत लिखा है शैलेंद्र ने और शंकर जयकिशन का संगीत है।

और श्रोताओं, ये था दिल एक मंदिर का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। और इसी के साथ शुरुआत हो चुकी है फिल्म संगीत की आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: और श्रोताओं, फिल्म संगीत में आगे बढ़ेंगे अगले गाने के साथ, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें कि सजीव फोन इन कार्यक्रम उत्तम स्वास्थ्य में आज सुबह 8:15 पर कार्यक्रम का विषय होगा स्किज़ोफ्रेनिया व अन्य मानसिक रोग, कारण व उपचार। और जो भी श्रोता इस विषय पर अधिक जानकारी चाहते हैं वो टेलीफोन करके सीधे डॉक्टर ML अग्रवाल से बात कर सकते हैं। तो समय एक बार फिर से आपको बता देते हैं, आज सुबह 8:15 पर सुनना न भूलिएगा सजीव फोन इन कार्यक्रम उत्तम स्वास्थ्य। और इस कार्यक्रम में फोन करने के लिए हमारे नंबर है 2941142। आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, और आइए अब सुनते हैं अगला गीत।
2: अभी न जाओ छोड़ कर

हम दोनों फिल्म का ये गीत था मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। गीत लिखा था साहिर ने और संगीत था जयदेव का। आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से श्रोता आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। और आइए श्रोताओं बढ़ते हैं आगे फिल्म संगीत में, सुनते हैं ये अगला गीत फिल्म काला पानी से।

अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: चलें साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये था फिल्म काला पानी का गीत। इसे लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत था एस डी बर्मन का।
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
3: बन गया बजट?
2: हाँ,
3: 5,000 बच गए।
4: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना, पिछले महीने तो ली थी।
3: एक और
2: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
3: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
5: आरबीआई कहता है,
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
0: FM 102 और 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल। श्रोताओं, फिल्म संगीत जारी है और आइए अब सुनते हैं अगला गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। घर फिल्म का ये गीत है, गीत लिखा है गुलजार ने और संगीत है आर डी बर्मन का।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, और श्रोताओं फिल्म संगीत में गाने अभी और भी हैं, लेकिन इससे पहले आपको याद दिला दें कि आज सुबह 8:15 पर सजीव फोन इन कार्यक्रम उत्तम स्वास्थ्य का विषय रहेगा, स्किजोफ्रेनिया और अन्य मानसिक रोग, कारण और उपचार। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में होंगे डॉक्टर एम एल अग्रवाल। तो जो भी श्रोता इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमें फोन कर सकते हैं। फोन करने के लिए स्टूडियो का नंबर है 2941142। तो सुनना न भूलिएगा आज सुबह 8:15 पर सजीव फोन इन कार्यक्रम उत्तम स्वास्थ्य। और श्रोताओं सुनिए लता मंगेशकर को इस गीत में, गीत लिखा है अनजान ने, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

श्रोता, ये गीत था फिल्म मुकद्दर का सिकंदर। फिल्म से ये अभी आपने गीत सुना, आवाज थी लता मंगेशकर की। फिल्म संगीत जारी है आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से, और अब सुनते हैं फिल्म संगीत का आखिरी गीत किशोर कुमार की आवाज में फिल्म कटी पतंग से। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है और संगीत है आर डी बर्मन का।

और श्रोता किशोर कुमार की आवाज में फिल्म कटी पतंग के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है। अब श्रोता हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात सुनेंगे।

0: गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। डीजीसीए ने एयरलाइंस को जारी किए निर्देश। दिल्ली में प्रति किलोग्राम सीएनजी की कीमत 2 रूपये बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और आईपीएल क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सो मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है, जिसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगे। गंगटोक से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति अपनी यात्रा

0: दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लेंगी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी का दौरा करेंगी और गैंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को हरी झंडी दिखाएंगी। कल वो नाथुला का दौरा करेंगी और साथ ही गैंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। अपनी यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति मुर्मू गैंगटोक के पलजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पुलिस कलर मेडल प्रदान करेगी। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटोक।
0: राष्ट्रपति भवन में कल नागरिक अलंकरण समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें इस वर्ष के पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह दो दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह 29 मई को गुजरात जाएंगे। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ओटावा में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से द्विपक्षीय चर्चा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। साथ ही भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता सीईपीए को जल्द पूरा करने पर सहमति जताई गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। विमान में संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे विमान के पिछले हिस्से में अलग रखने और आसपास की सीटें खाली रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइंस को मास्क, दस्ताने, पीपीई किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: दिल्ली में सीएनजी के दाम में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83.09 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 कैबिन में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरीमल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरुवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पंजाब में नगर निगम चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है। राज्य में 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 20 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: राजनीतिक पार्टियों द्वारा 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे इन नगर निकाय चुनावों पर एक अहम राजनीतिक संकेत के तौर पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार पूरे राज्य में कुल 1896 वार्डों से 7555 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी नगर निकायों में आदर्श आचार संहिता पहले से ही लागू है। मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने आज सभी के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। मतों की गिनती शुक्रवार 29 मई को होगी। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। निवर्तमान प्रधान स्वयं पंचायतों

0: का प्रशासन संभालेंगे। एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। ये निवर्तमान प्रधान कल से प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी तथा उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी परिस्थिति में कोई नीतिगत निर्णय आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के प्रधानों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।

0: भी परिस्थिति में कोई नीतिगत निर्णय आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के प्रधानों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद और पंचायतों के प्रधान बनने तक राज्य सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: भारत सहित दुनिया भर से सऊदी अरब पहुंचे लाखों जायरीन पवित्र हज यात्रा कर रहे हैं। 5 दिन के हज के पहले दिन कल हज यात्री मीना के टेंट सिटी में एकत्रित हुए। एक रिपोर्ट।
2: पवित्र हज यात्रा पर पहुंचे जायरीन आज पूरा दिन अरफात के मैदान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे। इसके बाद हज यात्री निमरा मस्जिद में हज का विशेष संदेश खुतबे हज सुनेंगे और दोपहर तथा शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। सूर्यास्त के बाद वे मुजदलिफा के लिए रवाना होंगे। कल सुबह जायरीन मीना लौटेंगे जहां वे कुर्बानी और कंकर मारने की प्रतीकात्मक रस्म अदा करेंगे। समाचार कक्ष से कलीम अहमद।
1: अमेरिकी सेना ने ईरान के साथ जारी संघर्ष विराम के बीच होर्मुज जल डमरू मध्य के पास ईरान के मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और नावों को निशाना बनाया है। ये घटनाक्रम तब सामने आया जब अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम वार्ता में कुछ प्रगति की खबरें आई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी समझौते में सऊदी अरब और पाकिस्तान सहित कई देशों को अब्राहम समझौते में शामिल किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि या तो ये बातचीत शांति समझौते में बदलेगी या फिर पहले से ही बड़े संघर्ष की स्थिति का कारण बनेगी। अब्राहम समझौता अमरीका की मध्यस्थता में 2020 में हुआ ऐतिहासिक शांति समझौता है जिसका मुख्य उद्देश्य इसराइल और कई अरब तथा मुस्लिम देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने के लिए शुरू किया गया था। ब्राजील सरकार ने अमेजन वर्षावन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 61.75 करोड़ अमरीकी डॉलर आवंटित किए हैं। ये निवेश पिछले वर्ष के COP30 सम्मेलन के दौरान घोषित इको इन्वेस्ट कार्यक्रम का एक हिस्सा है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत फुटबॉल से। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए। प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और अगर बात करें क्रिकेट की तो IPL के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफाइड 2 में एक और मौका मिलेगा। उधर सिंगापुर में आज से शुरू हो रहे सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, HS प्रणॉय, किदाम्बी श्रीकांत और आयुष शेट्टी, वहीं महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और मालविका बंसोड़ चुनौती पेश करेंगी। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तथा मिक्स डबल्स में तनीषा क्रस्तो ध्रुव कपिला और रोहन कपूर रुत्विका शिवानी गड्डे की जोड़ियां भी अपना अपना दावा पेश करेंगी। जी फरहत, खेल जगत से बस आज इतना ही।
1: धन्यवाद मुकेश। और अब रुख कर लेते हैं मौसम का। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद फरहत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कला, खेल और विज्ञान सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली विभूतियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने की खबर आज हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। पत्र लिखता है पैरा खिलाड़ी प्रवीण कुमार को पद्मश्री सम्मान। अमर उजाला ने पुदुचेरी के पारंपरिक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ के पजनी वेल के पद्मश्री सम्मान ग्रहण करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दंडवत प्रणाम करने और प्रधानमंत्री के तुरंत कुर्सी से उठकर उनको उठाने का चित्र प्रकाशित किया है। धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान। धर्म पत्नी हेमा मालिनी ने भावुक होकर ग्रहण किया सम्मान, देश बंधु में है। जनसत्ता ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़ने का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 10 दिन में चौथी बार, अब दिल्ली में भी कीमत 100 पार। पत्र ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के शब्द भी दिए हैं, ईंधन उर्वरक

0: और विदेशी मुद्रा संरक्षण पर ध्यान देने की जरूरत, क्वाड बैठक आज, चीन की चुनौती पर होगी बात। पश्चिम एशिया संकट के बीच दिल्ली में हो रही है मीटिंग, नव भारत टाइम्स की सुर्खी है। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब, एनटीए ने कोई सबक नहीं सीखा। लोकसत्य ने सुनवाई शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट प्रकाशित की है। महिला अपराध के मामलों में देश भर में मध्य प्रदेश की हालत चिंताजनक, प्रदेश में हर रोज दर्ज हो रहे हैं दहेज प्रताड़ना के 20 प्रकरण। दैनिक जागरण ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है विकसित भारत के निर्माण की राह। संपादक ने अपने लेख में स्वामी विवेकानंद के शब्दों को अहमियत दी है, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको। संपादक ने आयुष्मान भारत योजना, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग और एआई में भारत को वैश्विक कंपनियों में अहमियत मिलने से लेकर भारत की प्रगति की चर्चा की है।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। WHO ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। दिल्ली में प्रति किलोग्राम सीएनजी की कीमत 2 रूपये बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में दीप को 11-0 से हराया। और IPL क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। FM 102 और 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर। यह प्रसारण आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से किया जा रहा है। सुबह के 8:15 हो रहे हैं। आइए श्रोताओं सुनते हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम उत्तम स्वास्थ्य।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं अग्रवाल न्यूरो साइकेट्री सेंटर, E11 जवाहर नगर कोटा, फोन नंबर 2422526 और 2431217। विश्व मानसिक स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व स्तरीय RC हंडर अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से 2 बार सम्मानित डॉक्टर ML अग्रवाल। अवसाद या अन्य मानसिक विकारों से अपना हो परेशान, वरिष्ठ मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर ML अग्रवाल करेंगे इसका समाधान। साथ ही छोटे जीने द्वारा बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और समस्त प्रसूत एवं स्त्री रोगों के इलाज व परामर्श की बात है तो डॉक्टर अरुणा अग्रवाल आपके साथ हैं। 24 घंटे रोगियों की देखरेख में तत्पर अग्रवाल न्यूरो साइकेट्री सेंटर।
1: बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन हमारे सभी श्रोताओं का इस सजीव फोन इन कार्यक्रम में जिसका नाम है उत्तम स्वास्थ्य। श्रोताओं, हर मंगलवार को इस कार्यक्रम में हम आपसे जुड़ते हैं एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ। और कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। श्रोताओं, हम इस कार्यक्रम में अक्सर उन मुद्दों पर बात करते हैं जिन पर लोग खुलकर बात नहीं कर पाते, और ऐसा ही एक विषय आज के कार्यक्रम के लिए हमने चुना है। कार्यक्रम में आज का विषय है स्किज़ोफ्रेनिया और अन्य मानसिक रोग, कारण, पहचान और उपचार। और श्रोताओं, मानसिक स्वास्थ्य सिर्फ दिमाग की बीमारी नहीं बल्कि हमारी सोच, हमारी भावनाओं, हमारे रिश्तों और पूरी जिंदगी से जुड़ा विषय है। कई बार लोग डर की वजह से, शर्म या गलत धारणाओं की वजह से मदद नहीं लेते, जबकि सही समय पर इलाज और सहयोग किसी की जिंदगी बदल सकता है। तो आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। और कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक अनुभवी डॉक्टर हैं जो हमें आसान भाषा में समझाएंगे कि मानसिक रोग क्या होते हैं, इनके पीछे क्या कारण हो सकते हैं और किन संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और इलाज कितना संभव है। तो श्रोताओं, इस विषय पर आज डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर ML अग्रवाल। और श्रोताओं, कार्यक्रम में आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, तो इस विषय से जुड़ा आपका भी कोई प्रश्न है, कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, तो आप हमें सीधे कॉल कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं डॉक्टर ML अग्रवाल से। कार्यक्रम में फोन करने के लिए हमारा नंबर है 2941142, कोटा शहर का STD कोड है 0744। तो श्रोताओं, हमारी फोन लाइन्स खुली है, हमें इंतजार है आपके फोन कॉल्स का। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद।
1: तो सर, आज मेंटल हेल्थ के बारे में हम बात करने वाले हैं, स्किज़ोफ्रेनिया हमारा टॉपिक है। तो पहला सवाल आपसे यही कि आसान भाषा में अगर हम समझें तो स्किज़ोफ्रेनिया क्या है?
3: स्किज़ोफ्रेनिया एक मानसिक बीमारी होती है, और इसकी मानसिक बीमारी जो होती है उसमें भी जो दिमाग की जितनी मानसिक बीमारियां हैं उसमें इसका प्रोग्नोसिस सबसे खराब होता है, सबसे खराब बीमारी होती है। लेकिन इस बीमारी को लोग आसानी समझते हैं।

0: नहीं, और लाइट लेते हैं और क्रोनिक हो जाती है
1: जी
0: स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी जो है, कि इसमें आदमी दूसरे को इतना तंग नहीं करता, घर वालों को डिस्टर्ब कम करता है, नेगेटिव सिम्टम्स ये जब होते हैं तो उसकी वजह से घर वाले को यदि बता भी दी जाए एक्सेप्ट नहीं करते और समय पे इलाज नहीं कराते, तो स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी धीरे धीरे पर्सनालिटी रिग्रेशन हो जाती है उसका,
1: जी
0: और वो धीरे धीरे जो आदमी है वो काम नहीं करना, और वो जो लक्षण्स की हम आगे बात करेंगे वो उसमें सब आ जाते हैं। तो स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी में उसके जो इमोशंस हैं, उस कॉग्निटिव फंक्शंस हैं, थॉट डिसऑर्डर है और व्यवहार, सभी में बदलाव आ जाता है, कोई
1: जी
0: एक फैकल्टी नहीं बचती। तो इसलिए धीरे धीरे उसमें स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी में यदि समय पे पहचान के इलाज नहीं कराए तो मरीज की लाइफ बिल्कुल हेल हो जाती है।
1: बिल्कुल। तो श्रोताओं, स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में आज हम बात कर रहे हैं कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं डॉक्टर एम एल अग्रवाल, जो हमसे चर्चा करेंगे आज इस विषय पर और हमें बताएंगे कि क्या इसके कारण है, कैसे लक्षण है और किस तरह से इलाज संभव है। तो सर, स्किज़ोफ्रेनिया की हम बात करें तो कब से ये बीमारी?
0: देखो, स्किज़ोफ्रेनिया की जब बात कर रहे हैं तो इस तरह की बीमारी का तो पूरे पुराने ग्रंथों में भी इसका मिलता है और
1: जी
0: डिस्क्रिप्शन यूनानी में भी मिलता है, आयुर्वेद में भी मिलता है। इस तरह की बीमारियां पहले से पाई जाती हैं और इसकी जो वर्ड तो बाद में आया है, पर ये बीमारी जो है इस तरह के लक्षण वाली पहले से मौजूद है। ये तो ये
1: जी
0: इतिहास में बहुत पहले से है और इस बीमारी 24 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व में स्किज़ोफ्रेनिया डे मनाया जाता है,
1: जी
0: और उसी कड़ी में हम आज ये प्रोग्राम भी कर रहे हैं। स्किज़ोफ्रेनिया डे मनाने से, केवल एक डे मनाने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता, तो हम वर्ष प्रति भर ये प्रयत्न करते हैं कि आम आदमी को जनरल जानकारी इन बीमारियों के बारे में मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से देते रहें। तो उसी कड़ी में आज इस प्रोग्राम को रखवाया गया है। तो स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में हम आज जिसको भी कोई पूछना पूछेंगे और उनके सवालों का उत्तर तो हम देंगे गई और आप विस्तार से इसको जो फिरने क्या होती है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे।
1: बिल्कुल। तो श्रोताओं, आज का जो कार्यक्रम है इसका मकसद यही है कि जागरूकता लोगों में आए, अवेयरनेस लोगों तक पहुंचे और जो भी इसके लक्षण है या जिस भी तरह की आपकी समस्या है, अगर कोई मानसिक समस्या है तो उस समस्या का भी यहां पर हम निदान करने की कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब के माध्यम से। तो सर, अगर हम बात करें आज की जो भागदौड़ वाली लाइफस्टाइल है, मानसिक तनाव आम हो गया है, तो स्किज़ोफ्रेनिया और सामाजिक जो हमारा सामान्य मानसिक तनाव है उसमें सर क्या फर्क है?
0: देखिए, स्किज़ोफ्रेनिया एक बीमारी है, सामान्य मानसिक तनाव तो एक जिंदगी का एक पार्ट है जो सबको ही होता है, किसी ने कम होता है, किसी को ज्यादा होता है, कोई उसको कोप कर लेता है, कोई कोप नहीं कर जाता, उसकी कोपिंग स्किल्स पे डिपेंड करता है, जो बचपन से हम पेरेंट्स से लेते हैं, कोपिंग से उनसे सीखते हैं बचपन में, वो धर्म गुरुओं से सीखते हैं, तो इस तरह की कोपिंग स्किल्स डेवलप होते हैं तो वो मैनेज कर लेता है, कभी समस्या आता तो ना हो जाता। ये एक बीमारी है, मानसिक बीमारी है, जो मैंने जैसे बताया, इसमें आदमी की सबसे पहले थॉट डिसऑर्डर, फिर बौद्धिकता, इमोशंस और व्यवहार सब कुछ बदल जाता है, तो बहुत फर्क है इसमें। बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के अलावा फिर मानसिक बीमारी की बात करें, मानसिक बीमारी भी जो है उसके भी एक आम आदमी की भाषा में ये समझ लें कि एक होता है जिसका कारण दिमाग के अंदर होता है, कोई ट्यूमर हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, तो वो होती है। दूसरी होती है केवल कोई दिमाग के अंदर कोई ट्यूमर नहीं, कोई इन्फेक्शन नहीं, उसके बाद में जो ऑर्गेनिक कॉज नहीं है उसके बाद में होती है, वो होती है फंक्शनल बीमारी बोलते हैं। और फंक्शनल बीमारी में भी बहुत सारी हैं, ऑब्सेशन है, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, एंग्जाइटी न्यूरोसिस है, फोबिक न्यूरोसिस है, बहुत सारी बीमारियां। जो साइकोसिस की बीमारी में दो बीमारियां मेन मानी जाती हैं, एक बाइपोलर डिसऑर्डर, एक स्किज़ोफ्रेनिया। तो इसकी बाइपोलर डिसऑर्डर में भी फिर भी क्या है कि घर वालों को इतना डिस्टर्ब कर दिया, यदि मैनिक फेज में है और ये डिप्रेशन में तो सुसाइड करने लग जाता है, मैनिक फेज में तो घर वालों को इतना डिस्टर्ब, मैनिक वो खान उनका बैठना उठना खाना पीना सब आराम कर देता है, तो उसको फौरन लाएंगे, फौरन भर्ती करा के इलाज भी कराएंगे। लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया में ऐसे लक्षण होते हैं जिनके हम आगे चर्चा करने वाले, जो گھر والوں کو پہچان نہیں آتے, پہچان ان کو ڈسٹرب نہیں کرتا, پہچان آ جائے, دکھا بھی لیں, بتا بھی دیں, تو اس کا صحیح علاج نہیں کراتے, کیونکہ وہ ان کو ڈسٹرب نہیں کر رہا, وہ سوچتے ہیں چل رہا ہے یہ لڑکا ہے, اس کی عادت ہو گئی ہے, اس طرح ہو گیا ہے. تو یہ لکشنز جو ہوتے ہیں اس کے ہم آگے بات کریں, تو اس سے وہ نگیٹو سمٹمز جب ہوتے ہیں

0: तो घर वाले बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते और धीरे धीरे क्रोनिक हो जाते हैं। क्रोनिक हो जाते कहीं झाड़े फूंक में चले जाते हैं, वो करा लेते हैं, फिर भी नहीं होता तो डॉक्टर के पास लाते हैं। जब तो समय निकल जाता है, जो रिकवरी होनी चाहिए वो नहीं होती, उससे मरीज का जो है रिग्रेशन हो जाता है पर्सनैलिटी का चाइल्डहुड की तरफ, और धीरे धीरे वो उसकी व्यवहार भी बदलता जाता है, इस तरह हो जाता है जैसे, और काम करना उसको बंद कर देता है। तो इस तरह के जो सिम्टम्स, इसकी जो भिंडियाँ भी अलग बीमारी है, केवल मानसिक तनाव नहीं है। मानसिक तनाव इसमें प्रेसिपिटेटिंग काज हो सकता है। ये बीमारी केवल मानसिक तनाव से नहीं होती है, इसके कारणों की हम बात करेंगे। तो इसमें जो कारण है जो वो मानसिक कंपनसेटेड, यदि आदमी चल रहा है जैसे कोचिंग का बच्चे होते हैं, बीमारी घर से चल रही है उनको और यहाँ आ जाते हैं, अननोटिस होती है और यहाँ स्ट्रेस बढ़ता है तो प्रेसिपिटेट हो जाती है वो कंपनसेटेड में, उसके व्यवहार में फर्क नहीं आता। पर जब यहाँ स्ट्रेस बढ़ता है तो उसमें वो दूसरे सिम्टम्स आने लग जाते हैं और धीरे धीरे वो सुसाइड भी उसका एक लक्षण होता है तो वो कर बैठते हैं। तो ये अननोटिस होती है, वो मिस हो जाती है। तो इसलिए हमें इसको जल्दी पहचान के जल्दी इलाज कराना चाहिए।
1: बिल्कुल। श्रोता, आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम उत्तम स्वास्थ्य। कार्यक्रम में आज का विषय है स्किज़ोफ्रेनिया व अन्य मानसिक रोग, कारण और उपचार। और इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं हमारे साथ डॉक्टर एमएल अग्रवाल। तो श्रोताओं, इस विषय से जुड़ा आपका भी कोई प्रश्न है, कोई जानकारी आप चाहते हैं, कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें सीधे कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर है 2941142 और कोटा शहर का एसटीडी कोड है 0744। हमारे स्टूडियो की फोन लाइन्स खुली है, हमें इंतजार है आपके फोन कॉल्स का। तो सर, स्किज़ोफ्रेनिया क्यों होता है इसके बारे में बताइए।
0: पहले किस किस को हो सकता है बात करें, इसके कारण के पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि स्किज़ोफ्रेनिया जो है 1% पॉपुलेशन स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित होती है पूरे वर्ल्ड ओवर, केवल अपने ही नहीं पूरे वर्ल्ड में 1% पॉपुलेशन को स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित मानते हैं। तो हमारे हिंदुस्तान में अब 1,40,00,000 के करीब तो इसके बीमार होंगे ही ना, तो इसीलिए 1% पॉपुलेशन होती है। किसको हो सकती है, तो ये किसी भी धर्म को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको हो सकती है
1: जी।
0: किसी को नहीं बगजती है। इसके अलावा सोशल स्टेटस की हम बात करें तो गरीब अमीर सबको हो सकती है। कोई साइकिल पे चलने वाले को हो सकती है, कार में चलने वाले को भी हो सकता है, जो पैदल चल रहा है उसको भी हो सकती है। तो ये नहीं कि किसी को पर्टिकुलर सोशल स्टेटस में होती है। तो ये इलाज कराने में वो सोशल पुअर हों वो पिछड़ जाते हैं वो बात अलग है, पर सोशल स्टेटस नहीं देखती है। इसके बाद में ये क्यों होती है, तो ये स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी मल्टीफैक्टोरियल होती है। मल्टीफैक्टोरियल का मतलब उसमें कई सारे कारण होते हैं, जैसे जो आप जैसे स्ट्रेस की बात कर रहे थे, घर पे स्ट्रेस है या कहीं पे और दूसरा वर्क प्लेस पे स्ट्रेस है, इस पढ़ाई का स्ट्रेस है, कोचिंग का स्ट्रेस है, ये उसको प्रेसिपिटेट कर देते हैं और उसके उसमें एग्रीवेट कर देते हैं उस चीज को। उसके अलावा कुछ पहले ये भी माना गया था कि बचपन की जो डिलीवरी के टाइम की एबनॉर्मलिटी है वो भी, लेकिन सबसे इसमें हेरिडिटी बहुत बड़ा कारण है, अनुवांशिक ये बीमारी। हेरिडिटी इसमें बहुत बड़ा कारण है। अनुवांशिक में भी क्या है कि अक्सर लोग गलती क्या करते हैं कि इवन डॉक्टर्स भी कई बार गलती करते हैं कि वो केवल पिता की तरफ देखते हैं। इसमें हम जो है अनुवांशिक में माता और पिता दोनों तरफ से जीन्स आते हैं, तो दोनों फैमिलीज में कहीं हो तो इसमें आने के चांसेस हो जाते हैं, तो ज्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए अनुवांशिक इसमें कारण, और सबसे बड़ा कारण जो जिसकी वजह से आज हम
1: एक कॉल ले लेते हैं। हेलो,
2: हेलो डॉक्टर।
0: हाँ
1: नमस्कार।
2: नमस्कार, मैं डॉक्टर सितारे बिहार के वैशाली जिले से।
0: हाँ बोलिए
2: जी। कोई व्यक्ति पैदाशी मानसिक रोग से ग्रसित है,
0: हाँ,
2: तो उसका इलाज कराने पर वो ठीक हो जाएगा?
0: बिल्कुल। देखिए, कब से बीमार है वो?
2: पैदाइशी
0: मानसिक, उसको मानसिक रोग स्किज़ोफ्रेनिया होता है। जो पैदाइशी होती है वो सब इंटेलेक्चुअल, पहले मेंटली रिटार्डेड बोलते थे वो होता है, और सब इंटेलेक्चुअल जो होते हैं वो गार्ड वहाँ से जो आपका डेवलपमेंट हुआ है ब्रेन का, वो 15 साल के बाद में नहीं होता। 15 साल तक जो इतना डेवलपमेंट है वो हो जाता है। तो अभी उसमें इलाज में कुछ नहीं है फर्क पड़ेगा, आपको उसके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग, जितना उसका IQ है, जितना बुद्धि है उसकी, उसके हिसाब से उसको ट्रेनिंग दी है, कोई ऐसा काम छोटा जैसे लिफाफे बनाना है कि, कि,

0: स्कैनिंग करना है, छोटे छोटे काम जो कर सकता है उसको सिखाइए, और मेहनत करने से सीखेगा वो भी। वो आम आदमी जैसे एक बार में दो बार में सीख जाए, उसके बाद पूरा मगजमारी करके सिखाना पड़ेगा, और धीरे धीरे वो पिकअप कर लेगा तो वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकेगा।
1: इतना सुंदर सलाह के लिए बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। भगवान आप लोग को निरोग रखे।
0: धन्यवाद धन्यवाद
2: जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए।
0: तो हम बात कर रहे थे कारणों में, जो तो मैं जो सबसे बड़ा कारण बताने जा रहा था वो आज जो है, जिसकी वजह से हमारे इलाज में पिछले दो दशक पिछले टू डिकेड्स के अंदर क्रांति आ गई है। बहुत बढ़िया इलाज हो गया, पहले इलाज नहीं था। तो ये है न्यूरो ट्रांसमीटर्स जिनका कारण होता है डोपामिन, जैसे है सेरोटोनिन डोपामिन, और इस डोपामिन मेन इसमें नोरेपिनिन, ऐसे न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं ब्रेन में, उनमें गड़बड़ हो जाती है, उसकी वजह से इस तरह की बीमारी होती है। तो उसका जब पता लगाया, उस कारण ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स जब से पता लगा तो उस पर रिसर्च हो रही है। तो एक से एक बढ़िया दवाइयाँ आ रही हैं, एक एक फंक्शनल एमआरआई से एक एक रिसेप्टर पर ब्रेन के स्टडी हो रही है, और उसकी वजह से ये जो इलाज में भी बहुत बड़ा क्रांति आ गई है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है न्यूरो ट्रांसमीटर्स का। उसका फायदा यह हुआ कि दवाइयाँ एक से एक आ गई हैं, उनके साइड इफेक्ट्स कम हो गए हैं। तो ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स को भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से ये होता है। तो इसीलिए हमें दवाई भी लंबे समय तक खानी पड़ती
2: जी। विश्व मानसिक स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व स्तरीय आरसी हंटर अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से दो बार सम्मानित डॉक्टर एमएल अग्रवाल, अवसाद या अन्य मानसिक विकारों से अब ना हो परेशान, वरिष्ठ मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर एमएल अग्रवाल करेंगे इसका समाधान। साथ ही छोटे जीने द्वारा बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और समस्त प्रसूति एवं स्त्री रोगों के इलाज और परामर्श की बात है तो डॉक्टर अरुणा अग्रवाल आपके साथ हैं। 24 घंटे रोगियों की देखरेख में तत्पर, अग्रवाल न्यूरो साइकेट्री सेंटर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे अग्रवाल न्यूरो साइकेट्री सेंटर, 11 जवाहर नगर कोटा, फोन नंबर 2422526 और 2431217।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं कोटा हार्ट इंस्टीट्यूट एवं श्री जी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल झालावाड़ रोड कोटा।
3: दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है।
4: आपसे है हमारा दिल का रिश्ता क्योंकि हमारे लिए है हर जिंदगी अनमोल। हमारे यहाँ 24 घंटे हृदय रोग विशेषज्ञों द्वारा इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध हैं। हाथ के नस द्वारा एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी। देश के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश जिंदल की अगुवाई में सुपर स्पेशलिटी कार्डियोलॉजी टीम और गंभीर जानलेवा बीमारियों के लिए समर्पित विशेषज्ञ डॉक्टर्स। सघन नवजात गहन चिकित्सा इकाई, लेप्रोस्कोपी दूरबीन पद्धति से पथरी रोग, हर्निया, पेट रोग, महिला रोग और मोटापे का संपूर्ण इलाज, बच्चे दानी का ऑपरेशन, निसंतानता की संपूर्ण जांच एवं इलाज। आपसे है हमारा दिल का रिश्ता क्योंकि हमारे लिए है हर जिंदगी अनमोल।
3: दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है।
5: और श्रोता, इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर हम लौट आए हैं। सजीवी फोन इन कार्यक्रम उत्तम स्वास्थ्य जारी है। कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं स्किज़ोफ्रेनिया और अन्य मानसिक रोग कारण व उपचार विषय पर, और इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर ML अग्रवाल। तो श्रोताओं, इस विषय पर आप भी कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या हमसे कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हेलो,
6: गुड मॉर्निंग मैडम।
5: गुड मॉर्निंग, स्वागत है सर।
6: डॉक्टर अग्रवाल साहब, बहुत बहुत प्रणाम आपको।
7: धन्यवाद।
6: निश्चित तौर पर अगर मैं कहूँ तो कोटा के लिए एक वरदान है। मैं प्रत्यक्ष दर्शी हूँ कि ऐसे ऐसे पेशेंट जिनको 10-10 रोग पकड़ के लाते हैं और वो आपके यहाँ से आपको दुआएं देते हुए घर पहुँचते हैं सकुशल। मैं सिर्फ आपसे सर एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप 80+ आपकी एज हो गई है, किसी भी तरीके से ये अफोर्डेबिलिटी इसकी या निशुल्क आप ये ट्रीटमेंट का कोई व्यवस्था कर सकें तो ये मानव जाति पे बहुत बड़ा उपकार होगा आपका, क्योंकि मैंने आपको देखा है कि आपका जो पेशेंट है इस उम्र में भी वो पेशेंट को

0: बहुत ही आशा प्रदान करता है। ये सिजोफ्रेनिया अपने आप में पूरे घर को तबाह करके रखते हैं।
1: बहुत धन्यवाद। पहले तो आपने जो कुछ मेरे लिए कहा उसके लिए बहुत धन्यवाद। जो आपने सजेशन दिया है वो ऑलरेडी मैं कई सालों से है। जैसे आप देखें मेरे यहाँ जो सुविधाएं जो मिलती हैं इनके सारे ह्यूमन राइट्स को मेंटेन करते हुए मिलती हैं। तो केवल जैसे कंसल्टेशन भी कई सालों से एक फिक्स कंसल्टेशन है, वो गरीब आदमी होता है उसको छोड़ भी दी जाती है। उसके अलावा वार्ड में जो एडमिट करते हैं किसी में भी मेरी फीस कई सालों से नहीं लेता हूं। दूसरे डॉक्टर्स की, नर्सिंग स्टाफ और जो बेड चार्जेस उसमें सफाई कर्मचारी, दूसरे खर्चे बिजली पानी, और केवल उसके हिसाब से एक बहुत लिमिट में, और वो भी किसी गरीब को छोड़ भी दिया जाता है लिमिट में, 1500-1600 रुपये रूप में जो हो जाता है आज वो कहीं भी खर्च हो सकता है। तो इसलिए और जांच में भी उनको कंसेशन दिलवाते हैं।
2: बिल्कुल सर, एक और कॉल ले लेते हैं। हेलो, हेलो, हेलो जी, नमस्ते सर, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो,
3: जितेंद्र बात कर रहा था मैं।
2: हाँ जी जितेंद्र जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
3: सर से पूछना था मैं।
1: थोड़ा जोर से बोलें सर।
3: हमारे रिलेशन में सर को एक पेशेंट है। वो सर एसीआर का पे करता है। वो ऐसी मेंटल जेसीआर का पे करता है सर वो।
1: हाँ हाँ
3: सर, वो खाना भी अच्छी तरह खा लेता है। एक तो क्या है, नाते नहीं है सर। और दूसरी बात वो क्या है, इसी घर वाले में भी गालियां निकालते रहते हैं सर। और तीसरी वो क्या है, पानी पर ज्यादा, बस वहाँ पानी पानी ज्यादा डोलते हैं सर। वो तो पानी पानी में लगा रहते हैं। ऐसी हरकत है सर उनको, वो करते हैं।
1: तो आप उसको किसी मनोचिकित्सक को दिखाया आपने अभी तक?
3: सर दिखाया था पर उनका तो कोई निदान नहीं
1: हुआ। नहीं, निदान तो होगा इसका, तो ये सिम्टम तो खास बीमारी के हैं, जो आज इसकी बात कर रहे हैं उसी बीमारी के लक्षण हैं, तो ये ठीक होगा। पर इसके आप आगे सुने, मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ, आप जो लक्षण बोल रहे हैं वो भी आएंगे, इलाज भी इसके बारे में आएगा।
3: सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे मिलना चाहूँ तो फिर आप ही मिल सकते हैं
1: ये
2: जी। सर कार्यक्रम के बाद आप हमें कॉल कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम आपको जानकारी दे देंगे। और कोई प्रश्न सर आपका? जी जी जितेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी सर। तो हमने ये जाना कि किन लोगों को होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। सर एज की अगर हम बात करें तो एज से भी रिलेटेड है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल आप कर रही है। तो जो ये बीमारी है ना, ये युवाओं की बीमारी किसी भी एज में हो सकती है वैसे तो, पर मेन ये युवाओं की बीमारी है। 75% लोगों को इसका ऑन सेट लड़कों में जो है 15 से 28 साल तक में होता है
2: जी,
1: और लड़कियों में 14 से 26 साल के बीच में फर्स्ट ऑन सेट होता है। और यही टाइम होता है उनका पढ़ाई का, करियर का, यही टाइम होता है उनके जो आगे कोचिंग लेना, जो भी कुछ करना है, जॉब करना है या कंपटीशन देना है, तो इसमें स्ट्रेस और बढ़ जाता है जो उसमें कंट्रीब्यूट करता है।
2: हेलो,
4: हेलो, नमस्ते मैडम।
2: नमस्ते सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कौन बोल रहे हैं?
4: मैं प्रवीण बोल रहा हूँ, प्रवीण मीणा कोटा से बोल रहा हूँ।
2: जी सर,
4: मैं, मेरी माताजी जो है 85 ईयर ओल्ड है, वो अभी अभी उन्होंने उनके अंदर भूलने की बहुत ज्यादा आदत हो रही है। वो कह के भूल जाती है, दवाई खा के भूल जाती है कि मैंने पैसा कहा नहीं, और अकेले में बड़बड़ाती है। तो क्या वो भी सिजोफ्रेनिया की बीमारी है क्या?
1: देखिए आपने जो एज बताई
4: जी,
1: वो आजकल सबसे ज्यादा समस्या आने वाली है, आगे वाली समस्या मेन समस्या होगी ये 60 के बाद में, थोड़ा मेमोरी में फर्क पड़ने लग जाता है, डीजेनरेशन ब्रेन का होने लग जाता है, तो 80 में काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसको डिमेंशिया बोलते हैं, याददाश्त की बीमारी, जो अपना अब ध्यान ही नहीं रहता, कुछ बोलती रहती हूँ, आइसोलेशन हो जाता है, घर वाले भी टाइम नहीं दे पाते। तो ऐसे मरीजों को मैनेज करना, दो इसके ट्रीटमेंट है, मेमोरी वापस, जो ब्रेन सेल खत्म हो गए वो तो नहीं आते, पर जहाँ आप दवाई चालू करो वहाँ थोड़ी रुकावट हो सकती है, थोड़ा घर में मैनेज करने के लिए दवाइयाँ दी जा सकती हैं, बाकी ये इरिवर्सिबल होता है। इसको जितनी जल्दी मेमोरी को पहचान के दवाई चालू करें तो वहीं रुकावट हो जाती है, पर जब हो जाती है वो रिवर्स नहीं हो सकती। उसको फिर बाद में ये कि घर वालों को की तकलीफ कम से कम

0: कैसे हो, इसलिए फार्माकोलॉजिकल के साथ में नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो नर्सिंग है, केयर टेकर है और घर वाले हैं, इनकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि किस तरह से उससे डील करें, किस तरह बात करें, किस तरह घर के सदस्य निकाल के उससे बात, आइसोलेशन को दूर करें।
1: जी सर
0: जी, धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
2: थैंक यू प्रवीण जी कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए। ओके, तो सर एज फैक्टर के बारे में
0: एक बात मैं बता रहा था, जो लड़कियों में 14 से 26 साल तक के में पहला एपिसोड ऑनसेट होता है 75% लोगों में, वैसे तो किसी भी एज में हो जाता है, तो लड़कों में 18 से 28 साल तक फर्स्ट एपिसोड होता है। ये उम्र है जिसमें ये करियर बनाने की होती है, कोचिंग लेने की होती है, कंपटीशन देने, तो स्ट्रेस बढ़ता तो और एग्रीवेट होता। क्या है कि बच्चा बहुत ये इंट्रोवर्टेड होते हैं, शुरू से तो बुकवार्म होते हैं, पढ़ते बहुत हैं। मैंने IIT गोल्ड मेडलिस्ट को भी एक मैंने यहाँ भर्ती किया, बड़ौदा से आया था, तो ये पढ़ते बहुत हैं, 10th 11th में तक अच्छी परफॉर्मेंस हो रही होती है, एकदम से उनकी परफॉर्मेंस डाउन होती है, घर वाले भी वरीड होता है, पर एक्चुअल कॉज उनको पता नहीं होता। धीरे धीरे वो पढ़ाई में पिछड़ने लगते हैं, पढ़ना कम, रैंक उनकी डाउन होने लग जाती है, अकेले रहने लग जाते हैं, दोस्तों के पास नहीं जाते, ऐसा कुछ, या क्लास में बंक मारने लग जाते हैं, तो ऐसा कुछ हो तो उस समय यदि जॉब करता है तो जॉब से बिना मतलब एब्सेंट रहने लग जाते हैं, फ्रीक्वेंटली जॉब चेंज करते हैं।
2: हेलो,
3: हेलो
2: जी, नमस्ते।
0: तो उसी समय उनको पहचान लिया जाए, और पर होता ये नहीं है, उसको पहचान नहीं पाते लोग, और पहचान भी लाते तो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, कई बार बता भी देते हैं, कोचिंग में आते हैं उनको भी बता देते, पर वो घर वालों को लगता है मेरे बच्चों को ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये जो है उस समय उनको कंसल्ट कर लेना चाहिए, चेंज आता है उसी समय इमीजिएटली कर लेना चाहिए।
2: जी, श्रोता, आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम उत्तम स्वास्थ्य। कार्यक्रम में आज का हमारा जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं स्किज़ोफ्रेनिया व अन्य मानसिक रोग कारण व उपचार, और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर ML अग्रवाल। तो श्रोता, इस विषय से जुड़ा आपका भी कोई प्रश्न है या आप डॉक्टर साहब से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर एक बार फिर से दोहरा देते हैं, नंबर है 2941142। तो सर, हमने ये जाना कि किस एज में हो सकता है, किन लोगों को हो सकता है, अब अगर कारण की हम बात करें तो क्या इसके
0: कारण, तो अपन बात कर चुके हैं
2: जी, तो लक्षण सर अगर हम समझना
0: कैसे पहचाने इसको,
2: पहचान कैसे
0: जी, जैसे कुछ लक्षण तो जैसे मैंने स्टार्टिंग के भी बता रहा था ना, ऑनसेट होता है तो किस तरह के होते हैं
2: जी,
0: तो इसमें जो है जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि थॉट डिसऑर्डर, इमोशनल डिसऑर्डर, बिहेवियर डिसऑर्डर, ये सारे इसमें फंक्शन बौद्धिकता पे सब पे असर पड़ता है। तो इसके इसमें कुछ लक्षण खास होते हैं जिनको पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स बोलते हैं हम आजकल की भाषा में
2: जी।
0: तो पहले कटआउट होने का उस तरह से बोलते हैं आजकल, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लक्षण जो होते हैं बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं ये डायग्नोसिस के लिए।
2: हेलो,
4: हेलो
2: जी, नमस्ते।
4: नमस्ते जी सर, मैं पाटन से बोल रहा हूँ, गिरिराज
2: जी सर।
4: हमारे भाई का बच्चा है जो बोलता भी नहीं है, सुनता नहीं है, क्या बीमारी, आप कौन से डाउट,
0: एज क्या है बच्चे की,
4: उसकी होगी 20 साल,
0: शुरू से नहीं बोलता। आप उसको ENT स्पेशलिस्ट को दिखाएं, डेफ एंड डम बच्चे होते हैं, जन्म से होते हैं उनको ENT में, आजकल तो बहुत अच्छा होगा, एक बाहर इम्प्लांट लगा देते हैं छोटे बच्चों को, तो वो उससे बोलने भी लग जाते हैं, सुनने भी लग जाते हैं। यदि आप बच्चे को ले जाके दिखाएं कि इस एज में भी लग सकता है या नहीं, वो आपको ENT स्पेशलिस्ट बताएगा। हाँ, कोटा में नाक कान गले के डॉक्टर जितने भी ENT मतलब नाक कान गले वाले डॉक्टर सभी इसको देखते हैं।
4: ठीक है सर
2: जी, गिरिराज जी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए जी सर।
0: तो हम लक्षणों की बात कर रहे थे, लक्षण जो है पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, तो पॉजिटिव लक्षण क्या होते हैं, तो जैसे उसको कानों में आवाज आना, कोई औरों को नहीं सुनाई देते पर उसको आवाज आती है, लोग उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं, मखोल मजे लेने लग जाते हैं, गांव में तो चौपाल में बैठ जाए और 5-10 आदमी सब उसके मजे उड़ा, तो उसको वास्तव में आवाज सुनाई देती है, वो कोई नाटक नहीं कर रहा होता, उसको आवाजें ऑडिटरी हेलुसिनेशन बोलते हैं उनको, और उनको आवाजें सुनती हैं, ये पॉजिटिव लक्षण्स में आता है। सीनेटर्स ने तो इसको मेन सिम्टम्स में कहा, एक ही सिम्टम से भी डायग्नोसिस कर सकते हैं, दूसरा

0: है कि डिल्यूजन्स, बहम, शक बहम, शक बहम होने लग जाता है उसको, और वो शक बहम होता है वो किसी भी रीजनिंग से ठीक नहीं होता। कितना भी आप उसको समझाइश कर लें, रीजनिंग दे लें, वो पक्का विश्वास होता है, उसका जो कल्चरल बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड नहीं होता जी। तो इसमें जैसे कोई भी बात कर रहा है तो उसको लगा मेरी बात कर रहा है, कोई भी, हाँ, घर में कोई भी काम हो रहा है मेरे, या पड़ोस वाला मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, आवाजें उसके आ रही है, फिर ऊपर उससे ये हो जाता है मेरे खिलाफ षड्यंत्र, ऑफिस में सब उसको लगता है सब मेरे खिलाफ ही काम कर रहे हैं, मेरे खिलाफ नेगेटिव हो रहे हैं, तो वहाँ उसका व्यवहार बदल जाता है। तो बीबी पे बिना मतलब, या स्पाउस मतलब आदमी है तो बीबी पे, और औरत तो आदमी पे बिना मतलब का शक तलाक तक पहुँच जाता है, बिना मतलब का शक करने लग जाते हैं कि भाई ये इसका चरित्र खराब है, इससे है। एक बार तो दादा पोता पोती लेके आ गए, दादा दादी पे शक करने लग गया था इस उम्र में जाके, तो ये इस लेट ऑनसेट भी कभी हो जाता ना। तो इस तरह के बैम होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। कई बार तो क्या होता है कि पिछले दिनों में कोई घटना भी हुई थी, मैंने एक यहाँ इलाज भी किया था, ट्रेन में चलते चलते कई बार सुनो कूद जाते हैं, वो क्या है कि उनको लगता है ये सब मेरे खिलाफ हो गए, तो उस पर दो ही कारण होते हैं, या तो उन पे अटैक करे या सेल्फ डिफेंस में कूद जाए ट्रेन से, तो ऐसे भी कई केस होते हैं। तो ये उसमें पक्का विश्वास है, कुछ भी कर सकता है, और वो उस विश्वास को केवल इलाज से ठीक कर सकते हैं, किसी समझाइश से वो नहीं ठीक होता है। तो ये पॉजिटिव सिम्टम्स, कुछ होते नेगेटिव सिम्टम्स। नेगेटिव सिम्टम्स में जैसे अभी आपको अपने सवाल किया था एक श्रोता ने कि जैसे नहाता नहीं कई दिन तक, कई कई दिन तक नहीं नहाते, उनके पर्सनल हाइजीन बिल्कुल पोर हो जाती है, आदमी दाढ़ी बनाएगा नहीं, शेव नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा कई दिन तक, तो वो घूमने भी जाएगा तो अकेला जाएगा कहीं, तो घर में साफ सफाई करनी है, कुछ भी करने पड़ा रहेगा, एक कोने में पड़ जाएगा, एक कमरे में अपना आप को कन्फाइंड, वो अपना खुद का एक सेल्फ क्रिएटेड वर्ल्ड बना लेते हैं, अपने खुद की दुनिया में खो जाते हैं, और बाहरी दुनिया से धीरे धीरे कट होते जाते हैं। ऐसे कई केस देखे हैं जो वर्षों तक कमरे में बंद रहे हैं और बाद में ठीक भी हो गए हैं। तो ऐसे इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत गड़बड़ होते हैं। इसके अलावा कॉग्निटिव फंक्शन में कि वो अपनी बात कहीं पर ठीक से कह नहीं पाते, मतलब प्रसंग कुछ चल रहा है वो कुछ और इनअप्रोप्रिएट टॉक्स करेंगे, तो वो भी एक इसका डायग्नोस्टिक होता है
1: जी।
0: तो बौद्धिकता पे फर्क पड़ जाता है। इमोशंस, इमोशंस की बात करें तो वो इमोशंस भी इनर समय पे नहीं एक्सप्रेस कर रहे, वहां तो लाश पड़ रही है, वो हंस रहा है, मौत हो गई हंस रहा है उस पर, वो खुशी की जगह पे रो रहा है, तो ये इनर इमोशंस भी उसके गड़बड़ हो जाता
1: जी।
0: तो इस तरह के लक्षण होते हैं।
2: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कोटा हार्ट इंस्टीट्यूट एवं श्री जी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल झालावाड़ रोड कोटा।
3: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं जायसवाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं न्यूरो इंस्टीट्यूट 1/28 विज्ञान नगर कोटा।
4: हाड़ौती में पहली बार लकवे के इलाज हेतु मस्तिष्क में रक्त के थक्के को पिघलाने वाली आधुनिकतम एवं एकमात्र टीपीए उपचार पद्धति युक्त स्ट्रोक यूनिट।
3: शुरुआती 4.5 घंटे में ही इस पद्धति से उपचार द्वारा लकवे से होने वाली आजीवन अपंगता से बचाव संभव।
4: लकवे के लक्षण शरीर के एक भाग में कमजोरी, चेहरे में टेढ़ापन, आवाज में लड़खड़ाहट, चलने में परेशानी, तुरंत संपर्क करें।
3: 24 घंटे अनुभवी न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय जायसवाल एवं स्ट्रोक टीम उपलब्ध। टेलीफोन नंबर 07442423232, मोबाइल नंबर 9928756522।
5: और एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं हमारे सभी श्रोताओं का सजीव फोन इन कार्यक्रम उत्तम स्वास्थ्य में। और श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं स्किज़ोफ्रेनिया और अन्य मानसिक रोग कारण और उपचार विषय पर। हेलो जी, स्वागत है मैम, कौन बोल रहे हैं?
6: मैं परवीन बोल रही हूँ संजनगर से।
5: जी मैम, सवाल पूछे अपना।
6: मुझे ना चक्कर ही चक्कर आ रहे हैं।
0: चक्कर आ रहे हैं आपको, और उसके अलावा क्या हो रहा है?
6: और उसके अलावा कुछ भी नहीं, जो उठती हूँ, बैठती हूँ, लेटती हूँ, सरोट लेती हूँ, तो मुझे चक्कर ही चक्कर आते हैं, घूम जाते हैं, बस एक सेकंड के चक्कर आते हैं बस।
0: हाँ, तो इसके लिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और आपके जो इक्विलिब्रियम एक सिस्टम होता है, तो आप इसके लिए चक्कर के लिए तो कहीं ENT वालों को दिखाएं पहले। वैसे तो ये कई बार साइकेट्रिक मनोचिकित्सक बीमारियों से भी होती है, पर आप जिस तरह से करवट से इस तरह से हो रहा है, तो इसका मतलब आपका वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप एक बार ENT स्पेशलिस्ट को दिखाएं इसके लिए।
6: अच्छा, डॉक्टर को दिखाएं
5: जी। जी प्रवीण जी, बहुत बहुत शुक्रिया।

0: आपका कार्यक्रम में फोन करने के लिए। ओके, तो सर कारण हमने जान लिए हैं, लक्षण हमने जान लिए हैं, अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की,
1: ट्रीटमेंट
0: तो सर स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज क्या पूरी तरह से संभव है?
1: देखिए, बहुत अच्छा सवाल है भी आपका। स्किज़ोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट जहाँ की बात कर रहे हैं, तो मैंने जैसे आपको कारणों में बताया था।
0: हेलो,
2: हेलो
0: जी, नमस्कार,
2: प्रोफेसर है, पाटन जी शंकर बोल रहा हूँ।
0: स्वागत है आपका।
2: एक बच्ची हमारे 8 साल की जो रात को नींद आने के बाद उठ जाती
1: है
2: और कुछ बातें करने लग जाती है, वो
1: क्या हो जाती है साथ में,
2: वो बातें करने लग जाती, उठ गया फिर वापिस
1: हो जाती है। तो सपना कुछ ऐसा आता होगा जिसकी वजह से वो उठ जाती है, तो
2: नहीं सर, वो रोजाना करते हुए
1: हाँ, तो दिमाग में कोई टेंशन चल रहा होगा, उसको एक बार मनोचिकित्सक को दिखाएं, तो वो साधारण सी बीमारी, कोई 8 साल की उम्र में, वैसे तो चाइल्डहुड स्किज़ोफ्रेनिया बहुत होता है पर रेयर होता है, तो इसलिए उसको एक बार दिखाएं, कहीं एंग्जाइटी अनकॉन्शियस लेवल पे चल रही हो, स्कूल का प्रेशर हो, कोई आपके यहाँ का प्रेशर हो।
2: अच्छा,
1: हाँ, तो ये एक बार उसको जरूर दिखाएं और काउंसलिंग उसकी कराएं।
0: जी
2: ठीक,
0: बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। जी सर, ट्रीटमेंट,
1: हाँ, ट्रीटमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो आपने पूछा है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, ये बहुत, देखिए जो मानसिक ये स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी में कारण में न्यूरोट्रांसमीटर्स वाली बात की थी, हेरिडिटी की बात करी, जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स पहले वहाँ हैं वो हम चेंज नहीं करते, जैसे और बीमारी होती है, डायबिटीज होती है, क्या होता है उसमें पैनक्रियाज में इंसुलिन कम बनने लग जाती है, तो उसको हम दवाई देते हैं और दवाई से वो कंट्रोल हो जाती है, पर जिस रोज वो दवाई नहीं खाता उस रोज शुगर बढ़ जाती है। ठीक इसी प्रकार इसमें भी क्या है कि हम उसको ठीक कर देते हैं, फिर धीरे धीरे मेंटेनेंस डोज पे ले आते हैं, और मेंटेनेंस डोज उसको खानी पड़ेगी, क्योंकि बंद करते ही फिर वो न्यूरोट्रांसमीटर्स जिसको हम दवाई से ठीक कर रहे हैं वापस गड़बड़ हो जाएंगे, तो इसलिए उसको दवाई मेंटेनेंस डोज खाना जरूरी है। लोग अक्सर क्या सोचते हैं इन दवाइयों के बारे में, उनको गलत धारणा होती है, तो नशे हर गोली को वो नशे की गोली, नींद की गोली समझते हैं, जबकि हम स्पेसिफिक लक्षण के हिसाब से उसको दवाएं दी जाती हैं। आजकल कोई ऐसे नींद की गोली तो कोई नहीं, उसके बावजूद भी नहीं आए तो दी जाती है।
0: जी हेलो,
3: हाँ जी, आकाशवाणी और डॉक्टर साहब को नमस्कार।
1: नमस्कार
3: शर्मा, स्टेशन कोटा से।
0: जी सर,
3: डॉक्टर साहब जो स्किज़ोफ्रेनिया के मानसिक रोग के बता रहे हैं आप, हमें मालूम होता है, लेकिन पेरेंट्स जो है ना उनके, जो उनके साथ रहते हैं, वो ये मानते नहीं है किसको बीमारी है, ये तो जान के कर रहा है,
1: ये तो मैंने बताया, एक्सेप्ट नहीं करते, उसका मतलब वही है, घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते उसको,
3: मतलब सबसे बड़ी इसमें दिक्कत ये आती है, घर वालों को समझा जाता है कि भाई ये पेशेंट है और इसको समझे हैं तो, लेकिन उनको ये है कि ये पेशेंट नहीं है, ये मन से कर रहा है, तो उसका ना इलाज कराते हैं और वो बीमारी बढ़ती रहती है, तो पेरेंट्स के लिए आप कुछ खास बातें बताओ जिसमें उनको थोड़ा आए कि भाई ये बीमारी बहुत ही,
1: वो ही बताने जा रहे हैं, आप ध्यान से सुने, और बता भी चुका हूँ मैं उसके, मैं थोड़ा अभी आगे भी इसमें आएगी चर्चा, इलाज की चर्चा आई है ना इसमें आएगी, तो ये कल परसों 24 तारीख के अखबारों में देखा होगा, दबे पाँव आती है बीमारी, और सतर्क रहना चाहिए, तो ये दबे पाँव मतलब ये लक्षण ऐसे होते हैं कि घर वाले उसको समझते नहीं, समझ भी लेते तो एक्सेप्ट नहीं करते, इसीलिए आज का प्रोग्राम रखा है कि आम आदमी एक एक पेरेंट्स को हम नहीं समझा सकते, आज हम सभी के लिए प्रोग्राम रखा है कि इसके बारे में डिटेल में बताएं, जैसे आप भी आपस में ये सामूहिक जो जन जागृति सामूहिक रूप से हम करेंगे जब भी इसमें सक्सेस होंगे, तो आप भी इसमें भागीदार बन रहे हैं समझाने में, आप सुनिए और औरों को भी समझाइए।
3: थैंक यू सर, थैंक यू
0: जी। शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया।
1: तो वो मेंटेनेंस डोज हमेशा उसमें देनी पड़ती है, इसलिए नहीं देते तो फिर रिलैप्स हो जाता है, तो ये और मेंटेनेंस डोज खाते हुए अच्छी अच्छी पोस्टों पे, अच्छी अच्छी जॉब पे, सब जॉब कर, मैं तो एक एग्जांपल बता रहा हूँ, एक बाबू से उसने स्टार्ट कराया था, ही वाज वेरी रेगुलर इन ट्रीटमेंट, आज भी वो 2 mg की गोली खाता है और दिखाता है 3-4 महीने में, तो ये उसको वो बाबू से असिस्टेंट कोई डिपार्टमेंट में
0: जी।
1: बेस्ट असिस्टेंट कमिश्नर का अवार्ड लेके रिटायर हुआ, और 7 साल के बाद गवर्नमेंट ने वापस बुलाया, इसने मना कर दिया कि उसने ज्यादा काउंसलिंग में वो कमा रहा है, उससे ज्यादा कमा रहा है, गवर्नमेंट जो उसको सैलरी दे रही थी उसके लिए मना कर दिया, तो इतना बढ़िया एग्जाम्पल है कि स्किजोफ्रेनिया

0: वाला मरीज सब कुछ कर सकता है।
1: यानी सर हम ये कह सकते हैं कि अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो एक नॉर्मल लाइफ आप जी सकते हैं।
0: बिल्कुल, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स भी हैं सब
1: जी,
0: इसलिए वो पर रेगुलर ट्रीटमेंट लें। तो हम बात ये अभी करें इसकी क्या ट्रीटमेंट क्या है इसकी बात कर रहे थे। पहले सबसे पहले तो दवाइयों का, गोलियों का, 1950 के अंदर पहली गोली क्लोरप्रोमेजिन एक गोली है, वो 1950 में फर्स्ट गोली हमारे पास आई थी, उससे पहले कोई दवाई इसके लिए नहीं होती थी। उसके बाद में अब रिसर्च करके बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां इसके लिए आती है, टेबलेट्स की फॉर्म में भी आती है, इंजेक्शन की फॉर्म में भी आती है जो दी जाती है। यदि ज्यादा डिस्टर्ब मरीज होता है तो इंजेक्शन आईवी लगाते हैं, नहीं इंट्रामस्कुलर लगा देते हैं जो मसल में लगा देते हैं, नहीं डायरेक्ट ब्लड में भी लगाते हैं। इसके अलावा कुछ डिपो इंजेक्शन जो मरीज कोऑपरेटिव नहीं होते, खाते नहीं है दवाई, मना कर देते हैं किसी तरह भी, और घर वाले एडमिट भी नहीं कराते, तो ऐसे मरीजों के लिए डिपो इंजेक्शन आते हैं। 15 दिन में एक इंजेक्शन लगा लो, 15 दिन दवाई रेगुलर डोज में वहां से मिलती रहती
1: जी।
0: तो वो बहुत अच्छा, उसमें जो प्रॉब्लम वाले मरीज होते हैं कोऑपरेटिव नहीं होते तो उनमें बहुत अच्छा फायदा होता है उसके
1: जी।
0: उसके गोलियां हो गई, इंजेक्शन हो गए, उसके अलावा जो ईसीटी का इलाज भी बहुत कारगर होता है इसमें, और आज भी बहुत कारगर होता है, और खासकर जो मरीज सुसाइड कर रहे होते हैं या कैटाटोनिक सिम्टम्स जिनमें होते हैं तो उनमें बहुत कारगर होता है ये, कैटाटोनिक में तो बहुत ही ज्यादा कारगर होता है। तो इस तरह के जो मरीज हों उनको ईसीटी के लिए बहुत गलत धारणा है। इसके बाद थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, ईसीटी को लोग वही आज शॉर्ट लगा रहे हैं, बिजली का झटका लगा रहे हैं वो समझते हैं, लेकिन चेंज हो गई चीजें आज। पहली चीज तो मशीन ने बदल, पहले तो आपके पास टेलीफोन तार से आता, आप सबकी जेब में टेलीफोन पहुंच गया, उसमें कंप्यूटर सब पहुंच गया, तो इसी तरह मशीन हमारी भी जो है ना सब
1: अपग्रेड
0: हो गई, सब उनमें चिप्स लग गए और सब उसमें आजकल इंडिविजुअल हर पेशेंट का ओम्स में रेजिस्टेंस मेंटेन करके उसके लिए 1 सेकंड के लिए वो चेक करते हैं, और उसकी वजह से कोई मेमोरी कितनी भी फंक्शनल MRI करा लो, कुछ भी करा लो, कोई उसमें चेंजेस नहीं आता। दूसरी चीज जो है जो तरीका बदल गया, पहले पकड़ा लगा दिया इस तरह से होता था, अब मरीज को पहले NSA का डॉक्टर एक छोटा सा इंजेक्शन लगाता है उससे बेहोश, शॉर्ट एक्टिंग NSA होता है, थोड़ी 10 मिनट के लिए वो बेहोश हो जाता है, उसके दूसरा इंजेक्शन लगा जिससे मसल रिलैक्शन होता है, मसल बिल्कुल काम करना बंद कर देती है, उससे ऑपरेशन के तहत ऑक्सीजन देना पड़ता है, और ऑक्सीजन के साथ उसको बीच में 1 सेकंड का वो मशीन शेक कर देती है, उसके बाद थोड़ी देर में रिकवरी होती है, बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह से जो ट्रीटमेंट होता है वो भी बड़ा, आजकल ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया हो गया, मरीज को किसी तरह के झटके कोई को तकलीफ नहीं होती, किस तरह की होती केवल सुई चुभने का उसको एहसास होता है एक बार, तो वो भी आजकल बहुत बारीक सुई होते हैं बटरफ्लाई वाले वो उसे लगाते हैं उसको
1: बिल्कुल।
0: तो उसके अलावा एक और इलाज जो लेटेस्ट है अमेरिका आज टाइम बहुत पॉपुलर है, हमारे यहाँ कुछ जगह पे है, बड़े बड़े शहरों में है, हमारे कोटा में भी हमारे पास है, तो ये मैग्नेटिक थेरेपी होती है, वो भी 5-6 बीमारियां होती है बाइपोलर में और डिप्रेशन OCD में, सबका अलग अलग प्रोटोकॉल होता है उसमें, तो स्किज़ोफ्रेनिया के लिए भी वो एक काम में आती है। तो वो उससे बैठ के आदमी 18 मिनट के लिए, 18-20 मिनट के लिए घर वाले साथ बैठ के उसमें कोई बेहोश नहीं करना पड़ता कुछ नहीं, 18-20 मिनट के लिए उसका रोज शेक कराना पड़ता है, करीब 20 के करीब शेक उसमें कराने पड़ते हैं 20 दिन तक, तो उससे भी उसमें फायदा आ जाता है। तो ये भी एक इलाज लेटेस्ट है
1: बिल्कुल।
2: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे जायसवाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं न्यूरो इंस्टीट्यूट 1/28 विज्ञान नगर कोटा।
3: हाड़ौती में पहली बार लकवे के इलाज हेतु मस्तिष्क में रक्त के थक्के को पिघलाने वाली आधुनिकतम एवं एकमात्र TPA उपचार पद्धति युक्त स्ट्रोक यूनिट।
2: शुरुआती 4.5 घंटे में ही इस पद्धति से उपचार द्वारा लकवे से होने वाली आजीवन अपंगता से बचाव संभव।
3: लकवे के लक्षण शरीर के एक भाग में कमजोरी, चेहरे में टेढ़ापन, आवाज में लड़खड़ाहट, चलने में परेशानी, तुरंत संपर्क करें।
2: 24 घंटे अनुभवी न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय जायसवाल एवं स्ट्रोक टीम उपलब्ध। टेलीफोन नंबर 07442423232, मोबाइल नंबर 9928756522।
1: और श्रोताओं इसी के साथ कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हम आ गए हैं। कार्यक्रम में आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हमारे साथ डॉक्टर ML अग्रवाल जी चर्चा कर रहे थे, स्किज़ोफ्रेनिया व अन्य मानसिक रोग कारण और उपचार। तो सर कारण के बारे में आपने बताया, लक्षण बताया, उपचार के बारे में बताया, तो सर अब मैं चाहूंगी कि चलते चलते एक मैसेज भी

0: हमारे श्रोताओं के लिए आप अपनी तरफ से दें।
1: बिल्कुल, जो इसके जो फिरने के बारे में मैं आगे बताना था, पेरेंट्स के रोल हो समय सीमा के अंदर हो, तो हम तो मैं यही कहना चाहूँगा, इस बीमारी को पेरेंट्स और घर वाले या जो भी उसके फ्रेंड्स हैं, जल्दी से जल्दी पहचानें, जल्दी से जल्दी इलाज करें, बराबर इलाज कराएं, डॉक्टर की सलाह माने, इधर उधर की सलाह मानने से पहले उसका ज्ञान पूछ लें, कहाँ से उसने क्या पढ़ाई की है, और उसको बराबर ये समझें कि नशे की गोली, नींद की गोली नहीं, स्पेशल गोली दी जाती है, आप उसका इलाज कराएं और ठीक होने के बाद इलाज को बराबर डाल रहे हैं, मरीज को प्रोत्साहित करें कि आप उसको वो दवाई बराबर लें और आप उसको बिल्कुल सुपरवाइज करें। कई बार ये होता है सुसाइड की इसमें ख्याल आ जाते हैं तो ये ज़्यादा खा जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि घर वाले अपने पास रखो, एक सीमा में उनको दवाई दो और साथ में दिखाने जाएं तो उसके बारे में बताएं। तो ये मरीज जो है सब कुछ कर सकता है यदि दवाई उसको बराबर दी जाए और समय पे दी जाए।
0: जी बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, आपने वक्त निकाला उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू।
0: और श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम उत्तम स्वास्थ्य का आज का कार्यक्रम का ये सफर यहीं तक। चलते चलते आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का संयोजन किया हिमांशु नामा ने, तकनीकी सहयोग हमें मिला निहाल सिंह और सुरेंद्र कुमार का, और इसी के साथ कार्यक्रम उत्तम स्वास्थ्य से अब इजाजत दीजिए निशा को। और श्रोताओं, चलते चलते बस यही कहेंगे कि ये जो स्किज़ोफ्रेनिया है ये लाइलाज नहीं है, इलाज संभव है, तो सतर्क रहें, लक्षणों को नजरअंदाज ना करें। और इसी के साथ आज के कार्यक्रम से इजाजत दीजिए, अगले मंगलवार आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। ये प्रसारण आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से किया जा रहा है। अब श्रोता हमारे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। गृहमंत्री अमित शाह बीकानेर दौरे के तहत आज सीमा प्रहरियों से संवाद करेंगे, सरहदी सुरक्षा पर भी मंथन होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पश्चिमी एशिया संघर्ष के मद्देनजर ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। प्रदेश में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत आज से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। और राज्य में चल रहे भीषण गर्मी के दौर के बीच अब दिन के साथ रातें भी काफी गर्म हो रही हैं। मौसम विभाग ने अगले दो तीन दिन में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना जताई। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीकानेर दौरे के दूसरे दिन आज अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित बीएसएफ की सांचू चौकी जाएंगे। वे सुरक्षा बलों के जवानों से बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद बीकानेर में सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर अधिकारियों के साथ मंथन करेंगे। इस बैठक में गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के अधिकारी, बीएसएफ अधिकारी, 5 सीमावर्ती जिलों के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे। बीएसएफ सेक्टर में होने वाली इस समन्वय बैठक में पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए होने वाली मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए कार्य योजना पर विचार किया जाएगा। इससे पहले गृहमंत्री के बीकानेर पहुंचने पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने नाल हवाई अड्डे पर उनकी अगुवानी की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारमण ने कल मुंबई में एक कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के इकोसिस्टम को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के लिए कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि कच्चे तेल के अलावा उर्वरक की कीमतों में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही।
3: रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए

0: लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
1: उर्वरक विभाग की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देशभर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल और जेके लोन अस्पताल में प्रसूताओं की मौत के मामले की जांच में ये बात सामने आई है कि सभी प्रभावित प्रसूताओं को ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाया गया था, जिसमें ऑक्सीटोसिन नदारद पाया गया है। जांच में इस इंजेक्शन के सैंपल फेल पाए गए। इस बीच कल सुल्तानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ड्रिप चढ़ाने के बाद कई मरीजों की हालत बिगड़ गई। इन्हें कोटा रेफर किया गया, जहां उनकी स्थिति अब सामान्य है। सीएमएचओ डॉक्टर नरेंद्र नागर ने बताया कि प्रभावित रोगियों को दिए गए आईवी फ्लूड को जांच के लिए भेजा गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत आज से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। ये पोर्टल 15 दिनों के लिए खुला रहेगा। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने कल पाली में कहा कि योजना के तहत रेल और हवाई मार्ग से 56,000 बुजुर्गों को निशुल्क तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। इनमें 50,000 ट्रेन से और 6,000 श्रद्धालु हवाई मार्ग से यात्रा करेंगे।
2: मैं आम जन से अपील करना चाहूंगा कि जो पोर्टल खुलेगा, 15 दिन के लिए पोर्टल खुला रहेगा, आप देवस्थान विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन जरूर करें। ऑनलाइन आवेदन आप करोगे तो ही आप उसमें जैसे नोटरी में आ सकोगे, इसलिए इस जो 15 दिन का समय मिल रहा है उसमें आप ऑनलाइन आवेदन करें, जिससे आपको देश भर के बड़े तीर्थ स्थान है, चाहे वो रामेश्वरम है, मदुरई है, चाहे जगन्नाथपुरी है, चाहे कामाख्या देवी आसाम है, महाकालेश्वर है, ओंकारेश्वर है, सोमनाथ मंदिर है, अयोध्या में भगवान राम जी का मंदिर है, बड़े बड़े तीर्थ स्थान है, नेपाल पशुपतिनाथ है, ये सारे इनको दर्शन करने का आपको अवसर मिल सके, इसलिए आम से निवेदन है कि वो ऑनलाइन आवेदन जरूर करें।
1: जोधपुर में कल भोगी शैल परिक्रमा का शुभारंभ हुआ। ये मारवाड़ की प्राचीन धार्मिक परंपराओं में खास मानी जाती है और क्षेत्र की सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत को लोगों से जोड़ने का काम करती है। सामाजिक समरसता और लोक आस्था की इस परिक्रमा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। झुंझुनू में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने ग्राम विकास अधिकारी को 8.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। झुंझुनू में एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरेंद्र कुमार पूनिया ने बताया कि आरोपी ने परिवादी से ये राशि आवासीय भूखंड पर मेडिकल स्टोर चलाने पर कार्रवाई का भय दिखाकर ली थी। आरोपी ने कन्वर्जन प्रक्रिया के नाम पर परिवादी से 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। राज्य में जल संरक्षण और आधुनिक खेती की दिशा में करौली जिला नई पहचान बना रहा है। जिले में किसानों ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई तकनीक को अपनाकर पानी की बचत का संदेश दिया है, साथ ही उत्पादकता बढ़ाकर मिसाल कायम की है। इस संबंध में और जानकारी हमारे करौली संवाददाता से।
3: नीति आयोग की मार्च माह की रिपोर्ट में जिले ने 114% प्रगति दर्ज की है। जिले को 816 हेक्टेयर का लक्ष्य मिला था, जबकि 935 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित की गई। योजना के तहत एससी एसटी लघु सीमांत और महिला किसानों को 75% तथा सामान्य किसानों को 70% अनुदान दिया जा रहा है। ड्रिप और फव्वारा सिंचाई से पानी की बचत के साथ साथ खेती की दक्षता भी बढ़ी है, जिससे किसान आधुनिक खेती की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बांके बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
1: अलवर के सरिस्कार टाइगर रिजर्व से नए शावकों के आगमन की खबर है। ताल वृक्ष रेंज में बाघिन ST22 ने दो शावकों को जन्म दिया है। इसके साथ ही सरिस्का में अब बाघों की संख्या बढ़कर 54 हो गई है। इनमें 11 बाघ, 17

18 बाघिनी और 26 शावक शामिल है। नए शावकों की नजर आने के बाद वन विभाग ने क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है। वहीं गर्मी के मौसम को देखते हुए क्षेत्र के जल स्रोतों और वाटर प्वाइंट्स को नियमित रूप से भरवाया जा रहा है। प्रदेश में चल रहे भीषण गर्मी के दौर के बीच अब दिन के साथ रातें भी काफी गर्म हो रही हैं। रात के समय गर्म हवाओं का प्रकोप लोगों को बेहाल कर रहा है। कल 8 शहरों में दिन का पारा 44 और 13 शहरों में रात का पारा 30 डिग्री के पार मापा गया। 45.6 डिग्री के साथ सीकर

0: झुंझुनू, बीकानेर, फलौदी, कोटा, अलवर और जयपुर में रात का पारा 30 डिग्री के पार रिकॉर्ड हुआ। राज्य में अगले तीन दिन अधिकतर हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है, साथ ही कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह बीकानेर दौरे के तहत आज सीमा प्रहरियों से संवाद करेंगे, सरहदी सुरक्षा पर भी मंथन होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पश्चिम एशिया संघर्ष के मद्देनजर ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। प्रदेश में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत आज से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। और राज्य में चल रही भीषण गर्मी के दौर के बीच अब दिन के साथ रातें भी काफी गर्म हो रही हैं। मौसम विभाग ने अगले दो तीन दिन में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना जताई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM 102 और 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल। सुबह के 9:10 हो रहे हैं। आइए श्रोताओं सुनते हैं फिल्म संगीत। ये संगीत है जतिन ललित का, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, आवाज़ कुमार सानू की और फिल्म का नाम जब प्यार किसी से होता है।

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी।
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है, क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन।
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
3: आरबीआई कहता है
4: खतरों से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। फिल्म संगीत का आनंद श्रोता ले रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से, और आइए अब सुनते हैं अगला गीत अलका याग्निक और कमाल खान की आवाजों में। फिल्म का नाम है मैंने प्यार क्यों किया। गीत लिखा है समीर ने और संगीत है हिमेश रेशमिया का।

और फिल्म संगीत में आइए अब सुनते हैं अगला गीत अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाजों में। संगीत है हिमेश रेशमिया का, फिल्म का नाम दुल्हन हम ले जाएंगे।

और इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम घर आंगन।

घर आंगन कार्यक्रम सुनबा वाली संधि बणिया कताई वर्षा शर्मा को घणो घणो राम राम। बणिया था संधि राजी खुशी तो छो न, क्योंकि अगर आपन राजी खुशी रहेगा तभी आपन अपना परिवार जना कताई खुश रख पाऊंगा, राजी खुशी रख पाऊंगा। अर बणिया वशा तो परिवार में संधा की जिम्मेदारी हो वच क सब एक दूसरा कताई खुशी रख, खुशी खुशी एक साथ रह। पर आपन या भी जाना चा क एक जो विशेष भूमिका निभाओ च वह एक महिला ही निभाओ च, और एक जो विशेष जिम्मेदारी हो वच परिवार पर वह महिला की हो वच बणिया। क्योंकि जब एक महिला यानी कि जब एक लड़की या बेटी पैदा हो वच तभी सही जिम्मेदारी में बंध जाओ च बणियो। जशा का ब्याह के बाद जशा का ब्याह के पली तो वह एक बेटी रह च और बहन रह वच, लेकिन फिर उसके बाद जशा के वह ससुराल में जाओ च या के दूसरा घर में जाओ च, फिर एक भाभी ननद माँ पत्नी सबकी बहू सभी की जिम्मेदारियां में बंध कर रह जाओ च, और उकी जो काम का प्रति हो च वह भी जिम्मेदारी घनी बढ़ जाओ च बणियो। तभी तो आपन खवा जाना का एक औरत ही घर कताई सारा घर कताई घना छोका सा संभाल सकच। उनकी सूझबूझ का लारा ही रिश्ता कताई व बहुत ही सहस कताई रखच। और बण्यो खचन का अगर एक औरत की जरा भी लापरवाही होगी तो फिर घर भी तार तार हो जाओ चे, यानी कि घर परिवार टूट जाओ चे बण्यो। जब भी तो आपन खाचा या आपना बड़ा बूढ़ा खवच के जब भी लड़की देखनी ब्याह कर ले छोका सा देखनी संस्कारी देखनी और एक सामूहिक परिवार में रबा वाली देखनी, ताकि वह रिश्ता का ताई समझ और वहां का महत्व ही जान कभी परिवार में कशा आपन ढंग से रह सकाचा बणियो। और एक आपन या भी जाना चा क एक महिला यानी कि एक औरत ही पूरा परिवार ही जब बांध कर रख छ, क्योंकि वह जब सुबह खच तड़कस जल्दी उड़ जाओ च और फिर दिन भर संधा काम कर च, यानी कि सबकी जिम्मेदारियां सबका जो काम हो वच जरूरता हो वच वही घनी छोका से देख च बणियो। और रात में भी सबका सोबा का बाद ही वह सो वच, तो आपन या कह सका चा क एक जो महिला च उकी जिम्मेदारी घनी विशेष हो वच। अब आपन न बणियो या बात तो कर ली का महिला ही समझनी चाहिए या उकी जिम्मेदारी विशेष होनी चाहिए, पर बण्यो आपने भी ई बात को ध्यान रखनी चाहिए या परिवार का हर सदस्य ई बात को ध्यान रखनी चाहिए कि परिवार में जितना भी जना च उकताई प्यार सम्मान इज्जत देव, ताकि उको जो दायित्व च वह तो निभाओगी सही, लेकिन जो उको फर्ज च फिर वह प्यार और सम्मान के साथ बहुत खुशी से निभाओगी। और इमा अपन अगर उकी मदद कर देंगा तो उई भी घनी खुशी होगी बण्यो।

0: पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: क्योंकि बण्यों एक महिला ही हो बच्चे जो अगर ठान ल तो परिवार ही खुशी खुशी संभाल सकत छो। और अगर कई बार अशो भी हो जाओ छे कि जब महिला का मान सम्मान पर बात आ जाओ छे, यानी कि खजन को को स्वाभिमान पर बात आ जाओ छे, तो परिवार तार तार भी हो जाओ छे बण्यों। क्योंकि आपन ने सुनियो भी छे और देखियो भी छे, जब महाभारत में द्रौपदी जी के साथ जो हो छे वहां का मान सम्मान और इज्जत पर जब बात आ जाओ छे तभी तो यह महाभारत खड़ी हो जाओ छे। इले बण्यों खर्च का परिवारी का अगर आपन सहज से रख लेंगा, खुशी खुशी रखेंगा, तो इकले सारा परिवार जना की मदद बहुत जरूरी छ। वो भी में सहयोग करा और अपना जो घर में महिला छ वह भी खुशी खुशी रव बण्यों। अब जब एक महिला और बेटी की बात चल रही छ, एक बेटी की भूमिका काय हो च, एक महिला की भूमिका काय हो च जीवन में भी और परिवार में भी, तो सुन लिया चाहे एक लोकगीत जो छ वंदना शर्मा की आवाज में।

0: पर फिर भी रेडियो न अपनी भूमिका न छोड़ी छे और अपनो स्थान न छोड़े छे, आज भी उको अहम स्थान छे। और आकाशवाणी का 90 साल का सफर के संबंध में ही एक जानकारी ले रहा छा जो च श्री संजय कुमार जी बाठिया की, तो सुन लिया छा या जानकारी।
1: श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आकाशवाणी के 90 साल का सफर इस श्रृंखला में आज हम बातचीत करेंगे हमारे वार्ताकार और रेडियो प्रेमी श्री संजय कुमार बाठिया जी से। संजय कुमार बाठिया जी की वार्ताएं आपने हमारे पर्यावरण के कार्यक्रम में पिछले कई सालों से निश्चित रूप से सुनी होंगी। तो बाठिया साहब, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। नमस्कार।
2: धन्यवाद आपको। और मुझे खुशी है कि मेरे जीवन की शुरुआत में मैंने सबसे पहले रेडियो ही देखा था। उस समय कोई और चीजें थी नहीं। और मेरे पिता को गानों का बहुत शौक था। उन्होंने कभी जब वो युवा थे तो एक पहले एक फोनोग्राम टाइप का भी वो आता था, तो उससे भी वो गाने चलाते थे,
1: चाबी
2: भर के। और वो अपनी पूरी जिंदगी में
1: वो देखा आपने?
2: हाँ, वो देखा मैंने। और उसको मैंने जब मैं 100 साल का था तो मैं बहुत बारीकी से उसको देखता था, हमारे पिताजी कैसे चलाते थे, क्या करते थे। फिर वो रेडियो भी चलाया तो वो भी देखता था। फिर मैं धीरे धीरे जब मैं 1.5-2 साल का हुआ तो मैंने वो गाने मिलाने सीख लिए मैंने।
1: अच्छा।
2: वो सुई चला के मैं गाने मिलाता था और फिर मैं बहुत खुश होता था, खूब डांस करता था।
1: मतलब स्टेशन ट्यून करना सीख
2: गया। तो 1.5-2 साल की उम्र में ये मेरे लिए बहुत बड़ी मैं उपलब्धि मानता हूँ। और मैं सही दिशा में जुड़ा तो आज भी मैं बहुत कूल और बहुत स्वस्थ रहता हूँ, क्योंकि मुझे शुरुआत में ही मुझे आकाशवाणी का एक ऐसा मुझे वो मिला मार्गदर्शन कि अच्छे गाने सुनना, समय पे गाने सुनना। और दूसरा, घर में एक बड़ा संगीतमय वातावरण रहता था। पिताजी नौकरी करके आते थे, आते ही पहले वो गाने लगाते थे। और जब मैं थोड़ा सा समझने लगा तो पिताजी के आने के पहले मैं गाने शुरू कर देता था। पिताजी का आने का समय हो गया, हम गाने सुनेंगे।
1: अच्छा, एक बात बताइए बाटिया साहब कि आकाशवाणी हर श्रोता वर्ग के लिए और हर आयु वर्ग के लिए कार्यक्रमों का निर्धारण और प्रसारण करता है। जैसे बच्चों का अपना कार्यक्रम है, किसानों का अपना कार्यक्रम है, युवाओं का युवाणी है, महिलाओं का महिला जगत और अन्य नामों से होता है। फिल्म संगीत के अपने कार्यक्रम है, शास्त्रीय संगीत के अपने कार्यक्रम है, नाटक है, संगीत है, बहुत कुछ। यानी जीवन का जो हर पहलू है हमारा, जो शिक्षा से जुड़ा है, मनोरंजन से जुड़ा है, ज्ञान से जुड़ा है, उन सब पर हमारे यहाँ से कार्यक्रम होते हैं। तो आप बताइए, आप किस तरह के कार्यक्रम आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करते थे और आप उनको सुनते रहते थे अक्सर?
2: मुझे सबसे ज्यादा आकर्षण तो युवा वर्ग के लिए युगवाणी और आपके जो कार्यक्रम थे, क्योंकि एक्चुअली क्या है, युवा वर्ग को ही दिशा दशा उसकी सही करनी है। जो बुजुर्ग है वो तो एक अपना एंटरटेनमेंट करके सो जाता है, वो कुछ विकास की ओर नहीं देख पाता। और चूंकि जो महिला वर्ग है, महिला वर्ग एक ऐसा वर्ग है जिसमें अपार छुपी प्रतिभा है। अब वो प्रतिभा को निखारे कौन, उसको प्लेटफॉर्म दे कौन? आज भी मैं कह रहा हूँ कि लोग ये कहते हैं कि दुनिया और जो एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए, मैं कह रहा हूँ आकाशवाणी का अपना स्थान है और वो स्थान रहेगा, वो अटूट है और वो अप्रचित है, वो कभी उसको आप उसको कोई सोल्यूशन आप ला नहीं सकते। और दूसरी, ये जो महिलाएं हैं, ये मैं बताऊं आपको, आज भी भारतीय कल्चर की जो महिलाएं हैं वो कुछ अपने सिस्टम से ही आपके सामने आएंगी, वो सीधे आपके इन पे वो आना पसंद नहीं करेंगी। तो मैं कह रहा हूँ जब वो उनको आकाशवाणी के माध्यम से मौका लगता है तो बहुत ही वो प्रखर और बहुत ही स्पष्ट वार्ता अपनी रखती है, लेकिन जब आप उनको चेहरे दिखाने लगते हो तो वो
1: संकोच में आ जाती है,
2: वो अपनी बात ही नहीं कह पाती।
1: अच्छा अच्छा।
2: तो मैं तो कह रहा हूँ कि आपकी ये जो विशेषकर दो कार्यक्रम और एक बाल जगत,
1: अच्छा
2: बाल जगत मैंने यहाँ अटेंड भी किया है और एक दो बार मुझे मौका भी लगा। बच्चे बहुत ललचाते होते हैं, बहुत खुश होते हैं, वो एक घंटे बाहर पहले ही आके खड़े रहते हैं कि मेरा बाल जगत में मेरा नंबर आ गया। तो मैं कह रहा हूँ जिससे अगर बच्चे की कोई इच्छा हो और उसकी हम पूर्ति या उसको वो एक प्लेटफॉर्म दे सके, तो शायद इस भारतवर्ष में इससे बढ़िया कोई और कोई ऐसी चीज नहीं है जो इनको इस ढंग से जागृत और एकीकृत करके आगे एकाग्र होकर आगे ला सके। मैं मेरे जीवन की कहता हूँ कि मैंने शुरू से मेरे पिता ने जो गाने सुनाए, मेरे घर में आज भी गाने बजते हैं। मेरी मिसेज आज भी सुबह उठते सबसे पहले रेडियो चलाती है और वो अपने काम करती रहती है, लेकिन उसको मैं टीवी चलाता हूँ तो बोलती इसको बंद कर दो। तो इसका मतलब आप ये देखो कि वो आज हम लोग वरिष्ठ नागरिक में आ गए हैं, है ना, लेकिन हमें अभी भी वो चीजें मजबूत और बड़े आगे हमें मतलब एक इच्छा शक्ति के साथ जीवन जीवन यापन कर रही है। हमने कभी जीवन में ये नहीं देखा कि अब जी के क्या करें या अब हमें क्या बदलाव करना है,
1: क्या बात है।
2: हम कह रहे हैं कि हमें एक बेहतरीन जीवन मिला हुआ है तो हम उसे क्यों छोड़ें।
1: अच्छा, एक चीज और बताइए कि हमने अपने समय में जब हम पढ़ना लिखना सीख रहे थे, या यूं कहें कि हम 9वीं 10वीं 11वीं में 8वीं में जब थे, तो एक आकाशवाणी के समाचार और उसका प्रसारण हमारे सामने चारण का एक मानक साधन था।

0: कि हमें किन शब्दों का उच्चारण किस तरह से करना चाहिए। ये लोग भी कहते थे कि अगर आपको अच्छा उच्चारण करना है या सीखना है तो आकाशवाणी के समाचार सुनिए और आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनिए। तो उनसे आपने किस तरह से अपने उच्चारण में सुधार किया या किस तरह से जो मानक उच्चारण है हमारी हिंदी भाषा का वो किस तरह आपने ग्रहण किया?
1: हमने सबसे पहले तो मैं कहूंगा विश्वसनीयता
0: जी,
1: इसकी विश्वसनीयता 100% है। अगर आकाशवाणी पे कोई भी न्यूज या कोई भी चीज आ रही है तो आप ये मानिए कि वो 100% अपने उस पे खरी उतरेगी। अपने आकाशवाणी ने अगर कोई चीज डिक्लेयर करी है तो 100% वो पैमाने पे खरी उतरेगी, तो इससे बड़ा विश्वास तो कहीं है नहीं।
0: क्या बात है बाबा।
1: और इसके आगे आप चलते हो तो अगर जिंदगी में सीखने का जो मौका मिलता है, हमें आकाशवाणी हर तरह के प्रोग्राम हमें दे रही है, आप उसका टाइम टेबल अपने हिसाब से सेट करें और उस चीजों को श्रवण करें। और दुनिया में सबसे बेस्ट होता है श्रवण, सबसे बेस्ट श्रवण होता है। हम साधु महात्माओं के पास सिर्फ श्रवण करने जाते हैं, वो हमें कोई प्रैक्टिकल थोड़ी दिखाते हैं, लेकिन वो बातें हमारे लगभग लगभग हूबहू हमारी जीवन में काम आती है। तो आकाशवाणी कोई ना तो झूठ परे पे जाती है, ना किसी प्रकार के अनऑथराइज या वो काल्पनिक चीजों पे जाती है, वो सच्चाई पे जाती है। और सच्चाई जब 90 साल अपने आप में प्रमाण है
0: जी, जी, जी।
1: है ना, ठीक है, हम मानते हैं नई टेक्नोलॉजी आई, नई चीजें आई तो आएंगे, हम उनके बीच में भी अपना रास्ता निकालेंगे और मजबूती से खड़े रहेंगे। और मैं विशेषकर मैं तो आपकी तारीफ करता हूँ कि मैंने लगभग 25-30 साल आप लोगों से प्रत्यक्ष रूप से संपर्क रखा है, मैंने कहीं भी आपकी आवाज सुनी है या कहीं भी बात चलती तो मैं आवाज के नाम से पहले बोल देता, मैंने कही तो आवाज
0: जी जी जी।
1: तो ये इससे बड़ा लगाव और अपनापन क्या चाहिए आपको, और जिंदगी में खुशी और संतुष्टि अगर कहीं चाहिए आपको अपने कार्य रोजगार के अलावा तो आकाशवाणी के अलावा कुछ भी नहीं है।
0: अच्छा बांटिया साहब, हमारे यहाँ से पर्यावरण पर जो कार्यक्रम है आबोहवा शुरू से चल रहा है, जब से मैंने रेडियो में ज्वाइन किया था तो 33-34 साल मुझे हो गए, तो पर्यावरण चेतना का हमारा कार्यक्रम सब लोग सुनते हैं और इसमें बहुत सारे वार्ताकार रहे, आपने भी काफी वार्ताएं रिकॉर्ड करवाए, डॉक्टर लक्ष्मीकांत एल के दादी साहब
1: और नहीं रहे मेरे गुरु,
0: अब वो नहीं रहे, लेकिन इन लोगों ने काफी कंट्रीब्यूट किया हमारे कार्यक्रम में। तो आपको एक रचनात्मकता का मंच दिया, यानी पर्यावरण पर लिखने वालों को आकाशवाणी ने रचनात्मकता का मंच, तो आप कितनी वार्ताएं लिख चुके हैं आप, और एक मुझे लगता है कि एक किताब का मैटर आपके पास में हो गया होगा अगर मैं विचार करूं।
1: बिल्कुल, बिल्कुल सर, अगर मेरे घर में मैं पूरे पत्ते इकट्ठे करूंगा तो किताब से भी ज्यादा हो गया।
0: अच्छा,
1: किताब से ज्यादा हो गया। और जो आपने नाम लिया लक्ष्मीकांत जी साहब दादी, मेरे एनसीसी में वो गुरु भी थे, वो साइंस सेंटर थे, मैं कॉमर्स सेंटर था, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुझे वो करार इस आकाशवाणी में लाने का श्रेय भी मैं उन्हीं को देता हूं।
0: क्या बात है।
1: सबसे पहले उन्होंने कहा संजय तेरी सोच समझ बहुत अच्छी है, तू मेरे साथ चल। मैंने कहा चलना है आकाशवाणी, मैंने आकाशवाणी के गाने बहुत सुने, लेकिन मुझे कभी प्लेटफॉर्म नहीं मिला, तो वो सबसे पहले वही लेके आए थे। और मैंने शुरुआत में जो लिख के दिया उनको, तो कुछ करेक्शन के साथ उन्होंने अप्रिशिएट किया कि मैं तेरे को इसमें 80 नंबर देता हूँ। तो मैं उनको आज भी नमन करता हूँ। और आकाशवाणी जो पर्यावरण पे आनी चाहिए, लेकिन पर्यावरण का क्योंकि मेरा अपना एक फेवरेट वो है, मैं आपको कह रहा हूँ बहुत गुंजाइश है, और आकाशवाणी के अलावा कोई प्लेटफॉर्म मुझे नहीं लग रहा है कि जो इस पे इतना ज्यादा मौका देता हो, मौका देता हो। और आज भी ग्रामीण अंचल में मैं अभी भी जाता हूँ तो मैं देखता हूँ लोग रेडियो पे गाने सुनते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उनसे पूछता हूँ जाके, मैंने आपको कैसा महसूस हो रहा है, बहुत आनंद आ रहा है,
0: आनंद आ रही है भाई साहब,
1: छाया में बैठे बैठ के छाया में।
0: वाह वाह,
1: ये जीवन वास्तव में जीवन है, ये स्वस्थ जीवन है, और ये जीवन दूसरों के लिए उदाहरण भी है। लेकिन आप अपनी फास्ट लाइफ में जाके आप काम कर रहे हो तो आप खुद ही नहीं समझ पा रहे मैं क्या कर रहा हूँ, तो आप दूसरों को क्या सीख दोगे।
0: तो भाटिया साहब, आपको क्या लगता है कि जो हमारी नई पीढ़ी है एक अलग तरह के जल्दबाजी में है, हम तो आराम से जब शास्त्रीय संगीत सुनते हैं तो 20 मिनट का रिकॉर्ड बहुत इत्मीनान से सुनते हैं कि उसमें धीरे धीरे लय बढ़ेगी फिर द्रुत तक जाएगी, सुगम संगीत सुनते हैं तो कई बार हम ऐसी गजलें भी सुनते हैं जो 10-10 मिनट की हैं, लेकिन यहां तो 30 सेकंड 15 सेकंड की रीलें हैं, तो ये क्या जीवन को प्रभावित करती हैं? जीवन को जब आप ऐसे मनोरंजन के क्षेत्र में होते हैं तो आप एक असहज स्थिति में नहीं हो जाते हैं?
1: मैं कह रहा हूँ ये जितना जल्दी इस पे रोक लग जाए, इन रील्स पे, इन पे
0: जी,
1: अगर इस समाज को, इस देश को बचाना है तो ये सबके लिए इतकर है, और अदरवाइज लौट के घर आएंगे। आज मैं आपको बता दूं, वो ऐसे ऐसे लोग हैं जो मानसिक विकराल और तरह की बीमारियां लेके वापस इधर चले आ रहे हैं। ये मैं जहां मैं मेरा निवास है वहां एक पड़ोस में एक उनका बच्चा थोड़ा सा पढ़ाई में अच्छा होने के बाद भी डिप्रेस हुआ, और उसके बाद वो बात चली कि भाटिया साहब इसको आप थोड़ा टैकल करो, मैंने इसको मेरे पास भेजो, मैंने उसको सबसे पहले गाने ही सुनाए। मैंने कहा मैंने बेटा ये गाना कैसा लग रहा है, अंकल बढ़िया लग रहा है। मैंने कहा आपका खान पीन कैसा है, पर्यावरण मतलब मैंने जो मेरा जो क्षेत्र है उससे मैंने बात करी, वो मेरे यहाँ नीम भी लग रहा है, मेरे अमरूद भी लग रहा है, तो वो कुछ चीजें वो पत्ते लेता है।

0: और वो अक्सर कहता है कि अंकल मुझे एक रेडियो ले ले। मैंने कहा बिल्कुल आप रेडियो लो और आप इसको सुनो, तो वो अभी कहते हैं कि अब ये ज्यादा सहज और ज्यादा बेहतर महसूस कर रहा है। एक कुछ ही चीज को बिगाड़ के एकदम ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन ये ठीक करने का, सही रास्ते चलने का, इससे बढ़िया कोई साधन अभी वर्तमान में हिंदुस्तान में नहीं है।
1: 90 सालों के इस जो हम एक तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, पूरे देश में सब श्रोताओं में बड़ा उत्साह है, तो इस पर क्या मैसेज आप कहना चाहेंगे?
0: मेरा मैसेज यही रहेगा कि आप, हो सकता है कि कुछ नवाचार आप लें
1: जी,
0: क्योंकि 90 साल में बहुत कुछ बदला है और विशेषकर 80 के दशक के बाद तो बहुत ही ज्यादा परिवर्तन आए हैं
1: जी जी।
0: लेकिन ये जरूरी है कि हम उनको सबको स्वीकार कर लें, कुछ नवाचार के साथ हम हमारी बुनियादी चीजें और जो चीजें उनको लेते हुए हम बच्चों को और युवा वर्ग को और मैं कह रहा हूँ बुजुर्ग वर्ग को भी साथ लोगों ने कभी दिक्कत नहीं, क्योंकि अपना अनुभव शेयर करेंगे। आज मैं बुजुर्ग नहीं हूँ लेकिन मैं वरिष्ठ नागरिक हूँ, तो मेरे पास जो 45 साल 50 साल का जो अनुभव है वो मुझे शेयर करना चाहिए, मुझे प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। तो अगर ये विभिन्न तरह के लोगों को प्लेटफॉर्म मिले और वो लोग ये सब चीजों को आगे और सर्कुलेट करें तो आकाशवाणी 90 नहीं मैं कह रहा हूँ अगले 90 वर्ष और इसी ढंग से बेहतर ढंग से चलेगी। और ये लोगों की, ऐसा नहीं है कि कोई बिजनेस है या व्यापार है, ये लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को, उनके सोच समझ को, उनके जो जीने के तरीकों को, ये बहुत कुछ प्रभावित करेगी,
1: सकारात्मक रूप से
0: प्रभावित। तो मैं यही कहूंगा कि आकाशवाणी एक बहुत ही एक ऐसा अनमोल रत्न है जिसको आप जितना सह सकते हो, जितना इसको आप आगे विस्तार कर सकते हो, प्रसारित कर सकते हो, उतने ही सब फल अच्छे आएंगे।
1: वाह वाह, बहुत अच्छा आपने एक सूत्र वाक्य कह दिया कि जितना इसको संजोएंगे हम, जितना इसमें हम देसी भाषाओं का लोगों के जीवन से जुड़ी हुई कार्यक्रम देंगे,
0: लोग जो मतलब जो हमारी जैसे राजस्थानी भाषा, ये भाषा इससे बढ़िया प्रचार प्रसार कहीं है ही नहीं, और हमें इसको और बढ़ चढ़ के लेना चाहिए, युवा वर्ग को, प्रौढ़ वर्ग को, जो इस भाषा से ज्यादा, मैं खुद कहता हूँ, मैं आरोपी बोलता हूँ, कई बार मेरे परिवार बोलते हैं ये क्या बोल रहे हो, मेरे मातृभाषा है,
1: ये हमारी भाषा है,
0: मातृभाषा है, मैं नहीं बोल रहा, आप सीखो।
1: बिल्कुल,
0: मुझे बहुत खुशी है आपने यहाँ मुझे आमंत्रित किया और मैं चाहता हूँ कि ये जो आपके जो कार्यक्रम है ये 90 भी तो मना रहे हैं अपन, लेकिन इसमें आगे भी कुछ ना कुछ कंटिन्यूटी रहे, प्रोग्राम चलते रहे, निरंतर बनी रहे, और आप लोग बहुत गहराई में जाके, गहराई से मतलब बहुत इंटीरियर में जाके भी प्रोग्राम को लाते हो, और मुझे कई बार खुशी होती है कि ऐसे बच्चे इस टाइप के लोग बोलते हैं।
1: तो बाटिया साहब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे लगता है कि अभी आपके पास में बहुत कुछ बोलने को शेष है, और फिर आगे के कार्यक्रमों में हम आपसे किन्हीं और विषयों पर बातचीत करेंगे। तो श्रोताओं मैं आपको बता दूं कि ये थे श्री संजय कुमार बांटिया साहब, जो पर्यावरण के हमारे वार्ताकार हैं और बहुत ही दिल से रेडियो के श्रोता हैं। तो ये है हमारी पूंजी कि हमने क्या प्राप्त किया, किस तरह से श्रोता हमें प्यार करते हैं, रेडियो के कार्यक्रमों को प्यार करते हैं। तो बांटिया साहब आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, हम बहुत आभारी हैं आपके, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया।
2: बढ़िया, अबार आपने सुनी श्री संजय कुमार जी भाटिया की जानकारी, जी में जानकारी ले रहा श्री राम नारायण जी मीना, और संजय कुमार जी ने बताया कि खी तरह रेडियो आज भी अपना जीवन में महत्व रखा च, और अपन इस खी तरह सीख सका चा, और सभी वर्ग का लोग इसे सीख सका च। बढ़िया, अब अपनी चर्चा अपन आगे बढ़ावा चा, अपन बार चर्चा कीजिए कि खी तरह रिश्ता की सार संभाल महिला का हाथ मुंह वच, ऊ तरह ही घर का संधा काम भी महिला ही करच, और वहाँ की जिम्मेदारी भी वहाँ का हाथ में ही हो वच। बनियो चाहे फिर साफ सफाई को काम हो या चीजा का ताई छोका सा रखभा को काम हो, जैसा कि बनियो अपन जाना छा अबारियो अशो टेम च जी में मसाला और अनाज का ताई अपन भंडारण करा छा, जो साल भर छोका सा चाल सक, क्योंकि बनियो ईमा खराब होबा को भी डर रच, तो आपन खी तरह वाई सार संभाल कर सका और खी तरह वाम कीड़ा फफूंदी न लाग। तो सबसे पहले आपन अनाज की ही बात कर लेवा, जैसा बनिया आपन अनाज लाया तो अनाज के ताई जैसा थोड़ी धूप दे देवा, धूप न भी देवा क्योंकि आजकल तो बनिया खर्च न का अलग अलग तरह का अनाज आउच और अलग अलग तरह की पैदावार होबा लागी च, पर जैसा का आपन जीमक अनाज भरबा वाला छा तो जैसा का ड्रम छ, तो आपन जहां तक हो स्टील या आपन एल्यूमिनियम को ड्रम को इस्तेमाल करा बनिया, क्योंकि वहां में गेहूं सही रह जा। अब वहां छोका से ड्रमा ने साफ सफाई कर ला, दो चार दिन वहां धूप लगा दा, फिर उसके बाद जब आपन वहां को भंडारण करा तो वहां में जैसा नीचे पेंदा में या तो आपन कपड़ो बचा देवा, कपड़ो न बचावा तो आपन अखबार भी बचा देवा, और अखबार तो मुंह तो यूं ही खूंगा।

आपन पूरा ड्रम में ही आपन वहां में अखबार चपका देवा टेप की सहायता से, ताकि खराब हो बाकी 1% भी आपने शंका न मन में। उके बाद जब आपन भरा तो जैसा आपन ना गेहूं भरिया तो बण्या जैसा का आपन उमच खच न ये कीड़ा फफूंदी न लाग तो आपन जैसा का उम ये काय बोलच सबसे पहले तो आपन उमच न ये नीम की पत्तिया रवच जाई सुखा को उमर डाल देवा। और उके बाद जैसा नीम की पत्तिया डाल दियो तो थोड़ा थोड़ा गेहूं जैसा आपन थोड़ो भरियो फिर वाम अखबार बछा देवा। और जैसा का आपन बण्या इमा वो भी रख सका था जैसा 10-15 माचिस की तिलिया भी रबड़ से बांध और वो पटक देवा, न तो आखी माचिस की डब्बी भी मल सका था ताकि गेहूं या म कीड़ा न लागे फफूंदी ना हो। इस तरह से भी आपन गेहूं के बीच में ये चीजा रख सका था। और घना तो आपने जैसा बण्या अरंडी को तेल भी उमा में लगा दे छे जिससे भी कीड़ा न लागे छे बण्या। तो इस प्रकार घना उपाय छे जी तरह से कीड़ा न लागे और आपन गेहूं में मतलब रख देवा ताकि वो गेहूं आपने साल भर चाल सक और गेहूं की मतलब बर्बादी नो गेहूं खराब हो न। इस तरह जैसा बनाओ आपन ऐसा भी कर सका चाह जैसा मसाला। अब मसाला भी कशा करा मसाला भी आपन साल भर का पिसा ले जा तो वहां में भी जैसा का आपन मसाला लिया मर्चा च धनियो च हल्दी च तो साल भर की पसावा च बनियो। तो यहाँ में जैसा का आपन लाया तो लार थोड़ो तो एक दो दिन धूप लगा दो अब तो कह ना तावड़ो भी घणो तेज पड़े छे बनियो तो एक दो दिन लगा फिर आपन यहाँ ना पीस ला। अब पीसवा के बाद जैसा का आपन यहाँ भी या तो बनियो कांच का या स्टील का डब्बा में यहाँ ने रखा प्लास्टिक का में न और बिल्कुल सूखा हो या में नमी नो न तो ये खराब हो बाको डर या में ज्यादा रह चे बनिया। अब वहां में भी जैसा अपन खर्च न कर या तो मसाला में जैसा का हल्दी च धड़ियो च मरचा च या तो बनिया अपन लोंग पटक देवा ऐसा जैसा का या तो बांध देवा कपड़ा में न तो यू भी पटक देवा तब भी कोई बात न रह चे बनिया। लौंग के बाद जैसा तेज पत्तो रहे सूखा वो भी आप मसाला में डाल सका चा इसे भी मसाला खराब न हो बने। तो इस तरह घना जो अपना घरेलू उपाय रहे ना बने अगर ये अपन कर ले तो अपना मसाला खराब न हो। और जैसा के हल्दी में या में तो बने अपन सूखी लाल मिर्चा रहे ना धनिया में ये भी पटक सका चा इसे भी चना मसाला खराब न हो बने। और जैसा टेम टेम पर जैसा अब बारिश आओगी बरखा के बाद अपन थोड़ो घणो फिर अगर अपनी लागे भी तो अपन थोड़ो चेक कर ले और थोड़ी सी वाई खर्च ना धूप दे देवा ताकि वो साल भर आप बढ़िया से खाड़ देगा और खराब न होगा बने। अब जब अपना तावड़ा की बात करी तो आप जाना चाह अब गर्मी घनी पड़ रही है यानी कि बाहर तापमान घणो हो रही बने और आबा वाला धना में और पड़वा की संभावना च और गर्मी तो घनी पड़ रही है तो अपनी संभाल को तो रहो ही छो। अब एक लोक गीत भी सुन ला चा और आनंद ले ला चा बने।

बढ़ियों आज आपना घर आंगन कार्यक्रम में बस अतनी फिर आऊंगा नई जानकारी कलारा तब तक था कि बड़ा वर्षाई दो इजाजत राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर आंगन। ये प्रसारण आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से किया जा रहा है। अब श्रोता आनंद लेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का।

0: सेहतनामा कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मुंबई की सुप्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर लीजा बनर्जी से, और आज के कार्यक्रम में जो विषय है वो है थायराइड होम्योपैथी में इसका उपचार। तो डॉक्टर साहब, विविध भारती के स्टूडियोज में आपका सेहतनामा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर लीजा बनर्जी। धन्यवाद विविध भारती को कि मुझे आमंत्रित किया गया।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैसे विविध भारती का जिक्र आपने शुरू में ही किया, तो कितना पुराना नाता है डॉक्टर साहब विविध भारती से आपका?
1: सुर पहचानती हूँ तब से विविध भारती पहचानती हूँ, ये बोलना भी गलत नहीं होगा। मेरे घर पे आज भी इसका चलन है, हम बजाते हैं, सुनते हैं, और ये रहेगा।
0: जी, मनोरंजन का एक बहुत ही बेहतरीन और नंबर वन माध्यम है आज के दौर में। अब हम अपने विषय पर आते हैं। आज का जो विषय प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम जिक्र कर रहे थे थायराइड और होम्योपैथी में इसका उपचार, तो ये विषय रहेगा। दरअसल ये थायराइड जो बीमारी है, इसके बारे में कई भ्रामक स्थितियां पैदा हो जाती हैं। हर कोई दूसरा इंसान जब कुछ विपरीत अपने शरीर में लक्षण दिखाई देते हैं तो कोई भी व्यक्ति उसको सलाह देता है, कहीं थायराइड तो नहीं हो गया, इस वजह से कमजोर तो नहीं हो गए, इस वजह से मोटे तो नहीं हो रहे हो। तो ये थायराइड है क्या? इसको बड़े आसान से शब्दों में आप बताइए हमारे सुनने वालों को।
1: थायराइड एक्चुअली एक ग्रंथ ही है, मतलब ग्लैंड्स जो कि गले के सामने के भाग में पाई जाती है, स्थित है, और इसमें से सिक्रीट होती है थायरोक्सिन T3 एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन T4।
0: जी,
1: T3 T4 ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण है विकास के लिए एंड मेटाबॉलिज्म, पाचन क्रिया।
0: जी,
1: इसका मेन फंक्शन या इसका मेन थायराइड की क्रिया ही होती है बच्चों में एवं बड़ों में विकास की, दिमागी शारीरिक दोनों विकास। मेटाबॉलिज्म मतलब पाचन क्रिया, जो आप रोजाना खाते हैं ये सारी चीजें पाचन होनी चाहिए। जब तक पाचन नहीं होगी, आपके शरीर को उनके कोशिकाओं को जो चीज मिलनी चाहिए वो मिलेंगी नहीं। इसमें थायराइड का एक बड़ा रोल होता है। और ये होता कैसे है? दिमाग में एंटीरियर पिट्यूटरी करके एक
0: ग्रंथी
1: होती है, वहां से TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये सिक्रीट किया जाता है। वो ब्रेन को बोलता है कि T3 T4 कम हो गए हैं भाई, इनको शुरू करो,
0: आदेश देता है।
1: हाँ, तो जैसे T3 T4 शुरू होते हैं ये ब्लड में जाते हैं, ब्लड से अपना जो क्रियाएं होती है वो करते हैं, एक लेवल

0: आने के बाद वापस हाइपोथैलेमस कहता है कि बस हो गया, आप TSH तुम बंद हो जाओ ताकि T3 T4 अपने लेवल पे काम कर सके।
1: जी जी।
0: जब ये बैलेंस खराब हो जाता है तब होता है थायराइड। पढ़ना, सुनना या गूगल सर्च, सोशल मीडिया काफी आ गए हैं। बेटर है कि हम इनसे जितना हो सके दूर रहे, क्योंकि इंग्लिश में कहावत है फियर्स कम फ्रॉम ईयर्स, मतलब डर सुनने के माध्यम से आता है।
1: जी।
0: तो आप जितना गलत सुनोगे सही सुनोगे आपको स्वयं को नहीं पता है। तो जो एक्चुअली ये सारी चीजों में विशेषज्ञ है उनके पास जाइए।
1: अच्छा, ये कितना सच है डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि थायराइड वाकई में हो जाता है? ऐसे चिकित्सक तो आप बताएंगी ही, लेकिन कोई व्यक्ति अगर मोटा होता है और उसका मोटापा दूर ही नहीं होता, या कोई बहुत दुबला है और दुबला होता रहता है, तो वाकई में थायराइड ग्रंथि का कोई कमाल होता है इसमें?
0: नहीं नहीं, ये तो डिपेंड करता है आपका डाइट कैसा है, मतलब आप कितना खान पीने में ध्यान दे रहे हो, कितना एक्सरसाइज कर रहे हो। मैं सोचिए पूरे दिन भर एक जगह पे बैठी हूँ और मैं खा ही रही हूँ, तो ऑब्वियसली कोई भी इंसान मोटा ही होगा, इसमें थायराइड कुछ नहीं कर रहा।
1: अच्छा।
0: तो ऐसा नहीं है, डायबिटीज में भी इंसान पतला होता रहता है होता रहता है। तो वही मैंने बोला ना कि सुनने पे ये मत जाइए, क्योंकि अभी डॉक्टर्स को पता है कि ये डायबिटीज वाला है इसलिए पतला हो रहा है, या ये थायराइड वाला है इसलिए पतला।
1: तो देखिए, कुल मिला के इस प्रश्न के उत्तर में आपने ये कहा है कि चिकित्सक से मिलिए और कंफर्म कीजिए। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि खुद ही तय ना कर लें किसी के कहने सुनने पर, और यहाँ पर ये तय करना होगा कि प्रोग्राम में बातचीत तो हमारी जारी हो चुकी है, लेकिन यहाँ वक्त है कि एक गाना सुन लिया जाए।
0: एक मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है, छू कर मेरे मन को किया तूने, इससे अगर शुरुआत की।
1: याराना फिल्म का गाना है, किशोर कुमार की आवाज में, सुनते हैं।

0: गीत तो वाकई मन को छू गया है, लेकिन अगला प्रश्न हमारे दिमाग में उभरता है कि थायराइड जो है क्या कार्य करता है।
1: आज के वातावरण में इतने दौड़ भाग जिंदगी में हम क्या करते हैं, खाने पीने को साइड में रखते हैं, नेचुरल कोई भी चीजों को साइड में रखते हैं। हमको कैंड फूड चाहिए, हमको जंक फूड चाहिए, हमको फटाफट फास्ट फूड चाहिए, मगर हमें गरम घर का खाना ये हम जल्दी नहीं लेते, हम अवॉइड कर जाते हैं। इसकी वजह से होता क्या है, शरीर को जो मिलना चाहिए, कोशिकाओं को जो मिलना चाहिए वो मिलते नहीं है। इसको थोड़ा बैलेंस करने के लिए अमुक विटामिन, तमुक कैल्शियम, तमुक आयरन, अमुक ये तमुक वो, ये करके करके हम जो खाते हमको लगता है कि हाँ अरे हमने खा लिया ना, मैंने रोज कैल्शियम के ये खाया, मैंने रोज वो किया है
0: सप्लीमेंट्स,
1: मगर ये सप्लीमेंट्स एक्चुअली बॉडी को मिल रहा है मुझे नहीं लगता, और ये होता भी नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी आपका शरीर एक ऐसे सिस्टम से बंधा हुआ है जहाँ पे आप जो नेचुरली चीजें खाते हो वो एब्जॉर्ब होती है। जो सप्लीमेंट्स, हाँ सप्लीमेंट्स कहीं ना कहीं जरूरी होते हैं, मगर हम आधे खाने को, आधे बैलेंस डाइट को सप्लीमेंट्स के साथ ऊपर नहीं डाल सकते, ये हम करते हैं। और ये सप्लीमेंट्स जब हजम नहीं होती है तब शुरू होता है 10 प्रॉब्लम्स, और यहाँ पे एक बार कोई चीज एक डिसऑर्डर में चली गई, ऑर्डर से बाहर चली गई, ऑटोमेटिक पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ता है, और जैसे ही सिस्टम बिगड़ता है ब्रेन अपना सिस्टम उसको ठीक करने के में लग जाता है, तब या तो TSH बढ़ जाता है, या तो T3 बढ़ जाता है, या तो T4 बढ़ जाता है, तो उसमें हमारा जो विकास है दिमागी या शारीरिक विकास वो साइड में रह जाता है, क्योंकि बॉडी ज्यादा ध्यान दे रहा है कि इसमें गड़बड़ ना हो।
0: तो देखिए आपने जो आहार की बात की कि कई बार हम जल्दबाजी में अपना रूटीन जो प्राकृतिक आहार है, जो नेचुरल हमारी डाइट है, उससे हट के सप्लीमेंट्स पर भी डिपेंड हो जाते हैं, और मन से ही हो जाते हैं कई बार, तो ये बहुत ही गलत प्रक्रिया है, और इसको रोकना है, थामना है। आपके पास भी कई मरीज ऐसे आते होंगे कि अचानक बहुत जब बढ़ जाती बीमारी तभी आते हैं।
1: हाँ, मेरे पास ज्यादातर तभी आता है जब एकदम बढ़ी हुई रहती है, मतलब 10 जगहों से बोला जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी आते हैं। मैंने आज तक कोई भी एक अच्छा केस देखा नहीं है जहाँ पे मैं खुश हो जाऊँ कि ये अभी रिसेंट है
0: जी,
1: कर सकते हैं। तो मेरा सुझाव ये एक और रहेगा लोगों को कि जब भी आपको लग रहा है कि कुछ अलग हो रहा है आपके शरीर में, कुछ नॉर्मल से बाहर हो रहा है, तो अपना इलाज खुद मत कीजिए, हो सके तो अच्छे होम्योपैथ के पास जाइए, क्योंकि होम्योपैथ को एक प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ कहा जाता है, जो कि हम आगे जब डिस्कस करेंगे ये मैं और क्लियर करती जाऊंगी।
0: जी जी, आपने कार्यों के बारे में बताया कि कार्य प्रणाली किस तरह से काम करती है, लेकिन हम इसके प्रकारों पर भी एक प्रकाश डालना चाहेंगे यहाँ पर, तो उसमें कई बार आप अपने हिसाब से बताएंगी, परीक्षण भी इसमें शामिल हैं, जैसे T3 T4 के परीक्षण आप करवाती हैं, तो किस परिस्थिति में होता है, तो ये हम चर्चा करेंगे एक गाना सुनने के बाद।
1: नमो नमो जी शंकरा, केदारनाथ से।
0: जी, केदारनाथ फिल्म का बहुत ही मशहूर गाना है।

0: के लिए?
1: थायराइड, ये नाम हमने काफी टाइम सुना हुआ है, बट एक्चुअल थायराइड होता क्या है ये इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है. और टाइप्स मतलब प्रकार, एक हाइपर थायराइडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म है काफी प्रकार, जैसे ग्रेव्स डिजीज हो गया, गोइटर हो गए, टॉक्सिक एडिनोमा हो गया, ठीक है, थायराइड कैंसर हो गया. बट मूलतः जो भारत में या बाकी देशों में भी जो ज्यादातर पाई जाती है वो ज्यादातर हाइपर थायरॉयडिज्म ही होते हैं. हाइपर थायरॉयडिज्म में होता ये है कि T3 T4 लेवल ज्यादा हो जाता है. अभी हमें पता कैसे चले?
0: हाँ, उसके लक्षण भी दिखाई देते होंगे बॉडी पे.
1: लक्षण तो दिखाई देते हैं, मगर उसको कंफर्म करने के लिए इन्वेस्टिगेशन बहुत इम्पोर्टेंट है. ये इन्वेस्टिगेशंस का अलग एक महत्वपूर्ण बताया गया है
0: निदान.
1: इसमें आता है ब्लड. पहला जो थायराइड टेस्ट रहता है, फर्स्ट ही होता है ब्लड टेस्ट, ब्लड सीरम T3 T4 TSH का.
0: जी.
1: अब इसमें भी दो प्रकार होते हैं, एक है टोटल T3 T4, एक होता है फ्री T3 T4. TSH वैसा ही रहता है. टोटल T3 T4 होता है जो टोटल बॉडी में आपके संचालित होती. इसमें क्या हो जाता है, TBG थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन अगर बॉडी में ज्यादा कम होती है तो T3 T4 भी ऊपर नीचे रहेगा.
0: अच्छा.
1: तो ये पहले के डॉक्टर्स किया करते थे, मगर इससे भी ज्यादा एक्यूरेट फ्री T3 T4 है, क्योंकि ये डिपेंड नहीं करती किसी भी अन्य रासायनिक पे.
0: अच्छा.
1: फ्री T3 फ्री T4 ये आपको एग्जैक्टली बता सकती है कि जो पेशेंट है इसका T3 या T4 फ्री कितना है, मतलब बॉडीज में जो अत्यधिक है वो कितना है, जो कि डायग्नोसिस में हेल्प करता है. हमको पेशेंट को ठीक करना है, अंधेरे में तीर नहीं चलाना. इसके लिए इन्वेस्टिगेशन, मैं फिर कहती हूँ, होम्योपैथी में भी इन्वेस्टिगेशन बहुत महत्वपूर्ण है. अब ब्लड के बाद आ गया अल्ट्रासोनोग्राफी.
0: अच्छा.
1: फिर आता है रेडियो एक्टिव स्कैनिंग, मगर ये सारे बाद में, मतलब जैसे थायराइड कैंसर हो गया, मल्टी नोड्यूलर ये हो गया, नोड्यूल्स हो गए, इसमें सारे ये अल्ट्रासाउंड या स्कैन्स ये सारे वहाँ पे इम्पोर्टेंट होते हैं. हमें जब पता करना है कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरथायराइड या हाइपोथायराइड, ब्लड टेस्ट इज द फर्स्ट थिंग. प्राथमिक निदान जो रहेगा वो ब्लड टेस्ट है.
0: अच्छा.
1: और ये अनिवार्य है.
0: लेकिन मान लीजिए T3 या T4 में से कोई पॉजिटिव आ गया, जैसे कि आपकी यूनिट के बाहर या कम
1: रेंज के बाहर,
0: रेंज के बाहर, तो आप क्या मानती हैं उसको?
1: नहीं, इस पे तीन चीज डिपेंड करता है, सिर्फ T3 T4 देख के नहीं होगा, TSH भी चाहिए.
0: अच्छा. तो उसमें अगर मान लीजिए अगर है तो क्या रेंज रहती है और क्या उसके लक्षण दिखाई देते हैं?
1: T3 और T4 अगर हायर साइड में है और TSH रेंज से नीचे है
0: जी,
1: इसको हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं.
0: अच्छा.
1: हाँ, ठीक है. और जब T3 T4 लो है और TSH हाई है तो इसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं.
0: जी, जी जी.
1: तो उस हिसाब से हमारे चिकित्सा जो है वो शुरू होने चाहिए.
0: हाँ, क्योंकि निदान में पता हो जाता है कि ये लेवल क्या है,
1: लेवल क्या है और पेशेंट कौन सा पेशेंट है, हाइपरथायरॉयडिज्म का पेशेंट है कि हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट, और शुरू होता है हमारा चिकित्सा.
0: जी जी. तो हम चिकित्सा की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले आपके प्रकारों में और भी जो बातचीत है उसको लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक वातावरण को संगीत में बनाना होगा.
1: शुरू करते हैं, एक बहुत ही मेरा पसंदीदा गाना है, खोया खोया चांद,
0: काला बाजार.
1: काला बाजार
0: मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत सुनते हैं.

डॉक्टर साहब, गीत वाकई अच्छा सुनवा दिया आपने और बहुत ही माकूल था प्रोग्राम में इस समय, लेकिन प्रकारों की जहां तक बात है तो उसके बारे में आप विस्तार से अपने हिसाब से बताइए कि कितने प्रकार के इसमें थायराइड की ग्रंथियों का काम भी होता है, और फिर निदान की बात आती है तो क्या क्या परीक्षण करने आवश्यक होते हैं मरीज

0: डॉक्टर साहब, गाना वाकई में बहुत ही पुराने दौर में हमें लिए गया और एक पुराने मंजर को हमारे सामने ला दिया गाने ने, तो हम यही कहेंगे कि होम्योपैथी भी एक बहुत पुरानी चिकित्सा है, आज की नहीं है। तो इसमें तो कई प्रकार के निदान के साथ साथ जब चिकित्सा में हम आगे बढ़ते हैं तो कन्फर्म हो जाते हैं कि नहीं, मरीज ठीक होगा ही। तो जब आपके पास जो प्रकार आप बता रही थी, इस तरह के मरीज ज्यादा आपको मिले या कम वाले मिले?
1: पेशेंट हमको कभी बोल के नहीं आता कि हम हाइपरथायराइड के हैं या हाइपोथायराइड। अपने हिसाब से पेशेंट्स को सुनिए, वो क्या बोल रहे हैं। उनका जो बोलना होता है वो आधे से ज़्यादा आपको बता देगा कि क्या एग्जैक्टली चिकित्सा का तरीका जाना चाहिए। जैसे ज़्यादातर जब पेशेंट्स ये जो हाइपरथायराइडिज्म में होते हैं, ये 6 महीने पहले से ही इनके लक्षण शुरू हो जाते हैं।
0: अच्छा।
1: मगर लक्षण कैसे होते हैं, कहीं खाज हो गई, कहीं खुजली हो गई, कहीं बाल गिरने का जो समस्या है एलोपेशिया,
0: जी जी,
1: विटिलिगो मतलब सफेद पैचेस, किसी को एंजाइना पेन हो रहा है, किसी का वेट एकदम कम हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, कहीं डायरिया बहुत ज्यादा है, मतलब लूज मोशंस।
0: जी।
1: अब जब ये सारे पेशेंट्स डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे समझ लीजिए मुझे चेस्ट में पेन हो रहा है, अब वो पेन अंजाइना का भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, सांस में तकलीफ हो रही है, पेशेंट जाता है कार्डियोलॉजिस्ट के पास। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि ये गलत है।
0: जी।
1: कहीं पे किसी को डर्मेटोलॉजी का प्रॉब्लम
0: होगा,
1: त्वचा रोग, तो वो त्वचा विशेषज्ञ के पास जाएगा, तो वो देखेंगे कि हाँ चलो बाल गिर रहे हैं, सिर्फ उतने तक दवाई देके छोड़ देंगे। मगर यहाँ पे ही होम्योपैथ अपना खुद का एक अलग छाप छोड़ता है। जब एक पेशेंट मेरे पास आ रहा है और मुझे ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं, मुझे ये ऑलरेडी सोचना चाहिए, ये ऑलरेडी मेरे दिमाग में शुरू हो जाता है कि ये इसका जड़
0: इसका
1: क्या है,
0: किधर है।
1: एग्जैक्टली, रूट जो कहते हैं ना होम्योपैथी जड़ से निकालता है, क्या होता है, यही होता है। मुझे दिख रहा है मेरे सामने एक पेशेंट बैठा है, वो बोल रहा है कि मेरे बदन में खुजली है, मेरा वेट लॉस हो रहा है, मतलब वजन कम हो रहा है, मुझे भूख नहीं लग रहा है। लोगों को लगेगा कि अच्छा भाई इसको थोड़ा पेट का समस्या होगा, थोड़ा बाल का कुछ शिकायत होगा। नहीं, इसको अगर आप बैक ट्रैक करो, मतलब आप सोचते जाओ इसका जड़, तो कहीं ना कहीं आपको 10 चीजें रहेंगे, उसमें से आपका एक्सपीरियंस, आपका खुद का नॉलेज आपको बताएगा।

0: करेगा कि कहाँ जाना है, वो आपको दिशा देगा। तो ये होता है जड़। तब मुझे सोचना चाहिए कि थायराइड एक कॉज हो सकता है
1: जी,
0: क्योंकि डायबिटीज में भी ये होते हैं, मगर थायराइड एक कॉज हो सकता है। इस प्रकार से अगर हम निदान करें उस पेशेंट का उस वक्त, काफी टाइम, ऑलमोस्ट मेरे केसेस में 80% तक ऐसे हो चुका है कि थायराइड इनिशियल स्टेजेस पे डिटेक्ट हो गया, तो या तो हम उसको स्लो डाउन कर ले या तो एक्चुअली वो क्योर हो जाता है। हाँ, अगर लेटर स्टेज में जब पेशेंट्स आते हैं कि बकायदा हाइपर थायरॉयडिज्म के सिम्टम्स लेके, जो लक्षण है वो मैं बता दूंगी, तो ये लक्षण लेके तब तो उसको क्योर करना ही करना है
1: जी।
0: मैं बोल रही हूँ कि 6 महीने पहले से जब लक्षण दिखाई देती है तब अगर ध्यान दिया तो ट्रीटमेंट या चिकित्सा है या उसका जो, हाँ, क्योर है, वो जल्द हो जाएगा।
1: तो ये तो आपने बहुत ही गंभीर बात बताई है, लेकिन बहुत ही आसान से शब्दों में सुनने वालों को भी समझना होगा और जो इसके मरीज हैं वे भी ये जान सकते हैं कि कितना आसान है, लेकिन प्रारंभिक लक्षण दिखाई देते ही चिकित्सक से सलाह लें। और अब हम यहाँ पर बढ़ेंगे अगले गाने के साथ, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
0: एक बहुत ही पुराना गाना है, मन रे तू काहे न धीरे धरे,
1: चित्ररेखा फिल्म का गाना है ये।
0: हाँ।
1: और वाकई में धैर्य रखने की जरूरत है,
0: जरूरत
1: है, लेकिन प्रोग्राम में तो इस गीत को अभी बजाना पड़ेगा।

वाकई एक बहुत ही संदेशात्मक नगमा जो आपने सुनवाया अपनी पसंद पर, मोहम्मद रफ़ी ने गाया। और चित्रलेखा फिल्म के इस गाने को आत्मसात करते करते कई प्रश्न होम्योपैथी क्या क्या होता है वो सब मंजर सामने आने लगा। लेकिन थायराइड और होम्योपैथी में उपचार विषय पर हमारी चर्चा जारी है डॉक्टर लीजा बनर्जी के साथ। डॉक्टर साहब, इस गीत के बाद जो एक

0: प्रश्न उभरता है वो ये है कि निदान के बारे में अभी और कुछ कहना चाहेंगी आप?
1: शुरुआत में ही आप किसी भी अच्छे होम्योपैथ के पास जाइए, तुरंत वो ठीक हो जाए। अब हमारे होम्योपैथी में तीन चीज बहुत इम्पोर्टेंट है।
0: क्या क्या है?
1: एक होता है जो चीफ सिम्टम्स है या प्रेजेंटिंग सिम्टम, मतलब तात्पुरता आप जब डॉक्टर के पास आए हो किस लक्षण के साथ आए हो। सेकंड होता है पास्ट हिस्ट्री, मतलब बचपन से लेके अभी तक आप क्या क्या बीमारी आपको हो चुकी
0: है, हिस्ट्री क्या है,
1: हिस्ट्री क्या है। इसमें आपको और एक इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगी कि आज के दिनों में हम ध्यान नहीं देते हैं, मगर कैसे होता है कि कोई भी चीज होम्योपैथ में कहा जाता है कि सप्रेस अगर हो गई तो वो जब बाहर निकलना ही निकलना है, जब बाहर निकलती है और बड़ा होके, मतलब और ज्यादा होके वो आपके शरीर पे घातक होता है। एग्जाम्पल, कभी अगर हमको भूख लगती है, पेट में दर्द होता है, हम बहुत टाइम तक वो भूख को मतलब नहीं अभी खाने का टाइम नहीं आया, जो भी है, या कभी किसी के ऊपर गुस्सा आ गया, कहीं जा रहे, डर लगा, ये थोड़ा भी हमारा जब माइंड चेंज होता है या सोचने का प्रक्रिया हमारी चेंज हो जाती है तब रासायनिक क्रियाएं शुरू हो जाती है बॉडी में। कभी हमें ध्यान में आता है, कभी नहीं आता है। तो यही सारी चीजें जब हम सप्रेस करते हैं, मतलब दबा देते हैं
0: जी,
1: तो वो आगे जाके बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाती है हमारे खुद के शरीर को या हमको। इसमें से आता है दो तरह के सप्रेशंस,
0: वो कैसे?
1: एक है मेंटल, मानसिक, और एक है फिजिकल
0: जी।
1: मेंटल में कैसे होता है कि अगर मुझे अमुक व्यक्ति पे गुस्सा आया, समझिए आप पे गुस्सा आ गया, मैं वो अंदर ही अंदर रख लूंगी कि नहीं जी, मैं तो तिवारी जी को नहीं बोल सकती, बड़े है, चलो वो गुस्सा मैंने सप्रेस कर लिया। इससे होता क्या है कि कभी देखा होगा कि हिंदी में एक कहावत है, आग बबूला होना
0: जी जी।
1: तो वो आग बबूला होना या हाथ वो जो लाल हो जाता है, कान लाल होती है गुस्से से थोड़ा, तो वो होता ये है ऑलरेडी केमिकल चेंजेस या रासायनिक क्रिया आपके बॉडी में शुरू हो गई है
0: जी जी।
1: आपका ब्रेन आपको बोल रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, सावधान
0: जी।
1: अब आपको कहीं किसी से डर लग रहा है या कहीं नए जगह पे जाने पे एक अलग सा एक
0: फोबिया,
1: हाँ, धड़धड़ाहट होती है, सबको होती है। तब क्या होता है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, धड़धड़ सुनाई देती है दिल की। एक्चुअली होती है क्योंकि तब हमारा बॉडी उस हिसाब से काम करना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे किसी पे गुस्सा है तो मैं उसे मारूं या चिल्लाऊं, नहीं, ऐसा नहीं होता। मानसिक चीजों में सप्रेस करना मतलब है अगर आपको कुछ चीजें बुरी लग रही है या जो भी है उसको एक अलग ढंग से प्रस्तुत कीजिए। नहीं तो सबसे अच्छा माध्यम मेरे हिसाब से ये है गाने, म्यूजिक इज अ बेस्ट थेरेपी फॉर एनीथिंग।
0: और ये भी हो सकता है कि उस माहौल से थोड़ा हट जाएं।
1: तब क्या, नहीं, तब क्या होता है, तब थ्री इडियट्स में जैसे हमने एक डायलॉग सुना होगा, हम बेवकूफ बनाते, ऑल इज वेल, वो हो जाता है, हम ब्रेन को बेवकूफ बना रहे कि भाई कुछ नहीं हुआ है,
0: सब ठीक है।
1: तो तात्पुरता ब्रेन जब नॉर्मल हो जाता है, वो केमिकल रिएक्शन सारे गड़बड़ जो हो रहे हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं, तब देखना आपका गुस्सा भी ठंडा हो रहा है, आपके बॉडी पे असर नहीं पड़ रहा है। ये हो गया मेंटल
0: जी।
1: अब अगर हम शारीरिक बातों पे आए,
0: फिजिकल,
1: उसमें क्या होता है कि टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में रहते हैं, जैसे मैंने कहा कि जंक फूड, ये वो वाला ना,
0: सारी विषैली चीजें,
1: हाँ,
0: तत्व जो है अंदर रहते हैं,
1: हाँ, तो ये सारी टॉक्सिक चीजें जब अंदर से बाहर आने की कोशिश करती है, याद रखिए नेचर, प्राकृति हमेशा अपने आप को बचाना चाहती है। कोई चीज अगर क्रिएट हो रही है या बन रही है उसको जल्दी से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश नेचर कभी नहीं करता, प्रकृति कभी नहीं करती, शरीर भी वही है। तो जैसे ही कोई टॉक्सिक बॉडी के अंदर है, विषैली चीजें, वो बाहर निकलेगी। कैसे निकलेगी, ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट है तो ऑर्गन्स को फर्स्ट हाथ नहीं देती नेचर। बाल हो गए, फेस हो गया, मतलब स्किन हो गया, ये दो ऐसी चीजें हैं कि अगर थोड़ा बहुत खराब भी हो गया तो आपके शरीर में या ऑर्गन्स में जो महत्वपूर्ण है आपके जीवन शैली में, वहां पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से जब हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं या टॉक्सिन्स बाहर निकालने होते हैं, फर्स्ट होता है स्किन, रिंग वर्म हो गया, एक्नी हो गया, सिंपल पिंपल हो गया,
0: रोम छिद्रों से

0: निकल जाते हैं।
1: हाँ, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 10 क्रीम लगाओ, 50 लोशंस लगाओ, पहले उसको ठीक करो, भले कुछ हो जाए। अब वापस नेचर ट्राई करता है कि फिर उसको निकाले, फिर हम उसको अंदर डाल देते, क्योंकि हमको बाहर से अच्छा दिखना है, अंदर कुछ भी हो जाए।
0: जी जी।
1: तो यहाँ पे हो जाता है क्या कि लिवर या कोई भी ऑर्गन्स, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, जैसे लिवर, किडनी, गुर्दा, मसल्स, ब्रेन, हार्ट, ये सारे एक प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो ये जब प्रॉब्लम में आ जाते हैं, वो कहीं ना कहीं तो आपको इफेक्ट करने ही वाले हैं।
0: जी।
1: और वहां से शुरू होता है प्रॉब्लम्स की सारी प्रक्रियाएं, जड़, जैसे मैंने बोला था होम्योपैथी का जड़। तो इसलिए पास्ट हिस्ट्री, मैंने इसलिए इतना डिटेल्स में बोला कि ये होता है पास्ट हिस्ट्री, ये भी हमें ध्यान रखना है। एंड लास्टली, मोस्ट इम्पोर्टेंटली, फैमिली हिस्ट्री,
0: इतिहास क्या है परिवार का।
1: अभी जैसे आम के बीच से आम ही होगा, केला होगा नहीं, केले के झाड़ में केले ही आएंगे,
0: हेरिडिटरी कैरेक्टर,
1: हेरिडिटरी। अभी जैसे अगर फैमिली में थायराइड का हिस्ट्री है, थायराइड का हिस्ट्री अगर है, जो यंग गर्ल्स होती है, जो लड़कियां जो प्यूबर्टी में जाती है, उनके चांसेस भी ज्यादा रहते हैं कि आगे के दिनों में उनको भी थायराइड होने के चांसेस है। तब होम्योपैथ का काम ये होता है कि ये भी ध्यान में रखे, अगर है तो उसको ठीक करे, अगर नहीं है तो उसको होने ना दे, प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। ऐसे में काफी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो बोलते हैं कि अरे डॉक्टर साहब, आपने दवाई दी थी मगर अमुक चीज तो ठीक है, मगर अरे इसको फेस पे पिंपल्स आ रहे हैं। मैं बोलती हूँ आने दो, क्योंकि टॉक्सिन्स निकल रहा है, जितने टॉक्सिन्स बॉडी से निकल जाए ऑर्गन्स उतना ही ठीक रहेगा। ऑप्टिमम लेवल, मतलब जो एक्चुअल लेवल में रहना चाहिए, बैलेंस में रहना चाहिए, वो लेवल में रहेगा। और जैसे ही बैलेंस में आ जाता है, ऑटोमेटिक पूरा सिस्टम बैलेंस में आता है।
0: तो फिलहाल तो हमें अपने प्रोग्राम को भी बैलेंस करना होगा, संतुलित रखना होगा। चर्चा को थोड़ा सा विराम देंगे और आपकी पसंद का एक अच्छा सा गाना यहाँ सुनेंगे।
1: अभी तो मुझे एक ही गाना याद आ रहा है, वो है तू गंगा की मौज में,
0: बैजू बावरा। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: बैजू बावरा फिल्म का ये नगमा वाकई आनंदित कर गया। और देखिए जिस तरह से गंगा की मौज में जो एक पवित्रता झलकती है, तो शरीर भी पूरी तरह से कुदरत का दिया हुआ एक पवित्र रचनात्मक पूरा व्यक्तित्व होता है। हम इसे बिगाड़ देते हैं विषैले तत्वों को आत्मसात करके, तो होम्योपैथी उससे भी बचाती है। और आहार के बारे में भी अब जानेंगे आपसे, लेकिन थोड़ा सा चिकित्सा का और आप विस्तार दे रही थी, वो क्या है?
1: अच्छा, अब आते हैं हम दवाइयों पे। हाँ, मेरा एक सुझाव रहेगा सभी से, कृपया कर खुद का इलाज खुद मत कीजिए, या दूसरों का भी सिर्फ पढ़ के गूगल पे सर्च करके सोशल मीडिया पे जाके मत कीजिए, इतना आसान नहीं है। मगर ये नाम सुनने को इजी, या लक्षणें जब पढ़ेंगे, अरे हाँ ये है ना, ये अमुक में है, अरे ये तो अमुक में है, दे देते हैं, इतना आसान नहीं होता। क्योंकि जैसे मैंने कहा था, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री सब जानना जरूरी है, प्लस इन्वेस्टिगेशन का जो ये भी जानना जरूरी है। हर एक दवाई हर एक जगह पे काम नहीं करती, तो हम कैसे सिलेक्ट करते हैं दवाई?
0: सही बात,
1: दवाई तो वही है, लक्षणें भी वही है, वेट लॉस होगा, वेट गेन होगा, यहाँ पे हाइपर थायराइडिज्म में स्वेटिंग मतलब
0: पसीना
1: बहुत ज्यादा आएगा, डायरिया होगा, हाइपो में उल्टा होगा। तो कैसे सिलेक्ट करते हैं कि कहाँ पे किसको देना है?
0: लक्षण देख के
1: लक्षण में भी एक स्पेशल इंगित होती है, हर एक पेशेंट एक स्पेशल इंगित स्वयं देता है, सुनने की देरी है,
0: एक इंडिकेशन होता है,
1: एक इंडिकेशन। जैसे थायरोक्सिन का पेशेंट है, एक आयोडीन का, हम मान के चलते हैं, ये अपने ऊपर ट्राई मत कीजिएगा, मैं बता रही हूँ एज एन एग्जाम्पल। थायरोक्सिन का पेशेंट दिखने में कैसे होता है? गोल मटोल सा, बहुत स्वेट करता हो, थोड़ा भी कुछ काम किया तुरंत उसको पसीना आता है, तुरंत वो वीक हो जाता है, ठीक है।
0: थोड़ी मेहनत करने पे ही वो थक जाता है,
1: बहुत जल्दी थक जाता है, ठीक है। मैंने जैसे पहले कहा था, ब्लड टेस्ट इन्वेस्टिगेशन आ गया, अब होता है पेशेंट डायग्नोसिस, मुझे ये पेशेंट डायग्नोस करना पड़ेगा।
0: क्या बात है,
1: पेशेंट डायग्नोसिस होम्योपैथी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि अमुक पेशेंट अमुक मेडिसिन का है, तमुक पेशेंट तमुक मेडिसिन का है। तो ये कैसे पता चलेगा? पेशेंट के हिस्ट्रीज लेके और पेशेंट के प्रेजेंट सिम्टम्स लेके, और वो जिस तरीके का मानसिक विचारधारा रखता हो। थायरोक्सिन का पेशेंट बहुत उग्र होगा, गुस्सेल, आयोडीन का पेशेंट उसी, अगर उससे देखा जाए, वो बेचारा सा
0: मायूस
1: सा बेचारा, हर एक चीज पे थोड़ी थोड़ी चीजों पे मेरा कुछ नहीं हो सकता, ये सारी चीजें उसमें होती। अब यहाँ पे आता है, जब मुझे पेशेंट डायग्नोसिस करना पड़ता है, मैंने थायरोक्सिन को आयोडीन और आयोडीन को थायरोक्सिन अगर दे दिया तो मेरे काम बिगड़े, मगर पेशेंट सफरर है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन या स्वयं को दवाई देना प्लीज बंद कर दीजिए।
0: डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक प्रश्न और उभरता है, हम कई बार देखते हैं बहुत ही मोटा सा व्यक्ति है, बहुत उसको पंचकर्म की क्रिया दे दी गई है, नेचुरोपैथ ये वो, लेकिन वो मोटा ही रहता है, और वो जब भी पूछते हैं तो बोला थायराइड का प्रॉब्लम है। तो एक तो ये बात, तो ये थायराइड में मोटा होना या एकदम अत्यंत दुबला या क्रिश हो जाना, ये क्यूरेबल है?
1: क्योंकि जैसे ही आप थायराइड क्यों है, कारण क्या है, ये जैसे ही आप ठीक कर रहे हो, ऑटोमेटिक वो अपने नॉर्मल में आ रहा है, नॉर्मलसी जिसको कहते हैं, मतलब
0: सामान्य अवस्था में आ
1: रहा है। सामान्य अवस्था। डिजीज होता क्या है? डिस ईज, जब आपका ईज या आपका कंफर्टेबल लेवल जब खराब होता है, ईजनेस खराब होता है, उसको डिस ईज कहा जाता है। तो जैसे ही वो जड़ से ठीक होने लगता है, जब उसके ऑलरेडी जो गड़बड़ चल रही है, वो ब्रेन में चले, माइंड में चले, कहीं पे भी चले
0: जी,
1: ये जैसे ही ठीक किया जाता है, वैसे ही ऑब्वियसली उसका जो सामान्य रूप से पूरी तरह से वो ठीक होके अपना सामान्य जीवन यापन कर सकता है
0: जी। और अब देखें कि इसमें कई बार आहार भी काम करता है।

0: है, जो इस तरह की थायराइड की आने वाली आगामी जो बीमारियां हैं उससे बचाव भी होता है उसका। तो आप क्या कहेंगे कि डाइट और प्रिवेंशन के बारे में क्या कहना?
1: कोई भी पैथी अगर कहे कि मैंने ही सब कर लिया, एकदम गलत, क्योंकि सिर्फ पैथी, सिर्फ दवाइयां कुछ नहीं करती, कर ही नहीं सकती। इसमें डाइट का मतलब आहार का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता ही है। सिर्फ डाइट अगर बोलूं तो गलत होगा, साथ में होते हैं एक्सरसाइज मतलब व्यायाम। व्यायाम मतलब ये नहीं कि आप जिम में जाओ, अमुक वेट्स लो तो अमुक करो, कोई जरूरत नहीं है। आप रोजाना 5 से 7 किलोमीटर चलो, सीजनल फ्रूट,
0: कोई भी मौसमी एक जो फल है खाना चाहिए,
1: खाना हो या फल हो ये खाइए। और पानी, हाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगी, लोग पानी जब बोलते हैं तो बोलते हैं ज्यादा पानी पियो, ज्यादा पानी पियो, शरीर ठीक रहेगा, बिल्कुल नहीं। 2.5 से 3 लीटर काफी है आपके बॉडी के लिए। इससे जब ज्यादा पानी पियोगे, एक एग्जांपल देना चाहूंगी, आपकी खुद की कैपेसिटी अगर होगी, मेरी खुद की कैपेसिटी है 2 किलो चीज उठाने की, मुझे 3 किलो दे दिया जाए मैं उठा लूंगी, मुझे 10 किलो दे दिया जाए क्या मैं उठा पाऊंगी?
0: बहुत प्रेशर पड़ेगा।
1: यही प्रेशर हमारे इंटेस्टाइन्स, किडनीज पे स्पेशली पड़ता है जब हम ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की कोशिश करते हैं। किडनीज सिर्फ फिल्ट्रेशन का काम नहीं करता, T3 किडनीज लिवर से भी प्रोड्यूस होती है।
0: ओहो,
1: यस, इसलिए मैंने ये यहाँ पे जिक्र किया। और जब किडनीज अगर काम नहीं कर रही है तो 10 चीजें होंगी ही होंगी, T3 पे भी असर पड़ेगा।
0: तो ये सावधानी बहुत जरूरी है रखना। और आपका जो टोटल इन ऑल कहना ये है कि वो कॉमनली कहा जाता है कि ज्यादा पानी पिए, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार
1: उतना ही।
0: लेकिन आहार में ये बात तो मानती है, आज की जो लाइफस्टाइल है, जीवन शैली है, उसमें जंक फूड वगैरह भी इसमें है।
1: सबसे पहला चीज जो लोगों को बंद करना चाहिए वो है अजीनोमोटो,
0: जो चाइनीज फूड में ज्यादा इस्तेमाल होता है। बिल्कुल सही बोला है,
1: अजीनोमोटो बंद कर दीजिए, फास्ट फूड्स कम कर दीजिए,
0: और कुछ नहीं तो सामान्य खाना खाइए।
1: हाँ, कम कर दीजिए, मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि बंद कर दीजिए, एक्चुअली बंद करनी चाहिए, अगर नहीं हो रहा है कम कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप कम करेंगे ऑटोमेटिक आपका शरीर पॉजिटिव दिशा में जाएगा। और मेरा सुझाव एक रहेगा लोगों से, जितना हो सके अपने माइंड को थोड़ा नियंत्रण पे रखिए, मतलब थोड़ा सैक्रिफाइस अगर हम करना शुरू हो जाए,
0: कंट्रोल
1: करना शुरू हो जाए, सैक्रिफाइस मतलब अपना स्वार्थ थोड़ा सा हटके देख लेना, जैसे ही आपका मन शांत रहेगा, आपकी सोच अच्छी होगी, शरीर ऑटोमेटिकली उसी दिशा में उस हिसाब से अच्छा ही चलेगा,
0: क्योंकि उसी हिसाब से उसको आदेश प्राप्त होंगे।
1: हाँ, हम जैसे बोलते हैं कि ब्रेन ने वो आदेश दिया, मैंने जैसे पहले कहा कि ब्रेन को आदेश मिलता है कि TSH चालू करो, बंद करो, एक्चुअली ब्रेन देता है क्या? मन देता है। मन को आप ब्रेन के अंदर रिलेट मत करना, वो अलग चीज होती है।
0: हमारे जो कार्यक्रम का मन इस समय कह रहा है कि आदेश दे रहा है दरअसल कि एक गाना अच्छा सा हो जाए,
1: एक अच्छा सा गाना चलते चलते मैं हूँ।

0: डॉक्टर साहब, बहुत ही झूमता मचलता बहलाता कदमों को थिरकाता नगमा आपने सुनवाया झुमरू फिल्म से और किशोर कुमार की आवाज में। देखिए, समापन की ओर बिल्कुल नजदीक है हमारा प्रोग्राम। चलते चलते आज के हमारे विषय पर हमारे सुनने वालों को आप क्या मैसेज, संदेश या सलाह देना चाहेंगी?
1: एक है कि पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, दूसरों के लिए नहीं तो खुद के लिए, खुद के शरीर के लिए। दूसरों के लिए भी अच्छा सोचिए, खुद के लिए भी अच्छा सोचिए। आप जितना अच्छा सोचोगे, आपके शरीर की जो रासायनिक क्रिया है उतनी ही पॉजिटिव आएगी। और इससे होगा क्या, हमारे आने वाले जेनरेशंस को हम एक बहुत अच्छा एनवायरमेंट या एक अच्छा जगह दे पाए जहाँ पे वो पनप सके। मेरे जो गुरु है, जिन्होंने आज मुझे सिखाया है कि होम्योपैथी का मतलब क्या, कैसे सेवा की जा सकती है, कैसे ठीक करके हम, ये एक अलग ही खुशी मिलती है पेशेंट को ठीक करने की। ये जो खुशी मिलने का जो राह है वो मेरे गुरु ने मुझे दिखाया है। मेरे गुरु और कोई नहीं, मेरे डैड है, डॉक्टर एस बैनर्जी, एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। और एक बार फिर विविध भारती को तहे दिल से शुक्रिया करूंगी मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी मुलाकात मुंबई की सुप्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर लीजा बनर्जी के साथ। आज के प्रोग्राम में चर्चा का विषय था थायराइड होम्योपैथी में उपचार। इस विषय पर ये कार्यक्रम आपने सुना और उम्मीद है आप प्रतिक्रिया देंगे तो हमें पता चलेगा प्रोग्राम आपको कैसा लगा। चलते चलते आपको बताना चाहेंगे, आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। और अब दीजिए आज के सेहतनामा कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग।
0: लीजिए प्रस्तुत है आज के इस प्रोग्राम रंग तरंग का पहला गीत।

और उन्हीं का संगीत। रंग तरंग में ये अगली पेशकश जॉगर्स पार्क फिल्म से जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल।

बड़ी नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफर है। जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल आपने सुनी। जंजीर फिल्म से ये गीत सुनिए।

पाना हमते जरा हाले दिल सुना दे तू, तेरी हंसी की कीमत क्या है ये बता दे तू, तेरी हंसी की कीमत क्या

0: रागों की श्रृंगार शुरू का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती से प्रोग्राम रंग तरंग।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में मुकद्दर का सिकंदर से ये गीत। कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक है, प्रकाश मेहरा ने इसे लिखा।

जब हाल क्या है जनाब। जी हाँ, ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, अनोखी अदा। फिल्म का नाम था मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

और वेडनेसडे फिल्म से। इरशाद कामिल ने इसे लिखा था, संजय चौधरी का म्यूजिक। सोनू निगम को लीजिए सुनिए इस एल्बम दीवाना में। फैज अनवर ने इसे लिखा, साजिद वाजिद का म्यूजिक।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

FM 102 और 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
0: मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। आज को ही मौका बना लीजिए।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से। देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
0: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। वो लिखते हैं,
1: अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार। आज उमंग कार्यक्रम में दो बहुत ही सुंदर, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम प्रसारित किए गए। पेड़ की बात शीर्षक से जगदीश चंद्र बसु पर केंद्रित कार्यक्रम ने संवाद के माध्यम से उनके कार्यों, उपलब्धियों, प्रयासों और विज्ञान जगत में उनके अभूतपूर्व योगदान को बहुत सरलता से चर्चित किया। योगेश ठाकुर जी आगे लिखते हैं,
0: ये कार्यक्रम बच्चों को बसु जी के कार्यों के बारे में एक संक्षिप्त झलक प्रदान करता है। भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल पर आधारित कार्यक्रम बहुत ही शिक्षाप्रद और मनोरंजक था। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरला ठकराल के द्वारा प्राप्त की गई अभूतपूर्व सफलता की गाथा का पता चलता है। इतने सुंदर कार्यक्रम को श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
1: योगेश जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर प्रतिक्रिया देने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का।
0: चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा
1: और ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अवान अब्बासी।
0: धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं आपका हम आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमारे कार्यक्रमों की इस श्रृंखला को सराहा है,
1: क्योंकि इस श्रृंखला में आपके लिए हम लेकर आते हैं ढेर सारी मनोरंजक और रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी इस सप्ताह हम क्या जानकारी साझा करने जा रहे हैं, जरा श्रोताओं को तो बताइए।
0: अजीत जी इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे दुनिया के कुछ प्रसिद्ध फूलों पर।
1: जी मुझे याद आया, इसी श्रृंखला में हम भारत के कुछ प्रसिद्ध फूलों की चर्चा भी तो कर चुके हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो आज किस फूल की चर्चा की जाए?
0: अजीत जी आज हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध फूल चेरी ब्लॉसम की।
1: तो क्यों ना शुरुआत की जाए आपसे।
0: जी श्रोताओं, चेरी ब्लॉसम दुनिया के सबसे प्रसिद्ध फूलों में से एक है। इसका मूल है जापान, यानी इसकी उत्पत्ति जापान से मानी जाती है। जापानी भाषा में इसे सुकुरा कहा जाता है। यह फूल जापान की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान माना जाता है।
1: जी विमलेश जी ठीक वैसे ही ना, जैसे भारत की राष्ट्रीय पहचान फूलों के संदर्भ में कमल है।
0: बिल्कुल सही। जब ये फूल खिलते हैं तो लगभग पूरा देश गुलाबी और सफेद रंगों की मनमोहक छटा से भर जाता है। पूरा वातावरण बेहद खूबसूरत हो जाता है। इसके खिलने के समय में बहुत से पर्यटक खास तौर से जापान आते हैं।
1: विमलेश जी आपने इन फूलों के खिलने के बारे में कहा।
0: जी।
1: तो ये हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे कि चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने का समय कब होता है।
0: अजीत जी चेरी ब्लॉसम के फूल सामान्यतः मार्च और अप्रैल माह के बीच वसंत ऋतु में खिलते हैं। हालांकि स्थान और तापमान के अनुसार इसके खिलने के समय में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है।
1: विमलेश जी एक और बेहद रोचक बात मैंने फूलों के विषय में पढ़ी थी और वो ये कि चेरी ब्लॉसम के पेड़ों पर इस मौसम में पहले फूल खिलते हैं, बाद में पत्तियां निकलती हैं।
0: जी बिल्कुल सही। और इसके कारण पेड़ पूरी तरह से फूलों से ढका हुआ दिखाई देता है। श्रोताओं आपको बता दें कि जापान में चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने के समय त्योहार जैसा माहौल होता है। इस समय जापान में एक विशेष उत्सव मनाया जाता है जिसे हनामी कहते हैं। अजीत जी अब आपकी बारी।
1: जी श्रोताओं, हनामी को चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी कहा जाता है।
0: जी
1: आइए जानते हैं कि इस उत्सव के दौरान वहाँ लोग क्या करते हैं।
0: इस समय शहरों, गांवों और कस्बों में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें चित्रकारी, गीत संगीत और जापानी संस्कृति की झांकियां दिखाई देती हैं। लेकिन हनामी परंपरा की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि
1: और वो ये है कि इस समय लोग चेरी ब्लॉसम पेड़ों के नीचे बैठकर परिवार, मित्रों और खासकर बच्चों और बुजुर्गों के साथ समय बिताते हैं।
0: जी
1: वे एक साथ बैठकर चेरी ब्लॉसम फूलों की अनोखी छटा का आनंद लेते हैं और प्रकृति को धन्यवाद देते हैं।
0: जी दूर दूर शहरों में रहने वाले परिवार के लोग इस समय एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं।
1: जी
0: और स्वादिष्ट भोजन करते हैं, जिनमें विशेष है सकुरा मोची, ये मीठे चावल का केक होता है।
1: और दूसरा व्यंजन है डांगो, जिन्हें हनामी डांगो भी कहते हैं। ये पिसे हुए चावल के बने हुए गोल आकार के पकवान होते हैं। एक और व्यंजन है खास, उसका नाम है टेम्पुरा।
0: जी
1: इसमें तली हुई सब्जियां और मिठाई और विशेष जापानी चाय परोसी जाती है।
0: ऐसा नहीं है कि चेरी के फूल सिर्फ जापान में ही है। इन फूलों को विभिन्न देशों ने अपनाया, जैसे कोरिया, चीन,

0: कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत, इन देशों ने जापान से इसकी पौध को लेकर अपने देशों में विकसित किया है।
1: एक और खास बात आपको बता दें कि चेरी ब्लॉसम के फूल बहुत कम समय के मेहमान होते हैं।
0: जी,
1: ये एक से दो सप्ताह तक ही अपनी पूरी सुंदरता में रहते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। एक और खास बात आपको बता दें श्रोताओं कि चेरी ब्लॉसम वाले पेड़ों में जो चेरी के फल लगते हैं ना, वो बहुत छोटे और खट्टे होते हैं। इन पेड़ों में वो चेरी के फल नहीं लगते जो सामान्य तौर पर खाए जाते हैं।
0: खाने वाले चेरी के फलों के पेड़ अलग होते हैं। दरअसल चेरी ब्लॉसम के पेड़ सजावटी पेड़ माने जाते हैं। इनकी प्रजाति चेरी फल वाले पेड़ की प्रजाति से अलग है।
1: जी,
0: इनका उद्देश्य सिर्फ सफेद और गुलाबी रंगों की अद्भुत छटा को बिखेरना है।
1: और इन फूलों के द्वारा ये संदेश मिलता है कि जीवन भी क्षणिक है, इसीलिए जब तक जीवन है इसे हम सुंदरता से बिताएं और समय का मूल्य समझें।
0: जी,
1: शायद चेरी ब्लॉसम फूलों के हनामी उत्सव का ही प्रभाव है कि जापान में सौंदर्य और कला पर बड़ा जोर दिया जाता है, और हाँ, वहाँ समय की बड़ी प्रतिबद्धता है।
0: जी बिल्कुल। तो श्रोताओ, अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से, प्रश्न है,
1: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
1: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी आप अपने संदेश और हमारे प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ,
0: आप एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे कार्यक्रमों की, सुनते हैं कार्यक्रम।
1: हमारा पहला कार्यक्रम है वी आर गोइंग टू द जू, सिंगिंग द पोएम। श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत इस गीत में मजेदार ढंग से बच्चों की चिड़ियाघर की यात्रा का वर्णन है। पशु पक्षियों की आवाजों को शामिल करके गीत को और भी अधिक रोचक बनाया गया है।
2: चिल्ड्रन, हैव यू एवर विजिटेड अ जू?
3: अ जू?
2: यस, अ जू।
3: Oh yes.
2: All right. So tell me, what do you see in a zoo?
3: Tiger. A lion.
2: Yes.
3: Monkey. Birds of different kind.
2: Very nice.
3: Camel. Giraffe. And so on.
2: Oh wow. So, here is a child like you. Who wants to go to a zoo? Now, let's recite this poem. And you all repeat after me. Ready?
3: Ready!
2: The poem goes like this. We are going to the zoo to see a kangaroo.
3: We are going to the zoo to see a kangaroo.
2: And a lion too.
3: And a lion too.
2: We are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: The monkeys swing and climb.
3: The monkeys swing and climb.
2: They know it's feeding time.
3: They know it's feeding time.
2: The polar bear and seals.
3: The polar bear and seals.
2: Enjoy their fishy meals.
3: Enjoy their fishy meals.
2: Yes, we are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: The snakes all slide along.
3: The snakes all slide along.
2: The skunk just makes a pong.
3: The skunk just makes a pong.
2: The tiger gives a roar.
3: The tiger gives a roar.
2: He wants to eat some more.
3: He wants to eat some more.
2: We are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: Yes, we are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: So children, you all have listened to this poem just now. Hope you have enjoyed, isn't it?

0: Dear friends, you have just heard the sounds of different animals in this song. Now, listen to the sounds again and try to identify them by yourself. This was elephant. This was monkey. And this was tiger. This was polar bear. And this was skunk. And this was kangaroo. And friends, do you know that pets and animals are very important part of our lives and the environment as well? But how? Talk to your elders and teachers.
1: अभी आपने सुना ये संगीतमय कार्यक्रम और अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह।
0: इस कार्यक्रम में बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह की वीर गाथा प्रस्तुत की गई है और जानकारी दी गई है कि कैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उसने अंग्रेजी शासन से लोहा लिया और देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में अपना बलिदान दिया।
1: जी
2: भारत वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। जब जब भारत

0: भारत माँ की आन बान और शान पर संकट आया, हमारे वीर और वीरांगनाएं अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे। बात है अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की, जब हमारे वीर और वीरांगनाओं ने अदम्य साहस, सूझबूझ और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को बड़ी बहादुरी से निभाया। इन वीरों और वीरांगनाओं में कई तो काफी कम उम्र में ही कुर्बान हो गए।
1: ऐसे ही एक वीर बालक थे जोरावर।
2: साथियों, हमें अपने शत्रु की हर चाल का, हर हथियार का और हर रणनीति का जवाब देना है। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना है और हर पल हम सबको उससे चौकन्ना रहना है।
3: बिल्कुल ठीक है।
2: आप सब जानते हैं कि हम पर दोहरी जिम्मेदारी है। हमें अपनी रियासत के साथ साथ पड़ोस की रियासतों की भी मदद करनी है, ताकि अंग्रेज हमारी मातृभूमि पर कब्जा ना जमा सकें।
4: वीर जोरावर की
5: जय।
4: वीर जोरावर की
5: जय।
4: जय जेरापुर, जय भारत।
5: जय जेरापुर, जय भारत।
1: राजा जोरावर सिंह, हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत से सटी छोटी सी रियासत जेरापुर का महज 15-16 की उम्र का राजा, जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए अरब और रोहिल्ला पठानों की एक सैनिक टुकड़ी तैयार की थी।
6: अरे वाह, इतनी सी उम्र में जोरावर राजा बन गए।
1: दरअसल पिता की अचानक मृत्यु हो जाने पर उन्हें ये जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ी, क्योंकि वो अपने पिता के उत्तराधिकारी थे और दूसरा, अंग्रेजों के बढ़ते हमलों से मुकाबले के लिए ऐसा करना जरूरी था। खैर, ये वो वक्त था जब 1857 की क्रांति में बुरी तरह मात खाने के बाद अंग्रेज नई नई चालें रचने लगे थे। इसी में एक खतरनाक चाल थी, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो।
6: अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों को जात पात, भाषा, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लड़ाना शुरू कर दिया, ताकि इसका फायदा उठाया जा सके।
7: महाराज, महाराज, हालात खराब हो रहे हैं, लोग आपस में ही लड़ने लगे हैं। हमें कुछ करना होगा महाराज। पड़ोस की दूसरी रियासतों को भरोसे में लेकर और मिलकर काम करना होगा, ताकि इन अंग्रेजों को मनमानी का कोई मौका ही ना मिले।
2: ठीक कहते हैं मंत्री जी, मैं कल ही हैदराबाद जाता हूँ। वो हमारी सबसे बड़ी राजशाही रियासत है
7: जी।
2: वहाँ के निजाम अफजल उद्दौला से बात करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बात को अहमियत देंगे।
7: जी महाराज, महाराज अगर ऐसा हो जाए तो ये आपकी यात्रा की एक बड़ी सफलता होगी।
2: बिल्कुल,
7: आपकी सूझबूझ का जवाब नहीं महाराज। वाकई आप अपनी मातृभूमि और जनता की रक्षा के लिए कितने समर्पित हैं। हम तैयारी शुरू करते हैं महाराज।
2: जी मंत्री जी।
7: जी महाराज।
1: जोरावर ने अगले ही दिन एक नेक मकसद के साथ निजाम के दरबार में दस्तक दी।
4: होशियार, खबरदार, रियासते जेरापुर के महाराज जोरावर सिंह दरबारे खास में जलवा अफरोज हो रहे हैं।
8: जोरावर सिंह महाराज आ रहे हैं। महाराज जोरावर सिंह।
9: आइए हमारे दोस्त, तहे दिल से आपका इस्तकबाल है। तशरीफ रखिए और बताएं कि आपने कैसे तकलीफ की, क्या खिदमत की जाए आपकी।
2: निजाम साहब, हम आपसे एक गुजारिश करने आए हैं।
9: जी जरूर, हुक्म करें, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं।
2: देखिए निजाम साहब।
9: जी फरमाइए।
2: फिरंगी हुकूमत की बर्बरता और साजिशें एक बार फिर बढ़ रही हैं। गदर में मिली नाकामी के बाद अब वो हमें आपस में लड़ा

0: नहीं है
1: जी,
0: इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा ताकि वो किसी साजिश में कामयाब ना हो पाए।
1: राजा जोरावर, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। हम कल सुबह तफसील से बात करते हैं
0: जी।
1: तब तक आप हमारे खास मेहमान की तरह इस किले में रहें। हमारे वजीर सालार जंग आपके आराम और कल की बातचीत के सारे इंतजाम कर देंगे।
2: जो हुक्म मेरे आका, हम महाराज और उनके सैनिकों का पूरा ख्याल रखेंगे। आइए महाराज।
3: अफजल उद्दौला उर्फ मीर तहनियत अली खान 1857 से 1869 तक हैदराबाद के निजाम यानी शासक थे और यहाँ के पहले शासक कमरुद्दीन खान आसफ जाह के पांचवें वंशज थे। दरअसल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हैदराबाद रियासत पर नवाबों की हुकूमत रही। खैर, निजाम के दरबार में अपने शानदार स्वागत से जोरावर खुश थे। वहीं निजाम भी उनकी देशभक्ति और सूझबूझ को देखकर हैरान थे।
4: जी हाँ, जीरापुर की जनता के लिए हैदराबाद का साथ बहुत जरूरी था और जोरावर यहाँ काफी उम्मीद से आए थे।
2: ए, सुनो, सारी तैयारियां पूरी है ना?
5: बिल्कुल।
2: देखो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक तो जोरावर खुद बहुत बहादुर है, दूसरे उसके अंगरक्षक साये की तरह उसके साथ रहते हैं, और तीसरी बात यह है कि अगर हमारी साजिश कामयाब ना हुई तो फिरंगी हुकूमत हमसे नाराज हो जाएगी और इनामो इकराम की जगह मिलेगी लानत मलामत।
5: हुजूर, आप फिक्र ना करें, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आपने कहा है।
2: लेकिन जरा होशियारी से।
5: जो हुकुम सरकार।

0: But how? तुम चारों तरफ से गिर चुके हो।
1: ये क्या है?
0: You are under arrest.
1: एक सोते हुए निहत्थे इंसान को आधी रात में ऐसे कायरों की तरह गिरफ्तार करते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? हिम्मत है तो हमसे लड़कर दिखाओ। आओ सामने।
0: बहुत हो गई तुम्हारी बहादुरी।
2: हुजूर,
0: बांधो इस बच्चे को जंजीर से।
2: जी।
3: हाँ। छोड़ो मुझे। हाथ मत लगाओ मुझे। मुझसे हाथ हटाओ। मैंने कहा छोड़ो मुझे, हटो यहाँ से।
0: शाबाश, शाबाश, सारालजन, मैं खुश हुआ। तुम्हें मोटा इनाम दिलवाऊंगा।
4: हुजूर।
1: अच्छा, तो ये सब इसकी कारस्तानी है। एक बुजदिल ही दूसरे बुजदिल का साथ दे सकता है। लानत है तुम पर सालार जंग, लानत है। लालच में तुम इतने गिर जाओगे हमने सोचा ना था।
0: जाओ, चलो इसको, चलो
3: मुझे, चलो, छोड़ो मुझे।
5: बाद में अंग्रेजी फौज ने जोरावर पर बहुत अत्याचार किए। उनकी सैनिक तैयारी के बारे में पूछा गया, उनसे क्रांतिकारियों के नाम और ठिकाने पूछे गए, तरह तरह के लालच भी दिए गए, लेकिन वो जरा भी कमजोर नहीं पड़े और बार बार यही कहते रहे कि मातृभूमि से विश्वासघात नहीं कर सकते, चाहे जान ही क्यों ना गंवानी पड़े।
6: जोरावर से सारे राज उगलवाने के लिए थक हार कर कर्नल मेटोस टेलर नाम के एक नए अफसर को नियुक्त किया गया, लेकिन वो जितना ही सख्त था उतना ही दोस्ताना मिजाज का भी था। उसके मन में जोरावर के प्रति हमदर्दी थी। वो और जोरावर जल्द दोस्त बन गए और जोरावर उसे प्यार से अप्पा कहने लगे।
7: देखो जोरावर, अगर तुम प्यार से बचाओगे तो तुम्हें सजा की जगह आम माफी मिल जाएगी।

0: और मैं रेजिडेंसी से कहकर तुम्हें मालामाल करवा दूंगा।
1: अप्पा ये नहीं हो सकता।
0: देखो देखो तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, बात मान लो, मैं तुम्हें कोच नहीं होने दूंगा।
1: ये नामुमकिन है।
0: Why?
1: हमें माफ कीजिए, हम अपनी रियासत और मुल्क दोनों से दगा नहीं कर सकते। हम देशद्रोह नहीं करेंगे, हरगिज नहीं करेंगे।
0: yeah.
1: अप्पा साहब, अब हम मौत का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमें जो भी सजा होगी अब हमें मंजूर है।
0: तो नहीं मानोगे। देखो देखो, आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा हो सकती है तुम्हें। ये सजा
1: अप्पा साहब, हमारी बस एक विनती है कि हमें फांसी पर मत चढ़ाइएगा। हमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसके लिए हमें शर्म आए। हमने जो किया हमें उस पर गर्व है। कैद, फांसी या काला पानी, इनमें से कोई भी इतना भयंकर नहीं जितना कि विश्वासघात है। इसलिए हमें फांसी के बजाय तोप से बांधकर उड़ा दीजिएगा। हम कुछ नहीं कहेंगे और जरा भी नहीं डरेंगे, जरा भी नहीं।
0: एक्चुअली यू आर अ फूल।
2: जोरावर की यह बात सुनकर कर्नल टेलर का दिल भी सिहर उठा। बाद में उनकी गुजारिश न मानकर जोरावर को काला पानी की सजा सुनाई गई।
3: काला पानी की सजा?
2: हाँ, काला पानी की सजा। भारत की भूमि से सैकड़ों किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार का एक द्वीप है, जहां अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं देने के लिए एक जेल बनाई थी।
3: जोरावर को भी अंग्रेज सैनिक नाव से काला पानी की जेल ले जाने लगे।
2: और समुद्र में बीच रास्ते जोरावर ने एक अंग्रेज पहरेदार से रिवॉल्वर छीन ली।
1: काले पानी की सजा से मौत को बेहतर समझता हूँ मैं। भारत माँ का बहादुर बेटा हूँ। इस सजा को मेरी रियासत का सामान्य सा व्यक्ति भी नहीं पसंद करेगा। फिर मैं तो राजा हूँ।
3: एक छोटी सी रियासत के छोटी उम्र के राजा ने देश के लिए बड़ा काम कर दिखाया और मातृभूमि की रक्षा के लिए मौत को गले लगाकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया।
4: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
6: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है। अब श्रोता आनंद लेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का।

आशा भोसले भूपेंद्र की आवाजों में ऐतबार फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। बप्पी लहरी ने संगीत दिया था और हसन कमल ने इसे लिखा। एक और इंतजार में डूबा नगमा जगजीत सिंह की आवाज में।

होठों से छीलू तुम मेरा गीत अमर कर दो, प्रेम गीत फिल्म से। ये गीत अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज में, इंदी वर्नी से लिखा था।

आपकी कसम इस फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजों में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा था, आर डी बर्मन की तर्ज थी।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई गांवों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: विविध भारती से आप सुन रहे थे प्रोग्राम यादों की महफिल।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया।
0: 1 बजा है, अब आप हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर स्थित सांचू सीमा चौकी पहुंचे। उन्होंने सुरक्षा बलों के साथ संवाद कर उनका मनोबल बढ़ाया। श्री शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 को भी सीमावर्ती क्षेत्रों को समर्पित किया। इसके जरिए भारत पाकिस्तान सीमा से सटे राजस्थान के गांवों में शिक्षा, सड़क, बिजली और रोजगार सहित बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम के तहत बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर जिले के गांवों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन

राम मेघवाल भी उनके साथ रहे। इसके अलावा केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, बीएसएफ डीजी प्रवीण कुमार, आईबी चीफ तपन डेका और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास सहित सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। गृहमंत्री बीकानेर में बीएसएफ मुख्यालय पर सीमा सुरक्षा पर मंथन करेंगे। इस समन्वय बैठक में गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के उच्चाधिकारी तथा बीएसएफ के अधिकारी शामिल होंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हुई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने इसकी अध्यक्षता की। बैठक में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। डॉ जयशंकर ने जोर दिया कि हिंद प्रशांत क्षेत्र वैश्विक विकास और स्थिरता का प्रेरक बना रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि समुद्र से संबंधित मामलों में सहयोग करने वाले लोकतांत्रिक देशों और बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में क्वाड देशों की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र से संबंधित मुद्दे के समाधान के लिए कूटनीतिक विश्वास बढ़ाने, समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने और आर्थिक अवसरों तथा विकल्पों को प्रोत्साहित करने के साथ ही आपसी सहयोग को बढ़ावा देने की जरूरत है। विदेश मंत्रियों की ये बैठक वैश्विक अनिश्चितता और पश्चिम एशिया संकट के समय में हुई है। भारत ने क्वाड समूह के मौजूदा अध्यक्ष के रूप में ये बैठक आयोजित की। आज दोपहर बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से देश में बीमारियों की रोकथाम से जुड़ी सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन देन है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। श्री जाधव ने बताया कि देश भर में प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान के 70 से अधिक कॉलेज और 5000 से ज्यादा योग प्रशिक्षण संस्थान चलाए जा रहे हैं। इस बीच 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के काउंटडाउन कार्यक्रम के तहत प्रदेश में अनेक स्थानों पर योगाभ्यास कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। दाऊदी बोहरा समाज की ओर से आज ईद उल अजहा का पर्व मनाया जा रहा है। इस मौके पर अजमेर में शिवाजी पार्क स्थित बोहरा मस्जिद में बकरीद की नमाज अदा की गई। इसके बाद सबने देश में अमन चैन और खुशहाली की दुआ मांगी और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। गौरतलब है कि मुख्य रूप से बकरीद का पर्व 28 मई को मनाया जाएगा। राज्य में झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। दिन में सूरज की तेज तपिश लोगों को बेहाल कर रही है, वहीं रात में भी गर्म हवाओं का असर देखा जा रहा है। कोटा में अधिकतम तापमान कल 45 डिग्री सेल्सियस के पार मापा गया। वहीं चित्तौड़गढ़, चूरू, करौली, दौसा और झुंझुनू में रात भर गर्म हवाओं का प्रकोप रहा। हनुमानगढ़ और अलवर में रात का तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। राजधानी जयपुर में दिन का पारा 43.6 डिग्री तक पहुंच गया। दोपहर में सड़कों पर पानी के छिड़काव से लोगों को राहत देने की कोशिश की गई। लू और उमस के कारण पर्यटन स्थल भी सूने नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने कल शाम से मौसम में हल्का बदलाव होने का पूर्वानुमान बताया है। उत्तर पूर्वी जिलों में 28 मई से आंधी और हल्की बारिश की संभावना है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर वन मुकाबले में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे आईपीएल 2026 के फाइनल में पहुंचेगी, वहीं हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। वहीं कल मोहाली में एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी और विजेता टीम क्वालिफायर टू में पहुंचेगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

मुझको ये जाने वफा तुम याद आए, बिल्कुल आशा भोसले की आवाज में दो बदन फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। शकील बदायनों ने इसे लिखा और रवि का संगीत था, और साथ ही आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच गए हैं। जी हाँ, आप सब ने एक दूसरे का अभिवादन किया, जो कि सबसे अच्छी बात लगती है मुझे। और उसके अलावा एक श्रोता हमें लिखते हैं, इश्किया विरह वेदना का चित्रण करती खूबसूरत इबारत, जहाँ प्रेम अग्नि से व्यथित झुलसती दिलों की दास्तां बयां है। ठंडी हवा के झोंकों से कभी प्रेमी युगल दिल को सहला देते हैं, तो कभी तन्हाई में महबूब को याद कर स्वयं को दिलासा देते हैं। इबादती इश्क में डूबी खूबसूरत इबारत के संगीत में सफर का इंतजार है। बिल्कुल, इंतजार खत्म हुआ और सफर शुरू हुआ। एक और श्रोता है जिनका कहना है कि प्रियतम की दूरी और उस पर ठंडी हवा के झोंके जब तन को छूते हैं तो मानो उसकी उंगलियों से छुआ हो, मानो उनकी उंगलियों ने छुआ हो। कम कपाती सिर्फ सर्द रातों की नहीं होती, बल्कि प्रियतम की यादों की भी होती है। हवा का हर झोंका बीते लम्हों की खुशबू साथ लाता है और भर देता है आंखों को नमकीन पानी से। जी हाँ, ये मैसेज बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने उसका सार जरूर आप तक पहुंचा दिया है। और एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज एक बार फिर गद्यांश ने दिल के एहसासों को बहुत खूबसूरती से पेश किया है। वैसे भी अपने प्रियजन से जब दूरियों की वजह से जो विरह की टीस दिल में उभरती है, तो ठंडी हवा का झोंका मन में उभरती यादों, सपनों, दर्द और मोहब्बत भरी मीठी बातों की बयार लेकर आता है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि प्रेम में सपनों का आना और वादा करना, आंतरिक प्रेम की गहराई, अत्यंत प्रतीक्षा और विश्वास का सुंदर और भावुक चित्रण है, जो स्वप्न मिलन के रूप में देखा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, और साथ ही आपके मैसेजेस मुझ तक बिल्कुल पहुंच रहे हैं। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि हम सिर्फ चीजों को, बातों को लिखते नहीं हैं, उन पर अमल भी करते हैं। अच्छा सुनने और अच्छा लिखने से हम थोड़े और अच्छे बन जाएंगे, इतना तो हो ही जाएगा। कुछ बुराइयां तो हमारी दूर हो ही जाएंगी। विविध भारती के साथ रहकर रोज। जी हाँ, बिल्कुल, हमें हर रोज अपने आप को और बेहतर बनाना चाहिए, यही तो जिंदगी है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज दिल की गहराई से निकली इस इबारत ने जज्बातों को एक नया आसमां दे दिया है। जब अपने प्रियजन से दूरियां बढ़ती है तो दिल में विरह की एक मीठी टीस उभरती है। ऐसे में जब खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आता है तो सिर्फ हवा नहीं होती, वो सिर्फ आती है पुरानी यादों का कारवां लेकर, अधूरे सपने और थोड़ा सा दर्द और मोहब्बत भरी मीठी बातों की बयार लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन खूबसूरत संदेशों के लिए। फिलहाल इस गीत के साथ ही मैं आपको एक काम भी दे रही हूँ। जी हाँ, आपके लिए एक पहेली है, पहेली नहीं, आप अपने दिल की बात कह सकते हैं मुझसे, और वो ये है कि जब हम ये गीत सुन रहे थे, जब चली ठंडी हवा, तो तन को ठंडक देने के लिए इस झुलसाती गर्मी में बहुत से उपाय हैं, फ्रिज है, एसी है, पंखा है, बहुत कुछ है, लेकिन दिल की ठंडक और दिमाग को ठंडा रखने के लिए आप क्या करते हैं, बताइए मुझे। जी हाँ, दिल की ठंडक और दिमाग की ठंडक के लिए आप क्या करते हैं इस गर्मी में, आप मुझे बताएं। तब तक हम चलते हैं।

रेडियो विविध भारती सुनते हैं, विविध भारती के सारे कार्यक्रम सुनते हैं सुबह से रात तक, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि प्यार में दिल एक आजाद पंछी की तरह हो जाता है जो सारे बंधनों को तोड़कर सिर्फ अपने हमसफर की तरफ उड़ना चाहता है। इस एहसास की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि जिंदगी के हर बड़े से बड़े दर्द को आधा कर देता है। हमारे श्रोता कहते हैं कि उनकी लिस्ट हमारी लिस्ट से मैच खा गई है, मैच कर गई है, और दो गीत जो है उनके मुताबिक बज गए हैं बिल्कुल। और बाकी लोग भी आपकी लिस्ट में जो भी गीत है मुझे लिख भेज सकते हैं, हो सकता है हम उसे शामिल कर लें। हमारे श्रोता लिखते हैं कि दिल और दिमाग को ठंडा रखने के लिए गाने सुनते हैं, अच्छे विचार पढ़ते हैं और कुछ नया चीज देखते हैं जो हमें दिल को सुकून देता हो और मन को शांति देता हो, और टीवी भी देख लेते हैं, गाने भी सुन लेते हैं, साथ ही साथ रेडियो सुनते हुए रसोई में काम भी हो जाता है। जी हाँ, ये तो बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। और साथ ही विविध भारती के कार्यक्रम और सम्मानीय उद्घोषकों की मधुर आवाज दिलो दिमाग में ठंडक दे देती है। थैंक यू सो मच आपके खूबसूरत मैसेजेस के लिए। चलिए इसके साथ ही बढ़ते हमारे अगले गीत की तरफ। लेकिन ये जो गीत अभी आपने सुना, सागर जैसी आंखों वाली, इसके बारे में क्या कहा जाए? तो बहुत से गीत है जिन पर जिनमें आंखों की प्रशंसा की गई है, तो ये सागर जैसी आंखों वाली का मतलब क्या है? इसके अलग अलग मायने हो सकते हैं। आप मुझे लिख भेजें, पढ़ते हैं कि आप कितनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं अभी मैसेजेस में। सागर जैसी आंखों वाली का मतलब, या इसको और किस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, मुझे बताइए। फिलहाल लिस्ट का ये तीसरा गीत।

सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या? और बहुत से लोगों ने इसके डिटेल्स भेज दिए हैं। नहीं, इतना आसान नहीं होने वाला है, हम इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे आज। बिल्कुल, आप हैं आज मेरे यानी अनुराधा के संग आज इस सुरीला सफर में, और आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच गए हैं। जो मैंने पूछा था कि दिमाग को और दिल को ठंडा रखने के लिए आप क्या करते हैं, दिल और दिमाग को ठंडा करने के लिए

बिल्कुल सही कहा, नज़ारे हम क्या देखें और हम आपके मैसेजेस देख रहे हैं बस, उसके अलावा हमें ठंडक किसी से नहीं मिलती। एकदम सच कहेंगे, एक श्रोता लिखते हैं, दिल को ठंडक देने के लिए हम तो बस छत पर जाकर पक्षियों के लिए पानी रख देते हैं और जब वो एक एक करके पानी पीते हैं तो लगता है मानो इस गर्मी से हमें ठंडक मिल गई हो, और रात में इतने शीतल चंद्रमा को देखकर मानो दिल भीग जाता है क्योंकि उसकी चांदनी में बड़ी ठंडक होती है। और आपने कहा है कि प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब श्रोताओं का जिन्होंने आज मेरा स्वागत किया इस प्रोग्राम में। तो मैं सबको एक एक मैसेज तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन सबको, सभी सुनने वालों को बहुत बहुत प्यार भरा शुक्रिया। हमारे दूसरे श्रोता लिखते हैं कि दिल का ये छोटा सा एहसास ही तो है जो हमें इंसान बनाए रखता है, कभी कभी एक ठंडी हवा के झोंकी की तरह आता है और मन के सारे कोलाहल को शांत कर देता है। ये किसी पुराने गाने को सुनकर अचानक बचपन की गलियों में लौट जाना चाहता है, या किसी अजनबी के लिए मन में उपजी सहानुभूति का एहसास। हमारे श्रोता लिखते हैं, दिल और दिमाग तो अच्छे गाने सुनकर ठंडे हो जाते हैं, बाकी राजस्थान में इतनी गर्मी है कि एसी की हवा भी ठंडक नहीं देती है। बिल्कुल बिल्कुल, गर्मी का हाल हर जगह इस वक्त बहुत एक्सट्रीम पर है। दिल को ठंडा रखने के लिए अच्छे गाने सुनती हूँ और किस्से कहानियाँ पढ़ती हूँ, और गर्मियों के दिन काफ़ी लंबे हो जाते हैं, ऐसे में गानों और किताबों का संयोजन दिन को खुशनुमा बनाते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि छाछ, शिकंजी, पुदीना सौंफ की शरबत, खीरा ककड़ी, तरबूज, खरबूज, संतरा, ठंडे फल और पेय पदार्थ शरीर और मन को ताजगी और सुकून से भर देते हैं, ताजगी और सुकून से भर देते हैं बिल्कुल। और मधुर संगीत तो है ही, उस पर सोने पर सुहागा। दिल की ठंडक और दिमाग की ठंडक के लिए हर मौसम अजीज अदरक इलायची वाली चाय इन्हें चाहिए, हमारे एक श्रोता लिखते हैं। और साथ ही अदरक इलायची की चाय कई लोगों को लगता है कि गर्मी करती है, पर जिन्हें चाय का प्रेम है, चाय प्रेम में जो पड़े हैं उनके लिए वो ही ठंडक देती है ना। हमारे श्रोता लिखते हैं कि फिलीपीन में अब गर्मी ने बहुत जोर पकड़ा है, काम निपटाकर दोपहर को मुझे नींबू शिकंजी पीना बहुत राहत देता है और नमकीन लस्सी भी मैं जरूर पीता हूँ। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि दिल और दिमाग को शांत व ठंडा रखने के लिए नियमित मेडिटेशन यानी कि ध्यान रखना, ध्यान करना बहुत जरूरी है। गहरी सांस लेने से व्यायाम, पर्याप्त पानी पीना और भरपूर नींद लेना, ये सब प्रभावी तरीके हैं। तनाव, गुस्सा और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए और बस मेंटल कामनेस के लिए कुछ करना चाहिए। साथ ही काफी लंबा मैसेजेस और काफी

सारे इन्होंने हमें तरीके बताए हैं अपने आप को ठंडा रखने के लिए, मेंटली इमोशनली, तो ज़रूर ठंडा रखते हैं और एक और ठंडक यहाँ आप तक पहुँचाते हैं इस गीत के द्वारा। लेकिन हाँ, अगले गीत तक जाने से पहले, अभी जो गीत आपने सुना कभी कभी फिल्म का, जिस जोड़ी पर वो फिल्म आया गया था उस गीत में जो जोड़ी थी उसमें जो एक्ट्रेस है, जो हीरोइन है, जो मेन लीड है, उसका फिल्म में क्या नाम है, उसका कैरेक्टर नेम क्या है, आप मुझे बताएंगे? चलिए तब तक हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

सोनू निगम की आवाज में ये गीत संघर्ष फिल्म से आप सुन रहे हैं और जतिन ललित ने इसे संगीत दिया, समीर ने इसे लिखा। सुरीला सफर में आज मैं हूं आपके साथ अनुराधा और आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच गए हैं। हमारा एक बहुत ही खास मैसेज मुझे लगता है एक आया है कि इस कार्यक्रम से हम बुजुर्ग गाहे बघाए जुड़े हैं। ये मैं नहीं कहता कि ये कार्यक्रम सिर्फ बुजुर्गों के लिए ही है, पर चूंकि गाने पुरानी फिल्मों के बजते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इस उम्र में दिल की शांति और दिमाग की ठंडक ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए कार्यक्रम से जुड़ते हैं। अब हमारे दिन दुपट्टा और दिल की आशनाई से बहुत दूर चले गए हैं, इसीलिए हमारे लिए कार्यक्रम में दिल से जुड़ना मुमकिन नहीं होता है। मैं इस बात से इत्तफाक नहीं रखती हूँ क्योंकि विविध भारती में हर वर्ग के लिए, हर उम्र वर्ग के लिए अलग अलग प्रोग्राम है, अलग अलग गीत हैं, अलग अलग थीम्स हैं जिस पर प्रोग्राम्स चलते हैं। तो आप जुड़े रहें विविध भारती के संग। एक और श्रोता लिखते हैं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, कवि का जो मन करे वो अपनी कल्पना में वैसे ही उपमा दे सकता है। कभी आंखों की तुलना कभी झील से कभी सागर से, जहां मन डूब सा जाता है और ठहर सा जाता है, बस इसीलिए कवि आंखों को इस तरह से सोच लेता है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि गांव में मिट्टी के घरों में खपरेल छत के नीचे बहुत ठंडक मिलती है, प्रतिदिन गोबर से लीप देने से घर शीतल रहता है, बचपन ऐसे घरों में ही गुजरा है। हमारे श्रोता कहते हैं कि कवि हृदय किसी भी शब्द से कुछ भी गढ़ लेते हैं। सागर जैसी आंखें मतलब सुंदर गहरी आंखें, जिसका फिगर ऑफ स्पीच है यानी कि उपमा। जब कहा आंखें छोटी छोटी और सागर अथाह सा होता है, फिर भी कितनी खूबसूरती से दोनों की तुलना रवि कवि माफ कीजिए कवि कर लेते हैं। सागर जैसी आंखों वाली का हम बहुत सारा मतलब निकाल सकते हैं, जैसे आंखें इतनी गहरी हो जिसका सागर जैसा ही ओर हो ना छोर हो और उसमें गोते लगाने को दिल करता हो। सागर जैसी आंखों पर बहुत से मैसेजेस मुझ तक पहुंचे हैं। सागर जैसी आंखों पर बहुत रिसर्च कर डाली है आप सबने, एंड बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस मैसेज के लिए, सागर जैसी आंखों के लिए। और मैं ये कहूंगी कि बहुत क्रिएटिविटी झलक रही है हर एक संदेश में, और साथ ही पता चल रहा है कि हमारे जो श्रोता हैं वो कवि से कम नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है, इस चीज़ को बताया है, वो बहुत खूबसूरत है। और साथ ही साथ हमने ये पूछा था कि कभी कभी फिल्म में जो इस गीत में जो गीत हमने आपको सुनवाया उसमें जो नजर आती है जोड़ी, उसमें हीरोइन का नाम, एक्ट्रेस का नाम क्या है, तो बहुत से श्रोताओं ने सही जवाब दिया है, पिंकी, पिंकी कपूर, जी हाँ, और साथ ही विक्की। आपके मैसेजेस हम तक पहुंचाते रहिए और चलिए हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

कि खो जाएं हम, तो इसी बात पर मुझे याद आ रहा है कि हमारी जो ये लिस्ट है कितनी मेल खाती है, ये भी तो मुझे बताइए। कौन कौन से शब्द आप ढूंढ चुके हैं और उससे जुड़े गीत जो अब तक आपसे मेल खा चुके हैं, आपकी लिस्ट से मेल खा चुके हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। साथ ही ये भी बताना चाहूंगी कि जो हमारे श्रोता हैं हमारे साथ, उनकी लिस्ट गीतों की मैच खाए ना खाए, लेकिन हमारी जो सोचने की जो एक तरीके की सोच है वो ज़रूर मेल खाती है, क्योंकि जब मैं गाना यहाँ पे प्ले करती हूँ उससे पहले उसके जवाब आ चुके होते हैं, यानी कि मेरे सवाल पूछने से पहले ही आप उसका जवाब लिख देते हैं। जैसे कि ये गीत जब अभी चल रहा था तो आपने कहा कि

दूसरा आदमी फिल्म का नाम है और ऋषि कपूर और राखी पर फिल्म आया गया है, लेकिन मैंने ये नहीं पूछा। सवाल को थोड़ा सा बदल देते हैं, क्या कहें, थोड़ी सी पहेली को थोड़ा और ट्रिकी बनाते हैं। तो एक काम करते हैं कि ये दूसरा आदमी फिल्म से जो गीत अभी आपने सुना, इसमें राखी और ऋषि कपूर तो थे ही, लेकिन इसके अलावा इस फिल्म में 2 से 3 अभिनेता अभिनेत्री भी थे, तो आप उनके नाम लिख भेजें कि इस फिल्म में ऋषि कपूर और राखी के अलावा और कौन कौन है, ये जरूर मुझे भेजिए। अभी हम चलते हैं आपके संदेशों पर। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उन्हें याद आ रहा है कि शादी के 15 दिनों बाद ही, जब उनकी शादी हुई थी उसके 15 दिनों के बाद ही उन्हें ट्रेनिंग पर जाना पड़ा था और करीबन 2000 किलोमीटर दूर, और अपनी धर्मपत्नी से बिछड़ना पड़ा था। उस वक्त उन्हें ये इबारत की ये जो सब बातें आज हैं वो कहीं ना कहीं उसे रिलेट कर पा रहे हैं, उससे जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, वो बिछड़ना याद आ रहा है। जी हाँ, प्यार में बिछड़ना और उसके बाद फिर से मिलना, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। साथ ही साथ सागर जैसी आँखों से आशय बातों को बिना बोले सामने वाले की आँखों में देखकर उसकी भावनाओं को समझना, ये भी कहा जाता है सागर जैसी आँखों वाली। साथ ही हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में सपनों की बातें भी होंगी तो कुछ बातें हमारी भी। सपने देखना इंसान के मन का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है। ये वो दुनिया है जहाँ हम अपनी इच्छाओं को बिना किसी रोक टोक के जीते हैं। सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो नींद नहीं आने देते। सपने हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं और हिम्मत देते हैं और उम्मीद जगाते हैं। जी हाँ, बहुत खूबसूरत संदेश लिखा है आपने। तो चलिए हम आते हैं अपने सवाल पर कि जो गीत आपने सुना दूसरा आदमी से, उसमें और कौन से अभिनेता या अभिनेत्री है, मुझे बताएं। चलिए चलते हमारे अगले गीत की तरफ।

मोहब्बत बड़े काम की चीज है। त्रिशूल फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में खयाम का संगीत था। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा। और इस गीत के बारे में हमारे श्रोता लिखते हैं कि आप इस गीत से भी कुछ घुमा फिरा कर सवाल पूछ लेंगे तो हम एकदम तैयार हैं, पर हो सकता है कि आपने ऐसा लिखा तो अब हम कुछ और घुमा फिरा कर पूछते हैं, है ना। फिलहाल जो सवाल हमने पूछा था, दूसरा आदमी, उसमें कौन कौन है? कई लोगों ने हेमा मालिनी लिखा है लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सही है, है ना। ऋषि कपूर, नीतू सिंह, राखी, शशि कपूर, परीक्षित साहनी और देवेंद्र वर्मा ये इस फिल्म में दिखाए गए मेन लीड्स में। और साथ ही साथ प्रमिला चोपड़ा ने भी एक गीत गाया है, ऐसा हमारे एक श्रोता ने लिखा है। और हमारे श्रोताओं की प्रशंसा करना चाहूंगी मैं कि वो सिर्फ गाने पर ध्यान नहीं दे रहे, सवालों पर ध्यान नहीं दे रहे, साथ ही साथ जो फिलर बज रहा है वो क्या है उसकी डिटेल्स भी मुझे भेज रहे हैं। साथ ही साथ गीत के शुरुआत में जो होता है इंट्रो म्यूजिक जिसे कहा जाता है, उसके बारे में भी मुझे लिखकर भेज रहे हैं। और ये दर्शाता है कि आप संगीत से कितने करीब हैं। और विविध भारती को ऐसे श्रोता मिले हैं, बहुत अच्छा लगता है कि आप संगीत की जानकारियां साझा कर रहे हैं। साथ ही साथ एक श्रोता लिखते हैं, क्या मौसम है, चल कहीं दूर निकल जाएं। ऐसा मेरे साथ कई बार होता है। घर के पास एक जंगल है अक्सर, और उस जंगल की जानिब निकल जाती हूँ मैं अक्सर। वहाँ चीड़ के ऊंचे दरख्त हैं, हवा के झोंके हैं, वो जब झूमते हैं तो उनकी नुकीली पत्तियां साए साए करती है, वो आवाज सुकून देती है मन को। साथ ही हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मौसम तो ऐसा है कि घर से बाहर जाने को मन ही नहीं करता और कवि न जाने क्या क्या कह रहा है। विविध भारती के सारे कार्यक्रम हर वर्ग तथा हर उम्र के लोगों के लिए बने हैं। खास करके पोस्ट कोरोना पीरियड के बाद विविध भारती की पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ गई है और श्रोता सीधे तौर पर जुड़ गए हैं। बिल्कुल सही बात है। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि सपना देखना बहुत अच्छी बात है लेकिन उसके कारण अपना भविष्य दांव पर लगाना वो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता। और साथ ही साथ हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि उनके घर पर कुछ काम चल रहा है, घर का कुछ काम चल रहा है यानी कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है और गर्मी अपनी चरम सीमा पर है और थोड़ी थोड़ी देर में लगता है कि आराम कर लें। साथ ही साथ आम का पना, छाछ, कभी नींबू पुदीने का शरबत, बस ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करते रहें। और साथ ही साथ ये जो गीत है इनके साथ हम बने रहें। बिल्कुल, चलिए आपको ले चलते हैं अगले गीत की तरफ। और अगला गीत जो अभी आप सुनेंगे, क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन सी फिल्म का गीत है? जी हाँ,

है, यही फिल्म का नाम है। और साथ ही साथ ये भी लिखा है कि नवीन निश्चल पर ये फिल्म आया गया, गीत है साथ ही अर्चना है इस फिल्म में, और बिल्कुल सही। साथ ही हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आप बहुत ही आसान सवाल आपने ये पूछा, विविध भारती के श्रोताओं के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा मुश्किल सवाल नहीं है, लेकिन आपसे वादा करते हैं कि अगले प्रोग्राम में और कठिन से कठिन सवाल लेकर आएंगे। लेकिन ये भी है कि जब आपके जवाब आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और आपसे एक जुड़ाव महसूस होता है। बहुत ज़्यादा कठिन सवाल लेकर आएंगे तो हो सकता है आपके मैसेजेस कम आए मुझ तक, है ना। साथ ही साथ हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आज आपके द्वारा ये पहला प्रोग्राम प्रस्तुत किया जा रहा है जिसका नाम है सुरीला सफ़र, और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत रोचक प्रेजेंटेशन की आपने, प्रस्तुतिकरण किया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल मुलाकात होती रहेगी इस शो में आपके साथ, और जितने भी श्रोता हैं जिन्होंने भी हमारे बारे में लिखा है, आज इस प्रोग्राम के बारे में लिखा है, उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। एक श्रोता हमारी लिखती है कि हवाओं के नर्म झोंके हर पल तुम्हारा ही एहसास दिलाते हैं, दूरी में सुख भी और विरह भी, जैसे पहाड़ का रिश्ता बादलों से है वैसा ही मेरा रिश्ता तुमसे है। बहुत ही खूबसूरत ये मैसेज है, ये संदेश है। तो चलिए अब इस प्रोग्राम की का जो आखिरी गीत है आप तक पहुंचाते हैं।

बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। और ये गीत आप सुन रहे थे अमानत फिल्म से, साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए।

नमस्कार, आज की त्रिवेणी में चलने की बातें। साथियों, चलती हुई हवा बंद हो जाए तो बुरा हाल हो जाता है। चलती हुई सड़क पर अगर कोई कार खराब होकर थम जाए तो पूरा ट्रैफिक अस्त व्यस्त हो जाता है। यहाँ तक कि कई बार दुर्घटना भी हो जाती है। और अगर चलती हुई घड़ी रुक जाए तो समय का पता ही नहीं लगता। समय के साथ चलना है तो घड़ी को भी चलते रहना चाहिए, चाहे जीवन की घड़ी हो या शरीर की घड़ी, दोनों का चलते रहना ही अच्छा है। एक लंबी कतार भी धीरे धीरे छोटी हो जाती है, क्योंकि उस

0: में खड़े लोग लगातार आगे चलते रहते हैं। चलना हमें वर्तमान से जोड़ता है और आने वाले कल की ओर ले जाता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि चलती का नाम ही गाड़ी होता है। चलना जीवन की निशानी है और सक्रियता की पहचान है।
1: बाजू।

चलना एक ऐसी क्रिया है जो शरीर के साथ ही जीवन के लिए भी जरूरी है। चलते रहने से जहाँ शरीर के कलपुर्जे रवा होते हैं, वहीं जीवन में भी गति बनी रहती है। इसी गति के कारण हमें याद रहता है कि हम अचल नहीं हैं। अगर कभी गति की लय टूट जाए, चलना छूट जाए, रास्ते बंद हो, तो जो थम जाता है वो पीछे ही रह जाता है। मगर जो कदम बढ़ाकर चलने की कोशिश करता है तो वो फिर रवानगी में आ जाता है। जीवन आबाद चलता रहे इसके लिए जरूरी है कि अगर आसपास कोई थमा हुआ या अचल दिखे, जो मन से टूट गया हो, तो उसे आश्वासन का हाथ देकर एक नई ऊर्जा दी जाए, उसे भी साथ चलने को प्रेरित किया जाए। रुके हुए को चलने का उत्साह देने से ही तो सबकी जिंदगी चलती रहती है।

चलने का मतलब सिर्फ कदम बढ़ाना नहीं होता। कई बार मन ही मन हम कहां कहां पहुंच जाते हैं। जिस तरह नदी की धारा स्वच्छ और निर्मल रहती है क्योंकि वो निरंतर बहती है, रुके हुए पानी में तो काई जम जाती है और वो किसी काम का नहीं रहता। उसी तरह चलना भी एक ऐसी रिसाइकलिंग प्रक्रिया है, मन पर काई नहीं जमने देती बल्कि मन को निर्मल कर विचारों को बड़ी सुंदरता से सवार देती है। चलना एक किस्म की गतिशीलता है जो आचार व्यवहार और विचारों को लगातार खंगालती रहती है। तभी तो कई बार लोग साथ ना मिलने पर भी अकेले ही चल पड़ते हैं और मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। यही तो जीवंतता है।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: ये है विविध भारती। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू में सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड समूह ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीर पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क

0: भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा प्रौद्योगिकी प्रबंधन नीति अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
1: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
0: श्री जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है।
1: As democratic nations,
2: लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया। हमारी आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। आतंकवादी हमलों से प्रभावित राष्ट्रों को आत्मरक्षा का अधिकार है। स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई आयाम और पहलू हैं। बैठक में इनमें से कई क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में खोज को प्रोत्साहित किया गया। आने वाले दिनों में चाहे वह आर्थिक गतिविधि हो, ऊर्जा व्यापार हो या समुद्री व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा पर क्वाड पहल संकट के दौरान देश क्षेत्र में ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखने में मदद करेगी। श्री रूबियो ने बताया कि अमरीका इस साल का और विस्तार करने के उद्देश्य से इस वर्ष के अंत में ईंधन सुरक्षा मंच के लिए क्वाड देशों की मेजबानी करेगा। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश मजबूत मूल्यों को साझा करते हैं और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं।
3: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
0: जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज़ जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर बल दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि क्वाड ने आज सुरक्षा पहल और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई प्रयासों को आगे बढ़ाया है। भारत और अमेरिका ने आज महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर किए। ये ऐतिहासिक समझौता विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुआ। आज दोपहर बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृहमंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरुआत की। श्री शाह बीकानेर स्थित बीएसएफ मुख्यालय में सीमा सुरक्षा बल पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोगों के घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया है कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे बस पलट गई। एक अन्य घटना बाराबंकी जिले के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई। ओडिशा के कालाहांडी जिले में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 6 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना मदनपुर रामपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गौड़ काला

0: खुंटा गांव में हुई। पुलिस के अनुसार मजदूर सेप्टिक टैंक से लकड़ी के ढांचे को हटा रहे थे, तभी जहरीली गैसों या ऑक्सीजन की कमी के कारण उनका दम घुट गया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 कैबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सरकार देश में एक मजबूत, भरोसेमंद और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल कर रही है। सेमीकंडक्टर इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण और पैकेजिंग की 12 परियोजनाओं के साथ साथ 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी जा चुकी है। दूरसंचार विभाग ने नागरिकों के लिए इंटरनेट का उपयोग आसान बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी के अंतर्गत सुधारों की पहल की है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि सभी पीएम वाणी हितधारकों को संशोधित दिशा निर्देशों को लागू करने और इस वर्ष जुलाई तक पूरे इकोसिस्टम में नई उपयोगकर्ता अनुकूल सुविधाओं को चालू करने का निर्देश दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सभी को, विशेषकर उभरते हुए राजनेताओं को, इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। श्री देवेगौड़ा ने कहा कि पुस्तक एक सामान्य राजनीतिक जीवन नहीं बल्कि ये दर्शाती है कि श्री मोदी और श्री शिवराज ने जनता के कल्याण के लिए कैसे मिलकर काम किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें बधाई दी।
1: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार के सुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित पिछले 12 वर्ष के कार्यकाल को अभूतपूर्व बताया। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और ओडिशा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। खाद्य ग्रामोद्योग आयोग ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त वर्ष 2024-25 में कारोबार 1,87,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खाद्य ग्रामोद्योग उद्योग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और लाखों ग्रामीण कारीगरों की मेहनत के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 251 अंक गिरकर 76,238 जबकि निफ्टी 50 अंक की गिरावट के साथ 23,982 पर था। सऊदी अरब में वार्षिक हज यात्रा का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन आज अराफात का दिन है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान जुलहिजा की 9 तारीख को मक्का के पास अराफात के मैदान में इकट्ठा हुए हैं ताकि वे हज की प्रमुख रस्म अदा कर सकें। जायरीन निमरा मस्जिद में खुतबाए हज या हज का उपदेश सुनेंगे और शाम को मुजदलिफा के लिए रवाना होने से पहले दोपहर और शाम की

0: नमाज एक साथ अदा करेंगे। इस रस्म को हज पूरा करने के लिए अनिवार्य माना जाता है। मुजदलिफा से जायरीन कल सुबह कुर्बानी और शैतान को पत्थर मारने के लिए प्रतीकात्मक रस्म के लिए मिना लौटेंगे। इस साल के हज में 1,75,000 से भी ज्यादा भारतीय जायरीन हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में नए हवाई हमले किए हैं। इन हमलों को वाशिंगटन ने अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर वन में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मॉनसून की शुरुआत हो गई है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कल तक पहुंचने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने केरलम के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और अल्लापुझा जिलों में आज अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। कई दक्षिणी क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी है। कोच्चि, मुन्नार, कुमारकोम, निलाक्कल, कुमिली, सबरीमला, वर्कला और पोनमुडी सहित कई स्थानों पर आज सुबह 10 बजे से लगभग 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लक्षद्वीप के अमिनी, अगाती और कवरत्ती में भी 5 से 15 मिलीमीटर के बीच बारिश हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि मौसम की स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भी भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आज के सदाबहार नगमे की पहली पेशकश अभी आप सुन रहे थे उड़न खटोला फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में शकील बदायूनी ने से लिखा नौशाद का संगीत।

0: आशा भोसले और मोहम्मद रफी को आप सुन रहे थे इस गीत में, तू नहीं और सही फिल्म का नाम था। असद भोपाली ने इसे लिखा और रवि का संगीत।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की

0: प्यार की चुवन अपने पन का गांव छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में ये गीत श्री 420 से आप अभी सुन रहे थे। शैलेंद्र ने इसे लिखा और शंकर जयकिशन की तर्ज थी। अगला गीत सदाबहार नगमे में लीजिए।

0: जब जब फूल खिले, इस फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी की आवाज में साथ ही नंदा ने साथ दिया था, आनंद बख्शी ने इसे लिखा और कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई बाहों में खिली कलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत,
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

0: लीजिए सुनिए आज के इस प्रोग्राम सदाबहार नगमे का आखिरी नगमा। मधुमती फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और सखियों की आवाजें, शैलेंद्र ने इसे लिखा, सलिल चौधरी का संगीत।
1: Peace.

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाले सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
2: मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: भाई मंजरी, क्या बात है, आज बहुत ही खुश मिजाज लग रही हो।
2: जब आप मिलती है ना तो खुशी वैसे ही अपने आप बाहर निकल के आ जाती है, और जब सखी सहेली का मंच होता है और फिर लगता है कि हमें कितने सारे लोग सुन रहे होंगे कि आज ये दोनों फिर आ गई है, फिर क्या क्या बोलेंगी।
1: ये तो बात है ना। देखिए, दोपहर की जो गर्मी है ना, इसमें अगर थोड़ी हल्की फुल्की चुहलबाजी हो जाए, बोछार हो जाए हंसी की, तो हमारी जो सखियां हैं, जो सखा है ना, वो भी हल्की ठंडक महसूस करने
2: महसूस करते हैं, और जो थोड़ा सा झपकी लेते हैं हाँ। वो भी थोड़े से एक्टिव हो जाते हैं हाँ। कि नहीं भाई अभी
1: अरे
2: तो
1: क्या बात करने वाली है आज
2: क्या बोलने वाली है
1: तो बताओ आज क्या बात करने वाली है।
2: देखिए, जब अपने छुट्टियों का समय शुरू हो गया है तो जब परिवार के कुछ लोग कहीं बाहर जाते हैं और जाते जाते वो बता जाते हैं, देखो तुम घर पर हो और मेरे आने से पहले ये काम ठीक करा लेना, कुछ बिजली का खराब होगा तो वो करा लेना, कुछ चीजें लानी खरीद के, राशन पानी वो भर लेना, नहीं तो किचन के डिब्बे आप ठीक करा लेना, नहीं तो कूलर ठीक करा लेना, इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी चीजें वो बता के जाते हैं। तो क्योंकि हमें तो घर संभालना है तो वो तो बाहर चले गए घूम फिर
1: तो मुझे लग रहा है मंजरी कि तुम्हारे पतिदेव जो है कहीं बाहर गए हैं और तुम्हें सारी बातें कहकर गए हैं कि मंजरी मेरे आने तक ये सारे काम हो जाने चाहिए।
2: मंदाकिनी मैम, देखिये क्या होता है कि ये सारी बातें जो होती ना ये हर घर में होती है
1: जी।
2: कुछ मेरे घर की बात आपने जैसे कह दी तो हम भी सोच सकते हैं कि भाई आपके घर में भी ऐसी चीज़ें
1: होंगी। मेरे घर में तो ये हो ही रहा है। अच्छा। भी हमारे घर के कुछ लोग जो बाहर घूमने गए हैं, हमारे अपने लोग, जब वो लौटेंगे तो उनके आने से पहले कुछ काम ऐसे हैं जो हमें करके रखने हैं।
2: बिल्कुल।
1: हालांकि उन्होंने उस अंदाज में नहीं कहा होगा कि भाई काम हो जाने चाहिए, लेकिन आपके अंदर एक जिम्मेदारी की भावना होती है कि भाई कोई हमारे परिवार के लोग घूमने गए हैं, जब वो वापस आए तो उन्हें ये सुविधा हम दे दें क्योंकि हम घर पर ही हैं।
2: हम घर पर हैं और इसमें बड़ा वो भी रहता है कि आनंद भी आता है, और जब काम के बीच में हम थोड़ा समय निकाल के लिए अपने घर के लिए देते हैं तो लगता है कि अरे आज कर लेंगे, अच्छा अभी तो बहुत दिन है वो उनके आने में, अभी कर लेंगे। जब आखिर के दिन बचते हैं ना
1: तब
2: भागदौड़ मचती है कि भैया अब कर लो, नहीं आएंगे तो फिर ये सुनने को
1: ही अधूरापन मिलेगा, अव्यवस्था मिलेगी।
2: कहने का मतलब खुद से काम करने के लिए हमें आगे बढ़ना ही पड़ता है।
1: बिल्कुल, ये तो है, अगर हम खुद से नहीं बढ़ेंगे तो वो काम नहीं होता है। अब आप खुद आगे बढ़िए और बताइए आज हमारे विषय क्या है बातचीत के।
2: तो देखिए, हम बताते हैं कि आज हम लोग बात करने वाले हैं जो शादी में जनवासे के किस्से हुआ करते थे, वो आप सभी ने ये चीजें महसूस करी होंगी। तो चुलबुले से किस्से हैं, रूठने मनाने के किस्से होते हैं, तो आप साझा कीजिए, याद करिए अपने मेमोरी को और लिखिए। और उद्यमी महिला में हम बात करने वाले हैं राधिका अग्रवाल, ऑनलाइन मार्केट प्लस शार्प क्लूज की सह संस्थापक हैं, इनके बारे में बात करेंगे। और मुहावरों की दुनिया में कान का कच्चा होना, तो इसके बारे में हमारे सभी साथी सखियां सहेलियां सभी लोग लिखकर भेजें।
1: हाँ, लिखे ये कि क्या वो खुद कान के कच्चे हैं, ये भी लिखना जरूरी है। अभी क्या होता है, हमारे श्रोता क्या करेंगे, कान के कच्चे मुहावरे का अर्थ लिखने लग जाएंगे। वो अर्थ हमें नहीं लिखना है, अर्थ तो आप जानते ही हैं।
2: आप बता सकते हैं कि फलाना भी कान का कच्चा है।
1: हाँ, ऐसी जिंदगी में हमारे साथ हुआ कि किसी कोई व्यक्ति कान का कच्चा था और उसने बात को सुनकर हम पे ऐसा आरोप मढ़ दिया। तो ये जो किस्से हैं जिंदगी में, ऐसा बहुत बार होता है हमारे अपने घर में। कुछ लोग हमारे अपने भाई बहन, अपने माता पिता भी हो जाते हैं। कई बार हम कहते हैं अरे भाई माँ, आपको पापा ने और आपने बात मान ली
2: हाँ।
1: तो आप कान की कच्ची हो इसका मतलब।
2: तो इस तरह की छोटी छोटी बातें लिखकर हाँ। भेजिए, जिसमें आपको भी मजा आए, हंसी आए और हमें भी पढ़ के अच्छा लगे। और अच्छे काम की शुरुआत खुद से, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन मंदाकिनी जी, उससे पहले तो हम लोग गीतों से समा बांध देते हैं।
1: बिल्कुल, सुनते हैं ये गीत।

0: हाँ तो मंजरी, अब हम अच्छे काम की शुरुआत कर लेते हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे चीजें आ गई, खत आ गए कहना चाहिए, तेरा खत लेके सदम, तो ये कहना चाहिए हमारे पास हमारे श्रोताओं के बहुत सारे
0: आ गए हैं,
1: खत आ चुके हैं, और इस विषय पर भी आ गए कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से करें। तो क्या है कि मंदाकिनी जी, समाज को बेहतर बनाने की बात हर व्यक्ति करता है, लेकिन हम चाहते हैं कि लोग ईमानदार बने, अपने वातावरण को स्वच्छ रखें, रिश्तों में भी प्रेम उनके बना रहे और हर जगह शांति और सहयोग दिखाई दे। लेकिन अक्सर हम ये भूल जाते हैं ना कि किसी भी अच्छे बदलाव की शुरुआत दूसरों से नहीं बल्कि स्वयं से होती है। अगर हम किसी से अच्छा करवाना चाहते हैं तो हमें खुद अच्छा करने के बारे में पहले सोचना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: यदि हर व्यक्ति अपने व्यवहार, सोच और कर्म को सुधारने का प्रयास करे तो पूरा समाज अपने आप बेहतर बन सकता है। इसलिए कहा जाता है अच्छे काम की शुरुआत खुद से करे, यानी अगर कुछ कोई किसी के अंदर क्वालिटी है, गुण है, वो अच्छा करना चाहता है तो आप उसको एक अवसर जरूर दें, उसको देखें कि वो कितना अच्छा कर सकता है।
0: बिल्कुल, ये तो आपने कही मंजरी बात की, दूसरा आप पर नजर लगाए हुए है कि भाई आपको हम मौका दें, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्वयं में भी बदलाव करना बहुत जरूरी है। अभी क्यों जरूरी है? क्योंकि हम समाज का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और समाज अनेक व्यक्तियों से मिलकर बनता है। यदि हम अच्छे हैं तो परिवार अच्छा होगा, परिवार अच्छा है तो समाज अच्छा होगा और देश अच्छा बनेगा। अक्सर क्या होता है, दूसरों की गलतियां हम गिनाते रहते हैं लेकिन अपनी कमियों पर हम ध्यान नहीं देते, जबकि सच्चाई ये होती है कि सुधार की पहली सीढ़ी क्या है,
1: आत्मसुधार है। और देखिए, हम चाहते हैं ना कि लोग समय का सम्मान करें, तो पहले हमें स्वयं समय का पालन करना चाहिए। और यदि हम चाहते हैं कि बच्चे संस्कारी बने तो हमें अपने व्यवहार का उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। केवल उपदेश देने से बदलाव नहीं आता है बल्कि अपने कर्मों से प्रेरणा देने से बदलाव आता है। छोटी शुरुआत उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है, यानी अच्छे काम के लिए हमेशा बड़े मंच या बहुत धन की आवश्यकता नहीं होती है। छोटी छोटी आदतों से ही समाज में बड़ा परिवर्तन हम ला सकते हैं, जैसे कि सड़क पर कचरा ना फैलाना या हमारे आसपास गली मोहल्लों में हम कचरा ना डालें, जरूरतमंद की सहायता करें, बुजुर्गों का सम्मान करें।

0: लगाएं और पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, और क्या कहते हैं कि जो हमारे पशु पक्षी हैं उनके लिए हम भोजन और पानी की व्यवस्था करें। इस तरह के हम छोटे छोटे काम खुद भी कर सकते हैं।
1: अपने घर में हम पानी और बिजली को बचाएं, कितना पानी का नुकसान करते हैं हम लोग। पानी चलता रहता है नलों से लगातार। आपने देखा होगा छोटे शहर में तो लोग पानी से घर धोते हैं और धोते ही जाते हैं, बाल्टियों भर भर के बाल्टियां बाहर फेंक देते हैं। तो ये पानी का इतना दुरुपयोग हम करते हैं जिसका हमें अंदाजा नहीं है। कि और बिजली चल रही है तो चले, दिन भर कूलर, दिन भर एसी में हम बैठे रहने के आदि हो गए हैं। तो हम यहाँ से शुरुआत

0: उपयोग हम करते हैं जिसका हमें अंदाजा नहीं है कि, और बिजली चल रही है तो चले, दिन भर कूलर दिन भर एसी में हम बैठे रहने के आदि हो गए हैं, तो हम यहाँ से शुरुआत करें ना, कम से कम पेट्रोल बचाएं, हम अपना ईंधन बचाएं, हम छोटी सी थोड़ी सी दूर पर जाते हैं और अपनी स्कूटी स्टार्ट कर लेते हैं, या कार चलाने की हमें आदत है तो हम कार लेकर भी चले जाते हैं, गाड़ी लेकर भी हम चले जाते हैं, लेकिन हम पैदल नहीं चलते हैं। तो ये चीजें जो है खुद में सुधार लाना बहुत जरूरी है, सच बोलना सीखे, ईमानदारी अपनाना सीखे। हम दूसरे से उम्मीद करती है कि वो सच होना चाहिए, सच बोलने वाला होना चाहिए, लेकिन अपने ऊपर जब बात आती है तो हम झूठ का सहारा ले लेते हैं। और ये काम छोटे जरूर लगते हैं मंजरी, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है हमारे जीवन में। जब व्यक्ति अच्छा काम करता है तो दूसरे लोग उससे बिल्कुल प्रेरित होते हैं।
1: बिल्कुल। और हमारे साथी भी लिखते हैं मंदाकिनी जी कि हमारी आदत होती है कि अक्सर हम सबको सलाह देते रहते हैं, दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, लेकिन खुद ऐसा करने से झिझकते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो रास्ता चलते रुक कर किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं। अगर सब ये सोचे कि कोई करे या नहीं, मुझे तो जरूरतमंदों की सहायता करनी ही है, और किसी को कहने से बेहतर मैं खुद वो काम करूं, तो हमें देख कर हो सकता है दूसरे लोगों की सोच में भी बदलाव आए। बिल्कुल सही बात है कि अगर हम किसी के लिए, अपने लिए अच्छा चाहते हैं तो दूसरे के लिए भी आप अच्छा करना सोचिए, आपके आपके लिए खुद अच्छा होने ही लगेगा। बिल्कुल, आपको आपके कर्मों का फल आपको खुद मिलेगा, लेकिन आप अच्छा तो करने की सोचिए।
0: बिल्कुल, कहते हैं कि एक राजा कैसा व्यवहार चाहता है जैसा दूसरा राजा चाहता है, यानी एक राजा को दूसरे राजा से पहले अच्छा व्यवहार करना होगा, तभी तो दूसरा राजा पहले राजा से अच्छा व्यवहार करेगा। तो वही बात हमारे सामने होती है कि हम जब दूसरे के काम को प्रेरित करेंगे, अच्छा करेंगे, तो हमें लगेगा कि हम सीख रहे हैं। जैसे एक श्रोता लिखते हैं कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है, बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। यहाँ कुछ व्यवहारिक तरीके हैं जिन्हें आप खुद को बेहतर बनाकर अच्छे काम की शुरुआत कर सकते हैं। छोटे कदमों से शुरुआत करें, बहुत बड़ा लक्ष्य लेने के बजाय रोजमर्रा के छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान दें, जैसे रोज 30 मिनट पढ़ना या नियम व्यायाम करना सीखें, स्वयं की आदतों का विश्लेषण करें, अपनी दिनचर्या में से बुरी आदतें जैसे देर तक सोना, मोबाइल का बहुत उपयोग, इसको पहचानें, सुधारें, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। अच्छे काम के लिए सही सोच और दृढ़ निश्चय की जरूरत होती है। खुद से सकारात्मक वादे करें, ज्ञान बढ़ाएं, खुद को शिक्षित करें और अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बनने का प्रयास करें, अब जिससे आप दूसरों की बेहतर मदद कर सकें। इसके अलावा हर दिन कुछ सकारात्मक सीखने का प्रयास करें, आभार प्रकट करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अच्छे समय का इंतजार न करें, जो आज आपके पास समय है वहीं से मेहनत करना शुरू करते हैं।
1: बहुत सुंदर सी बात लिखी है इन्होंने।
0: और मंजरी, अभी हमें एक छोटा सा अंतराल लेना है, फिर मिलते हैं।

0: तो इस अंतराल के बाद सभी सखियों और सखाओं का स्वागत है।
1: और देखिए, एक संदेश है मंदाकिनी जी लिखते हैं कि ये बात बिल्कुल सच है कि लोग उपदेश से नहीं उदाहरण से सीखते हैं। जैसे सभी अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे मोबाइल का उपयोग बहुत कम करें, तो सबसे पहले अभिभावकों को स्वयं मोबाइल का उपयोग कम करना होगा। हमारा आचरण ही सामने वाले को संदेश देता है। हर इंसान दूसरों को बदलने का प्रयास करता है, जबकि पहली शुरुआत स्वयं से करनी चाहिए। बदलाव शिकायत करने से नहीं बल्कि शुरुआत करने से आता है, और अच्छे कार्य की शुरुआत स्वयं से की जाए तो बेहतर होता है। गांधी जी ने कहा था कि जो बदलाव दुनिया में देखना चाहते हो तो सबसे पहले वही बदलाव खुद में लाना होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। वही एक श्रोता लिखते हैं कि किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत सबसे पहले स्वयं से करें। जैसे एक दीपक पहले स्वयं जलता है तभी दूसरों को रोशनी देता है, उसी प्रकार व्यक्ति पहले अपने भीतर अच्छाई लाता है तब कहीं अच्छाई समाज में फैलती है। कुछ उदाहरण है, जैसे यदि हम चाहते हैं कि लोग सड़क पर कचरा न फैलाएं तो सबसे पहले हमें स्वयं कचरा डस्टबिन में डालना होगा। दूसरा, यदि हम चाहते हैं कि परिवार में प्रेम और सम्मान बना रहे तो पहले हमें अपने व्यवहार में मधुरता लानी होगी। और तीसरा ये कि अगर हम दूसरों से समय की पाबंदी की अपेक्षा करते हैं तो पहले हमें स्वयं समय का सम्मान करना होगा।
1: बिल्कुल। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से ही करना बहुत अच्छा विषय है। जब हम स्वयं करेंगे तो बाकी लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। जैसे कि हम मोबाइल लैपटॉप पर जब खाली होते हैं बैठ जाते हैं और बच्चों को मना करते हैं। वास्तव में हम तो काम के कारण बैठते हैं, बच्चे तो छुट्टियां हैं, क्या करें। कितनी भी अन्य गतिविधियों में व्यस्त रखें पर खाली होती है वे मोबाइल चलाते हैं, उनको मना करते हैं और समझाते हैं। बड़े बच्चे तो समझ जाते हैं पर छोटे, उनके मन में यही रहता है कि हम चला रहे हैं तो वे नहीं। फिर उनका समय तय किया है बस।

0: इतने ही समय, ये तो एक छोटी सी बात है, और भी बहुत कुछ अच्छी बात हम शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, उदाहरण तो आपको ही देना होगा। आप कहिए कि देखो हम एक घंटे चलाएंगे,
1: बिल्कुल
0: तुम लोग छोटे हो, तुम लोग आधे घंटे चलाओगे। तो इस तरह उनका टाइम थोड़ा कम कीजिए।
1: जी बिल्कुल सही कहा, ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है मोबाइल और बच्चे, तो बच्चे हाथ में मोबाइल लेकर दिन भर घूमते हैं।
0: अपनी मम्मी से बच्चे कंपटीशन करते हैं, मम्मी तुमने एक घंटे चलाया मैं भी चलाऊंगा, तो वो फिर गलत है। या फिर आप अपने कान बगल में रख के सो रहे हैं तो बच्चे भी मोबाइल पकड़ के सोने लग जाते हैं, हमें चाहिए।
1: वो सीखते हैं ना, जैसा आप बताएंगे वैसा अनुसरण तो बच्चे करेंगे ना।
0: बिल्कुल,
1: तो हमें अपना पहले खुद ही उदाहरण पेश करना होगा। कम से कम मोबाइल का इस्तेमाल हमारे लिए भी बहुत अच्छा है, करके तो देखिए। कहते भी है कि रात के सोने से पहले 2 घंटे पहले आप मोबाइल बंद कर दीजिए, ऐसा कहते हैं, और सुबह उठने के 2 घंटे बाद ही मोबाइल देखिए, तो आप देखिए आपके जीवन में धीरे धीरे आपके विचारों में सुख शांति आने
0: बिल्कुल
1: लग जाती है। क्योंकि उठते ही जब हम खोलते हैं तो हजारों नकारात्मक बातें, नकारात्मक समाचार मोबाइल में दिखते हैं और हमारे दिमाग में घूमते हैं कि अरे ऐसा है, तो हम नकारात्मक होते चले जाते हैं। तो शुरुआत खुद से करें अच्छे काम की, कि आप कोई किताब पढ़ें, बच्चों को किताब पढ़ने का मौका दें। एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन में यदि सकारात्मक बदलाव लाना है कि अच्छे काम की शुरुआत स्वयं से होनी चाहिए। जब हम अपने आप को उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करते हैं तो लोग हमारा अनुसरण करते हैं। जब हम अपनी आदतों, अपने विचारों में सकारात्मकता लाते हैं तो हमारे आसपास का वातावरण भी बदलता है। दूसरों से अपेक्षा रखने से बेहतर है स्वयं से अपेक्षा रखें। कहा भी गया है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, तो जे आच रही तेनर न घनेरे।
0: क्या बात है। और एक लिखते हैं कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से, ये बड़ा प्रेरणादायी विचार है। यदि आप समाज, परिवार या अपने आप में, जीवन में कोई सकारात्मक प्रभावशाली बदलाव लाना चाहते हो तो उसकी शुरुआत खुद से ही होनी चाहिए। अगर हम दूसरों का इंतजार किए बगैर खुद पहल करते हैं तो बड़े से बड़ा काम भी संभव हो जाता है। बस और कुछ नहीं, शरीर रूपी इंजन को एक किक की जरूरत होती है। क्या बात है, बहुत सुंदर बात लिखी है।
1: बिल्कुल।
0: तो हमारे सभी साथियों ने बहुत अच्छे अच्छे संदेश लिखकर भेजे हैं, तो उन्हें धन्यवाद कहते हुए एक गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: सूरत।
1: तो देखिए भाई ये गाना कितना सटीक है ना अंदाकनी जी।
0: हाँ,
1: हम लोगों की सूरत एक जैसी नहीं मिलती, कुछ तो बदलाव है,
0: बिल्कुल है
1: ना
0: है।
1: तो ये सफल, आप हंस रहे ना इसी बात पर कि मंजरी ने बस छेड़ दी बात। हाँ, है ना।
0: और तो, ये ऐसी बातें हैं जिस पर घंटों चर्चा करें तो भी कम पड़ जाती है,
1: जी
0: जिस खूबसूरती से गीतकार ने बात कही है उस पर घंटों चर्चा की जा सकती है।
1: बिल्कुल। चलिए हम अपने अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। हमारी सफल महिला उद्यमी है राधिका अग्रवाल। राधिका अग्रवाल भारत के उन प्रेरणादायक महिला उद्यमियों में गिनी जाती हैं जिन्होंने भारतीय ई कॉमर्स जगत में अपनी अलग पहचान बनाई। वे shopclues.com की सह संस्थापक को फाउंडर है। उनकी सफलता इस बात का उदाहरण है कि दृढ़ संकल्प, नई सोच और मेहनत से महिलाएं व्यापार और तकनीकी की दुनिया में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकती हैं।
0: तो राधिका गई की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एक इंटरनेट उद्यमी है और यूनिकॉर्न क्लब में प्रवेश करने वाली भारत की पहली महिला है। और ये सिलिकॉन वैली में 2011 में स्थापित ऑनलाइन मार्केट प्लेस shopclues की सह संस्थापक है। वर्तमान में ये कंपनी की मुख्य व्यवसाय अधिकारी के रूप में भी कार्यरत
1: जी। और राधिका का जन्म एक शिक्षित और अनुशासित परिवार में हुआ। उनके पिता भारतीय सेना में अधिकारी थे, इसलिए बचपन से ही उन्होंने अनुशासन, मेहनत और आत्मविश्वास सीखा। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भारत में पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए विदेश गई।
0: बिल्कुल, उन्होंने अमेरिका की प्रसिद्ध वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी इन सेंट लुइस से MBA की डिग्री ली और पढ़ाई के दौरान उन्होंने मार्केटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट और उपभोक्ता व्यवहार को गहराई से समझा भी, और यही ज्ञान आगे चलकर उनके व्यवसाय में बहुत काम भी आया
1: जी। और व्यवसाय शुरू करने से पहले राधिका अग्रवाल ने कई बड़ी कंपनियों में काम किया। उन्होंने फैशन और रिटेल क्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में अनुभव प्राप्त किया। इस दौरान उन्हें ये समझ आया कि ऑनलाइन व्यापार का भविष्य बहुत बड़ा है और भारत में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं।
0: हाँ, और अगर 2011 की बात करें ना मंजरी, तो राधिका अग्रवाल ने अपने पति संजय सेठी और सहयोगी संदीप अग्रवाल के साथ shopclues की स्थापना की और उस समय भारत में ऑनलाइन शॉपिंग का बाजार तेजी से बढ़ ही रहा था, लेकिन छोटे दुकानदारों और स्थानीय व्यापारियों को ऑनलाइन मंच नहीं मिल पा रहा था। shopclues ने इन्हीं छोटे व्यापारियों को इंटरनेट के माध्यम से ग्राहकों तक पहुंचाने का काम भी किया
1: जी। और कंपनी की खासियत ये थी कि उसने छोटे शहरों और मध्यम वर्ग के ग्राहकों पर विशेष ध्यान दिया। यहाँ ग्राहकों को कम कीमत पर विभिन्न प्रकार के उत्पाद उपलब्ध कराए जाते थे। धीरे धीरे shopclues भारत की प्रमुख ई कॉमर्स कंपनियों में शामिल हो गई। कंपनी ने लाखों ग्राहकों और हजारों व्यापारियों को जोड़ा। एक समय ऐसा आया जब shopclues का मूल्यांकन $1 बिलियन से अधिक हो गया और ये यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहलाने लगी।
0: और राधिका अग्रवाल की जब हम बात कर रहे हैं तो भारत की पहली महिला उद्यमों में वो शामिल हुई जिन्होंने यूनिकॉर्न स्टार्टअप खड़ा किया और ये उपलब्धि भारतीय महिलाओं के लिए प्रेरणा का कारण भी बनी। और राधिका अग्रवाल की जब हम बात कर रहे हैं तो उनकी यात्रा इतनी आसान नहीं थी मंजरी। उन्हें बड़े प्रतिस्पर्धियों से मुकाबला करना पड़ा। शुरुआत में निवेश जुटाना, ग्राहकों का विश्वास जीतना और व्यापार को तेजी से बढ़ाना उनकी बड़ी चुनौतियों में शामिल भी था, लेकिन हाँ उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने नई रणनीतियों की, ग्राहक सेवा और सस्ती कीमतों के माध्यम से अपनी कंपनी को बहुत आगे तक बढ़ाया।
1: बिल्कुल। और राधिका अग्रवाल हमेशा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का और अपने सपनों को पीछा करने के लिए प्रेरित करती थी। उनका मानना है कि महिलाएं यदि आत्मविश्वास और धैर्य के साथ काम करें तो किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकती हैं। और वे ये भी कहती थी कि असफलता से डरना नहीं चाहिए क्योंकि हर असफलता हमें कुछ ना कुछ नया सिखाती है। और राधिका अग्रवाल को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित किया गया है। उन्होंने भारत की प्रभावशाली महिला उद्यमियों को में गिना जाता है। कई बिजनेस पत्रिकाओं और मंचों ने उन्हें प्रेरणादायक महिला नेतृत्वकर्ता के रूप में

0: में सराहा है। और राधिका अग्रवाल को कई पुरस्कार भी मिले, जैसे आउटलुक बिजनेस अवार्ड में आउटलुक बिजनेस वुमेन ऑफ वर्थ 2016 में और एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड में वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2016 में, सीएमओ एशिया अवार्ड 2016 में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमी का पुरस्कार प्राप्त किया आपने, और सीईओ इंडिया अवार्ड 2016 में CEO ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला। एसोचैम का वर्ष सर्वश्रेष्ठ उद्यमी पुरस्कार 2017 में वे महिलाओं को उद्यमिता और नेतृत्व में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। और राधिका अग्रवाल की कहानी मेहनत, नवाचार और आत्मविश्वास की कहानी। उन्होंने ये साबित किया कि यदि सोच बड़ी हो और इरादे मजबूत हो तो कोई भी व्यक्ति नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। वे आज भारत की युवा पीढ़ी विशेषकर महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि वे आज भी हमारी प्रेरणा का स्रोत हैं। चलिए छोटा सा ये संदेश सुन लेते हैं। अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
1: तो मंजरी, अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

उठ के हमसे हाँ, देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगी हाथ

0: हाँ तो मंजरी, हम भी आपसे यही कहते हैं, देखो कसम से अगर तुमने भी किसी की बात को मान लिया और हमसे झगड़ा कर लिया तो हाथ मलोगी दोस्ती से, देख लेना।
1: लेकिन आपको पता है कि मंजरी ऐसी है नहीं,
0: कान का कच्चा होना बहुत गलत बात है,
1: कान की कच्ची है भी नहीं। और बहुत से लोगों में ऐसी आदत होती है कि वो अपना प्रभाव बनाने के लिए, दूसरे की उभरती हुई प्रतिभा को दबाने के लिए वो अगले सामने वाले से ऐसी बातें कर देते हैं कि कान की कच्ची वाली आदत हो जाती है। फिर वो उससे नहीं पूछता है कि भाई ये वाकई में ऐसी है या नहीं, वो जानने की कोशिश नहीं करता, वो उसकी कहने पर ही चलते
0: विश्वास कर लेते।
1: तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए।
0: ऐसे कान के कच्चे लोग बहुत हमारे आसपास होते हैं कि जिनको कुछ भी कह दो वो मान लेते हैं, उसका सही गलत की गणना उनको आती ही नहीं है
1: जी। और कान के कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है कि कान का कच्चा होना का अर्थ है कि बिना सोचे समझे किसी की बात पर जल्दी विश्वास कर लेना या सुनी सुनाई बातों में आ जाना। तो मंदाकिनी जी, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी के बारे में जानना है तो आप उसी से बात कर लीजिए, वो कैसा है आप अपनी नजरों से उसको परखने की कोशिश कीजिए ना। कोई दूसरा कुछ कहता है ये ऐसी वैसी, तो क्यों आप उसके उस पे जाते हैं।
0: बिल्कुल। और दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो बैक बाइटिंग करते हैं, लेकिन अगर आपको किसी की सच्चाई जानी तो पहले तो आपके अंदर कुव्वत होनी चाहिए, वो दमगम
1: बिल्कुल,
0: कि आप खुद अच्छे बने, है ना, खरा सोना, फिर आप दूसरे को परखें। और जब आप परखते हैं तो आपकी नजरों में वो पारखीपना होना चाहिए कि आप उसको परख ले अपनी नजरों से, दूसरों की बातों से, बैक बाइटिंग से, दूसरों की हिंट मिलने पर आप अगर कोई धारणा बनाते हैं किसी के प्रति, ये बहुत गलत बात है।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: तो एक श्रोता लिखते हैं कि कान का कच्चा होना अर्थ सुनी सुनाई बातों पर तुरंत विश्वास कर लेना या बिना सोचे समझे किसी की बात मान लेना। ये वीडियो कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ और उदाहरण समझाता है कि कान का कच्चा होना का अर्थ है कि आप, अच्छा कुछ लिखते हैं ये कि रवि पर भरोसा मत करना, वो बहुत कान का कच्चा है, कोई भी उसे भड़का सकता है। सीता सबकी बातों में मत जाओ, कान का कच्चा होना अच्छी बात नहीं है। और ऐसे व्यक्ति जो स्वयं अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, उन्हें अक्सर कान का कच्चा कहा जाता है
1: जी। और एक लिखते हैं कि बिना सोचे समझे या बिना सच्चाई जाने दूसरों की बातों पर तुरंत विश्वास कर लेना, जो व्यक्ति सुनी सुनाई बातों में जल्दी आ जाता है उसे कान का कच्चा कहा जाता है। समझदार व्यक्ति को कभी भी कान का कच्चा नहीं होना चाहिए, बल्कि सच का पता लगाना चाहिए। कान के कच्चे होने की आदत से लोग अक्सर नुकसान में रहते हैं। और वाकई में जो कान के कच्चे होते हैं तो उनका अपना व्यक्तित्व भी उस तरह से खराब होता है कि वो इस तरह से अगर करते हैं तो उनके व्यक्तित्व पर भी असर पड़ता है।
0: बिल्कुल पड़ता
1: है। सबसे पहले तो इंसान को, मंदाकिनी जी, अपने व्यक्तित्व को बचा के रखने की सोचना चाहिए कि नहीं, मैं जैसी हूँ मैं वैसी रहूंगी, कोई मुझे कुछ भी कहे मैं
0: डिगा नहीं सकता,
1: डिगा नहीं सकते जिसे कहते हैं।
0: अपने किरदार को हमें मजबूत बनाना चाहिए, ना कि उथल पुथल वाला, इधर इधर ढुल गए उधर ढुल गए,
1: थाली का बैंगन जिसे कहते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए।
0: उधर उसकी बात सुन ली, उधर उसकी बात मान ली, तो आपका अपना व्यक्तित्व क्या रहा?
1: बिल्कुल
0: कुछ नहीं रहा। तो आपका जो व्यक्तित्व में एक खूबी होनी चाहिए जो देखते ही लोग आपकी तारीफ करेंगे, नहीं ये व्यक्ति कान का कच्चा नहीं है, ये व्यक्ति अटल है, मजबूत है, और ये किसी की बातों में तुरंत नहीं आता, तब जाकर आपका कोई व्यक्तित्व बनता है। एक श्रोता लिखते हैं कि कान का कच्चा होने का अर्थ बिना सोचे समझे किसी की बात पर यकीन कर लेना। ये हमारी जिंदगी में बहुत लोग कहते हैं और अक्सर किसी न किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, अपना ही नुकसान करा लेते हैं। इसका वाक्य प्रयोग आजकल की दुनिया में काम का कच्चा होना नहीं होना चाहिए, मतलब

0: नहीं चाहिए ऐसा।
1: और एक मेरी साथी लिखती है कि कान का कच्चा काम का कच्चा भी बन जाता है, क्योंकि वो पूरा समय अलग भ्रम में जीता है, हर कही सुनी बात पर भरोसा करता है और खुद भरोसे लायक रहता नहीं, क्योंकि जब आप हर किसी की बात पर बस यूं ही भरोसा कर लेते हैं बस इसलिए कि आपकी जान पहचान है, तो आप कोई भी अपने इशारों पर भी नचा सकता है। इसलिए कान का कच्चा होना व्यक्तित्व को धूमिल कर देता है, जबकि एक इंसान जो कान का कच्चा नहीं है वो अपने करीबी की बातों को भी जांचे परखे बिना यूं ही विश्वास करके कदम नहीं उठाता और अपने काम का पक्का होता है, जिससे कोई पीठ पीछे भी उसके किसी निर्णय पर उंगली नहीं उठा सकता। तो कान का कच्चा नहीं काम का पक्का होना चाहिए। हमारी सखी ने बहुत अच्छी सी बात लिखकर भेजी,
0: बिल्कुल बहुत अच्छा। वही एक लिखते हैं हमारे श्रोता की बार दूसरों की चुगली या अफवाहों पर आंख मूंद कर भरोसा करने से आपसी रिश्तों में दरार या विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। दोस्ती में दरार या परिवार में कलह का मुख्य कारण यही कान का कच्चा होना भी होता है।
1: बिल्कुल सही बात लिखी है। और एक लिखे कि कान के कच्चों से दूर रहना ही बेहतर है, आपके संबंध खराब करते हैं वे उनके लिए बहुत मित्र नहीं होते। बिल्कुल सही बात है, लेकिन कितनी भी कोशिश कर लो ना, आप समूह में सबके साथ में है तो कौन कान का कच्चा है ये भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी। और एक लिखते हैं कि कान का कच्चा वह व्यक्ति जो बातें इधर से उधर करता हो, ऐसे व्यक्ति आपकी जरूरत की बात गोपनीयता खराब कर देते, यानी आपकी जरूरत की बात को भी वो किनारे करके अपना मतलब निकालना कहना चाहिए,
0: मतलब ऐसे लोग जो होते हैं जो बातों की होती है दो दोस्तों के बीच में उसको भी वो हटा देते हैं।
1: मतलब दोस्ती तो को किनारे कर देते हैं और अपना मतलब निकालने के लिए अपने को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए दूसरे के व्यक्तित्व को गिरा देते वो चीज नहीं होनी चाहिए।
0: बिल्कुल। वही एक श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी कि कान का कच्चा यानी बिना किसी सबूत के दूसरों की बातों पर भरोसा कर लेना आज के समय में ये मुहावरा हर किसी को समझने की जरूरत है ताकि गलत फहमियों से बचा जा सके। विविध भारती पर हमेशा ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मजेदार विषय सुनने को मिलते हैं, इसके लिए ये बहुत बहुत बधाई देते हैं।
1: जी सबको धन्यवाद देते हैं, बहुत अच्छे से संदेश लिखकर भेजे। एक गीत सुनते हैं फिर हम लोग मजेदार किस्से जनवासी के सुनते हैं।
0: वाह।

0: हमारे देखिए श्रोताओं ने लिखा है कि तेरी सूरत से नहीं मिलती वाला गाना जो है बहुत समय बाद सुना है तो उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने
1: से। अच्छा, क्या बात है।
0: तो देखिए अब हम बढ़ते हैं जनवासे की ओर, जो हमारे यादों से जुड़े हुए किस्से। और जनवासे में देखिए ऐसा होता था ना कि लड़की वाले जो थे लड़के वालों को रुकने का एक स्थान देते थे, वहां ठहरते थे सब लोग और उनके लिए खाने पीने का इंतजाम रखा जाता था, घड़े का पानी उस समय रखा जाता था। आज तो चलो आप ठंडा पानी की बोतलें रखते हो लेकिन उस समय घड़ा ही रखा जाता था। शरबत के पाउचेस पैकेट रख दिए जाते थे कि चीनी और नींबू रख दिया गया कि शरबत घोल के बनाएंगे। खरबूजा तरबूज इन समय में ये सब रखा दिए जाते थे, मौसमी फल बर्फ रखी है। तो कुछ बराती लड़के लड़कियां बहुत शैतान टाइप के होते थे तो वो जा करके उसमें से नींबू गायब कर दे तो चीनी गायब कर दे। अब जब वो बना रहे हैं आके लड़की वाले बेचारे तो वो चीजें कम पड़ गई हैं तो अब उनको कह भी रहे हैं कि इसमें तो खट्टा नहीं है, इसमें नींबू और डालिए। बेचारे इतना तो नींबू लाए थे कहाँ चला गया। तो मतलब इस तरह के किस्से जनवासे में अक्सर होते थे।
1: बिल्कुल।
0: और
1: ये एक रोचक बनाए रखते हैं और बड़ा अच्छा माहौल होता है शादी विवाह में,
0: बहुत अच्छा माहौल होता था
1: और छुटपुट मजाक होती है।
0: और वो चारपाई गद्दे नहीं पड़े तो शीशा नहीं है तो कंघा और शैम्पू नहीं है तो बालों में तेल लगाना नहीं है,
1: सादगी से वो जनवासा होता था। दिखावटी दिखावटी नहीं होता,
0: मतलब अगर चीजें कोई भी कम हो गई तो नुक्स निकालने वाले भी होते थे और बड़ा झगड़ा भी होता था कि हमारे लिए तो चारपाई नहीं रखी, हमारे लिए तो गद्दा नहीं रखा। और जब वो मिठाई की नाश्ते के लिए मिठाई के डब्बे दिए जाते थे तो सब लोग खोल के देख रहे हैं कि अरे इसमें तो 5 पीस है, इसमें तो 6 पीस है, ये ज्यादा कैसे हुआ या कम कैसे हुआ, इस तरह की भी नोकझोंक आपस में ही होने लग जाती थी। तो उसका भुगतान जो कहते हैं ना वो लड़की वालों को करना पड़ता
1: थे। हाँ बिल्कुल सही कहा।
0: और हमारे एक साथी लिखते हैं कि हमारे यहाँ बारात को पहले गांव से बाहर बड़े आम के बाग में ठहराया जाता था, वहीं जलपान कराया जाता था, फिर गांव के बीच में एक बड़ा हॉल होता था उसमें बारात को ठहराया जाता था और उसको जनवासा कहते थे। तो मंदाकिनी जी बड़ी यादें हैं सबकी।
1: बिल्कुल आपने कहा और ये याद आते ही पुराने वो दिन याद आ गए जब शादी विवाह का मौसम होता था। मुझे याद है हम लोग बच्चे होते थे और हम अपने पापाओं की जिद करते थे, पापा वहाँ लेके जाओ जन्मवासी में कौन कौन आया है, और वो हमें लेके जाते थे। तब इस तरह की शरारतें हम समझते भी थे और कई बार हंसते भी थे कि अरे कैसी कैसी बातें यहाँ होती है, लेकिन जो व्यवस्था होती थी वो बहुत अच्छी होती थी।
0: अपने हिसाब से देखिए सब लोग अच्छा ही करते थे
1: और मन से
0: करते थे और जिसको कमी निकालना है वो तो निकालता ही है। और भाई एक बड़ा मजेदार इसमें होता था कि भाई दूल्हे का जीजा जी रूठ गए, दूल्हे के फूफा जी रूठ गए, दोस्त रूठ गए, इस तरह के भी उनको सुविधाएं
1: मनाने की जो बातें भी बहुत होती थी, नाराज हो जाता था उसको मनाया जाता था।
0: और खाने पीने की भी कोई चीज व्यवस्था नहीं है तो उसमें भी जनवासे में रूठे पड़े कि हमें तो ठीक से मान मनोवल नहीं किया गया, बुलाया नहीं गया, तो बहुत सारी चीजें होती थी।
1: बिल्कुल सही कहा। इसलिए फूफाओं को मामाओं को बड़ा संभाल कर रखना पड़ता था क्योंकि वो बहुत जल्दी नाराज हो जाते थे।
0: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि पुराने समय में बारात के रुकने के लिए किसी बड़े भवन या स्कूल आदि में व्यवस्था की जाती थी जिसे जनवासा कहते हैं। यहाँ पर वधु पक्ष दूल्हे और बारात को आदरपूर्वक मुख्य विवाह स्थल मंडवे पर चलने का न्योता देते हैं। वधु पक्ष की महिलाएं और सखियां ढोल मंजीरे के साथ जनवासे के बाहर या आंगन में जुटती हैं और वे दूल्हे समधी दूल्हे के पिता फूफा और जीजा का नाम लेकर विशेष रूप से तैयार किए गए गाली गीत गाती हैं। इन गीतों में समधन के सीधेपन या बरातियों के खाने पीने की आदतों पर बेहद मीठे अंदाज में मजाक उड़ाया जाता है जिसका वर पक्ष कभी बुरा नहीं मानता था। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी इन गीतों से वो लोग बुरा भी मान जाते थे क्योंकि उस समय देखा था ऐसे होता था, थोड़ा मजा आता था। लेकिन गाने बहुत अच्छे थे।
1: ये गीत हमारे शादी विवाह की जान होते थे।
0: सही बात।
1: एक श्रोता लिखते हैं कि शादी में जनवासा यानी बारात ठहरने की जो जगह है केवल एक कमरा या हॉल नहीं है बल्कि ये बारात की जान और हंसी मजाक का मुख्य केंद्र होता है। यहाँ बिताई गई रातें और बारातियों के कारनामे सालों साल तक परिवार की कहानी और चुटकुलों का हिस्सा रहते हैं। जनवासी में सबसे पहले आप और मजेदार किस्सा आधी रात के बाद चाय का होता है। जब सारे बाराती तैयार होकर दूल्हे के साथ मंडप में जाने का इंतजार करते हैं तब जनवासी का माहौल किसी हॉस्टल के कमरे जैसा हो जाता है। 3 बजे रात में चाय की डिमांड होना और किसी की चाय न मिलना, फिर पूरी बारात का खुद ही उठकर चाय बनाने की जुगत करना, ये भी एक आम दृश्य होता है।
0: बिल्कुल। और एक साथी लिखते हैं कि शादियों में जनवासे का बड़ा महत्व है, यहाँ पर इतिहास

0: रचे जाते हैं, किससे कहानियां बनते हैं। बारात के ठहरने के स्थान को जनवासा कहते हैं। पहले के समय में ज्यादातर किसी स्कूल या धर्मशाला को जनवासा के लिए निश्चित किया जाता था। ऐसे में मन मुताबिक सुविधा उपलब्ध करवाना मुश्किल होता था। वैसे में कोई रूठने वाले बरातियों तब तो विवाद होना आवश्यक होता था, पर उनमें से ही कुछ लोग बीच बचाव करने वाले लोग भी होते थे जो मामले को शांत कर देते थे।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता लिखते हैं कि जनवासा सिर्फ बारातियों के ठहरने की जगह नहीं बल्कि रिश्तों की गर्माहट, हंसी मजाक और यादों का एक अनमोल हिस्सा है जो शादी को और भी यादगार बना देता है। मेरी शादी में बारात एक रात जिस धर्मशाला में रुकी थी उसी धर्मशाला से लगा हुआ सिनेमा हॉल था। छत पक्की थी लेकिन कुछ हिस्सा टीन शेड से ढका था, जिसमें से जनवासी में ठहरे बारात में गए बच्चे फिल्म देखते रहे जिसे आज भी वो याद करते हैं।
0: बिल्कुल। और ये लिखते हैं कि जन्माष्टमी ये नियत स्थान विवाह में लड़की वालों द्वारा ऑपरेट होता है, या यूं कहें दोनों के सहयोग से हो सकता है, लड़का और लड़की के परिवार वालों की ओर से, जिसमें दोनों को सुविधा हो जाती थी और अधिक भार लड़की वालों पर नहीं आता। जन्माष्टमी वो स्थान है जहाँ पर दूल्हा और बराती बेफिक्र होकर आराम करते हैं। यह स्थान विवाह मंडप के आसपास ही होता है। बहुत सी अच्छी सी बात है। और जन्माष्टमी भी देखा जाता था कि कितनी पास है, कितनी दूर है, और वहां पर उनके स्वागत के लिए कोई खड़ा है नहीं खड़ा, ये सब भी चीजें होती थी। और लाइट की व्यवस्था है या नहीं है, या फिर
1: मतलब सही समय पर उन्हें खाना पीना हर चीज प्रोवाइड कराना, हर पूरा एक जिम्मेदारी।
0: बड़ा मजा भी आता था कि भाई अगर पत्तल में उनको खाना परोसा गया है तो पूरी गर्म क्यों नहीं है, रसगुल्ले ज्यादा क्यों नहीं मिल रहे, रायता सही से क्यों नहीं परसा जा रहा है। तो इस तरह की जो थोड़े बहुत
1: चूहलबाजी
0: टाइप की भी होती थी, थोड़ा यादगार दिन है वो।
1: बिल्कुल।
0: अभी तो जैसे कि अभी व्यवस्था होटलों में हो जाती है।
1: हाँ,
0: तो
1: अब वो जनवासी का महत्व थोड़ा सा कम हो गया है क्योंकि होटल भी दूर दूर होते हैं और अभी कई चीजें बदल गई।
0: होटल में एक साथ खाना खा रहे हैं,
1: शादी होटल में हो गई है, घरों में वो स्थान ही खत्म हो गया है जहाँ बैठकर गीत गाए जाते थे, पूरा हल्दी से लेकर सारे कार्यक्रम किए जाते थे। तो ये चीजें अब बहुत कम हो गई है।
0: लेकिन मुझे तो वो जनवासी वाले दिन बहुत याद आते हैं।
1: बिल्कुल याद।
0: चलिए हम लोग एक गीत सुनते हैं, फिर बाकी बात करते हैं।
1: बिल्कुल।

0: मुझे तो लग रहा है कि जनवासे में तुम तो रूठ के नहीं बैठ गई हो।
1: नहीं, हम नहीं रूठ के बैठ गए, लेकिन मुझे याद है कि एक बार जनवासे में मुझे अकेला छोड़ के लोग खाने चले गए तो हमने आंख बंद कर लिया, अंधेरा था चारों तरफ, तो इस तरह के हमारे साथ भी हादसे हो चुके हैं। बाद में जो भैया लोग छोड़ के गए तो उन्हें बहुत डांट पड़ी, तो इस तरह की यादें भी हैं। और हमारे साथी लिखते हैं, जनवासा जिसे जनवासा भी कहा जाता है, बिताए गए ये पल दिखावे से दूर सच्चे और आत्मीय होते हैं, यहाँ अनजान लोग भी दोस्त बन जाते हैं और पुरानी दुश्मनी या गिले शिकवे भी हंसी मजाक से दूर हो जाते हैं। शादी के बाद जब भी रिश्तेदार आपस में मिलते हैं तो जनवासे के यही किस्से उनकी बातचीत की सबसे बड़ी रौनक बन जाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। हाँ। मैं एक श्रोता लिखते हैं कि शादी ब्याह का मौसम है पुराने जमाने का, यानी मेरी माँ की शादी के समय का, 1951 की बात कर रहे हैं ये। उन्होंने बताया कि किस्सा जनवासे यानी वो जगह जहाँ बारात और दूल्हे को दुल्हन के परिवार द्वारा स्वागत करके विश्राम के लिए ठहराया जाता है। छोटे गाँव में महीने में शादी थी, एक बड़ा घर व्हाइट वॉश कराकर उस जमाने की सुख सामग्री के साथ तैयार रखा गया। गर्मी का मौसम था तो खस के पर्दे लगा दिए गए, रात का सीमांत पूजन भोजन ये कार्यक्रम हो गए। शादी के दिन देखा तो सभी बारातियों के तन पर बड़े बड़े लाल धब्बे और सूजन दिखाई दे रही थी। पूछने पर पता चला कि रात को ठंड जगह की आकर्षण से लाल चींटियों ने बहुत समय में वहाँ आसरा कर लिया था और बारातियों को काट खाया और अपना आतिथ्य दिखाया। तो बड़े बड़े होटल से शान चौकत में अब तो जनवासा होता है, लेकिन उस समय की घर की बात बताइए। हाँ। कि चींटियां वगैरह थी, उन्होंने काट खाया तो हर बाराती के उस शरीर में लाल निशान बने।
1: बिल्कुल, जनवासे में ये भी देखा जाता था कि भाई उनके लिए पंखा रखा गया कि नहीं, हाथ का पंखा होता था उस समय, तो वो है कि नहीं है। और एक हमारे साथी लिखते हैं, अब तो जनवासा के नाम से कुछ भी नहीं है, एक बारात घर में सब कुछ हो जाता है, अब तो बाराती रात में रुकते भी नहीं है। और ये जनवासे में चाय की बड़ी वो होती थी कि चाय चाहिए चाय चाहिए, अब सुबह चाय चाहिए तो मालूम पड़ा दूध नहीं आया है, तो वो बड़ी समस्या हो गई है, अब क्या किया जाए। तो उसमें भी कुछ लोग शैतानी करते थे कि भाई कम दूध डाल के, जैसे जितना भी दूध उसी में चाय बना दी, अब तो यही है पी लो पी लो। तो कुछ पीते थे, कुछ सोचते अरे गर्म पानी समझ के ही पी लो। तो बड़ी चीजें अलग अलग तरीके की उस समय में थी, लेकिन उनका भी एक अपना एक मजा था।
0: वही श्रोता लिखते हैं कि जनवासा में बताए गए ये बल दिखावे से दूर सच्चे और आत्मीय होते हैं, यहाँ अनजान लोग भी दोस्त बन जाते हैं और पुरानी दुश्मनी या गिले शिकवे भी हंसी मजाक में दूर हो जाते हैं। शादी के बाद जब भी रिश्तेदार आपस में मिलते हैं तो जनवासी के यही किस्से उनकी बातचीत की सबसे बड़ी रौनक भी होते हैं।
1: बिल्कुल, और एक लिखते हैं शादी में जनवासी के किस्से, ये एक बहुत ही अच्छा विषय है और आज कल भी ऐसा होता है, ये जिज्ञासा बनी रहती है। वैसे देखा यह जाता है कि लोगों के पास समय अभाव है और इस दृष्टिकोण से फॉर्मेलिटी ही निभाते हैं।
0: अब तो फॉर्मेलिटी ही निभाते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि पहले जनवासा गांव के स्कूलों में, पंचायत घर में या शामियाना लगाकर भी या आम के बगीचे में भी तैयार किया जाता था।
1: और जब आम के बगीचे में होता था ना मंदाकिनी, तो वो तो किसी और का बगीचा है। अब आम लगे हैं, अब बराती लगे तोड़ने में, अब वो फिर झगड़ा मच रहा है। तो मतलब आप बरातियों को बोल भी नहीं सकते कि भैया आम ना तोड़ो, तोड़ लिया है तो बाग वाला गुस्सा रहा है। तो इस तरह के बड़े
0: रोचक जनवासी की दुनिया से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, आज हमने इन किस्सों को याद किया, हमारे श्रोताओं ने भी अपने वो खूबसूरत किस्से साझा हमसे किए हैं और अब हम सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत।
1: जी।

0: कभी कभी हमारे साथी लिखते हैं कि जनवासा गुजराती में से उतारो कहा जाता है, मतलब जान यानी बरातियों का उतार का ठहरने की जगह।
1: शबू महक रही है सांसों की रागनी में, कभी कभी ऐसा।
2: तो मंजरी आज तो बहुत सारी बातें हमने अपनी सखियों और सखाओं से कर ली और पुराने दिनों की याद ताजा हो गई है, है ना, वो किस्से जो हम भूल गए थे
0: आज फिर से ताजा हो गए। ताजा तो सभी को धन्यवाद देते हुए नमस्कार करते हैं। तो सभी को मंजरी वर्मा और
2: मंदाकिनी जोशी का नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में गूंजेगी बांसुरी की तान। फिल्मी गानों में बांसुरी के टुकड़े होते हैं जो हमें अपने साथ बहाकर ले जाते हैं। एक ऐसे कलाकार हैं जो फिल्म संगीत, गजलें, फ्यूजन और शास्त्रीय संगीत सभी मंचों पर अपनी बांसुरी की तान से सबको मोहित किए हुए हैं। उन्होंने जब वी मेट फिल्म के इस गाने में बांसुरी बजाई। फिल्म दम लगा के हईशा। फिल्म ओ माय गॉड। बांसुरी की इस मीठी तान को सुनकर आपको लग रहा होगा कि आज के सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आखिर कौन से बांसुरी वादक आए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने बांसुरी वादक पारस नाथ। ये है पारस नाथ से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग।

0: क्या बात है बांसुरी की इस मधुर तान को सुनकर आप, मुझे पूरा यकीन है कि बहुत अभिभूत और वशीभूत हो गए होंगे। तो चलिए विविध भारती के स्टूडियो में स्वागत करते हैं बनारस घराने के जाने माने बांसुरी वादक पारसनाथ जी का। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर?
1: मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ कि इतने संगीतमय माहौल में आपने मुझे याद किया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। और विविध भारती, तो हम आकाशवाणी विविध भारती, हमारा आज से नहीं, मेरे दादाजी के समय से नाता है
0: जी।
1: मेरे दादाजी भी पंडित शिवनाथ जी, वो शहनाई प्लेयर आकाशवाणी में थे एज ए स्टाफ आर्टिस्ट, और मेरे पिताजी पंडित अमरनाथ जी जो मेरे गुरु भी हैं, मेरे दादाजी और मेरे पिताजी, वो पिताजी मेरे एज अ स्टाफ आर्टिस्ट ज्वाइन हुए थे, फिर एज अ फ्लूट प्लेयर बनारस घराने के बांसुरी वादक, फिर उसके बाद उन्होंने ऑर्केस्ट्राइजेशन भी की कई सालों तक, फिर म्यूजिक एज अ म्यूजिक कंपोजर, म्यूजिक कंडक्टर, और फिर ऑल ओवर इंडिया के यूनियन प्रेसिडेंट भी थे बहुत सालों तक। तो उनके साथ हम जाते थे आकाशवाणी में, और हमें जो बचपन की जो याद थी, जिस समय से हम अपना जीवन शुरू किया है, वो आज मुझे वापस देख के आकाशवाणी का वो जो खुशबू है, और वो जो आकाशवाणी के स्टूडियो की जो एकुस्टिक, वो जो है एक जो नॉस्टैल्जिक फील है ना, वो आज मेरे को वापस देख के बड़े सालों बाद बहुत अच्छा लगा।
0: क्या
1: सो, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दैट।
0: अपने ही परिवार में वापसी है आपकी एक तरह से,
1: बिल्कुल कह सकते हैं, इट्स अ होम कमिंग बैक।
0: बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ एक चीज जो है वो मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कि आपके पिताजी पंडित अमरनाथ जी गायक पंडित अमरनाथ जी से अलग
1: अलग है, बांसुरी वादक
0: जी, बिल्कुल बांसुरी वादक पंडित अमरनाथ जी, जिनका ताल्लुक आकाशवाणी से भी रहा, आकाशवाणी के वाद्य वृंद के लिए उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
1: जी जी, पिताजी ने तकरीबन 61 या 61-62 डिफरेंट रागास पे अपनी वाद्य वृंद की रचनाएं की।
0: क्या बात है।
1: और जो प्योर, जिसमें से बहुत प्रचलित राग भी नहीं थे, जिसमें से कई ऐसे राग थे जिसमें जो बहुत अक्षोभ राग भी हैं, अक्षोभ राग जैसे जो लोग ज्यादा सुनते नहीं, बजाते नहीं, गाते नहीं, करते नहीं, और बहुत डिफिकल्ट राग भी हैं, जैसे बिलास खानी तोड़ी। बिलास खानी तोड़ी राग गाना बजाना ही, उसको उस राग को संभालना ही मुश्किल है
0: जी।
1: और गोरख कल्याण, ये सब राग संभालना ही मुश्किल है। मारू विहाग और फिर केदार, ये सब रागों को सिर्फ संभाल लेना ही काफी है,
0: और इन रागों में वाद्यवृंद
1: बनाना, वो भी और भी चलन के आधार पे
0: जी।
1: अब सारे गामा पदा नीजा नीदा पमा गरेजा, अब ये जब आप ऑर्केस्ट्राइजेशन करते हैं 80 लोगों के साथ,
0: 80 लोग,
1: हाँ,
0: ये मायने रखता है,
1: 80 आर्टिस्ट, वो भी 80 आर्टिस्ट सिर्फ आर्टिस्ट नहीं है, वो एक एक चुन के हिंदुस्तान के
0: नगीने
1: हैं, नगीने हैं, जो अपने अपने अपने वाद्य के अपने अपने घरानों के खलीफा, आप समझ लीजिए, जिनको जो अपने घराने के गुरु हैं और गुरु के सुपुत्र हैं, जो जनरेशन से चले आ रहे हैं, उनको दिल्ली में हम सुनते थे कि जो उनको अपने घरानों का खलीफा बोलते हैं, अपने घरानों का गुरु, महागुरु ऐसा समझ लीजिए। तो वो सब उस रूम में मौजूद हैं, और पिताजी

0: की कंपोजिशन वो बजा रहे हैं, और जो नोटेशन जो पिताजी करते थे हिंदुस्तानी नोटेशन सारे गामा पादनी सा और SRGM सारे
1: गामा पादनी, दोनों नोटेशन करते थे वो
0: पिताजी करते थे। हाँ, सो स्टाफ नोटेशन नहीं लिखते थे वो, हिंदी नोटेशन लिखते थे बट उसको SRGM में लिखते थे।
1: जी जी।
0: सो वो नोटेशन जो जब पिताजी बनाते थे कंपोजिशन, सो मैं और मेरे बड़े भाई पंकज नाथ जी, हम वैसे तीन भाई हैं, मेरे सबसे बड़े भाई हैं श्री पवन कुमार नाथ जी, वो म्यूजिक में नहीं हैं, और मुझसे बड़े जो हैं श्री पंकज नाथ जी, वो बांसुरी वादक हैं, और मैं उनके बाद सबसे तीसरा छोटा पारसनाथ। तो हम तीन भाई हैं और दो म्यूजिक में हैं, एक म्यूजिक में नहीं है
1: जी।
0: तो मैं और पंकज नाथ जी हम लोग पिताजी के साथ रात भर बैठ के उनके साथ नोटेशन लिखा करते थे, वो बनाते रहते थे, सुर बनाते रहते थे और कंपोजिशन बनाते रहते थे, तो हम दोनों नोट करते रहते थे, नोटेशन करते रहते थे। तो वहां से हम नोटेशन सीखने को भी, एक जो इंडस्ट्री में काम करने के लिए मुंबई इंडस्ट्री में
1: बुनियाद पक्की हुई
0: एक तरीके से बोल लीजिए, वो एक ट्रेनिंग भी थी
1: जी,
0: और एक तरीके से काम भी होता रहा।
1: मैं ये देख पा रहा हूँ कि इतना अनुशासित और सख्त बचपन था, तो उसमें बदमाशी की जगह कितनी थी?
0: वो निकल ही जाता है बचपन में। बचपन ऐसा होता है ना कि थोड़ी सी भी जगह या मौका मिले तो बदमाशी कर ही लेता आदमी।
1: कौन कौन सी बदमाशियां की कुछ याद कीजिए। उसके बाद जाहिर है कि बदमाशी के साथ एक चीज साथ में आती है, वो एक कुटुंबस।
0: हाँ, अभी आर्टिस्ट है।
1: हाँ।
0: और मुझे ऐसा लगता है कि बचपना जो होता है वो अपने आप में ही बदमाश होता है, और प्लस आर्टिस्ट घराने का बच्चा हो
1: जी,
0: तो और भी बदमाश
1: और भी। तो आप क्या कारनामे करते थे?
0: हम लोग करते थे बचपन में।
1: शर्मारे बता रहे थे।
0: हाँ, थोड़ा सा शर्मार हो गया बट हाँ, बदमाशी करते थे।
1: बगीचों से आम चुराए, चोरी
0: बहुत चुराए, बहुत चुराए हमने, आम चुराए हैं, और हमने अपने टीचरों को भी बहुत परेशान किया है।
1: ओहो हो,
0: प्रिंसिपल को भी थोड़ा परेशान किया है,
1: थोड़ा।
0: हाँ। इतना थोड़ा कि उन्होंने
1: घर शिकायत भेज दी।
0: घर शिकायत नहीं, घर वालों को स्कूल ही बुला लिया था।
1: अरे बाप रे। फिर
0: पिताजी आए उन्होंने। अच्छा, एक्चुअली मैं आपको बता दूं,
1: लेकिन किया क्या था आपने ऐसा? कुछ तो खतरनाक वाला किया होगा।
0: आपने मुझे पकड़ लिया रंगे हाथों पकड़ लिया आपने मुझे।
1: जी, जी, जी।
0: मैं बचपन में भी नहीं पकड़ा था मुझे, तो टीचर ने।
1: अच्छा।
0: इसको कर्म बोलते।
1: वापस आ गया।
0: मुझे लगता है कोई ना कोई टीचर आया आपके रूम। हाँ, तो बदमाशी की है सर। हाँ, कभी कभी स्कूल से, जैसे कभी होमवर्क नहीं कर पाना, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको
1: जी,
0: कि मुझसे होमवर्क नहीं हो पाता था।
1: अच्छा।
0: और जिस स्कूल में हम थे, मैं बॉयज स्कूल में था, सो वहाँ के टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट थे
1: जी,
0: बहुत स्ट्रिक्ट थे,
1: और जमाना भी सख्ती का था,
0: बहुत ज्यादा था, और मतलब लिटरली पिटाई पड़ती थी बहुत ज्यादा। सो उस पिटाई से बचने के लिए हमने थोड़ा स्कूल, कभी कभी घर से निकले हैं पर पहुंचे नहीं।
1: कहीं और पहुंच गए।
0: तो ऐसी बदमाशियां रही, फिर खेलने चले गए
1: जी,
0: गेम खेलने चले गए, क्रिकेट खेलने चले गए, तो ये मस्तियां की हैं। और पिताजी को पता नहीं होता था, और ये डर भी होता था उनको अगर पता चल गया
1: तो क्या तो हाल होता।
0: बाप रे, दुनिया अलग और मैं अलग।
1: कितना सख्त अनुशासन, आप सबसे छोटे थे तो लाड़ भी उतना ही रहा होगा, अनुशासन भी उतना ही।
0: अनुशासन के टाइम पे बिल्कुल लाड़ नहीं था
1: जी,
0: कोई छोटा बड़ा देखा ही नहीं। सो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बचपन में मैंने, मेरे भाई ने, हम प्रॉपर नींद सोए नहीं है, मतलब वो इसलिए नहीं सोए हैं, शायद उसकी वजह से ही मैं आज आपके सामने बैठा हूँ
1: जी। ये एक साधना का हिस्सा रहा कि नींद में कटौती होती रही और सीखने का मामला चलता रहा।
0: वो मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि वो एक करेक्ट एज है
1: जी,
0: अनुशासन में रहने का, जीवन अगर बनता है तो उसी एक करेक्ट एज में, वो भले ही बच्चा प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा हो या भले ही बच्चा कुछ नहीं भी कर रहा हो, अगर वो अच्छे माहौल में है ना, तो उसकी मेमोरी और मसल मेमोरी में वो बात जा रही है।
1: क्या प्यारी बात बोली है जी। रंगी पर

0: अगर उसका माहौल अच्छा है तो भले ही कई चीजें मैंने जब मैं काम करने लगा प्रोफेशनली, बहुत सारी चीजें मैंने तब रियलाइज की कि कुछ चीजें जो मैंने प्रैक्टिस नहीं भी की पर मैं रियाज जब करता था या बजाने जाता था या बजाता था बांसुरी, तो मुझे महसूस हुआ कि ये एक जो बचपन में जो मैंने सिर्फ सुना है उस वजह से एक एडॉप्शन हो गया है, वो उसको ग्रास्पिंग वो मेरे ब्रेन ने मेरे मसल ने कर लिया है उसको, तो वो एक बहुत जरूरी है। तो ऐसा होता था सर कि सुबह के वक्त से मैं आपको बताता हूँ, जैसे सुबह 4-4:30 बजे के वक्त पे हम अपने दादा दादी जी के साथ बड़ा हमें लाड प्यार मिला है। मेरे दादाजी पंडित शिवनाथ जी, लेट पंडित शिवनाथ जी शहनाई प्लेयर भी थे। और अच्छा, मैं आपको दादाजी की बात आई तो ये मैं बता दूं, ये मेरे दादाजी की बांसुरी है।
1: अरे गजब, तो ये कितने साल पुरानी होगी?
0: मेरे दादाजी व्हेन ही लेफ्ट हिज बॉडी, जब वो शांत हुए, उनकी एज थी 104 साल।
1: ओहो हो, गजब।
0: ही वॉज ए मिलिट्री गाय।
1: जी जी।
0: और उन्होंने जो सबसे पहली जॉब थी उनकी वो मिलिट्री में थी, और इंडिया और चाइना की जो वॉर हुई थी
1: 62 वाली,
0: वो पार्ट थे उसके।
1: ओके।
0: इंडिया वो चाइना के वॉर के, और उनको फिर क्योंकि इंजर्ड हो गए थे, उनको स्निच हुआ था, गोलियां लगी थी, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो उस हालत में इंजर्ड नहीं हुए थे कि मतलब आदमी डेथ के उसमें चला जाए, बट ही वॉज इंजर्ड, हिज सीरियसली इंजर्ड।
1: लेकिन वो शहनाई भी बजाते थे?
0: शहनाई छोड़ी नहीं उन्होंने, रियाज नहीं छोड़ा उन्होंने
1: फौज में होते हुए।
0: हाँ,
1: वाह वाह वाह।
0: शहनाई, और इस बांसुरी को बोलते हैं त्रिपुरा बांसुरी।
1: त्रिपुरा बांसुरी
0: जो मेरे दादाजी ही बजाते थे पूरे खानदान में।
1: गजब।
0: सिर्फ दादाजी बजाते थे त्रिपुरा बांसुरी। अच्छा, त्रिपुरा बांसुरी में क्या एक स्पेशलिटी है सर कि इसमें जैसे हम नॉर्मल बांसुरी है
1: जी,
0: हमारी ये नॉर्मल बांसुरी है, यहाँ पे कॉर्ग लगता है माउथ होल के पास।
1: जी बिल्कुल।
0: ये त्रिपुरा बांसुरी में कॉर्ग नहीं होता है, ये पूरी खाली होती है अंदर से।
1: अरे गजब।
0: एक बांस की नली है और उसमें जो सुरों के होल किए हुए हैं। और यहाँ पे जैसे आपने बहुत सारे बांसुरी वादकों को देखा होगा, बहुत आजकल जो पीछे पंचम का हो

0: बोले ये तो हम बचपन से देख रहे हैं अपने बांसुरी, अपने घराने के बांसुरी में। हालांकि हम पंचम का होल यूज नहीं करते, हम जो कृष्णा बांसुरी है नॉर्मल वो वैसे ही बजाते हैं।
1: जी जी,
0: पंचम हम होल
1: यूज नहीं करते।
0: तो हमने तो अपने बचपन में दादाजी को त्रिपुरा बांसुरी, ये कम से कम नहीं तो 200 साल पुरानी बांसुरी है।
1: क्या बात है, ये तो अद्भुत
0: बांसुरी, उनका आशीर्वाद है
1: जी।
0: मंदिर में रहती थी ये बांसुरी, हमेशा मंदिर में रहती थी। सुबह तो हमारा कैसा था कि दादाजी हमारे मिलिट्री के थे, तो उनका अनुशासन शेड्यूल बहुत स्ट्रिक्ट था। चार बजे हम तीनों को उठा देते थे। वो हम तीनों का चार बजे उठ के, मैक्सिमम 4:30 बजे उठ के सिर्फ एक काम था कि राग भैरव में एक स्थाई गानी है, तीनों को गानी है, वो चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, उसके पीछे वो उनका सोच ये था कि वो ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है, उस वो जो ब्रह्म मुहूर्त की जो एनर्जी है वो आपको महसूस करनी है। और उस मुहूर्त में जो राग है, वो रागों का जो, क्योंकि हमारे जो राग रागनी है ये हमारे देव देवताओं का उत्पन्न किया हुआ है। ये तो साक्षात आजकल जो म्यूजिक जो एंटरटेनमेंट है वो तो पहले पूजा और प्रार्थना के लिए यूज होता था।
1: जी जी,
0: सिर्फ और सिर्फ पूजा और प्रार्थना और सिर्फ साधना ही होती थी संगीत के सुर से। तो अभी क्या था कि वो ब्रह्म मुहूर्त में चार बजे सिर्फ भैरव राग गवाने का एक ही उद्देश्य था कि वो आशीर्वाद ईश्वर का, वो भैरव राग का आशीर्वाद, सरस्वती माँ का आशीर्वाद उस मुहूर्त में हमें मिले।
1: वाह।
0: तो सा सा सा रे गा मा पा दा नी सा नी ला बा मा गा रे सा, एक हम बंदिश गाते थे तीनों भाई उठ के।

0: न जागो
1: वाह वाह वाह
0: मोहन प्यारे जागो। तो ये बंदिश हम सुबह गाते थे, उसके बाद हम तीनों नींद में गाते थे। अब ये तो हुई दादाजी की सोच, अब तीन बच्चों की सोच बताता हूँ कि हमें ऐसा लगता है क्यों क्यों उठाया जा रहा है चार बजे सुबह, क्यों नहीं सोने दिया जा रहा है, ये क्या पनिशमेंट है, ये क्या है, क्योंकि नींद इतनी प्यारी होती है ना।
1: बिल्कुल,
0: और वो चार साढ़े चार बजे तो एकदम चरम सीमा की नींद होती है।
1: बिल्कुल।
0: सो उस वक्त जगा दिया जाता था। दिल्ली, आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, तो दिल्ली की सर्दी भी खतरनाक होती थी।
1: खतरनाक जी,
0: पर वो जगाते थे। फिर उसके बाद वो हो गया, फिर साढ़े पांच बजे के बाद हमें अलाउड नहीं था कि बेड से उठना ही है और फिर बाहर निकलना है घर से, एंड जस्ट हैव टू गो वॉक, डू व्यायाम, जो प्राणायाम, व्हाटएवर। ये मैं अपने बचपन की बात बता रहा हूँ सर, जब मैं फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड की बात बता रहा हूँ।
1: जी जी।
0: एंड देन वो होने के बाद फिर घर आए, नहाया धोया, नाश्ता किया, साढ़े सात आठ बजे हम लोग रियाज पे बैठ गए। आठ बजे रियाज पे बैठे हैं नाश्ता करके, उसमें दादाजी के साथ भी जब पूजा करते थे दादाजी, तो ये बांसुरी बजाते थे।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो पूजा के टाइम पे वो राग दुर्गा में एक स्थाई बजाते थे।
1: अरे गजब।

0: फिर इसके साथ सरगम उन्होंने कुछ कुछ बनाई थी, बताई थी हमें, तो सरगम बजाते थे हम लोग। तो एक हाजिरी होती थी हमारी, पिताजी भी होते थे, दादाजी होते थे, हम दोनों होते थे। उसके बाद फिर दादाजी अपने शेड्यूल में बिजी हो जाते थे, पिताजी जॉब में जाते थे, हम लोग रियाज करते थे दोनों भाई। सो हमारा रियाज होता था तकरीबन 8 बजे से 8:30 बजे से लेके दोपहर को 12:30-1 बजे तक, 5 घंटे का एक टाइम का रियाज। फिर दिन में लंच के बाद 2 घंटे होते थे, उसमें आप कुछ और कीजिए, जैसे कुछ और सीखिए या बगीचे में कुछ कीजिए या कुछ भी घर में कुछ और सेवा कीजिए, घर का कुछ काम कीजिए, वैसा कुछ। फिर 4:30 बजे से 4:30-5 बजे से वापस रियाज, वो रात को चलता था 10-10:30 बजे तक। तो दिन में तकरीबन 11-12-13 घंटे का रियाज होता था। उसी 13 घंटे में पूरे दिन शिष्य आते थे, अपने टाइम से आते थे, जिनको जाना होता था वो चले जाते थे, वो चलता ही रहता था एक रोटेशन में, तो वो माहौल रहता था।
1: वाह वाह।
0: फिर रात को आप समझिए 10:30 बजे अगर हम लोग छोड़ा है रियाज करके दिन भर, आप सोने गए हैं 12 के आसपास, तो पिताजी आए रिकॉर्डिंग से और 1 बजे या कभी 2 बजे उनका कुछ मूड हुआ बताने का, कुछ सोचते हुए आए हैं, बच्चों को बताऊंगा।

0: बच्चे तो सो रहे हैं,
1: बच्चे सो रहे हैं। अब बच्चे कौन, मैं और मेरे बड़े भाई पंकज जी। अब पिताजी ने हमें कभी बचपन में, मेरी माता ने, पिता ने, हमारे बुजुर्गों ने कभी मारा नहीं, हाथ नहीं उठाया, पर डर इतना था कि उनके आंखों से और आवाज से डर लगता था। तो ये था कि अब पिताजी आ गए 12-1 बजे, उन्होंने कहा चलो बाजरी लेके आओ। अब नींद से आधी नींद से उठे, मुंह में पानी डाला है, फिर दोनों बाजरी लेके आ गए। अब सर वो सेशन चल रहा है सुबह 4-5 बजे तक।
0: ओहो हो, तो सारी रात जागना है,
1: पूरी सारी रात जाग गए।
0: और सुबह का तो फिर शेड्यूल तय है,
1: सुबह का शेड्यूल तय है। पर फिर कभी कभी पिताजी संडे, क्योंकि आकाशवाणी छुट्टी होती थी, तो सैटरडे संडे पिताजी भी बैठते थे रियाज पे। फिर वो जब पिताजी बैठते थे तो और लंबा डिटेल क्या रियाज होता था दादाजी के साथ भी। तो होते होते फिर वो बचपन पूरा वैसे ही उसी
0: रियाज
1: करते हुए, रियाज करते हुए, अनुशासन से इसी तरीके से गुजरा है।
0: क्या बात है।
1: मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि इस जीवन में मुझे, मैं जितना ही अपने आप को ग्रेटिट्यूड महसूस करूं यूनिवर्स के लिए, ईश्वर के लिए, भगवान के लिए, या उस सोर्स के लिए जिसने मुझे लाइफ दी है, कि मुझे ऐसे परिवार में ऐसे दादा दादी जिन्होंने पूरा बचपन में हमें प्यार भरपूर दिया
0: जी,
1: संगीत दिया, जिसके वजह से हमारी जिंदगी बनी
0: जी,
1: मेरे माता पिता जिन्होंने कोई कमी महसूस नहीं होने दी, और फिर संगीत सिखाया, और फिर जीवन को कैसे जीना है उसके बारे में भी नॉलेज दी
0: जी,
1: ऐसे परिवार में मेरी जीवन की शुरुआत हुई। कोई भाग्यशाली मैं अपने आप को बहुत मानता हूँ कि ऐसे घराने का बच्चा हूँ और ऐसे घराने में पैदा हुआ हूँ। और भी बहुत एक बड़ी बात है कि जीवन को जीने के लिए कई बार ऐसा होता है, प्रोफेशन आप पैसा कमाने के लिए चुनते हो जिससे आप पैसा कमाते हो, पर आपकी आत्मा तृप्त नहीं होती है। और पैशन आपका कुछ और होता है, पर आप पैशन के लिए काम कर ही नहीं पाते हो।
0: बिल्कुल,
1: जीवन जीने का आत्मा के लिए आप क्या कर रहे हैं। तो वो पैशन है आपका, वो कुछ भी हो सकता है, खाना बनाना हो सकता है,
0: बिल्कुल
1: ट्रैवल करना हो सकता है, कुछ भी, मतलब म्यूजिक हो सकता है। और तो मेरा तो पैशन भी यही है, जीवन भी यही है, ऐसा नहीं लगता है ये मेरा साज है, ऐसा लगता है मेरे शरीर का एक अंग है।
0: बिल्कुल,
1: ये और मैं एक ही है। सो मैं इस जन्म में आर्टिस्ट बन के पैदा हुआ हूँ और एक सास की सेवा कर रहा हूँ, कृष्ण भगवान के सास की सेवा कर रहा हूँ, जिन्होंने इस सास से पता नहीं कितने लोगों का कितना उद्धार हुआ है। तो मेरे लिए तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है।
0: क्या बात है पारस जी, हम अब ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो दादाजी वाली बांसुरी है, त्रिपुरा बांसुरी
1: जी,
0: उस पर कोई धुन बजाएं और उसके बाद हम एक फिल्मी गाना सुने आपकी पसंद का।
1: मैं दादाजी की बजाई हुई धुन में आपको सुनाता हूँ
0: जी,
1: पर त्रिपुरा बांसुरी मैंने बजानी, मेरे लिए ये एक बहुत ड्रॉबैक है मेरे लाइफ का
0: जी,
1: कि ये बांसुरी मैं कोशिश की थी मैंने बजानी
0: जी जी,
1: पर दादाजी जब तक उनके दांत थे और वो इस तरीके से होल्ड कर पाते थे
0: जी जी जी,
1: इसको ऐसे बजाते हैं।
0: समझ गया।
1: देखिए तो एक होती है सीधी बांसुरी,
0: हाँ,
1: आपने देखी होगी ऐसे शहनाई की तरह बजाते हैं
0: जी जी जी।
1: एक होती है ये जो हम बजाते हैं कृष्णा बांसुरी
0: जी,
1: इसको कृष्णा बांसुरी बोलते हैं। तो मैंने कृष्ण भगवान की मूर्ति देखी होगी थी
0: हमेशा
1: ऐसी, तो इसको बोलते हैं आड़ी बांसुरी।
0: हाँ,
1: आड़ी बांसुरी भी बोलते हैं, कृष्णा बांसुरी भी बोलते हैं, और इसको हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का वाद्य भी बोलते हैं
0: जी।
1: फिर ये हो गए त्रिपुरा बांसुरी, इसको बजाते हैं ऐसे, इसका ये पंचम का हुल है
0: जी,
1: और ये बाकी आगे नॉर्मल जैसे बांसुरियों पे होता है
0: उस तरह के,
1: उस तरीके का है। और इसमें एक और खास बात है कि आप देखिए इसमें जो कृष्णा बांसुरी है, इसमें जो एक मध्यम तीव्र मा, जो क्योंकि आजकल बहुत सारे फ्लूट मेकर्स अपनी नाम बढ़ाने के लिए, बहुत सारे फ्लूटिस्ट अपने नाम बढ़ाने के लिए वो चीजें अपने आप को, क्योंकि अपना नाम आजकल के जीवन में क्या हो गया ना सर, भोगना ग्रीडीनेस
0: जी जी
1: इतना ज्यादा बढ़ गया है कि झूठ पे झूठ बोलते हैं लोग
0: जी।
1: आप सोचिए ये मैं 200 साल पुरानी बांसुरी मैं आपको दिखा रहा हूँ
0: जी, बिल्कुल।
1: इसमें दो चीजें दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसमें एक तो पंचम होल दिखा रहा हूँ,
0: हाँ बिल्कुल,
1: और दूसरा एक ये मध्यम तीव्र मध्यम का,
0: हाँ, है, बिल्कुल है,
1: ठीक है
0: आखिर में,
1: ठीक है। अब ये दोनों चीजें बहुत सारे सब बोलते कि ये हमारा है हमारा है हमारा है,
0: ये तो 200 साल पुरानी बांसुरी है,
1: हमने तो बचपन से देखा है
0: जी,
1: हमने कभी बोला ही नहीं ऐसा, क्योंकि हमें उस तरीके से कभी ना, हमने कभी ना देखा, ना कभी पिताजी का कभी वैसा विचार रहा, ना कभी दादाजी का वैसा विचार रहा कि ये हमारा है हमारा है, हमने किया है हमने किया है हमने किया है। पिता

0: जी और दादाजी का सिर्फ एक ही उद्देश्य रहा है, हमेशा से पिताजी का आज भी है, कि ये ईश्वर का दिया हुआ साज है, ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद है, हमारा नहीं है, ईश्वर का है, ईश्वर ने हमें चुना है, तो आपके थ्रू जो अच्छा जितनों का हो सके अगर हो पा रहा है तो वो भी ईश्वर ने आपको चुना उसके लिए।
1: आप माध्यम है,
0: आप अपने आप को मत समझिए कि आप भगवान है
1: जी,
0: आप भगवान नहीं है। आप भगवान होते तो आपने अपने लिए कुछ कर लिया होता सबसे पहले। जिन लोगों की वजह से आपका हो रहा है वो आशीर्वाद ईश्वर का दिया हुआ है।
1: बहुत सही।
0: तो हमने तो बचपन से ये देखा है सर। अब ये त्रिपुरा बांसुरी जो है ना, ये दादाजी का ही आशीर्वाद है, मैं ये बांसुरी बजा पाता हूँ, जो भी है मेरे पास उन्हीं का आशीर्वाद है, पर ये बांसुरी में बजा नहीं पाता।
1: कोई बात नहीं, तो आप
0: साउंड क्रिएट नहीं कर पाता
1: जी, तो आप अपनी कृष्णा बांसुरी बजाइए।
0: मैं लाया इसलिए हूँ कि उनका आशीर्वाद हमें, खैर मेरे हमारे साथ, मेरे हमेशा साथ रहता है।
1: वाह,
0: हमेशा,
1: क्या प्यारी बात।
0: हाँ, ये मेरे फ्लूट किट में रहता है।
1: जी जी जी।
0: अब मैं आपको एक चीज बता रहा था, जो तीव्र माँ का ये है
1: जी,
0: अब ये बांसुरी पे तीव्र माँ का यहाँ होल है।
1: हाँ है,
0: है ना
1: जी।
0: इसलिए आप कभी गूगल यूट्यूब में सर्च करेंगे ना, आपको ज्यादा रिकॉर्ड नहीं मिलेगा दादाजी का।
1: जी जी जी।
0: पिताजी का भी ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि ना वो सुरों में खोए रहते थे, म्यूजिक में खोए रहने वाले लोग थे, शागिर्दों के साथ रहने वाले लोग थे, संगीत में खोए रहने वाले लोग थे, वो टेक्निकली वो उस चीज को समझ ही नहीं पाए। अब हमें भी जब समझ में आया ना, तो दादाजी हमें छोड़ के, शरीर छोड़ के जा चुका था उनका। अब पिताजी भी अपने एक मिजाज के हैं, तो हम भी उनके, क्योंकि हम बच्चे भी हैं, बेटे भी हैं, शिष्य भी हैं। अब पिताजी कब गुरु से पिता बन जाते हैं, पिता से कब गुरु बन जाते हैं, समझ में नहीं आता है।
1: तो वो, बिल्कुल सही,
0: वो
1: है।
0: देखना पड़ता है
1: जी।
0: तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपने बोला दादाजी के लिए जो हम बजाते थे बचपन में, दादाजी के साथ राग दुर्गा मैं आपको सुनाता हूँ।
1: ठीक है, और उसके बाद एक फिल्मी गाना भी सुनते हैं।
0: मैं फिल्मी गाना भी सुनाऊंगा
1: जी।

0: क्या बात है, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
0: अब बताइए गाना कौन सा सुना जाए।
1: मैं आपको एक मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है
0: जी जी,
1: जो कि मैं अक्सर बजाता भी हूँ, वो है पिया तो से नैना लागे रे।
0: क्या बात है, गाइड फिल्म का ये गाना है।
1: बहुत अच्छा गाना है।
0: वाह वाह वाह।
1: और लता जी ने तो
0: कमाल।

0: जिनको सारे कोटि कोटि प्रणाम है, और इतना अच्छा कंपोज किया है
1: एसडी बर्मन साहब ने,
0: वाह वाह। तो मैं वो आपको
1: जरूर जरूर स्वागत है।

0: अभी इसमें क्या किया ना मैंने, जैसे मैं इसको थोड़ा फ्यूजन अंदाज से भी बजाता हूँ कभी कभी।
1: जी जी जी।
0: तो इसमें एक छोटी सी थीम ऐड की है मैंने।
1: अच्छा।
0: बहुत ही छोटी सी, अब जैसे ये चल रहा है

0: परजी, आपके बचपन की साधना, बचपन का माहौल, सख्त अनुशासन, ये तमाम बातें हमने यहाँ सुनी और जानी। एक बात जो हमारे सुनने वालों के लिए बहुत जरूरी है जानना, वो है कि किस उम्र में आपको बांसुरी पकड़ा दी गई थी?
1: सर, ये मुझसे सवाल पूछा जाता है, मैं हर बार यही जवाब देता हूँ। जब एक बच्चे को एहसास होने लग जाता है ना,
0: जी,
1: कोई सेंस शुरू हो जाता है दुनियादारी का, मुझे लगता है कि उसी एज में मैंने बांसुरी हाथ में ले ली थी।
0: जी,
1: एक बच्चा होता है जब सिर्फ रो रहा होता है, सिर्फ एक सोता रहता है,
0: शिशु होता है, जब
1: शिशु होता है वो, तो जब एक बच्चा लड़कपन में आ जाता है,
0: जी,
1: तो उस एज में बांसुरी हाथ में आ गई थी।
0: वाह वाह वाह।
1: अब वो कौन सी एज थी, मे बी मैं 2 साल का था, 3 साल का था, या कितने भी, मैं इतना बता, मुझे पता है कि मेरी जो पहली परफॉर्मेंस थी, मेरे दादाजी के साथ में गया था, और जो स्टेज परफॉर्मेंस थी तो 5 साल की एज में थी।
0: बाप रे, इतनी कम उम्र में परफॉर्मेंस।
1: हाँ, वही राग दुर्गा ही बजाया था मैंने उस वक्त। क्या था, वो 5 साल की एज में वो जो जितना उन्होंने सिखाया था वो रट के गया था मैं। तो सरगम वगैरह उसी हिसाब से बजाया, तो उस वक्त ऐसा, अभी तो जैसे मैंने आपको एक थोड़ा उपज थोड़ा सा करके दिखाया,
0: जी जी जी,
1: उस वक्त वैसा नहीं था। तो वो उन्होंने जैसे जैसे सरगम के साथ,
0: वो उम्र भी बहुत छोटी थी।
1: हाँ, काफी छोटी थी। फिर उसके बाद मेरा सबसे पहला इंटरव्यू है, 5 साल की एज में ही मैंने, दूरदर्शन में एक ये प्रोग्राम आता था सुबह सवेरे, तो 5 साल की एज में मेरा पहला इंटरव्यू है।
0: अरे बाप रे।
1: हाँ,
0: तो सवालों के जवाब देने की बुद्धि आ गई थी तब तक। गजब,
1: वो ये आशीर्वाद है।
0: जी जी जी।
1: वो उन्होंने सवाल भी फिर वैसे ही किए होंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: कि सुबह उठ के आप कौन सा नाश्ता करते हैं, हॉर्लिक्स पीते हैं कि क्या
0: उनके सवाल पीने जाई
1: जी,
0: तो किस तरह का नाता बाकी तमाम चीजों से जुड़ा, खेलकूद से, सिनेमा से?
1: सिनेमा से इतना नहीं जुड़ा
0: जी
1: उस वक्त। म्यूजिक, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि टीनेज में तो मैं प्रोफेशनली म्यूजिशियन, एज अ म्यूजिशियन दिल्ली में
0: जी
1: काम करने लग गया था, तो फिल्म से नाता, क्योंकि बचपन से ही टीवी और रेडियो से, मतलब सुनने में और करने। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैं रेडियो कैसे सुना है, गाने कैसे सुने हैं। मेरे

0: माता जी, मेरी दादी और हमारी बुआ जी, तो हम लोग सब साथ में मिलके होली के टाइम पे मेरी माता जी और दादी जी वो गुजिया बनाते थे घर पे। नमक पारे, गुजिया, घर के में मिठाई, तो पहले बाहर से नहीं आता था मिठाई।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: हालांकि हमारे घर में तो तब त्योहार पे अभी भी बाहर से नहीं आता, वो बच्चे शागिर्द वगैरह जो आते हैं वो लेके आते, बट घर पे ही बनता है ज्यादातर।
1: और वो ठेठ बनारसी,
0: ठेठ बनारसी। तो मेरी दादी माँ और माता जी गुजिया बनाते थे और रात भर का कार्यक्रम रहता था वो।
1: गजब।
0: हाँ, तो उस वक्त रेडियो चलता था। उस वक्त रेडियो चलता, तो रेडियो में सब पुराने गाने, लता जी के, खयाम साहब के, रफी साहब के, किशोर कुमार जी के, मुकेश जी के, आशा जी के, सब वही उस वक्त जो गाने सुनते रहता था ना मैं। तो अभी जो कुछ कुछ गाने मुझे पुराने याद हैं, अब जैसे रसिक बलमा
1: जी जी,
0: अब बहुत सारे लोगों को वो गाना ही नहीं पता।
1: हाँ हाँ, चोरी चोरी फिल्म का।
0: अब वो मैंने कितने सालों से सुना ही नहीं, मैं खुद ने नहीं सुना वो गाना
1: जी,
0: तो तब का सुना हुआ है।
1: गजब।
0: तो वो जहन में, वही मैंने कहा ना, बचपन में अगर आपके माहौल अच्छा हो तो आपके मसल मेमोरी में क्या बात चली जाती है ना, आपके मेमोरी में कौन सी बात घुस जाती है और वो फिर कहाँ काम आती है आपको पता नहीं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: आपको जैसा कि मैं बताऊं कि मैं, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट इवेंट्स भी करता हूं, कॉर्पोरेट इवेंट्स भी करता हूं, वहां बहुत सारे जगहों पे फरमाइश होती है कि ये वाला गाना पुराना गाना है, इस तरीके से आप सुनाइए ये गाना। अब एक वो गाना है, मदर इंडिया का गाना है एक, वो
1: होली आई रे कन्हाई।
0: हाँ, अब वो गाना वैसे आप सुनने जाएंगे तो नहीं सुनने को मिलेगा, पर उस वक्त आकाशवाणी में बजता था
1: जी,
0: तो वैसा था। तो फिर आए दिले नादान,
1: वाह वाह वाह, रजिया सुल्तान।
0: हाँ, रजिया सुल्तान, तो कितना कमाल गाना है वो।
1: बिल्कुल।
0: हो तो वैसे ही होते होते फिर वो उस हिसाब से चल पड़ा। तो खैर, फिल्मों से नाता उस वक्त था नहीं वैसा, क्योंकि जुड़ नहीं पाते थे उस वक्त की मूवीज से हम
1: जी,
0: पर दादाजी की वजह से हमने कुछ कुछ फिल्में देखी हैं, जैसे बॉम्बे टू गोवा, पड़ोसन,
1: अरे बाबा,
0: और गुजुटी से नहीं, और भी बहुत सारी पिक्चरें उस वक्त की। फिर ज्यादातर यही रियाज रहता था, फिर रिकॉर्डिंग्स, प्रोग्राम्स में जाना, और फिर कभी जब खाली टाइम मिलता था तो हम लोग, हम भाइयों को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक।
1: अच्छा।
0: बहुत शौक,
1: क्या बात है।
0: एंड आई वाज द बेस्ट प्लेयर।
1: अरे वाह।
0: इन द टीम, यस।
1: तो आप बॉलर थे या आप?
0: मैं बॉलर ज्यादा बेहतर था, ऑलराउंडर। अच्छा। ही था ज्यादातर, बट ज्यादा बॉलर वाला काम था मेरा।
1: क्या बात है।
0: हाँ।
1: तो फास्ट बॉलर थे?
0: फास्ट बॉलर, लाइक शोएब अख्तर।
1: वाह वाह वाह, इतना एग्रेसिव, क्या बात है। तो अभी क्रिकेट देखने का वक्त मिल पाता है?
0: अब तो सर सिर्फ बस देखते ही हैं ऐसे, बस पोस्टर एडवर्टाइजमेंट में दिख जाता है और कुछ
1: जी। लेकिन घर से विरोध था क्रिकेट खेलने का?
0: विरोध ये था कि जब खेलते थे ना, वो मैं बता रहा हूँ ना, एक्सट्रीम होता है आर्टिस्ट हर चीज में।
1: खेल रहे हैं तो फिर बस,
0: फिर खेल रहे हैं तो फिर इतना खेल रहे कि सुबह 9 बजे से गए, शाम को 8 बजे घर आ रहे हैं,
1: डरते डरते।
0: हाँ, कि मतलब कहाँ है, दिन भर बच्चा है कहाँ, मोबाइल भी नहीं था तब तो।
1: हाँ हाँ बिल्कुल,
0: कोई मैसेज ही नहीं है घर पे कि बच्चा जगह है कहाँ।
1: हाँ।
0: तो ये एक अजीब सी बात थी, मतलब सुबह गए हैं खेलने तो चले ही गए,
1: जुनून के तहत खेल।
0: हाँ, वो फिर खाना पीना भी वहीं बाहर खा रहे हैं, कुछ चल रहा है नाश्ता पानी। और फिर उस वक्त क्या होता था, फिर जैसे आसपास के जो मोहल्लों में जो टीम होती है अलग अलग,
1: जैसे मुकाबले,
0: फॉर एग्जाम्पल वाई ब्लॉक का एक टीम है, जेड ब्लॉक का एक टीम है, तो उनका फिर मुकाबला भी हो रहा है।
1: बिल्कुल।
0: तो वो भी होता था कि शाम को मैच है, उसकी तैयारी करने के लिए सुबह हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो वैसा रहता था, दिन भर चला जाता था उस जुनून में। फिर ध्यान नहीं रहता था कि घर पे बताना भी है, पर घर वाले
1: भार, तो भारी भूल बड़ी महंगी पड़ती होगी।
0: महंगी पड़ती थी।
1: अच्छा, पढ़ाई और संगीत में संतुलन कैसे बन पाता था?
0: पढ़ाई में मैंने आपको पहले ही
1: इशारा किया था
0: कि ज्यादा सवाल नहीं रखेंगे।
1: अच्छा। ये कोर्स से बाहर का सवाल है,
0: पर आप इशारा शायद समझ के भी आपने मुझे फिर वापस
1: ले आए।
0: आप बार बार मुझे स्कूल ले जाते हो, पता नहीं क्यों।
1: नहीं, स्कूल से बाहर आ जाते हैं।
0: हाँ, स्टूडियो चलते ना,
1: स्टूडियो चलते,
0: मजा आता है।
1: आकाशवाणी के गलियारों से जुड़ी यादें बताइए। पिताजी तो स्टाफ आर्टिस्ट थे। हाँ, तो
0: वहां पे
1: उनके साथ जाते होंगे आप स्टूडियो?
0: जी, हम जब जाते थे पिताजी के साथ, मैं दादाजी के साथ भी जाता था अपने, और दादाजी का जो ग्रुप था वो अलग था,
1: अच्छा
0: हाँ, तो दादाजी क्योंकि रिटायर हो गए थे तब तक,
1: हाँ, हाँ.
0: जब हम उनके साथ जाते थे तो वो पेंशन के लिए जाते थे दादाजी, अपने कुछ ऑफिशियल कुछ पेपर वर्क के लिए जाते थे उस वक्त, तो उनके साथ जाने का एक अलग मजा था.

0: एक अलग फीलिंग थी दादाजी के साथ जाने का। तो फिर पिताजी के साथ भी हम जाते थे, तो पिताजी के साथ तो मतलब काम के लिए ही जाते थे ज्यादातर। दादाजी के साथ कभी दादाजी का रिकॉर्डिंग होता था तो शहनाई का रिकॉर्डिंग होता था उनके साथ पूरा। अभी जो मैंने तानपुरा चलाया
1: जी जी,
0: उसमें पेटी वाली सुरपेटी आती थी, तो कभी मैं कभी मेरे भाई हम लोग गए तो वो पेटी वाली सुरपेटी आज भी हमारे घर पे रखी। तो वो सुर जो बैकिंग मिलता था सुर का, वो तानपुरा और वो पेटी वाली सुर का। तो फिर उसके बाद जब पिताजी के साथ जाते थे तो पिताजी कभी कभी अपने साथ, जैसे कभी पिताजी का रिकॉर्डिंग हुआ क्लासिकल किसी बांसुरी पे किसी ग्राहक का, तो पिताजी के साथ ऐसे ही सपोर्ट के लिए गए। और आकाशवाणी में ज्यादातर फिर जब वो वाद्य वृंद की रचना उनकी जब रिकॉर्डिंग होती थी तो वो एक दिन की नहीं होती थी उसमें। अब सपोज कीजिए कि अगर 20 पेज का पूरा है कंपोजिशन है, तो शुरू में हमने 10 पेज किया, तो एक दिन 10 पेज हुआ, फिर एक दिन 10 पेज हुआ, फिर अगर कुछ ऐसा हुआ कि वापस करना है तो 4-5 दिन हो जाता था उसमें।
1: बिल्कुल।
0: तो उस वक्त क्या होता था सर के हम जब जाते थे पिताजी के साथ तो वहां जितने भी बड़े जो सीनियर जो दिग्गज कलाकार सब अपने अपने घर के गुरु जो होते थे उनके बीच में बैठ के ना सबकी मजाक में भी जो बातचीत सुन के जो एक मजा तो आता था वो एंटरटेनमेंट अलग है, पर बहुत सारी चीजें समझ में भी आती थी, दुनियादारी की चीजें समझ आती थी। बातचीत में से ये समझ आता था कि किस बात का कैसे जवाब देना होता था, हाजिर जवाब भी समझ में आती थी
1: जी।
0: और ये सब तो दुनियादारी की चीजें, ये आप घर पे नहीं सीख सकते।
1: नहीं, बिल्कुल नहीं।
0: ये आपको घर से चौखट से बाहर निकल के ही पता चलता है। पर मुझे और मेरे भैया को बहुत प्यार देते थे सब, क्योंकि हम छोटे छोटे से थे और अपने काम में सिंसियर थे। और नोटेशन सबको प्रोवाइड करना और सबका ख्याल रखना। और हम जाते थे दोनों भाई, सपोज ये हॉल है, अब इस हॉल में चारों तरफ आर्टिस्ट ऐसे बैठे हैं सर्कल लेके, तो हम सबके पैर छूते थे। पिताजी हमारे घर ने, माता पिता ने ये बोला है कि बड़े जो है सब आर्टिस्ट है, सबका आशीर्वाद लो
1: जी।
0: तो पूरा एक हमारा चक्कर
1: चक्कर लगता है।
0: तो वहां फिर वो बोलते थे कि बेटा इतना ऐसा करने की जरूरत नहीं। वो जो वहां पे जो भी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने जिनको लगता था कि ये बच्चे इतने अदबदार हैं इतने प्यारे हैं तो इनको एक तरीका बता दो। और तो पिताजी तो रोकते नहीं थे, पर उनमें से एक जो बड़े आर्टिस्ट हैं उन्होंने कहा कि बेटा ये पूरा ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप सबको प्रणाम कर दो बीच में खड़े होके और फिर अपनी जगह बैठ जाओ। तो वैसा एक पिताजी के साथ एक अलग एक्सपीरियंस होता था। फिर रिकॉर्डिंग के बाद जब उनके साथ निकलते थे तो सब अपनी अपनी चीजें बताते थे उनको कि ये पार्ट में ये इस तरीके से अगर ये नोटेशन और क्लियर हो जाए या कुछ और ऐसा हो जाए। तो पिताजी वॉज ऑलवेज सो वेलकमिंग कि ऐसा नहीं कि वो उन्होंने कंपोजिशन बनाई है तो किसी और का सुनेंगे नहीं, क्योंकि सारे ही बाखूबी बड़े दिग्गज कलाकार हैं। तो वो अगर कुछ सजेशन उनको ऐसा लगता था कि नहीं इससे और खूबसूरत हो रहा है, ही ऑलवेज यूज टू टेक दिस सजेशन एंड मेक द
1: चेंजेस अकॉर्डिंगली
0: एंड वो हमेशा ही रिस्पेक्ट करते थे उस जेस्चर का।
1: क्या
0: तो वो एक बड़ा शाम को फिर एक अलग माहौल होता था कि जैसे कभी कभी बैठक होती थी घर पे हमारे या किसी और के घर पे बैठक हो रही है संगीत की, तो वहां पे मैं और जब हम दोनों भाई जाते थे तो आप सपोज कीजिए कि एक तरीके की क्लास ही होती थी, एग्जाम ही नहीं होता था वो, कि आप कुछ बड़े बड़े आर्टिस्टों के बीच में उस एज में कुछ आपको बजाने के लिए बोला, अब आपको कुछ बजाने के लिए बोला है,
1: हाँ
0: अब वो क्या है वो आप डिसाइड कीजिए।
1: बिल्कुल।
0: सो आपको अब वो उसमें टेंशन बजाने से ज्यादा फीलिंग से ज्यादा 80% टेंशन होता था कि क्या बजाए गलत ना हो जाए।
1: इतने सारे लोगों
0: के बीच में, तो उनकी वो एनर्जी और वो इम्प्रेशन भी और पर्सनैलिटी की वो विभूति सब बैठे हैं एक रूम में, तो उनके बीच में बैठ के बजा रहे हैं तो एक घबराहट रहती थी। तो वैसा रेगुलरली वैसा ही था बचपन में ज्यादा।
1: गजब, यानी चारों तरफ सिर्फ संगीत संगीत और संगीत
0: था। वही था।

जाने माने बांसुरी वादक पारसनाथ से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत अभी आपने सुनी। ये था पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान। इस कार्यक्रम का दूसरा भाग सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आप सुनेंगे अगले हफ्ते।

FM 102 और 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलो हर्ट्ज़ पर आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है। शाम के 5 बजने को है। अब युवा श्रोता अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुनेंगे, युवाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी और मैं हूं आपकी अपनी खुशी। और हम लेकर आए हैं युववाणी कार्यक्रम जिसमें होंगी ढेर सारी बातें, जानकारियां और बहुत सारा गीत संगीत।
1: और इसी के साथ मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त मनीषा, जो इस तपती गर्मी में लेकर आए हैं ढेर सारी कुल कुल बातें ताकि आपका दिन रहे फ्रेश और सेफ।
0: दोस्तों, मई जून की ये गर्मियां अब सच में अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं। राजस्थान समेत देश के कई हिस्सों में नौतपा चल रहा है, यानी वो नौ दिन जब सूरज की तपिश अपने पूरे शबाब पर होती है।
1: खुशी, इन दिनों सड़कें तप रही है।
0: हाँ,
1: हवा भी जैसे आग उगल रही हो, और ऐसे मौसम में जरा सी लापरवाही हमारी तबीयत पर भारी पड़ सकती है। लेकिन घबराइए मत दोस्तों,
0: इस समय नौतपा चल रहा है, यानी साल के वो सबसे गर्म दिन जब सूरज जैसे पूरी ताकत दिखाने पर उतर आता है। और बाहर निकलो तो ऐसा लगता है मनीषा कि जैसे गर्म हवा सीधे चेहरे से टकरा रही हो।
1: बिल्कुल ठीक कहा। और ऐसे मौसम में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है पता है?
0: अपनी सेहत का ध्यान रखना।
1: क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही थकान, चक्कर या लू जैसी परेशानी दे सकती है।
0: तो दोस्तों, अगर बहुत जरूरी काम न हो तो दोपहर के समय बाहर निकलने से बचिए, और अगर निकलना पड़े तो सिर्फ

0: पर कपड़ा, टोपी या छाता जरूर रखिए।
1: और पानी, पानी तो अपने साथ ऐसे रखिए जैसे मोबाइल रखते हैं।
0: पानी तो अभी अमृत है।
1: बार बार पानी पीते रहिए ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। साथ ही नींबू पानी, छाछ, बेल का शरबत और नारियल पानी जैसी चीजें भी गर्मी में काफी राहत देती हैं।
0: और खास कर बच्चों का ध्यान रखिए, देर तक उन्हें धूप में ना खेलने दें और जंक फूड से भी उनकी थोड़ी सी दूरी बनाए रखें, क्योंकि गर्मियों में हल्का और घर का बना खाना सबसे अच्छा होता है।
1: और दोस्तों, इसी के साथ जब हम बात कर रहे हैं शरीर को स्वस्थ रखने की, तो बात हम यहाँ पर शरीर की ही नहीं करेंगे बल्कि दिमाग को भी इन दिनों जो है ना कूल रखना जरूरी है।
0: हाँ, क्योंकि सबसे ज्यादा गर्म तो हमारा दिमाग ही होता है।
1: छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने के बजाय खुद को शांत और पॉजिटिव रखिए। आखिर गर्मी बाहर भी है और अगर दिमाग में भी हो गए तो फिर मुश्किल हो जाएगी ना।
0: क्योंकि सूर्य देवता ने तो अपना रौद्र रूप ले ही रखा है, तो अब हम भी हमारा रुद्र रूप ना लें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और सुनवाएं आपको एक बहुत ही प्यारा सा गीत, ताकि वो भी आपको इस तपती गर्मी में थोड़ी सी राहत दे।
1: क्योंकि बात अभी हमने आपके स्वास्थ्य की तो आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, मनोरंजन का ध्यान रखते हुए आपको सीधा ले चलते हैं गीत संगीत की ओर।
0: और धूप में बिल्कुल ना निकली अगर जरूरत ना हो तो।

सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी, आपकी रेडियो दोस्त मनीषा और
1: खुशी के साथ।
0: दोस्तों कहा जाता है कि इंसान की असली पहचान उसके नाम से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन खुशी, आज के दौर में जब हर कोई जल्दी से जल्दी प्रसिद्ध होना चाहता है, तब एक सवाल हमारे सामने ये आता है कि क्या पहचान पाने की इस दौड़ में हम अपने मूल्य और नैतिकता को पीछे तो नहीं छोड़ रहे?
1: दोस्तों युवावस्था सपनों की उम्र कुछ कर दिखाने की होती है, अपने पहचान बनाने की उम्र होती है, क्योंकि इस युवा अवस्था में ही हमें लगता है कि हम ये भी कर लें, वैसे भी कर लें, हमारे पैशन को हम हमारा प्रोफेशन बना लें। हर युवा चाहता है कि उसका नाम हो, लोग उसे जानें, उसकी सफलता की चर्चा करें। लेकिन इस दौड़ में प्रश्न ये आता है कि क्या पहचान पाने के लिए कोई भी रास्ता अपनाया जा सकता है?
0: इसका अगर हम जवाब ढूंढे तो वो ये है कि हम जिस रास्ते पे चले वो अच्छा हो।
1: हाँ बिल्कुल,
0: क्योंकि आजकल जैसा कि तुमने कहा कि हम सभी जो हैं जीवन में प्रसिद्धि चाहते हैं, फेम चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, लेकिन कई बार होता ना कि जल्दी के चक्कर में
1: डिसीजन हम गलत भी ले लेते हैं। और युवा अवस्था जो होती है वो तो तूफान और तनाव की अवस्था कही जाती है।
0: कहते ना कि युवा जो है ऊर्जा, शक्ति, सामर्थ्य सबसे भरपूर होते हैं, तो वो इन सब में जो है कई बार गलत निर्णय भी ले लेते हैं।
1: हाँ।
0: दोस्तों कुछ पल की लोकप्रियता शायद आपको आसानी से मिल जाए, लेकिन सम्मान कमाने में जो है ना काफी समय लग जाता
1: बिल्कुल।
0: है। दोस्तों आज का दौर तेजी से बदल रहा है।
1: हाँ, जैसे सोशल मीडिया की एक पोस्ट, एक वीडियो या एक तस्वीर कुछ ही घंटों में किसी को चर्चा का विषय बना देती है। ऐसे में कई बार प्रसिद्धि पाने की जल्दबाजी में युवाओं को ऐसे रास्ते की ओर ले जाती है जो नैतिकता और मूल्यों से दूर हो जाते हैं। क्या होता है मनीषा, कभी के जैसे हमने सोशल मीडिया की बात करी, तो जैसे कोई ट्रैकिंग करते हुए या फिर कोई रिस्की सा काम करते हुए अगर वो वीडियो वायरल हो गई, तो फिर वो पर्सन सोचता है कि हाँ मैं कुछ काम ऐसे ही करूं, कुछ लाइक्स और व्यूज के चक्कर में, तो फिर वो उसकी तरफ जाने लगता है। फिर वो ये नहीं देखता कि इसमें कितना खतरा है या फिर क्या चीजें हैं, वो बस उस कंटेंट को बनाने में लग जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने कि हम सही गलत कोई नहीं पहचान पाते हैं असल मायने में। और डिजिटल दुनिया ने लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने के अनगिनत अवसर दिए हैं। कई बार लोग कुछ पल की वाहवाही के लिए ऐसे कदम उठा लेते हैं जो उनके व्यक्तित्व और नैतिक मूल्यों के लिए उचित नहीं होते हैं। वे भूल जाते हैं कि शॉर्टकट से मिली सफलता अक्सर छोटी होती है।
1: हाँ सही कहा दोस्तों, जीवन एक लंबी यात्रा है। इस यात्रा में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जो हमें अच्छे तो लगते हैं, पर जैसे वो थोड़े से टाइम के लिए होते हैं। जैसे अभी तुमने कहा कि वो

0: शॉर्टकट के लिए होते हैं लेकिन वो लंबे समय तक बने नहीं रहते। तो हम कुछ ऐसा रास्ता चुने जो लंबे समय तक भी बना रहे और थोड़ा अच्छा भी हो।
1: याद रखिए दोस्तों, क्षणिक प्रसिद्धि और स्थायी सम्मान में फर्क होता है। प्रसिद्धि कुछ समय के लिए लोगों को ध्यान आकर्षित कर सकती है, लेकिन सम्मान जीवन भर लोगों के जो दिल में जगह बनाता है। दोस्तों, इतिहास में भी जो लोग प्रसिद्ध हुए ना, उन्होंने ईमानदारी, मेहनत और मानवता के मूल्यों को अपनाया, तभी वो प्रसिद्ध हुए हैं।
0: ऐसा होता है ना कि ऐसी पहचान

0: में भी जो लोग प्रसिद्ध हुए ना, उन्होंने ईमानदारी, मेहनत और मानवता के मूल्यों को अपनाया, तभी वो प्रसिद्ध हुए हैं।
1: ऐसा होता है ना कि ऐसी पहचान बनाए जिस पर स्वयं को गर्व हो, परिवार को गर्व हो, समाज को गर्व हो। जब आपकी सफलता किसी और के लिए प्रेरणा बनती है ना, तब आपके कार्य किसी राह को आसान बनाते हैं, तभी आपकी पहचान सच्चे अर्थों में सार्थक होती है। क्योंकि जब हमारे परिवार वाले प्राउडली आगे बढ़ें और कहें कि हाँ ये हमारा बच्चा है या हमारी बेटी है, हमारा लड़का है, तब वो एक अलग ही फीलिंग होती है। तो इसलिए हम हमारा करियर जिस भी राह में बनाएं तो ऐसा बनाएं जो सम्मानजनक हो और गलत ना हो।
0: बिल्कुल। तो दोस्तों, हम भी ये याद रखें कि सफलता और प्रसिद्धि की यात्रा में हम कभी भी अपने सिद्धांतों, अपने संस्कारों और अपनी नैतिकता का साथ नहीं छोड़ेंगे। हम मेहनत को अपना साथी बनाएंगे और अच्छे चरित्र को अपनी जो है ताकत बनाएंगे।
1: बिल्कुल, क्योंकि अच्छा चरित्र ही इंसान की पहचान होती है।

1927 से पहले भारत के पास ऐसा कोई सशक्त माध्यम नहीं था जो भारत को एक सूत्र में पिरो सके। 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे से पहली बार रेडियो की आवाज गूंजी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के नाम से। 8 जून 1936 को इसे नया नाम मिला ऑल इंडिया रेडियो। एक ऐसी आवाज जो हर दिल तक पहुंची। धीरे धीरे ये सिर्फ एक आवाज नहीं रही, ये बनी भरोसे की अटूट पहचान, सूचना का सटीक स्रोत और भावनाओं की मजबूत डोर। यहीं से शुरू हुई आकाशवाणी की गौरवशाली यात्रा जो आज भी हर सुबह हर घर में गूंजती है।

0: दोस्तों, जिंदगी कभी कभी इंसान की इतनी कठिन परीक्षा लेती है कि सब खत्म होता हुआ लगता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उन्हीं मुश्किलों को अपनी ताकत बना लेते हैं और फिर पूरी दुनिया उनके लिए मिसाल बन जाती है।
1: दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही शख्सियत की जिनकी कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं बल्कि आत्मविश्वास, हिम्मत और जुनून की कहानी है। एक ऐसी महिला जिन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर सपनों में जान हो तो अधूरी चीजें भी इंसान को पूरा बना देती हैं।
0: जी हाँ दोस्तों, वो हैं सुधा चंद्रन, एक बेहतरीन नृत्यांगना, एक शानदार अभिनेत्री और लाखों लोगों की प्रेरणा। सुधा चंद्रन बचपन से ही डांस की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहती थी। उनके कदमों में लय थी, आंखों में सपने थे और दिल में कुछ बड़ा करने का जुनून। बहुत छोटी उम्र में उन्होंने एक सपना देखा कि उन्हें डांस में महारत हासिल करनी है।
1: और छोटी उम्र में ही उन्होंने भरतनाट्यम में महारत हासिल करना शुरू कर दी थी। पर कहते हैं ना खुशी कि जिंदगी हर किसी को परखती जरूर है।
0: हाँ बिल्कुल।
1: एक दिन सड़क दुर्घटना में उनकी जिंदगी अचानक से बदल गई। चोट इतनी गंभीर थी कि डॉक्टरों को उनका एक पैर काटना पड़ा।
0: सोचिए दोस्तों, जिस लड़की की पूरी दुनिया उसके नृत्य में बसती हो, उसके लिए अपना पैर खो देना कितना बड़ा दर्द रहा होगा। सपने टूट गए होंगे, मन रोया होगा और शायद एक पल के लिए ऐसा लगा होगा कि सब खत्म हो गया।
1: लेकिन दोस्तों, असली प्रेरणा वही होती है जो अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ ले। सुधा चंद्रन ने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया बल्कि उन्होंने कृत्रिम पैर जयपुर फुट के सहारे से जो है दोबारा चलना शुरू किया। और फिर वो दिन आया जब उन्होंने दोबारा मंच पर नृत्य किया। तालियों की गूंज ने सिर्फ कला नहीं बल्कि संघर्ष की जीत सुनाई थी।
0: दोस्तों, सुधा चंद्रन की कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में मुश्किलें आना हार नहीं होती। हार तब होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। आज के समय में कई युवा छोटी छोटी परेशानियों से टूट जाते हैं। कभी एग्जाम का दबाव, कभी लोगों की बातें, कभी खुद पर भरोसा कम होना। लेकिन अगर सुधा चंद्रन जैसी शख्सियत इतनी बड़ी तकलीफ के बाद भी मुस्कुरा कर आगे बढ़ सकती है तो हम क्यों नहीं।
1: बिल्कुल। उन्होंने दुनिया को ये बताया कि इंसान की असली ताकत उसके शरीर में नहीं बल्कि उसके हौसलों में होती है। अगर आत्मविश्वास जिंदा हो तो जिंदगी दोबारा भी शुरू की जा सकती है। फिलहाल खुशी वाणी को थोड़ी सी देर के लिए यही विराम देते हैं और दोस्तों को फिर से सीधा लिए चलते हैं कि संगीत की ओर और सुनवा देते हैं ये प्यारा संगीत।
2: अपनी जुबान से के तेरे नैना है जरा बेईमान से मतवा।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: दोस्तों, राजस्थान की धरती वीरों की धरती कही जाती है। यहाँ की मिट्टी में देशभक्ति की खुशबू बसती है और आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ही एक महान स्वतंत्रता सेनानी की जिन्होंने जोधपुर की धरती से अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी।
1: जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के जोधपुर के महान स्वतंत्रता सेनानी छगन राज चौक

0: पासनी वाला। दोस्तों महान स्वतंत्रता सेनानी छगन राज चौपासनी वाला का जन्म 26 मई 1912 को जोधपुर में हुआ था। छगन राज चौपासनी वाला राजस्थान के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: दोस्तों इनके बारे में जब हम आपसे विस्तृत में बात करें तो आपको बता दें कि ये जो थे ना, ये महात्मा गांधी के विचारों से काफी प्रभावित थे।
0: बिल्कुल,
1: उन्होंने सत्य, अहिंसा और स्वदेशी जैसे विचारों को लोगों तक पहुंचाया और युवाओं में देश प्रेम की भावना जगाई।
0: हाँ, और उस दौर में अंग्रेजों के खिलाफ बोलना आसान नहीं था मनीषा। फिर भी आंदोलनों में भाग लेने वालों को जेल भेज दिया जाता था। कई बार मारपीट और अत्याचार भी झेलने पड़ते थे, लेकिन छगन राज जी ने कभी अपने कदम पीछे नहीं हटाए।
1: और इसी के साथ साथ दोस्तों 1931 में यूथ लीग के नागरिक अवज्ञा आंदोलन उन्होंने प्रारंभ किया, जिसमें स्वदेशी अपनाने पर उन्होंने जोर दिया।
0: बिल्कुल, और छगन राज जी ने अनेक संस्थानों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे मारवाड़ हितकारिणी सभा, यूथ लीग, बाल भारत सभा, पीपल्स एसोसिएशन, प्रजा मंडल, लोक परिषद जैसी अनेक संस्थाओं में भागीरथ थे।
1: यदि बात करें दोस्तों 26 जनवरी 1932 की, तो जोधपुर की जूनी धान मंडी में छगन राज चौपासनी वाला ने पहली बार तिरंगा फहराया था। ये कितनी रोचक बात है ना।
0: बिल्कुल,
1: इसके लिए उनकी जो है पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई थी, जिससे वे घायल हो गए थे और इसके लिए उन्हें जो है
0: दो महीने के लिए
1: सजा भी दी गई,
0: जेल में डाला गया था। और जयनारायण व्यास के साप्ताहिक पत्र लोकराज का संपादन कार्य भी छगन राज चौपासनी वाला ने स्टार्ट किया था, और वे जनसभाओं, आंदोलनों और जागरूकता अभियानों में सक्रिय रहे। उनका उद्देश्य सिर्फ आजादी पाना नहीं था, बल्कि लोगों में आत्मसम्मान और एकता की भावना जगाना था।
1: बिल्कुल दोस्तों, इतिहास में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका संघर्ष किताबों के कुछ पन्नों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन जाता है। और छगन राज चौपासनी वाला भी उन्हीं प्रेरणादायक व्यक्तियों में से एक थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि अगर इरादे मजबूत हों तो एक असाधारण इंसान भी इतिहास रच सकता है।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
3: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
4: बन गया बजट?
3: हाँ,
4: 5,000 बच गए।
3: तो नई साड़ी ले ले।
4: ना,
3: पिछले महीने तो ली थी।
4: एक और
3: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
4: बढ़िया,
3: जाओ भाई।
5: RBI कहता है
2: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में, और मैं हूँ आपकी अपनी खुशी, और मेरे साथ हैं
1: मैं हूँ मनीषा,

0: दोस्तों, ज्ञान और विज्ञान की रोचक दुनिया से भरे विज्ञान धारा सेगमेंट में आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड की एक ऐसी अद्भुत खोज की जिसने अंतरिक्ष को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया।
1: हाँ बिल्कुल। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण तरंगों के बारे में। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आपने किसी शांत तालाब में एक पत्थर फेंका और पत्थर गिरते ही पानी की लहरें उत्पन्न हुई और चारों तरफ फैल गईं।
0: हाँ खुशी, ठीक इसी तरह जब ब्रह्मांड में कोई बहुत बड़ी खगोलीय घटना होती है तो अंतरिक्ष और समय के ताने बाने भी लहरें उत्पन्न होती हैं।
1: हाँ बिल्कुल।
0: और इन्हें ही गुरुत्वाकर्षण तरंगे कहा जाता है।
1: यानी मनीषा, हम कह सकते हैं कि अंतरिक्ष समय से उत्पन्न होने वाली ये अदृश्य लहरें हैं जो प्रकाश की गति से यात्रा करती हैं। ये तरंगे ब्रह्मांड की सबसे ऊर्जावान घटनाओं जैसे दो ब्लैक होल्स हुए या न्यूट्रॉन तारों की टक्कर से उत्पन्न होते हैं।
0: और इन तरंगों के अस्तित्व की यदि हम बात करें तो इन तरंगों के अस्तित्व की जो कल्पना है सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी 1916 में अपने सामान्य सापेक्षता सिद्धांत के तहत। उनके अनुसार जब कोई भारी वस्तु गति करती है तो वह अंतरिक्ष समय में विक्षोभ पैदा करती है जो लहरों के रूप में बाहर की ओर फैलती है।
1: बिल्कुल। और ये सबसे शक्तिशाली रूप में तब बनती हैं जब विनाशकाय खगोलीय पिंड आपस में टकराते हैं। और ब्रह्मांड के अध्ययन से गुरुत्वाकर्षण तरंगों का बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि ये हमें उन घटनाओं को देखने और समझने में मदद करती है जो प्रकाश या अन्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणों द्वारा नहीं बताया जा सकता,
0: देखा नहीं जा सकता। बिल्कुल। और बात करें वर्ष 2015 की तो वैज्ञानिकों ने पहली बार गुरुत्वाकर्षण तरंगों को प्रत्यक्ष अवलोकन किया था और यह खोज लिगो नामक वैद्यशाला द्वारा की गई थी।
1: और मनीषा, ये खोज हमें बताती है कि विज्ञान की वर्तमान को समझने का माध्यम नहीं, विज्ञान जो विषय है वो बस समझने का माध्यम नहीं बल्कि भविष्य के अनगिनत रहस्यों के द्वारा खोलने वाली कुंजी है।
0: बिल्कुल ठीक कहा कि विज्ञान जो है ना ये वर्तमान को समझने का ही नहीं बल्कि भविष्य के अनगिनत, जैसा कि तुमने बताया, रहस्य जो है
1: उनको खोलने की कुंजी है
0: द्वार खोलने की कुंजी है। बिल्कुल। गुरुत्वाकर्षण तरंगे ब्रह्मांड की वह अदृश्य भाषा है जिन्हें सुनकर हम अरबों प्रकाश वर्ष दूर घटित घटनाओं की कहानी हम जान सकते हैं। तो दोस्तों, विज्ञान धारा सेगमेंट में ये तो बात की हमने गुरुत्वाकर्षण तरंगे के बारे में, अब बात करते हैं गीत की और चलते हैं संगीत की ओर।
1: बिल्कुल। तो लीजिए प्रस्तुत एक बेहद ही प्यारा सा गीत।

1927 से पहले भारत के पास ऐसा कोई सशक्त माध्यम नहीं था जो भारत को एक सूत्र में पिरो सके। 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे से पहली बार रेडियो की आवाज गूंजी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के नाम से। 8 जून 1936 को इसे नया नाम मिला ऑल इंडिया रेडियो। एक ऐसी आवाज जो हर दिल तक पहुंची।

धीरे धीरे ये सिर्फ एक आवाज नहीं रही, ये बनी भरोसे की अटूट पहचान, सूचना का सटीक स्रोत और भावनाओं की मजबूत डोर। यहीं से शुरू हुई आकाशवाणी की गौरवशाली यात्रा, जो आज भी हर सुबह हर घर में गूंजती है।

0: मलाल है मगर इतना मलाल थोड़े है कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़े है, ये आंखें रोने की शिद्दत से लाल थोड़े हैं। मजा तो जब है जिंदगी में, जब हम हार कर भी मुस्कुराएं, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़े है।
1: क्या बात है मनीषा, और बिल्कुल सच कहा तुमने कि जरूरी तो नहीं हर किसी के हिस्से में जीत ही आए, किसी के हिस्से में हार भी आती है, क्योंकि कोई ना कोई अगर जीता है तो कोई ना कोई हारा भी है।
0: लेकिन कई बार होता है ना कि हम जीवन में मेहनत करते हैं, खूब सारी कोशिश करते हैं, लेकिन मेहनत करते हुए भी कभी कभी जो परिणाम होते हैं ना वो हमारे अनुकूल नहीं होते।
1: हाँ, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है और शायद होता है कि वो जो मेहनत करी है ना हमने, वो कभी विफल नहीं होती।
0: बिल्कुल, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती।
1: व्यर्थ नहीं जाती। हो सकता है कि कोई एग्जाम हो या लाइफ हो या कुछ भी हो, रिश्ते हो, उनमें हम हारे हों, उस समय हम हारे हों, पर समय थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, पर हमारी जिंदगी बुरी नहीं होती।
0: बिल्कुल, और हमारे द्वारा जो की गई कोशिशें होती ना वो कभी व्यर्थ नहीं जाती।
1: हाँ, लेकिन आजकल क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं ना तो थोड़े से मार्क्स कम आ गए, जिसमें बहुत ज्यादा डिप्रेशन
0: हो जाते हैं
1: और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, परीक्षा के परिणाम आते आते ही एक सवाल हर जगह सुनाई देने लगता है कि कितने नंबर आए, घर में, स्कूल में, रिश्तेदारों के बीच, जैसे पूरी पहचान ही अंकों से तय होने लग जाती है।
0: ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। और कई बार क्या होता है कि बच्चे जो है ना खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं।
1: हाँ, वो इस वजह से कंपेयर करने लगते हैं ना, क्योंकि जैसे अभी मैंने कहा कि सबके मन में एक सवाल आ जाता है, घर परिवार आसपास सब लोग ये कहने लग जाते हैं, अरे उसके तो इतने नंबर आए, तुम्हारे इतने नंबर कैसे नहीं आए, तो फिर हमारे भी मन में कहीं ना कहीं आ जाता है और हम भी कंपेयर करने लग जाते हैं।
0: और अगर नंबर अच्छे आए तो खुशी, और थोड़े कम आए तो आत्मविश्वास भी कम होने लगता है।
1: लेकिन क्या सच में सिर्फ अंक ही हमारी जो काबिलियत है वो तय करते हैं? क्या एक रिपोर्ट कार्ड ही किसी इंसान के पूरे हुनर और सपनों और मेहनत को माप सकती है?
0: शायद नहीं।
1: बिल्कुल
0: नहीं, क्योंकि हर इंसान अलग होता है, हर किसी में प्रतिभा अलग होती है। कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है तो कोई संगीत में कमाल करता है, कोई खेल में अपना नाम बनाता है तो कोई लेखन में, कला में, या कोई हर
1: लीडरशिप में, कहीं ना कहीं तो वो आगे जरूर बढ़ता है। जरूरी नहीं है कि वो 3 घंटे हमारे पक्ष में नहीं रहे तो क्या हमने मेहनत नहीं करी, हमने बहुत मेहनत करी। और कोई हार जाता है तो ऐसा भी नहीं है कि वो पूरी तरह जिंदगी से हार गया। हाँ, हो सकता है कि अभी के लिए हम इस परीक्षा में हार गए, पर आगे आने वाली में अब तो अनुभव से पेपर देंगे।
0: बिल्कुल, जब तुमने अनुभव की बात की तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगी खुशी की, जो हमारी असफलताएं होती है ना,
1: हाँ,
0: वो हमारे लिए एक अच्छा अनुभव का काम करती है।
1: बिल्कुल दोस्तों, अंक जरूर महत्वपूर्ण है, अच्छे नंबर मेहनत का परिणाम होते हैं और कई मौके भी देते हैं, लेकिन जिंदगी की असली परीक्षा सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं होती,
0: बल्कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन, कम्युनिकेशन स्किल्स, पॉजिटिव थिंकिंग और लगातार सीखते रहने की आदत भी उतनी ही जरूरी होती है।
1: हाँ, और जब हमारा मेहनत कर रहे होते हैं हम, तो इन सब चीजों पे हमारा ध्यान होना बहुत जरूरी है, खासकर डिसिप्लिन और पॉजिटिव थिंकिंग। क्योंकि क्या होता है कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं ना तो बहुत सारे नेगेटिव विचार हमारे मन में चल रहे होते हैं कि हम पढ़ तो रहे हैं पर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे।
0: बिल्कुल, जब तुमने पॉजिटिव थिंकिंग की बात की तो मैं कहना चाहूंगी खुशी की सकारात्मक सोच बहुत जरूरी है हम सभी के लिए।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि सकारात्मक सोच ही तो सकारात्मक क्रिया को जन्म देती है।
1: हाँ, और इतिहास भी यही कहता है कि दुनिया के कई सफल लोगों की पहचान सिर्फ उनके अंकों से नहीं बनी, बल्कि उनके जुनून, मेहनत और कभी हार न मानने वाले हौसलों से बनी है।
0: इसीलिए दोस्तों, अगर कभी किसी परीक्षा में उम्मीद से कम अंक आ जाएं, तो खुद को कमजोर मत समझिए, क्योंकि एक रिजल्ट जो है ना, ये आपका पूरा भविष्य

0: अच्छे से नहीं कर सकता है।
1: और सबसे जरूरी बात, खुद की तुलना दूसरों से मत कीजिए। हर किसी की लर्निंग स्पीड और टैलेंट अलग होता है। किसी की ताकत साइंस हो सकती है तो किसी की भाषा या कला या खेल।
0: असली सफलता सिर्फ अच्छे अंक लाना नहीं है, बल्कि एक अच्छा इंसान बनना है, अपने ज्ञान का सही उपयोग करना है और समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है। तो दोस्तों, अंकों का सम्मान कीजिए, मेहनत कीजिए, लेकिन अपनी पहचान सिर्फ नंबरों को मत बनने दीजिए, क्योंकि असली पहचान आपके सपनों, आपके प्रयासों और उन्हें पूरा करने के साहस से बनती है।

0: तो दोस्तों, आज के इस खूबसूरत सफर में बस इतना ही। उम्मीद है हमारी बातें आपके दिल को छू गई होंगी और आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान भी ले आई होंगी। हमेशा याद रखिए, जिंदगी में हर दिन एक नया मौका लेकर आता है, बस जरूरत है खुद पर भरोसा रखने की। इसी प्यारी सी सोच के साथ आज हमें दीजिए इजाजत। मैं आपकी अपनी खुशी
1: और मनीषा को नमस्कार।

अभी हमारे युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का चंपल चैनल है, एफएम 102 और 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलो हर्ट्ज़ पर। 6 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे जिन्हें हम रिले करेंगे।

0: समाचार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल तथा समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों के बारे में दृश्यों के साथ जानकारी को लेकर भी सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक प्रायोगिक आधार पर बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। क्वाड देशों ने भारत अमरीका महत्वपूर्ण खनिजों की रूपरेखा पर भी हस्ताक्षर किए। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
1: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका क्वाड साझेदारी के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त बयान में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग ने कहा कि क्वाड ने क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप के माध्यम से हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अब तक की सबसे मजबूत प्रतिबद्धता की घोषणा की है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के प्रति क्वाड की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। उन्होंने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल BSF के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृह मंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेज

0: प्रोग्राम के दूसरे चरण की भी शुरुआत की। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंत राय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। देश के प्रमुख शेयर सूचकांक आज लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 419 अंक गिरकर 76,010 पर बंद हुआ। निफ्टी 118 अंक गिरकर 23,914 पर आ गया। आईपीएल क्रिकेट में आज पहले क्वालिफायर में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 वर्ष पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है। FM 102 और 103.6 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलो हर्ट्ज पर प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं फिल्म मेरी हमदम मेरे दोस्त के इस गीत के साथ। मोहम्मद रफी के गाए इस गीत को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने।

आकाशवाणी के चंबल चैनल से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आइए अब सुनते हैं फिल्म कटी पतंग का ये गाना। किशोर कुमार के गाए इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया है आरडी बर्मन ने।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल। लीजिए सुनिए कार्यक्रम संबंधी सूचना। आरोग्य वाणी कार्यक्रम में बुधवार दिनांक 27 मई को प्रातः 8:15 पर फोन इन कार्यक्रम का विषय रहेगा तंबाकू से होने वाले कैंसर। जो श्रोता इस विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं वे टेलीफोन करके सीधे डॉक्टर मनीष गौतम से बात कर सकते हैं। समय एक बार फिर से सुन लीजिए, बुधवार दिनांक 27 मई को प्रातः 8:15 से 9 बजे तक हमारे टेलीफोन नंबर होंगे 0744-29-411-42। सूचना समाप्त हुई। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का अगला नगमा।

सनम तेरी कसम। जी हाँ, ये है फिल्म का नाम। और नगमा निगार है गुलशन बावरा, मौसीकार हैं आर डी बर्मन।

अभी आप आशा भोसले, आर डी बर्मन और साथियों को फिल्म सनम तेरी कसम में सुन रहे थे। कार्यक्रम संबंधी एक और सूचना आपको दे देते हैं। बुधवार दिनांक 27 मई 2026 को सायं 7 बजे से 7:30 बजे तक सजीव फोन इन कार्यक्रम का विषय रहेगा ग्रीष्म काल में मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन एवं खरीफ फसलों की तैयारी। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर गोपाल लाल मीना, मृदा वैज्ञानिक डडवाड़ा कोटा। आप इस सजीव फोन इन कार्यक्रम में इस प्रसारण के दौरान विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर होंगे 0744-29-411-42। प्रसारण समय बुधवार सायं 7 बजे से 7:30 बजे तक।

आइए सुनते हैं शैलेंद्र की लिखी हुई ये गीत रचना। फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई के इस गीत को संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने, और आवाजें हैं लता मंगेशकर और साथियों की।

फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई। इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत अब खत्म हुआ। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं, FM 102 और 103.6 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही क्षणों में हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिले की चिट्ठी और फिर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित होंगे, जिन्हें हम अनुप्रसारित करेंगे।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। आपसे थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद जिले की चिट्ठी और फिर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।

0: ये अरे धत ये तो पॉटी कर, कोई नहीं आराम से कर ले। हो गई, कर ली पॉटी? अरे माया
1: आई माँ जी।
0: अरे ये पोंछा वोंछा बाद में लगाना, पहले चुन्नू की पॉटी धुलवा दे।
1: लो दो,
0: इधर डाल, इधर पांव पे लग रही है, इधर
1: से दो, उधर से, उधर से दो, हाँ वो दो।
0: ठीक, अब मेरा राजा बेटा अपनी माँ के पास दूध पीने जाएगा। माया मैं चुन्नू को बहू को देकर आ रही हूँ, तब तक तू ये चुन्नू की पॉटी सामने जो खाली प्लॉट है ना वहाँ पे फेंक दे।
1: क्यों खाली प्लॉट में, क्यों बाहर, क्यों संडास में, क्यों नहीं? बाहर फेंकूंगी तो मक्खियाँ नहीं भिन भिन आएंगी। हाँ
0: अरे तू कहना क्या चाहती है?
1: तो जरा सोचिए माँ जी, जब मैं चुन्नू की पॉटी खाली प्लॉट में खुले में फेंक के आऊंगी तब उस पे मक्खियाँ नहीं बैठेंगी, और फिर वही मक्खियाँ उनके खाने पीने की चीजों, मुन्ने की दूध की बोतल और घर की अन्य चीजों पे बैठ के उन्हें अशुद्ध नहीं करेंगी, बीमारियाँ नहीं फैलाएंगी।
0: ये बात तो है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं।
1: तो अब सोचिए माँ जी।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो।

0: करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा तंत्र को पूरी तरह अभेद्य बनाने के लिए बीएसएफ, सेना, प्रशासन और जागरूक नागरिकों को मिलकर काम करने पर जोर दिया। अगले साल दिसंबर से व्यावसायिक उड़ानों के संचालन के लिए तैयार होगा कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वरिष्ठ अध्यापक के 6,500 पदों के लिए भर्ती कार्यक्रम जारी किया। और प्रदेश के उत्तरी, पश्चिमी और कुछ पूर्वी इलाकों में लू के असर से जनजीवन प्रभावित, कई स्थानों पर रात का पारा भी 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचा। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा तंत्र को पूरी तरह अभेद्य बनाने के लिए बीएसएफ, सेना, प्रशासन और जागरूक नागरिकों को मिलाकर चतुष्कोणीय ग्रिड तैयार करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि किसी भी खतरे से निपटने की संयुक्त जिम्मेदारी इन सभी की होनी चाहिए। श्री शाह आज बीकानेर के पास बीएसएफ की सांचू पोस्ट पर आयोजित प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चतुष्कोणीय ग्रिड के माध्यम से ही सीमा पर उत्पन्न खतरों का पूरी ताकत से मुकाबला किया जा सकता है।
4: हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमें जागरूक करना पड़े और ये बीएसएफ, सेना और जागरूक नागरिक, ये तीनों मिलकर एक मजबूत सुरक्षा की ग्रिड बना सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ की सरकार का स्थानीय प्रशासन, ये चतुष्कोण जब तक हम समाप्त नहीं करते हैं, कभी भी हम सुरक्षित सीमा की कल्पना नहीं कर सकते।
3: गृह मंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए चलाए जा रहे वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि इसके जरिए सीमा पर स्थित गांव के लोगों को भी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 महीने में कर दी जाएगी। गृह मंत्री ने कहा कि राजस्थान में 1,096 किलोमीटर लंबी लेटरल रोड बनने से न केवल बीएसएफ की सुविधाएं बढ़ेंगी बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों की कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। उन्होंने सीमा से 50 किलोमीटर अंदर तक के क्षेत्र के नागरिकों और युवाओं से लगातार संवाद कर उन्हें सीमा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के प्रति जागरूक करने की जरूरत पर बल दिया। श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से देश के सुरक्षा तंत्र में व्यापक बदलाव हुए हैं। सेना और अर्धसैनिक बलों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है तथा आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया गया है।
4: सेना को आधुनिकीकरण हो रहा है, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का भी हम बहुत अच्छे तरीके से, एक प्रकार से कंप्लीट सुरक्षा सुनिश्चित हो उस तरह से आधुनिकीकरण करने जा रहे हैं। और जहां जहां भी कुछ बड़े प्रयास आतंकवादियों द्वारा किए जाते हैं, वहां रूथलेसली उनको मुंह तोड़ जवाब भी देने की नीति भारत सरकार ने अपनाई।
3: इससे पहले गृह मंत्री ने सीमा पर तैनात जवानों का उत्साह वर्धन करते हुए देश की सुरक्षा में उनके योगदान की सराहना की। इस अवसर पर उन्होंने सीमा चौकियों पर नवनिर्मित 14 महिला बैरकों का ई लोकार्पण भी किया। गृह मंत्री ने बीकानेर में एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय गृह मंत्रालय और बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण अगले वर्ष अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद यहां से उड़ानें संचालित हो सकेंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में एयरपोर्ट के निर्माण कार्य की प्रगति को लेकर आज नई दिल्ली में हुई बैठक में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी

अधिकारियों ने ये जानकारी दी। लोकसभा अध्यक्ष ने बैठक में एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों को कोटा एयरपोर्ट पर ही इमिग्रेशन संबंधी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री बिरला ने पुराने एयरपोर्ट के स्थान पर एक फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल खोलने की संभावनाओं पर विचार करने को कहा। इस बैठक में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा कोटा के संभागीय आयुक्त, कोटा बूंदी के जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े। गौरतलब है कि 1088 एकड़ क्षेत्र में विकसित हो रहा ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा। एयरपोर्ट का रनवे लगभग 3 किलोमीटर लंबा होगा। इस रनवे पर दुनिया के बड़े एयरक्राफ्ट भी आसानी से उतर सकेंगे। एयरपोर्ट की वार्षिक यात्री क्षमता लगभग 20 लाख यात्रियों की होगी। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने पद्मश्री से सम्मानित होने वाली प्रदेश की 3 विभूतियों को बधाई दी है। श्री बागड़े ने कहा कि इन हस्तियों के सम्मान से पूरा राजस्थान गौरवान्वित हुआ है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 66 विभूतियों को देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से अलंकृत किया। इनमें प्रदेश की 3 हस्तियां, सामाजिक सेवा और लोक कल्याण के क्षेत्र में योगदान करने के लिए स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज, लोकवाद्य भपंग को वैश्विक पहचान दिलाने वाले गफरुद्दीन मेवाती जोगी और अलगोजा वादक तगाराम भील भी शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, YouTube चैनल राजस्थान AIR न्यूज और Facebook AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अध्यापक के 6500 पदों पर भर्ती के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया है। बोर्ड सचिव ने बताया कि इन परीक्षाओं का आयोजन 12 से 18 जुलाई तक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा। आयोग ने परीक्षा के सुगम संचालन में विभाजित किया है। विषयों और परीक्षाओं की पर अपलोड कर दी गई है। तिथि की जानकारी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। गौरतलब है कि ये परीक्षा 10 विषयों के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जा रही है। प्रदेश में किसानों को नकली और अमानक बीजों से बचाने के लिए कृषि विभाग की ओर से आज बीकानेर, सीकर, जोधपुर और जयपुर में व्यापक अभियान चलाया गया। इस दौरान कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा और अन्य अधिकारियों ने अलग अलग जगह नकली बीज बनाने वाली 14 फैक्ट्रियों में छापेमारी की। चौमू स्थित एक बीज कंपनी में छापेमारी के दौरान श्री मीणा ने दावा किया कि कंपनी में गुणवत्ताहीन मूंगफली के बीज की पैकिंग की जा रही थी। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार नकली बीज बनाने और बेचने वालों के खिलाफ लगातार सख्त कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार आगामी बुवाई सत्र के लिए किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणिक बीज उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जयपुर जिले में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से तंबाकू के दुष्परिणाम के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रवि शेखावत ने बताया कि अभियान के दौरान लोगों को तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, साथ ही परामर्श और आवश्यक रेफरल सेवाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस बीच आज महिलाओं और बालिकाओं में एनीमिया की दर कम करने के लिए शक्ति दिवस आयोजित किया गया। हर मंगलवार को आयोजित होने वाले शक्ति दिवस के दौरान अस्पतालों में बालिकाओं और महिलाओं की हीमोग्लोबिन की जांच की जाती है, साथ ही एनीमिया के उपचार के लिए आयरन की गोलियां दी जाती हैं। और अब मौसम। प्रदेश के उत्तरी, पश्चिमी और कुछ पूर्वी इलाकों में लू के असर से जनजीवन प्रभावित हुआ है। इन क्षेत्रों के कई जिलों में आज भी अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। दिन के साथ साथ रात में भी पारा सामान्य से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में श्रीगंगानगर में सबसे अधिक 47 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ। फलोदी और बीकानेर में 46 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया।
बीती रात कोटा, बीकानेर, संगरिया, करौली और दौसा में न्यूनतम तापमान 32 डिग्री से ऊपर मापा गया।

0: गया। झुलसाने वाली गर्मी और तेज धूप के कारण दिन के समय सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही सीमित रही। चूरू में भीषण गर्मी से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। बाड़मेर और जैसलमेर में भी लगातार जारी लू से लोग बेहाल हैं। भीषण गर्मी और लू से बचाव के प्रबंधों को लेकर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने आज जिला अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद मीडिया को उन्होंने बताया कि अधिकारियों को बिजली और पानी की व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।
1: जितनी आवश्यकता है उसके अनुरूप बिजली उपलब्ध हो, इसके लिए विभाग पूरे तरह से प्रयास कर रहा है और मैं समझ सकता हूँ कि जल्दी ही बिजली विभाग आज बिजली की आपूर्ति को दुरुस्त करेगा, पानी की आपूर्ति सुचारू हो, और अन्य विभागों को भी निर्देश दिए हैं जनता के प्रति जवाबदेह होकर उनकी समस्याओं का निदान समाधान सुनिश्चित करें।
0: मौसम केंद्र जयपुर ने कल भी तेज गर्मी और गर्म हवाएं चलने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। वहीं 28 मई से प्रदेश के कुछ भागों में आंधी और बारिश की गतिविधियां दर्ज की जा सकती हैं। गर्मी की छुट्टियों में बढ़ती यात्री भीड़ को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए 52 जोड़ी रेल सेवाओं में विभिन्न श्रेणियों के 132 अतिरिक्त डिब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि यह बढ़ोतरी जून माह के दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण रेल मार्गों पर की जाएगी। उन्होंने बताया कि इससे यात्रियों को प्रतीक्षा सूची की समस्या से राहत मिलेगी और यात्रा अधिक सुगम हो सकेगी। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर वन मुकाबले में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे आईपीएल 2026 के फाइनल में पहुंचेगी। वहीं हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा तंत्र को पूरी तरह अभेद्य बनाने के लिए बीएसएफ, सेना, प्रशासन और जागरूक नागरिकों को मिलकर काम करने पर जोर दिया। अगले साल दिसंबर से व्यावसायिक उड़ानों के संचालन के लिए तैयार होगा कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वरिष्ठ अध्यापक के 6,500 पदों पर भर्ती के लिए कार्यक्रम जारी किया और प्रदेश के उत्तरी, पश्चिमी और कुछ पूर्वी इलाकों में लू के असर से जनजीवन प्रभावित। श्रीगंगानगर में सबसे अधिक 47 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से श्रीगंगानगर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख जितेंद्र शर्मा ने तैयार किया है। श्रीगंगानगर जिला इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। हीट वेव के हालात और अधिकतम तापमान 45 डिग्री से ऊपर पहुंचने से लोग बेहाल हो रहे हैं। दिन के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं गर्मी से राहत के लिए लोग शीतल पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। विभिन्न स्थानों पर सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। नगर परिषद के अलावा लोग खुद के स्तर पर भी छिड़काव कर रहे हैं। वहीं भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों पर पीने के ठंडे पानी की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही ओआरएस के पैकेट बांटे जा रहे हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई है। गंगा दशमी के मौके पर जिले में कल से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत हुई। जिला स्तरीय कार्यक्रम शिवपुर हेड पर रखा गया। जिला कलेक्टर अमित यादव ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 5 जून तक चलने वाले इस अभियान के तहत वर्षा जल संग्रहण और पानी की बचत के लिए विभिन्न जागरूकता गतिविधियां रखी जाएंगी। इसके अलावा स्वच्छता, श्रमदान, जल संरक्षण शपथ और पौधरोपण भी किया जाएगा। जिला स्तरीय कार्यक्रम में किसानों से सिंचाई जल के कुशलतम उपयोग की अपील की गई। साथ ही उन्हें डिग्गी निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया गया। जिले में पारंपरिक कुओं, बावड़ियों और तालाबों की भी अभियान के तहत साफ सफाई की जाएगी। वहीं विभिन्न औद्योगिक समूहों, भामाशाहों और नागरिकों को अभियान से जोड़ा जाएगा। जल संकट से निपटने के लिए इस अभियान को जन आंदोलन

0: संतुलन बनाने के प्रयास किए जाएंगे। ये प्रयास जल आत्मनिर्भरता और हरित राजस्थान बनाने की दिशा में अहम साबित होंगे। प्रदेश के सहकारिता और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री गौतम कुमार दक पिछले दिनों सूरतगढ़ प्रवास पर रहे। उन्होंने गंगानगर के लिए सहकारी बैंक की रजियासर शाखा में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान दुर्घटना बीमा योजना के तहत मृतक आश्रितों को 10-10 लाख रुपए के बीमा सहायता राशि के चेक सौंपे गए। कार्यक्रम में श्री दक ने सहकार से समृद्धि योजना के नवाचारों का भी जिक्र किया। उन्होंने सहकारिता को बढ़ावा देने पर जोर दिया। श्रीगंगानगर में एसीबी ने घड़साना थाने के एसआई रामेश्वर लाल को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। आरोपी ने ये रकम परिवादी से पिछले साल दर्ज एक मुकदमे में कार्रवाई नहीं करने की एवज में मांगी थी। बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए एचपीवी टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जिले में अब तक 3,000 से ज्यादा पात्र किशोरियों को ये टीका मुफ्त लगाया जा चुका है। जिला कलेक्टर ने अभिभावकों से 14 वर्ष की बालिकाओं को ये टीका लगवाने का आग्रह किया है। आशा सहयोगिनियां और एएनएम भी घर घर जाकर लोगों को इस टीके के बारे में जागरूक कर रही हैं। श्रीगंगानगर के युवा क्रिकेटर मानव सुथार का भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। उनकी इस उपलब्धि से परिवार के साथ ही जिले में खुशी का माहौल है। खेल प्रेमियों की ओर से मानव के परिवार को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। श्रीगंगानगर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव विनोद सहारा ने उनकी इस शानदार उपलब्धि को जिले के लिए ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि इससे अन्य खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी। मानव को क्रिकेट की बारीकियां सिखाने वाले कोच धीरज शर्मा ने भी उनकी इस कामयाबी पर खुशी जताते हुए उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। वहीं रांची में आयोजित सीनियर नेशनल फेडरेशन कप में जिले के रावला क्षेत्र की एथलीट कुलविंदर कौर ने हैमर थ्रो में सिल्वर मेडल हासिल किया है। राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए कुलविंदर ने 57 मीटर 76 सेंटीमीटर दूर हैमर फेंक कर ये उपलब्धि हासिल की। पुलिस ने श्रीगंगानगर में ड्रग तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पंजाब के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 5 अवैध हथियार और भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए। पुलिस ने समीजा कोठी इलाके में ये कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने बताया कि मामले में तस्करी नेटवर्क की जांच की जा रही है। फिट इंडिया मिशन के तहत संडे ऑन साइकिल अभियान के जरिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया जा रहा है। इसी के तहत दौलतपुरा से क्यू हेड सीमा चौकी तक साइकिल रैली निकाली गई। बीएसएफ के जवानों और अधिकारियों के साथ इस रैली में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भी भाग लिया। क्यू हेड पोस्ट पर रैली के समापन पर योग सत्र रखा गया। इसमें प्रतिभागियों को योगाभ्यास करवाया गया। इसके साथ ही श्रीगंगानगर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार।

0: खास समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीमा सुरक्षा तंत्र ने पूरी तरह अजेय बनावन सारू बीएसएफ फौज प्रशासन और जनता कानियों मिलर काम करण माथे जोर तीनो। कोटा बूंदी ग्रीन फील्ड हवाई अड्डाओ आवता साल दिसंबर उड़ाना शुरू फैला। आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक रा 6,500 ओहदा माथे भर्ती सारू परीक्षा रो कार्यक्रम जारी कीनो। और प्रदेश के हल्का माए लू रो कोप कई थोड़ा रात्रि बगति पारो 32 डिग्री सेल्सियस ने पार कीनो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहो है कि सीमा सुरक्षा तंत्र ने पूरी तरह अजेय बनावन सारू बीएसएफ फौज प्रशासन और जनता ने मिलार ग्रिड बनावनो घणो जरूरी है। श्री शाह आज बीकानेर कने बीएसएफ री सांचू पोस्ट माथे राखी जा प्रहरी सम्मेलन माय बोल रहा है। वे कहो कि ई ग्रिड रे जरिए सरहद माथे रा खतरा रो पूरी ताकतों मुकाबलो करियो जा सके है।
1: हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमें जागरूक करना पड़े और ये बीएसएफ सेना और

0: जागरूक नागरिक ये तीनों मिलकर एक मजबूत सुरक्षा की ग्रिड बना सकते हैं और इसके साथ साथ यहां की सरकार का स्थानीय प्रशासन ये चतुष्कोण जब तक हम समाप्त नहीं करते हैं कभी भी हम सुरक्षित सीमा की कल्पना नहीं कर सकते।
1: श्री शाह सरहदी हलका ना विकास सारू चलाया जा रहा वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम रो जिक्र करता था का कहो का इरे जरिए सरहद माथा बसियोड़ा गांव रा लोगा नई केंद्र और राज्य सरकार री जनता रा भलारी योजना मा रो फायदो मिल सकेला। वे कहो का सरहदी हलका माय ड्रोन न खत्म करण री मशीना बनावन रो कारखानो लगावन रो काम 6 महीना माय शुरू करतियो चावेला। गृहमंत्री कहो के प्रदेश में 1096 किलोमीटर लंबी लेटरल रोड बनवाऊ बीएसएफ रो सुबीतो बधवा सके सरहदी हलका रो जुड़ाव भी मजबूत बनेला। गृहमंत्री सरहदों 50 किलोमीटर अंदर ताई रा हलका री जनता और नौजवानों लगातार बातचीत कर और वहां माए सरहद री हिफाजत जुड़िया मुद्दा ने बारा माए जाग जगावन ने जरूरी बतायो। श्री शाह कहो के साल 2014 पाछे फौज और अर्ध सैनिक बलान ने और मजबूत बनावन सागे आतंकवाद रे खिलाफ करोड़ों रुख अपनाई चियो है।
0: सेना को आधुनिकरण हो रहा है, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का भी हम बहुत अच्छे तरीके से एक प्रकार से कंप्लीट सुरक्षा सुनिश्चित हो उस तरह से आधुनिकरण करने जा रहे हैं और जहां जहां भी कुछ बड़े प्रयास आतंकवादियों द्वारा किए जाते हैं वहां रूथलेसली उनको मुंह तोड़ जवाब भी देने की नीति भारत सरकार ने अपनाई।
1: इनो पहले गृहमंत्री सरहद माथे तैनात जवाना रो उमाव बधाता थका देश री हिफाजत माए वारा योगदान री सराहना कीनी। इ मौके वे सरहद माथे बनी चौकिया माए महिलावां सारू नूवी बनाई जी 14 बैरका ने इलेक्ट्रॉनिक तरीका जनता ने सौंपी। गृहमंत्री बीकानेर माए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सागे प्रशासन और पुलिस रा आला अहलकाराओं बातचीत कीनी। कोटा बूंदी ग्रीन फील्ड हवाई अड्डो बनावन रो काम आवता साल अक्टूबर महीना ताई पूरो कर लियो जावेला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला री सदारत माए आज नई दिल्ली माए भी मीटिंग माए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रा अहलकार आ जानकारी दीनी। ये पाछे वठे जहाज उड़ान भरन लाकेला। हवाई अड्डा दिसंबर 2027 ताई नियमित हवाई सेवा शुरू भेजा वेला। लोकसभा अध्यक्ष जूना हवाई अड्डा रिठौड़ एक फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल खोलन रे बारा माए विचार करण सारूई कहो। ध्यान जोग है कि 1088 एकड़ हलका माए बन रहा ई ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा रो रनवे 3.2 किलोमीटर लंबो फैला। ई हवाई अड्डा हर साल 20 लाख मुसाफिर उड़ान भर सकेला। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पद्मश्री नवाजी जी प्रदेश री 3 विभूतियां ने बधाई दीनी है। श्री बागड़े कहो के आ हस्तियां रा मानु राजस्थान रो माथो ऊंचो भियो है। ध्यान जोग है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू काल 66 विभूतियां ने राष्ट्रपति भवन माए पद्म अलंकाराओं नवाजी ही श्यामाए राज्य रा समाज सेवी स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज भपंग ने दुनिया माए ओलखाण दिरावन वाला गफरुद्दीन मेवाती जोगी और अलगोजारी मीठी धुन दुनिया भर माए पुगावन वाला तगाराम भील रो पद्मश्री पुरस्कार देर मान करी चियो हो। ऐसा समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रिया हो। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी माध्यमिक शिक्षा विभाग माए 10 विषया माए वरिष्ठ अध्यापक रा 6,500 ओहदा माथे भर्ती रो कार्यक्रम जारी करती नो है। बोर्ड रा सचिव बतायो का इम्तिहान 12-18 जुलाई ताई लियो चावेला। न्यारा न्यारा विषया री परीक्षावां ने 4 ग्रुप माए बांटी ची है। प्रदेश माए किसाना ने नकली और अमानक बीजाऊ बचावन सारू कृषि विभाग बीकानेर सीकर जोधपुर और जयपुर माए आज खास अभियान चलायो। इस दौरान कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अहलकारा सागे मिलर कथित नकली बीज बनावन रा 14 कारखाना माथे छापा मारिया। कृषि मंत्री चोमूरी एक बीज कंपनी माए छापामारी रे दौरान कंपनी माए घटिया मूंगफली रा बीज री पैकिंग रो दावो कीनो। डॉक्टर मीणा कहो के सरकार आवता बुवाई सत्र सारू किसानों ने बेहतर

0: गुणवत्ता वाला प्रामाणिक बीज मुहैया करावनो ते किन्नो है। तंबाकू रा गलत नतीजा रा बारा माए जनता माए जाग जगावन रा मकसद नू जयपुर जिला माए चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग री ओरू खास अभियान चलायो जा रियो है। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रवि शेखावत बतायो के अभियान रे जरिए लोगा ने तंबाकू छोड़ बारी सीख देवन सागे इनू जुड़ी राय और जरूरी सेवावां मुहैया कराई जावेला। 31 मई ने मनाया जावन वाला विश्व तंबाकू निषेध दिवस रे मौके सगला आयुष्मान आरोग्य मिंद्रा माए खास कार्यक्रम रख्या जावेला। इन विचे महिलावां और टाबरियां माए खून री कमी री परेशानी कम करण सारू आज शक्ति दिवस मनाई चियो। इन दौरान अस्पताल माए महिलावां रा शरीर माए खून री जांच सागे इन री कमी रो इलाज करी चियो और आयरन री गोलियां दी री ची। अरब मौसम प्रदेश माए न्यारी न्यारी छोड़ा लू बाजणो जिंदगी माथे घणो असर पड़ियो है। राज्य रा आतुणी उत्तराद और उगनी जिला माए आज ही पारो 44 से 46 डिग्री सेल्सियस या इनो ऊंचो दर्ज करी चियो। श्री गंगानगर माए 47 जबकि फलौदी और बीकानेर माए 46 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज करी चियो। रात्रि भगत ही तापमान सामान्य ऊंचो चाल रियो है। बीती रात कोटा बीकानेर सांगरिया करौली और दौसा माए रात रो तापमान 32 डिग्री सेल्सियस ने पार कर कियो। चूरू माए पड़ रही जोरदार गर्मियों लोगा ने घनी परेशानी रो सामो करनु पड़ रियो है। बाड़मेर और जैसलमेर माए लगातार बाज रही लू हाल बेहाल है। इन बीचे भयंकर गर्मी और लू बचाव रा प्रबंध रो जायजो लेवन सारू गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम आज डीग माए अहलकारा सागे मीटिंग कीनी। ये पाछे खबर नवीसा सागे बातचीत करता था कम वे कहो के अहलकारा ने बिजली पानी री पूर्ति बनाई राखन रा हुकम दिया चिया है।
1: जितनी आवश्यकता है उसके अनुरूप बिजली उपलब्ध हो इसके लिए विभाग पूरे तरह से प्रयास कर रहा है और मैं समझ सकता हूँ कि जल्दी ही बिजली विभाग आज बिजली की आपूर्ति को दुरुस्त करेगा, पानी की आपूर्ति सुचारू हो और अन्य विभागों को भी निर्देश दिए हैं जनता के प्रति जवाबदेह होकर उनकी समस्याओं का निदान समाधान सुनिश्चित करें।
0: मौसम केंद्र जयपुर काली मौसम सूखो रेवन सागे उन्नो बायरो बाजन रा आसार जताया है। इन बीचे 28 मई प्रदेश माए कठे कठे आंधी बारिश वेवन री संभावना है। गर्मी री छुट्टियां माए मुसाफिरा रा सुविधा सारू उत्तर पश्चिम रेलवे री 52 जोड़ी गाड़ियां माए 132 और डिब्बा जोड़िया जावेला। उत्तर पश्चिम रेलवे रा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन आ जानकारी दीनी। वे बतायो के आ बढ़ोतरी जून महीना माई करी चावेला। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना रा तहत आज 15 दिन ताई ऑनलाइन तरीकाओं अर्जी दी जा सके है। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत काल पाली माई बतायो हो के ई योजना रा तहत रेल और हवाई जहाज रे जरिए 56,000 बुजुर्गा ने मुफ्त तीर्थ करायो चावेला। आम आयु 50,000 यात्रु रेलगाड़ियों और 6,000 बुजुर्ग हवाई जहाजों सफर करेला। आईपीएल क्रिकेट रा ई सीजन रो पहलो क्वालिफायर मुकाबलो आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस बीच खेलो जावेला। अब थोड़ी देर पछे धर्मशाला माए फेवन वाला ई मुकाबला माए जीतन वाली टीम सीधी आईपीएल 2026 रा फाइनल माए पूग जावेला जबकि हारबा वाली टीम ने एक और मौको मिलेला। होड़ रातेत काल मोहाली माए खेलिया जावन वाला एलिमिनेटर मुकाबला माए राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमी सामी भेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए 31 मई ने विचार बतावेला। इन सारू आप ही मुफ्त नंबर 1800117800 माथे 29 मई ताई राय दे सको हो। नरेंद्र मोदी ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम रे जरिए ही विचार भेजा जा सके है। आखिर माए खास समाचार एक कर फिर सुन ली रहो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीमा सुरक्षा तंत्र ने पूरी तरह अजय बनावन सारू बीएसएफ फौज प्रशासन और जनता कानून मिलर काम करण माथे जोर दीनो। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डाओं आवता साल दिसंबर व्यावसायिक उड़ाना शुरू है।

खेती किसानी की जानकारी और लोक गीतां सु भरपूर चौपाल कार्यक्रम सुनवाड़ा सभी किसान बण भाया कताई सुरेंद्र भाई की आडी सु घनी घनी राम राम। काई हाल चाल चे कादगार भाई बनाऊ, हाल चाल तो सभी का ही मजा का होगा और होनी भी चाहिए जी। गर्मी को मौसम च 11 बजे से लेर 4 बजे ताई बराबर झक्कर चाले छे, तो ई दन का टंप जब भी आपन घर सु बारह खड़ा तो बढ़िया ओड फररी बारह खड़ा अति आवश्यक काम ये काम हो कहाँ भाई जानू छे तभी आप बारह कढ़ा लापरवाही कतई न बरता कासगार भाई बनाओ। वशा भी सरकार ने 25 तारीख सु तापमान में बढ़ोतरी बता रखी छे, तो ये बढ़ती गर्मी का कारण अपना शरीर में पानी की कमी हो सके छे और उल्टी दस्त बुखार हो बाकी संभावना बहुत ही ज्यादा रह सके छे कासगार भाई बना। तो आपन भी ज्यादा से ज्यादा नींबू पानी ओआरएस को घोल छाछ दही असी घनी चीजा छे जो आपन कताय बीमार हो बासू बचा सके छे कासगार भाई बनाओ। कासगार भाई बनाओ ई गर्मी का मौसम में आपन भी अपना छोटा टाबरा को भी विशेष ध्यान रखानो छे। रात का टाइम पर खानो खावा के बाद जैसे वो पानी वाणी न पे तो पानी की कमी हो जाओ छे तो वहां भी वो बीमार हो सके छे, तो रात का टाइम पर वहां भी आपन भी एक दो बार पानी जरूर पिलानो छे। एक साथ ही जो अपना अणबोलिया साथी छे अपना जानवर छे वहां को भी आपन कताय विशेष ध्यान रखानो छे कासगार भाई बनाओ, क्योंकि आपन तो बोलर सारी बात बता सका छा पण वो कश्या बताओगा बाबड़ा। वहां के लेकर ही गर्मी का मौसम में अपन हरा चारा की व्यवस्था रखानी छे, ठंडो पानी पवानो छे और ज्या आपन वहीं बांधा वहां बढ़िया छायादार जगह वहां का लेकर होनी चाहिए जी कासगार भाई बनाओ। कासगार भाई बनाओ अब छे अपना खेता का ताई व्यवस्थित करवा को टम फसल अवशेष प्रबंधन का माध्यम से आपन अपना खेता का ताई बढ़िया तैयार कर सका छा और अच्छी पैदावार ले सका छा। फसल अवशेष प्रबंधन को मतलब छे का अपना आपन जो फसल काटा छा उसके बाद अपना खेता में जो बचा डंटल छे पुआल छे पत्तियां छे भूसो छे वहां का ताई वैज्ञानिक तरीका से आपन उपयोग में ले सका छा। इको उद्देश्य अवशेषा का ताई बना जड़ाए मिट्टी मिट्टी का ताई उपजाऊ बनावो और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता का ताई बढ़ावो छे, पर्यावरण का ताई प्रदूषण से बचावो छे। फसल अवशेष प्रबंधन बहुत ही जरूरी छे। इसु खेता में अवशेषा का ताई सड़ार मलार जैविक कार्बन और पोषक तत्व नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ाई जा सके छे। इक ताई जड़ाबासू होबाला भारी वायु प्रदूषण और धुआं से बचो जा सके छे। मल्चर और रोटावेटर जैसी उन्नत मशीना को उपयोग कर आपन अवशेषा का ताई छोटा टुकड़ा में काट रवाना मिट्टी में मिला रवाना खाद का रूप में उपयोग में ले सका छा कासगार भाई बनाओ। मां को तो यही खबर छे कि फसल अवशेष प्रबंधन आप जरूर अपनाओ और अपना खेत की और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता का ताई बढ़ाओ। कासगार भाई बनाओ चौपाल कार्यक्रम में अपनी बातचीत चलती रहेगी थोड़ा सा अंतराल के बाद।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: तीनों कॉलेज में
3: डोंट वरी
2: फीस तो देखो
4: क्या हाल है, क्या हुआ?
3: फीस की टेंशन,
4: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
5: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल।
4: वो कहाँ है
5: मिठाई?
6: RBI कहता है
7: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
8: कादगार भाई बनाओ एक बार फिर चौपाल कार्यक्रम में स्वागत है। आपका साथी सुरेंद्र गेलारा। कादगार भाई बनाओ मां चौपाल कार्यक्रम में भेंट वार्ता को भी एक विषय ले रहा हूं छा। तो आज चौपाल कार्यक्रम में भेंट वार्ता को विषय छे गर्मी का मौसम में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा। और ई विषय का लेख, ई विषय पर जानकारी देवा का लेख आज अपनी चौपाल में उपस्थित छे डॉक्टर महेंद्र नागर, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी राजकीय बहुउद्देश्य पशु चिकित्सालय बारा में। तो सुना चाहे या बातचीत भाई बनाओ चौपाल कार्यक्रम में नया नया मेहमान आओ छे वक द्वारा जी गई जानकारियां आप बताए बहुत ही ज्यादा लाभप्रद छे। आज चौपाल कार्यक्रम में जानकारी को विषय छे गर्मी का मौसम में पशुओं का ताई कसा स्वस्थ रखना और ई विषय पर जानकारी देबा का लेख आज अपना चौपाल कार्यक्रम में उपस्थित छे डॉक्टर महेंद्र नागर, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी राजकीय बहुउद्देश्य पशु चिकित्सालय बाराम। तो डॉक्टर साहब चौपाल कार्यक्रम में आपको स्वागत छे। राम राम साहब।
9: राम राम सुरेंद्र भाई।
8: डॉक्टर साहब जैसे कि गर्मी का मौसम में घनी प्रकार की चीजा सु बचनी पड़े छे, जैसे कि बाहर कड़े तो लाई फटकार लाग जाओ, जक्कर लाग जाओ, इकले का श्यापी लारा रखाना छे और हेलमेट पर छे, जूता पर रखानी पड़े छे और ठंडा मौसम में बाहर खड़नी पड़े छे। तो ये सारी सावधानियां तो अपन बरत लिया छा, पर एक अलावा अपना अणबोलिया साथी छे, अपना पशु छे बाबड़ा, वहां पर भी कहीं ये गर्मी का मौसम को प्रभाव पड़े छे?
9: बिल्कुल सही बात कहा सुरेंद्र भाई आपने। जैसे अपने मनुष्य पे गर्मी का प्रभाव पड़ता है वैसे ही जानवरों पर भी प्रभाव पड़ता है। आपने सही बात बोली कि अणबोले जानवर ये खुद बता नहीं सकते, इसी प्रकार पशु मालिक को करना पड़ेगा। तो जानवरों में जैसे आपने बताया ह्यूमन अपने मानव में होता है, वैसे जानवरों में भी सारी समस्याएं पैदा होती है, तो इनका बचाव के लिए अपन को बहुत सारे चीजें करनी पड़ती है।
8: अच्छा अच्छा, बहुत ही बढ़िया बात डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब की प्रकार का प्रभाव यहाँ का स्वास्थ्य पर ये गर्मी का मौसम पड़ सके?
9: सुरेंद्र भाई देखो, गर्मी के मौसम आने से जानवरों में सबसे पहले तो जो भी जानवर दूध देता है या अंडे देता है तो उनका क्या होता है कि उत्पादन घट जाता है। उत्पादन घटने का मुख्य कारण है वातावरण का तापमान बढ़ना। जैसे तापमान 40 डिग्री के ऊपर निकलता है वैसे जानवर अगर दूध दे रहा है तो देखा गया है उनका दूध उत्पादन घट जाता है। जानवरों में गर्मी के मौसम में अगर लू फटकार लग जाती है तो जानवर सुस्त हो जाता है, हांफना चालू कर देता है, मुंह से लार गिरना चालू हो जाती है और जानवर में डिहाइड्रेशन हो जाता है, चमड़ी सुस्त पड़ जाती है, ये सब समस्याएं इनमें पैदा होने लग जाती है।
8: बहुत ही बढ़िया बात डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब गर्मी का मौसम जैसे कि जानवर आम और भी कशा कशा रोग बरागोबा की संभावना रह जाएगा?
9: बिल्कुल सुरेंद्र भाई, गर्मी के मौसम में जानवरों में भी बहुत सारे रोग होते हैं। तापघात का होना, तापघात क्या होता है, गर्मी के टाइम में जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो जानवरों में बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रह पाता और टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जानवर में क्या होता है कि बुखार आ जाती है। बुखार आने से जानवर सुस्त पड़ जाता है, चारा पानी नहीं खा पाता है और जानवर की त्वचा भी ढीली पड़ जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से जानवर में जैसे खुरपका, मुंहपका या कोई जो जीवाणु जनित रोग है वो भी होने की संभावना बनी रहती है क्योंकि जानवर गर्मी के कारण से स्ट्रेस में रहता है। तो ये सब प्रकार की बीमारियां जानवरों में गर्मी से होने की पूरी पूरी संभावना रहती है।
8: बहुत ही बढ़िया बात डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब तो ये रोग बराग जैसे हो जाओ तो यहाँ का उपचार कासगार भाई और जो अपना पशुपालक भाई है वो की प्रकार से यहाँ रोगों को उपचार कर वहाँ का पशु स्वस्थ रह और वहाँ की प्रजनन क्रिया, वहाँ की उत्पादन क्षमता पर यहाँ

0: चीजों को प्रभाव कम से कम पड़े।
1: जैसे आपने बताया किसको रोगों से किस प्रकार बचाया जा सके, तो इसका बचाने का एक ही तरीका है कि कैसे भी करके इनका तापमान को अपन एक तो कम करें। तो तापमान कम करने के बहुत सारे अपने पास में प्रकार होते हैं। जैसे सबसे पहले तो अपन को उनका जो वातावरण है उसको जो ठंडा रखें। अब ठंडा रखने कैसे कैसे अपन ठंडा रख सकते हैं इसको, तो जैसे इनका आवास है, आवास को अच्छा छायादार हो, हवा अच्छे से उसमें प्रवाहित हो जिससे उनको तापमान नहीं बढ़े। गर्मी में अपन गांवों में जैसे अपने टीन शेड है तो उस टीन शेड तपते हैं, तो इनको तपने से बचाने के लिए इनके ऊपर अपन घास फूस वगैरह डाल दें। घास फूस को दिन में गर्म गीला करते रहें जिससे क्या उसका ऊपर का टेम्परेचर उसका मेंटेन रहे। उसके साथ ही अपन एक उपाय ये भी कर सकते हैं, अगर अपना शेड ओपन है तो उसको चारों तरफ से अपन जो देसी टाट की बोरी होती है उससे ढक सकते हैं। ढक के उसको रोजाना अपन दिन में 2-3 बार पानी से गीला कर दें, तो जो भी हवा उसमें अंदर प्रवाहित होगी वो हवा क्या उससे ठंडा रहेगा, उसका टेम्परेचर जो आवास तापमान है वो भी कम होगा। दूसरी चीज, अपन इसको गर्मी के टाइम में अपन को जानवर को क्या करना है, संतुलित आहार देना है। संतुलित आहार क्यों देना है, क्योंकि जानवर को गर्मी के कारण से भूख कम लगती है। जानवर पूरे गर्मी जब ज्यादा तेज गर्मी होती है जानवर खाता नहीं है, तो उसको वो सुबह शाम जब ठंडा मौसम होता है तभी जानवर खाना पसंद करता है। तो ठंडे मौसम के समय ही अपन को उसको खाने का देना चाहिए। तो खाने में अपन को कम, जब जानवर कम खाता है तो उसको अच्छी संतुलित आहार दें, जैसे उसमें अपने कार्बोहाइड्रेट वसा उसमें सम्मिलित करें, प्रोटीन उसमें सम्मिलित करें, तो उसमें जो जानवर भूख कम लग रही है उससे उसकी पूर्ति हो सके। साथ ही साथ अपन पहले देखा करते थे कि अपने जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो रेगुलर जानवरों को नमक दिया करते थे, पर अभी क्या कर रहा, अपने जैसे चेंज हो रहे हैं, अपन मोटा नमक तो अपन ने भी खाना बंद कर दिया, तो जानवरों को देना भी बंद कर दिया। तो नमक की जैसे अपने को भी जरूरत होती है वैसे जानवरों को भी बहुत जरूरत है, क्योंकि पहले भी जरूरत थी तो नमक देते थे। तो अपन को है ना जानवरों को नमक पानी के साथ, या तो पानी पिलाए पानी के साथ में नमक दें, या फिर जो उनको बाटा खिला रहे हैं बाटे में नमक डाल के खिलाए, तो जो गर्मी के टाइम में जो पसीना आता है उससे नमक की जो हानि होती है उससे अपन को उससे बचाया जा सके। अब सुरेंद्र भाई, जानवर को ठंडा और स्वच्छ पानी हमेशा गर्मी के टाइम में उपलब्ध रहना चाहिए। पानी ही, जैसे अपन बोलते हैं जल ही जीवन है, तो उसी प्रकार जानवरों को भी हमेशा 24 घंटा पानी उनके सामने उपलब्ध रहे, जब भी उनकी इच्छा हो तो पानी पी ले। क्योंकि अपन मनुष्य तो अपन बोल सकते हैं, अपन प्यास लगते हैं, अपन मांग सकते हैं, पर जानवर बेचारा मांग नहीं सकता। और गर्मी एक ऐसी चीज इसमें कभी भी पानी की आपको कमी होते पीना पड़ेगा, नहीं पिएंगे तो वही तापघात की संभावना बढ़ जाएगी।
0: अपन ही पलक पलक में पानी पीवा की कोशिश कर रहा जा, तो वो तो बावड़ा मुंडा सु भी न कर सके, तो या सुविधा तो काज घर और पशुपालक भाई यहाँ कहते हैं करनी ही पड़ेगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, पानी की व्यवस्था अच्छे स्वच्छ पानी की व्यवस्था जरूर करनी है। अब जैसे बता रहे थे अपन पुराने तरीके में अपन जानवरों को पहले जहाँ भैंसे अपने क्या होती है जिनको तापमान सहन कम होता है, तो भैंसे अपन ने देखा है कि जिन गांवों में पानी की व्यवस्था होती है जहाँ पोखर तालाब नदी वगैरह होती है, तो वो क्या करते हैं जानवरों को उसमें भैंसों को ले जाके पानी में डाल देते हैं। तो जो गर्मी के टाइम में क्या जानवर ठंडा भी रहता, तापमान भी नियंत्रण रहता है, डिहाइड्रेशन भी नहीं रहता। तो सबसे पुराना बेस्ट मेथड था तापमान नियंत्रण का कि पानी में जाके डाल दो, पर अब सब जगह तो उपलब्ध नहीं है, तो अपने आधुनिक तरीके आ गए, तो पानी की पूर्ति करने के लिए अपन क्या करने लगे, फोगिंग लगाने लग गए, मिस्टिंग करने लग गए, फुहारे लगाते हैं, कूलर लगा देते हैं, तो ये सब चीजें भी करके अपन बचाव कर सकते हैं। तो ये सब तरीके अपन अपना कर तो अधिक तापमान से पशुओं को अपने बचा सकते हैं। तो पशुपालक भाइयों, जैसे अपने मानव के लिए तापमान घातक है, ऐसे जानवरों के लिए भी तापमान घातक होता है, तो इससे बचाना बहुत जरूरी है।
0: बहुत ही बढ़िया जानकारी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब एक बात और बताओ कि गर्मी का मौसम में रोग बराग होबा की संभावना तो रहचे से ही, पशु बे गर्मी लागेगी तो रोग बराग होबा की संभावना रह, तो पशुओं के ताई ई टाइम पर गर्मी का मौसम में भी टीका वीका लगाया जाओ जगह ई टाइम पर भी पशुओं का।
1: देखो सुरेंद्र भाई, जैसे अपने टीकाकरण होता है, ऐसे भी समय समय पर अपने जानवरों में टीकाकरण होता है। गर्मी शुरू होने से पहले अपने भेड़ बकरियों में पशुपालक भाई फड़किया का टीका लगाते हैं। फरवरी मार्च में स्टार्ट करते हैं, तो जब जानवर सारों में चरने जाता है तो उसके फड़किया रोग से बचाव के लिए काम आता है। अभी हमारे राष्ट्रव्यापी एक अभियान चल रहा है, खुरपका मुंह

का रोग से उन्मूलन के लिए। तो इसके लिए अभी हम खुरपा एफएमडी के टीका लगा रहे हैं। ये टीका 4 महीने से ऊपर के जो भी गाय भैंस वंश के जानवर हैं उनमें लगाए जा रहे हैं। ये राष्ट्रव्यापी अभियान है, इसमें साल में 2 बार हम इसका खुरपका मुंहपका का टीकाकरण करते हैं। अभी हम मार्च से स्टार्ट किया है इसको और दूसरा स्टार्ट होगा अपने सितंबर से। तो सभी पशुपालक भाइयों से मेरा निवेदन है कि जब भी अभियान चले उस समय खुरपका मुंहपका का टीकाकरण जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि खुरपका मुंहपका एक ऐसी बीमारी है जिसमें जानवर की हानि तो नहीं होती पर जो उत्पादन है वो हमेशा के लिए लाइफ टाइम के लिए उसका घट जाता है और उसका जो उत्पादन एक्चुअल उत्पादन होता है वो नहीं आ पाता है, क्योंकि एफएमडी रोग होने के बाद में एक ये ऐसी बीमारी जो तापमान नियंत्रण सिस्टम को ही खत्म कर देती है। तो जिसके एक बार एफएमडी हो जाता है, खुरपका मुंहपका रोग हो जाता है, वह अपना शरीर का तापमान नियंत्रण नहीं कर पाता है और वह जानवर गर्मी सहन नहीं कर पाता और वह जानवर हांफता रहता है। तो

0: होने के बाद में एक ये ऐसी बीमारी जो तापमान नियंत्रण सिस्टम को ही खत्म कर देती है, तो जिसके एक बार एफएमडी हो जाता है, खुरपका मुंहपका रोग हो जाता है, वह अपना शरीर का तापमान नियंत्रण नहीं कर पाता है और वह जानवर गर्मी सहन नहीं कर पाता और वो जो जानवर हांफता रहता है। तो इसका टीकाकरण के लिए अभी हमारे टीकाकरण अभियान चल रहा है, तो पशुपालक भाइयों से विशेष निवेदन है कि खुरपका मुंहपका का टीका अवश्य लगवाएं।
1: टीकाकरण करवाबा सु रोग बराक सु तो बचे छे, एक अलावा भी टीकाकरण करवाबा को कोई और फायदो या सरकार की तरफ से कोई ऐसी योजना छे जिसू खासगर भाइयों का लाभ मिल सके?
0: जी सुरेंद्र भाई, अभी राज्य सरकार द्वारा एक बहुत ही अच्छी योजना चल रही है, मंगला पशु बीमा योजना। सरकार की मंशा है कि जिस प्रकार अपने खेती बाड़ी में फसल बीमा योजना हो रही है, उसी प्रकार मंगला पशु बीमा योजना पशुओं के लिए, पशुपालक भाइयों के लिए राज्य सरकार ने चालू की है। इस योजना के तहत गाय और भैंस ऊंट वंश को 40,000 रूपए के प्रति जानवर के हिसाब से रिस्क कवर किया जा रहा है। इसमें एक गाय या भैंस या इसी प्रकार भेड़ और बकरी के लिए भी अपने मंगला पशु बीमा योजना के तहत 10 यूनिट पर 40,000 का बीमा कवर किया गया है। इसमें 10 बकरियों का 4,000 रूपए बकरी भेड़ के हिसाब से 40,000, 10 बकरियों के समूह पे 40,000 रूपए का मंगला पशु बीमा योजना के तहत कवर किया गया है। इस योजना में हम घर घर जाते हैं, पशुपालक का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और उसको वहीं पर उसके कान में कड़ी लगाते हैं, टैग लगाकर उसका बीमा फोटो खींच के बीमा कर देते हैं। थोड़े दिन में उसकी पॉलिसी आ जाती है, पॉलिसी आ जाने के बाद में साल भर के लिए उसका जो जानवर है उसकी रिस्क साल भर के लिए कवर हो जाती है। जब भी कोई हानि होती है तो पशुपालक भाई उसके टोल फ्री नंबर पर बीमा कंपनी के फोन करता है, वहां से सर्वेर आता है और डेथ सर्टिफिकेट बना के उसको अपलोड कर दिया जाता है, जिससे उसकी जो हानि होती है उससे पूरी तरह से बचाया जा सकता है। तो सभी पशुपालक भाइयों से मेरा निवेदन है कि मंगला पशु बीमा योजना के तहत अपने पशु का बीमा जरूर करवाएं। यह सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है।
1: डॉक्टर साहब, मंगला पशु बीमा योजना जो कि पशुओं के लिए विशेष तौर से बनाई गई है और चलाई जा रही है सरकार की तरफ से, जैसे कि पशु भी कोई हानि हो जाओ तो उनकी भरपाई मंगला बीमा योजना का तहत पशुपालक भाई भी गवर्नमेंट की तरफ से दी जाओ। डॉक्टर साहब, एक बात और बताओ, जैसे कि छोटा जानवर भेड़ बकरी वहाँ का स्वास्थ्य पर भी कहीं गर्मी का मौसम को विपरीत प्रभाव पड़े, वहाँ में भी बीमार होबा की संभावना रह जाएगा?
0: बिल्कुल सुरेंद्र भाई, भेड़ बकरी का भी बहुत गर्मी का बहुत अधिक असर होता है। आप जानते हो भेड़ों को तो ऊल के लिए पाला जाता है जनरली, तो ऊल में जैसे उनके अगर ऊल नहीं काटे अपन तो बाल उन पे रहता है बॉडी पे, तो वह गर्मी पैदा करता है जिससे भेड़ों में गर्मी की समस्या होती है। तो पशुपालक भाइयों से निवेदन है कि गर्मी शुरू होने से पहले उनके जो शरीर के जो ऊल है उसको कटवा देना चाहिए, जिससे गर्मी का समय उनको गर्मी नहीं लगे। और भेड़ और बकरी में एक समस्या, अपने इस एरिया में ज्यादातर पशुपालक भाई भेड़ बकरी को बाहर ग्रेजिंग पे ले जाते हैं, चरा के ही उनका पेट भरते हैं। तो उनसे विशेष निवेदन है कि भेड़ बकरी को सुबह और शाम ठंडाई के समय ही चराने के लिए छोड़ें, दिन के समय 10 बजे के बाद लाके अपने बाड़े में भूज दें, 4 बजे के बाद बाड़े से निकालें, जिससे अत्यधिक तापघात से बचाया जा सके। विशेष रूप से भेड़ बकरी में भी पानी की व्यवस्था रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हर जानवर को पानी गर्मी के समय में उपलब्ध रहना बहुत ही जरूरी है। तो भेड़ बकरी पालक भाइयों से निवेदन है कि उनके जो बाड़ा है, बाड़े में पानी की स्वच्छ और ठंडा पानी की व्यवस्था जरूर रखें, और इनको चराने में जैसे टाइम कम हो गया, आपने 12 बजे से 10 बजे के 4 बजे के बीच में आपने चराने नहीं छोड़ते, तो उनको पूर्ति करने के लिए इनको थोड़ा सा दाना वगैरह अपन दे देंगे तो इनका आहार की पूर्ति उसके चराने की इस दाने से हो जाए। तो पशुपालक भाई, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करोगे आप तो बहुत अच्छा इसका आपको रिटर्न मिलेगा।
1: बहुत ही बढ़िया जानकारी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक बात और बताओ, जैसे कि खान पान की बात चल रही है तो कहीं अबाणु जैसे सूखो चारो आपने बस वगैरह ये खिला, वहाँ का कोई हरा चारा की व्यवस्था करा जिससे कि वहाँ का स्वास्थ्य पर ही गर्मी का मौसम को प्रभाव कम से कम होगा?
0: देखो सुरेंद्र जी, आपने देखा है कि भूसे वगैरह में इनमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है। अपन क्या करते हैं, अपन भी गर्मी के टाइम में पानीदार जैसे फल खाते हैं, जैसे ककड़ी खीरा वगैरह अपन लेते हैं और तरल पदार्थ अपन पीते हैं, उसी प्रकार जानवरों में भी ऐसा ही होता है। इनको अगर मिल जाए तो हरा चारा देना चाहिए, अपन को हरा चारा की व्यवस्था है तो बहुत ही अच्छा है। नहीं हो तो जैसे कोई इनको ठंडा पानी मिले पर्याप्त मात्रा में और साथ में भूसे को

0: अगर गीला करके अपन देंगे तो वह इनको अच्छे से चबने में भी आएगा और वो पानी की पूर्ति भी करेगा। तो ये सब चीजें अपन अगर करेंगे और पानी का सोर्स इनके पास में ज्यादा से ज्यादा रखेंगे तो इसे गर्मी के मौसम में इनमें पानी की कमी होने से इनको बचाया जा सकता है।
1: बहुत ही बढ़िया बात डॉक्टर साहब। अंत में ये जो किसान और पशुपालक साथी आपकी बातचीत सुन रहे थे, वहीं संदेश का तौर पर आप काय खबो चाहोगा?
0: मेरा पशुपालक भाइयों से यही निवेदन है कि अत्यधिक गर्मी के समय में आप जानवरों को उनको अच्छा छांव दें, अच्छा पानी दें और उनको अच्छे ठंडे वातावरण में रखें और ज्यादा से ज्यादा गर्मी से बचाने की कोशिश करें।
1: डॉक्टर महेंद्र नागर, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय 12, आप चौपाल कार्यक्रम में पधार्या। बहुत ही बढ़िया जानकारी आपने पशुपालक भाई आबे पशुओं से संबंधित दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।
0: राम राम सुरेंद्र भाई, धन्यवाद।
2: कतनी बढ़िया बात आपने ताई महेंद्र नागर जी ने पशु स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित बताई। आपने ताई वहां की बात भी ध्यान में रखानो छे और ई गर्मी का मौसम में आपने पशुओं की सुरक्षा करनी छे। खास कार्रवाई बनाओ, आज छे मंगलवार को दिन बालाजी महाराज को वार छे, तो सुन लिया बालाजी महाराज को यो लोक भजन रतन लाल वर्मा की आवाज में।

कतनो बढ़िया लोक गीत छो आनंद आ गया। खास कार्यवाही बनाऊ मां चौपाल कार्यक्रम में जानकारी को भी एक विषय ले रहा हूं छा। तो आज चौपाल कार्यक्रम में जानकारी को विषय छे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। खास कार्यवाही बनाऊ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भारत सरकार

द्वारा संवर्धित एक अत्यंत किफायती और लोकप्रिय दुर्घटना बीमा योजना छे। ये योजना की विशेषता और लाभ ये प्रकार सूच है। पहली बात तो ये योजना का लेख आप भी 20 रुपया प्रति वर्ष को मामूली प्रीमियम देनी पड़ेगा। बीमा कवर का रूप में दुर्घटना में बीमा धारक की मृत्यु हो जाओ छे तो उनका परिवार या नॉमिनी के ताय 2 लाख रुपया बीमा कवर का रूप में मिलत छे। दोनी आंख या दोनी हाथ या दोनी पैर खराब हो जाओ या स्थायी विकलांग हो जाओ व्यक्ति तो 2 लाख रुपया उनको ताय उनका परिवार के ताय या उनको ताय मिलत छे। एक आंख या एक हाथ या एक पैर खराब हो बाप 1 लाख रुपया मिलत छे। ई बीमा के लिए योग्यता 1870 साल को कोई भी भारतीय नागरिक जी को बैंक में खाता हो या डागर में खाता हो वही योजना को पात्र मान्य जाओगो। एक बार आवेदन करबा के बाद हर साल 20 रुपया आपका बैंक खाता सु ऑटो डेबिट का माध्यम से कट जाओगा। ये योजना की पॉलिसी 1 जून से 31 मई ताई 1 वर्ष का लेख वैध रह छ जिके ताई हर साल रिन्यू कर दियो जाओ छे। आप बैंक या डाकघर में जार फार्म भर यो बीमो ले सको छो। खास कार्रवाई बनाओ विपणन वर्ष सीजन 2026-27 के लिए खरीफ फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य ई प्रकार सूच फसल और न्यूनतम समर्थन मूल्य ई प्रकार सूच धान की फसल जो सामान्य धान रह छ उनकी उनको जो भाव रहोगो प्रति क्विंटल में वो ई प्रकार सूच 2441 रुपया प्रति क्विंटल और धान जो ग्रेड ए की धान छे उनको समर्थन मूल्य ई प्रकार सूच 2441 रुपया प्रति क्विंटल। ज्वार जो हाइब्रिड की ज्वार छे उनको भाव छे 4023 रुपया प्रति क्विंटल और ज्वार मालदंडी उनको भाव छे 4073 रुपया प्रति क्विंटल। बाजरो छे बाजरा को भाव रहोगो 2900 रुपया प्रति क्विंटल। रागी छे रागी को भाव रहोगो 5205 रुपया प्रति क्विंटल। मक्का को भाव रहोगो 2410 रुपया प्रति क्विंटल। दलहन में आप देखेगा तूर और अरहर को भाव 8450 रुपया प्रति क्विंटल। मूंग को भाव रहोगो 8780 रुपया प्रति क्विंटल। उड़द को भाव रहोगो 8200 रुपया प्रति क्विंटल। तिलहन में रहोगो मूंगफली को भाव रहोगो 7517 रुपया प्रति क्विंटल और सूरजमुखी का बीजा को भाव रहोगो 8343 रुपया प्रति क्विंटल। पीली सोयाबीन को भाव रहोगो 5708 रुपया प्रति क्विंटल। तिल को भाव रहोगो 10346 रुपया प्रति क्विंटल। नाइजीरियन सीड जिको भाव रहोगो 10052 रुपया प्रति क्विंटल। व्यवसायिक रूप में जैसे कपास रहेगी तो मध्यम रेशा की कपास रहेगी वह रहेगी 8267 रुपये प्रति क्विंटल और कपास लंबा रेशा की रहेगी वह रहेगी 8667 रुपये प्रति क्विंटल। ये था विपणन वर्ष सीजन 2026-27 का खरीफ फसलों का MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य व ई प्रकार सूचा। इसके साथ ही चौपाल कार्यक्रम को टर्म पूरा हो द्योथा का सुरेंद्र भाई के तहत इजाजत चाला छा। राम राम।

अभी आप किसान श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। अब शाम के 7:30 होने को हैं। लीजिए सुनिए कैंपस प्लेसमेंट शिविर की रिकॉर्डिंग पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। प्रस्तुत कर रहे हैं धनवीर मीणा।

0: श्रोताओं, आज दिनांक 26 मई 2026 को प्रातः 10 बजे से 3 बजे तक कैंपस प्लेसमेंट शिविर का आयोजन संभागीय रोजगार कार्यालय पीडब्ल्यूडी कैंपस राजभवन रोड कोटा में किया गया। कई इच्छुक अभ्यर्थियों ने अपनी योग्यता के अनुसार, प्रमाण पत्रों के अनुसार शिविर स्थल पर ही इस अवसर का लाभ उठाया एवं रोजगार प्राप्त किया। शिविर में विभाग द्वारा रोजगार के अवसर प्रदान किए गए एवं साथ ही निजी क्षेत्र के नियोजकों द्वारा मौके पर ही रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए गए एवं कौशल विकास रोजगार प्राप्त करने हेतु भी प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में आप हैं श्री मनोज कुमार पाठक, उपनिदेशक संभागीय रोजगार कार्यालय कोटा।
1: मैं आपको बताना चाहूँगा
0: जी,
1: रोजगार विभाग के निदेशालय के दिशा निर्देशानुसार इस तरह के कैंपस प्लेसमेंट शिविर का आज रोजगार कार्यालय में आयोजन किया जा रहा है। इसमें निजी क्षेत्र में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कैंपस प्लेसमेंट शिविर का आयोजन किया जाता है। इसके लिए हमने निजी क्षेत्र के नियोजकों से वार्ता की और उनके यहाँ जो ज्ञापित जो रिक्तियां जो वैकेंसीज हैं उनके बारे में पता किया और उसके आधार पर हमने उनको इन्वाइट किया। इस कैंपस प्लेसमेंट शिविर में करीब 7 जो निजी कंपनियों ने भाग लिया है, जिनके लिए उनके यहाँ जो रिक्तियां हैं उनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है 10th और मैक्सिमम ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट वाले तक भी एलिजिबल हैं। और इसी के अनुरूप हमारे यहाँ जो बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं, हमारा जो लाइव रजिस्टर है ऑफिस का, उन कैंडिडेट्स को जो क्वालिफिकेशन नियोक्ता द्वारा चाही गई है उसके अकॉर्डिंगली हमने उनको शॉर्ट लिस्टिंग कर करके और उनको व्हाट्सएप के माध्यम से हमने मैसेज किए हैं ताकि वो इस कैंपस प्लेसमेंट शिविर में आकर के रोजगार का अवसर प्राप्त कर सकें। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने जो 7 निजी कंपनियां जिनको ऑफर किया है उनके यहाँ जो रिक्तियों के जो पद हैं उसमें टेक्नीशियन, रिलेशनशिप ऑफिसर, फील्ड ऑफिसर, सर्विस इंजीनियर, टेक्निकल ऑपरेटर, फिटर, फाइनेंस एडवाइजर, सिक्योरिटी सुपरवाइजर एवं सेल्स मैनेजर आदि पद हैं। इन रिक्त पदों के विरुद्ध निजी क्षेत्र के नियोजक यहाँ पर भर्तियां करेंगे और इन 7 नियोजकों के द्वारा करीब हमको 293 रिक्तियां ज्ञापित की गई हैं। अभी हमारा कैंपस प्लेसमेंट शिविर चल रहा है, इसका समय प्रातः 10 बजे से 3 बजे तक रहता है
0: जी।
1: और अभी कैंडिडेट्स आ रहे हैं, एम्प्लॉयर से मिल रहे हैं, अपना इंटरव्यू दे रहे हैं और ये 3 बजे तक रहेगा। अभी इस समय तक करीब करीब जो है 125 युवा जो हैं इस कैंपस प्लेसमेंट शिविर में भाग ले चुके। पद जो बताए ना, टेक्नीशियंस हैं, रिलेशनशिप ऑफिसर्स हैं, फील्ड ऑफिसर्स हैं, सर्विस इंजीनियर्स हैं, फिटर, फाइनेंस एडवाइजर हैं, सिक्योरिटी सुपरवाइजर हैं, इस तरह के इनके यहाँ जो पद रिक्त हैं जिनके लिए यहाँ पर ये मौके पर ही इनका चयन करेंगे। इसमें कैंडिडेट को अपने जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसके उसको दस्तावेज लाने होते हैं और 2 पासपोर्ट साइज के फोटोज को लाने होते हैं
0: जी।
1: और इसमें कैंडिडेट सीधे ही जो नियोक्ता से बात करते हैं, नियोक्ता उनका मौके पर इंटरव्यू लेते हैं
0: जी।
1: और वो उनको अब उनके यहाँ जो रिक्त पद है उसके अनुरूप पाते हैं तो वहीं वो उनका प्रारंभिक चयन कर देते हैं। सैलरी जो है ये कैंडिडेट सीधे एम्प्लॉयर से पूछ सकते हैं। रोजगार कार्यालय का काम रोजगार प्रदान करने वाले नियोक्ताओं और रोजगार चाहने वाले आशार्थियों को एक मंच प्रदान करने का होता है। इसकी क्वेरी जो है कैंडिडेट सीधे नियोजक से कर सकते। इसके लिए जगह अभी, क्योंकि जैसे अभी आप जान रहे हैं कि टेम्परेचर इतना ज्यादा है, वैसे हम क्या है कैंपस से बाहर ही करते हैं, लेकिन इस बार हमने जो है गर्मी को देखते हुए अपने ऑफिस कार्य परिसर में ही करना इसको उचित समझा। इसके लिए हमारे द्वारा जो है कैंडिडेट्स को व्हाट्सएप मैसेज किए गए थे और इसके जो पैम्पलेट्स हैं अखबारों में भी डलवाए गए थे और वो सोमवार और मंगलवार 2 दिनों में अखबारों में आए। मैं यही कहूंगा कि सरकार की योजना है, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के समय में सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर काफ़ी कम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और निजी क्षेत्र में क्या है रोजगार का एक सरकार जो है अच्छा एक मौका दे रही है। और इसके लिए हम हमारा भरसक प्रयास करते हैं कि जिन निजी क्षेत्रों में जहाँ रिक्तियाँ होती हैं और वास्तव में जिनको मेन पावर की आवश्यकता होती है, हम उन्हीं नियोजकों को आमंत्रित करते हैं और कैंडिडेट्स भी क्या है हम उन्हीं की योग्यता के अनुरूप बुलाते हैं। सरकार के जो निर्देश हैं ये कैंपस प्लेसमेंट शिविर जो है त्रैमासिक किए जाने हैं
0: जी।
1: ये इस वित्तीय वर्ष का पहला कैंपस प्लेसमेंट शिविर है, इसके बाद में अगला जो कैंपस प्लेसमेंट शिविर है वो अगस्त में आयोजित किया जाएगा, जिसकी सूचना है अखबारों में प्रकाशित करवा दी जाएगी। हमारा जो

0: अपार्टमेंट है वो 2013 से ऑनलाइन है। कोई भी कैंडिडेट अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है तो उसको ऑफिस आने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। जैसा कि राजस्थान गवर्नमेंट के SSO है, सिंगल साइन ऑन ID है, तो वो उसकी ID होनी चाहिए। उस ID को ओपन करता है तो उसमें एक डिपार्टमेंट का, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आते हैं, उसमें एम्प्लॉयमेंट का एक आइकन आता है। उस एम्प्लॉयमेंट का आइकन जो है EEMS 2.0 के नाम से आता है। वो EEMS 2.0 को क्लिक करने के बाद में और एज ए जॉब सीकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ये सबके लिए ओपन है। इसमें जिले का, जिले से बाहर का, स्टेट का, स्टेट से बाहर का कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। वो चाहे वह किसी भी रोजगार कार्यालय में रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, वो इसमें पार्टिसिपेशन कर सकता है।
1: आप हैं श्री दिनेश कुमार, प्राइवेट कंपनी के मैनेजर। नमस्कार सर।
2: नमस्कार सर।
1: शुभ नाम क्या है सर?
2: मेरा नाम दिनेश कुमार है
1: जी,
2: और मैं टेरिटरी मैनेजर हूँ यहाँ पर। प्राइवेट सेक्टर की है
1: जी,
2: और हमारा काम है इंश्योरेंस के बारे में अवेयरनेस फैलाना और लोगों को इंश्योरेंस के बारे में जानकारी देकर उनको जोड़ना और उनसे कार्य कराना।
1: आज जो आप यहाँ इस मेले में आपकी कंपनी लेके आए हैं, क्या क्वालिफिकेशन कैंडिडेट की होनी चाहिए?
2: 10वीं पास होनी चाहिए।
1: कैंडिडेट को क्या करना होगा?
2: कैंडिडेट को करना होगा कि उनको इंश्योरेंस का वर्क करना हो, जागरूकता फैलानी होगी मार्केट के अंदर जाकर, क्योंकि आज देखिए आज बहुत सारे लोग हैं जो वित्तीय संसाधनों को लेकर अवेयर नहीं है। बहुत कम लोग अवेयर है, लोगों को जानकारी नहीं है। लोग प्राइवेट कंपनीज में पैसा लगा देते हैं, कुछ कंपनियां पैसे लेकर भाग जाते हैं। तो उनको अवेयर करना और इंश्योरेंस के बारे में से उनको जागरूकता फैलाना कि भाई अपने पैसों को सही जगह आप लोग इन्वेस्टमेंट करें। ये लाइफ इंश्योरेंस है, जीवन बीमा। अच्छा। पूछा जाता है कि भाई आप इंश्योरेंस के लिए जागरूकता अभियान के अंदर शामिल होना चाहते हैं, और अगर वो चाहते हैं तो पार्ट टाइम भी कर सकते, चाहें तो फुल टाइम भी कर सकते हैं, इसमें अपना करियर भी बना सकते। तो हम उनको करियर बनाने में मदद भी करते हैं। मार्केट में उनको जाना होगा, इंश्योरेंस के बारे में जागरूकता फैलानी होगी, गली गली, गाँव गाँव, ढाई ढाई लोगों को बताना होगा कि भाई वो अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा बना सकते हैं, बदले में इंश्योरेंस कवर भी उनको मिलेगा। क्योंकि वैसे भी गवर्नमेंट जो है वो 2047 तक इंश्योरेंस मस्ट के लिए काम कर रही है, तो इसीलिए उनका भी इसके अंदर फायदा है। आगे आने वाले अपने चाहे तो अपने आप को करियर के रूप में भी ले सकते। क्योंकि सर देखिए क्या है कि हम तो जैसे कह रहे थे कि जिंदगी के आज भी, जिंदगी के बाद भी, जब अगर व्यक्ति नहीं रहता है तो उसके परिवार को पीछे सपोर्ट करने के लिए, फाइनेंशियल आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस बहुत महत्वपूर्ण। हम उनको प्रॉपर, हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, हम उनको पूरे 7 दिन ट्रेनिंग देते हैं, हर चीज के बारे में बताते हैं। जैसे मैं उदाहरण आप देकर आपको समझाना चाहूंगा, जैसे अगर किसी का बच्चा 5 साल का है, उसको आने वाले वक्त में अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना है, तो वो 10 साल तक कितने पैसे जोड़े कि उसका बच्चा आने वाले 15 साल बाद इंजीनियर बने ही बने, चाहे वो इस दुनिया में रहे या न रहे, उसकी प्रॉपर व्यवस्था करनी पैसे। तो ये सारी जानकारी हम उस ट्रेनिंग के माध्यम से उनको समझाते हैं। आपको अपने पैसे पे ब्याज मिलता है, इंश्योरेंस मिलता है, लोन का प्रावधान है आपके पैसे पर, 80C की छूट मिलती है, GST का प्रावधान खत्म हो चुका है गवर्नमेंट की तरफ से, वो फायदा मिलता है। सर देखिए ब्याज ये डिपेंड करता है कि अलग अलग प्लान है, आप जैसे प्लान में जाना चाहेंगे। जैसे अगर आप मार्केट प्लान में जाते हैं, शेयर मार्केट वाले प्लान के अंदर, तो उसके अंदर रिटर्न काफी अच्छा है। एक प्लान है गारंटेड प्लान के अंदर, जिसके अंदर आपको आज ही बता दिया जाता है क्या आने वाले वक्त में आपको कितना पैसा मिलेगा, बट अमूमन अच्छा पैसा मिलता है उनको गारंटी। ये जो कंपनीज है, इन कंपनी के अंदर पैसा डूबने का काम बिल्कुल भी नहीं है, डूबने का काम है ही नहीं। एक इस तरह की स्कीम नहीं है कि भाई आज 2 दिन पहले शुरू हुई हो और 15 दिन बाद खत्म हो जाए। ये काफी समय से काम करती हुई आ रही है सरकार, बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है बाकायदा। और हम जो यहाँ पर कैंडिडेट हायर करते हैं, उनका हम एग्जाम करवाते हैं, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लाइसेंस देते हैं कि भाई आपके पास लाइसेंस है और आप इस लाइसेंस के माध्यम से मार्केट के अंदर इंश्योरेंस के लिए जागरूकता अभियान के अंदर शामिल हो सकते हैं, बिल्कुल हमेशा के लिए काम कर सकता है। 18 साल से लेकर 55-60 साल तक की व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पास होनी चाहिए। एक एग्जाम होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी का, IRDA का, वो एग्जाम पास होने के बाद आराम से काम कर सकते हैं।
1: आप हैं श्री अजय सिंह सोलंकी, कंपनी के मैनेजर।
3: मेरा नाम अजय सिंह सोलंकी है। इस कंपनी में अलग अलग सेक्टर में अलग अलग कंपनी है, कोई ITI से आया हुआ है, कोई फाइनेंस से आया हुआ है, कोई सिक्योरिटी गार्ड से आया हुआ है, सबका अलग अलग वैसे लड़के के एजुकेशन के हिसाब से, कोई किस फील्ड में जाना चाहता है, कोई किस फील्ड में जाना चाहता है, उस हिसाब से। ये देखो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, उपनिदेशक होते हैं, पाठक सर हैं, वो तय करते हैं, इसमें हमारा कोई नहीं है। जब कंपनी को बुलाते हैं हम तो तभी आते हैं। देखो आज के टाइम पे आप भी जानते हैं, भारत देश में, अपने राजस्थान छोड़ दो, भारत देश में नौकरियों की कोई कमी नहीं है, सिर्फ करने वालों की कमी है। आज हमारे सेक्टर में यहाँ भी देख रहे हैं कम से कम 8 कंपनी बैठी, तो ये रोजगार देने के लिए आई, तो एम्प्लॉय की जिम्मेदारी बढ़ती है, लड़के की जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपना रिज्यूम कहीं ना कहीं देके जाऊँ, मुझे नौकरी करनी है। नौकरी की कोई कमी नहीं है, सिर्फ करने वालों की कमी रहती है आज के टाइम। प्राइवेट लिमिटेड है लेकिन फैसिलिटी सारी गवर्नमेंट से रिलेटेड मिलती है, पीएफ कटता है, मेडिकल मिलता है, सब चीज़ मिलती है। जैसे जैसे ज़्यादा एम्प्लॉय ज़्यादा रहेगा, टिक रहेगा, उस हिसाब से प्रमोशन वगैरह फैसिलिटी बढ़ती जाती है। इसमें आज रिज्यूम भरे जा रहे हैं, रिज्यूम कनेक्ट कर रहे हैं, फिर उनके लिए हम कॉल करेंगे नेक्स्ट मंथ में, उसके

0: अगर पर उनको बुलाया जाएगा फिर ट्रेनिंग रहेगी ऑफिस के अंदर, फिर उनको जहाँ जहाँ जगह रहेगी कंपनी की जिस जगह सेट हुए उस जगह पर उनको भेज दिया जाएगा। ये डिपेंड करता है लड़के के ऊपर। आज के टाइम पे लड़का के स्वार्थनेस काम करना चाहता है, ऑफिस वर्क काम करना चाहता है, फील्ड के वर्क में काम करने के लिए, मार्केटिंग वर्क में काम करने के लिए कोई भी नहीं है। लड़के के ऊपर इंटरेस्ट रहता है कितने देर काम करा, बाकी कंपनियां कोई भार नहीं निकाल, उसकी इच्छा के ऊपर रहती है। कोई भी कंपनी भार नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास ऑफर लेटर रहता है, अगर वो चाहता है तो बोल भी सकता है, कंपनी को भी एक्शन ले सकता है मुझे जबरदस्ती करके निकाल, क्योंकि जॉइनिंग लेटर ऑफर लेटर दिया जाता है लड़के के लिए। जब तक लड़के के ऊपर है, आज हम 2016 से, मैं पर्सनली बात करूँ मेरी कंपनी की, तो 2016 से कंपनी कोटा के अंदर है, आज 10 साल होने को जा रहा है। लड़का जब तक चाहे जब तक काम कर सकता है। आज भी अपनी कंपनी के पास 100 से अधिक मेन पावर है, पूरे राजस्थान में काम चल रहा है, 100 से ज्यादा लड़के लोग काम कर रहे हैं और एक एक लड़का 30-30, 40-40, 50-50 हज़ार रुपये सैलरी। हमारी कंपनी में सिर्फ एक फील्ड वर्क रहता है, एक मार्केटिंग वर्क रहता है, किसानों को अच्छी सुदृढ़ खेती करने के लिए, अच्छे किसानों को अच्छी पैदावार लेने के लिए उस चीज़ के प्रोडक्ट हैं। हमारी कंपनी बायो में काम करती है, पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइजर्स है, और मेन 90% बागवानी में काम करते हैं। जो प्लांटेशन की खेती होती है कंपनी के पास में 1000 तरह के फलदार पौधे की खेती है, इसमें नींबू से लेकर अमरूद, बोर, पपीता, चीकू, अनार, जो भी किसान चाहेगा वो सारे तरह के प्लांट उपलब्ध है। एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है उनके लिए अच्छा रहता है, लेकिन अपने पास 10वीं पास भी हुआ, क्योंकि न्यूनतम योग्यता हमने इसलिए 10वीं पास रखी है क्योंकि ज़्यादातर युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके, तो इसलिए हमने कम से कम 10वीं पास इसलिए रखा है कि कोई भी आएगा तो हमारी कंपनी में जॉब कर सकता है।
1: किसान के पास क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है? पेस्टिसाइड की रहती है, खाद की रहती है, बीज की रहती है, दवाई की रहती है, बागवानी भी किसान करता है, उस चीज़ की वैकेंसी के लिए एक वैकेंसी रखा हुआ है। कोई चार्जेज नहीं है, कोई फीस नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं है। कंपनी में जॉब करने के लिए कोई टारगेट नहीं, 10,000 रुपये बेसिक सैलरी मिलेगा, रहने के लिए रूम रहेगा, और राजस्थान जॉब है, जहाँ भी आप रहोगे वहाँ आपके लिए रूम मिलेगा। इसके अलावा काम करोगे तो आपको टी डी ए, कमीशन, इंसेंटिव, पेट्रोल, वो सब अलग से मिलेगा, जैसे नहीं मिलेगी कंपनी ना देगी। कंपनी कोटा की 4 दिन की छुट्टी मिलती है महीने में, कोई फीस नहीं कटती, कोई सैलरी नहीं कटती, और हर 2-3 महीने के अंदर प्रमोशन होता है। एक प्रमोशन पर 2 से 3 हज़ार रुपये सैलरी बढ़ जाती है हर 2 से 3 महीने। ये एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर फील्ड वर्क रहेगा एज ए रूरल मार्केट, इसमें घंटे कोई फिक्स नहीं है, आप अपना जॉब कर रहे हैं, सुबह जाना शाम तक काम करना, किसानों से मिलने का काम है, कोई टारगेट नहीं। आप काम करोगे तो आपके लिए ज़्यादा करोगे, नहीं करोगे तो आपको सैलरी तो मिलेगी नहीं। आप सैलरी के लिए आप 30,000, 40,000, 50,000 आप खुद का फाउंडेशन खुद तैयार कर सकते हैं, आप खुद खेती कर सकते हैं। आप खेती के लिए पेस्टिसाइड है, बायो में काम कर रही है, बागवानी के लिए काम कर रही है, आप सब कुछ करो, किसान के पास जाओगे, आप किसानों को कैसे समझाना है, कैसे बात करनी है। आप 1 बीघा गेहूँ लगा रहे हो, 1 बीघा गेहूँ में कितनी पैदावार आती है? 30,000 की पैदावार मानो, 10 क्विंटल पैदावार मानो, 7-8 क्विंटल, तो 25,000 की मिनिमम पैदावार मानो आप। 25,000 में से आप आधा खर्चा हो जाता है किसान का, 10,000-15,000 खर्चा होगा। आप किसान को समझा सर, इसी जगह पे आप 1 बीघा बागवानी की खेती करो। आज गवर्नमेंट बागवानी खेती पर जोर दे रही है, सरकार बागवानी खेती पर। आज झालावाड़ में जाकर देख लो संतरा खेती होती है, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, माधोपुर में देख लो अमरूद की खेती होती है। आप किसान को जाके बोलो सर 1 बीघा गेहूँ लगा रहे हो, आप 1 बीघा पौधे वाली खेती लगाओ, अमरूद लगाओ, नींबू लगाओ, बोल लगाओ, पपीता लगाओ, चीकू लगाओ, अनार लगाओ, कुछ भी लगाओ, तो आपको 1 लाख की पैदावार मिलेगी। सब्सिडी मिलती है, बिल्कुल सरकार सब्सिडी देती है, वो सब चीज़ सिखाया जाएगा, वो सब बताया जाएगा वो आपके लिए। पहले तो आप नौकरी करने के लिए आए हो तो उस चीज़ के बारे में वो आपको ट्रेनिंग देंगे, ऑफिस में भी ट्रेनिंग रहेगी, फिर आप जहाँ भेजा जाएगा फील्ड में वहाँ भी ट्रेनिंग रहेगी, 1 दिन की ट्रेनिंग कोटा रहेगी, फिर आपको फील्ड में जहाँ भी भेजा जाएगा वहाँ पर इसे एड्रेस लिखा हुआ है, इस पर आ सकते हैं, अपना बायोडाटा के लिए आप इधर को लिख सकते हैं अपने लिए, और फिर आपको कॉल आएगा 1-2 तारीख में, आपको कॉल आएगा।
2: कैंपस प्लेसमेंट में कई छात्र छात्राएं आए।
3: कमल वर्मा।
4: कमल जी कहाँ से आए हो?
3: तालेड़ा से आए।
4: ये जो सूचना है आपको रोजगार मिले की कहाँ से प्राप्त हुई?
3: क्या है, तालेड़ा से आए, पत्रिका में पता लगा था, इसलिए उसमें तो आईटीआई बेस में थी, जो आईटीआई बेस में आई बहुत अच्छा। कम है प्लेसमेंट है यहाँ, तो जो उन्होंने बता दिया बहुत कम है, लेकिन हमारे
4: तो
3: बेटा
4: परमानेंट रोजगार है या फिर?
3: नहीं नहीं परमानेंट नहीं है, तो जैसे एक्सपीरियंस हो जाता है इसमें।
4: क्या 1 साल के लिए ले रहे हैं या फिर?
3: वो 2 साल मानो, 2 साल में तो क्या है ना, जैसे इलेक्ट्रिशियन में बाहर की साइड पे काम भी करता हूँ, तो क्या है ना पैसे की समस्या होगी इसलिए आ गया, नहीं तो मेरा खुद का काम है, समझ में आ गया ठीक है कर लूंगा। पेमेंट तो जैसे अब बड़े हो गए तो खर्चा भी ज्यादा है, 15,000 रुपए तो समथिंग, अभी क्या है 8-10 हज़ार रुपए दे रहे हैं, इसमें बैठता नहीं, टाइमिंग भी ज्यादा है, 12 घंटे या नाइट में ओवर टाइम भी करना पड़ेगा यहाँ तो।
4: अच्छा, ओवर टाइम का अलग से पैसा मिलता है?
3: हाँ मिलता है, वो तो अपन खुद काम करेंगे तो मिलता है, यहाँ पे कमी मिलता है, लेकिन ये है एक्सपीरियंस हो जाता है, कुल मिला के एक्सपीरियंस हो जाता है, आदमी को थोड़ी जानकारी हो जाती है।
4: रोजगार के लिए आप यहाँ आए हो तो क्या क्या आपसे फॉर्मेलिटीज करवाई?
3: नौकरी के बारे में, आईटीआई के बारे में पूछा जानकारी।
4: आपका इंटरव्यू कैसा रहा?
3: बढ़िया रहा।
5: मनीष गोचर।
4: मनीष जी कहाँ से आए हो?
5: मैं बूंदी जिले जो है आजंदासी गांव से आया हूँ।
4: आपको कैसे सूचना हुई कि यहाँ आज रोजगार मिले?

0: एड आई थी,
1: न्यूज़पेपर पढ़ा था तो न्यूज़पेपर में उसमें लिखा था एड आया था, तो वही रोजगार कार्यालय में बाहर की कंपनी आ रही है तो उसको देखकर मैं आ गए यहाँ पर कार्यालय पर और जॉब की जानकारी ली।
0: यहाँ आकर आपको कैसा लगा?
1: सब तरह की कंपनी, 7-8 कंपनी आई है यहाँ पर, जो लिखा है था वही सभी सही है और बाहर की कंपनी आई है, रोजगार मिल भी रहा है, बाहर के बच्चे भी आए हैं और जो मैं जॉब के लिए आया था तो उसके लिए मैंने भी जॉब देखी है तो उसमें मेरे को जॉब मिली है और अपना रिज्यूम देके आया हूँ और सर ने कहा कि कॉल करके आपको इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे। मैं अपने क्षेत्र में करना चाहता हूँ तो मेरे अपने क्षेत्र में मुझे रोजगार दिया गया है और केशवपाटन के आसपास वहीं आपको लोग के बोला है मेरे को।
0: किस तरह का रोजगार है?
1: मैंने आईटीआई करके तो आईटीआई संबंधी चीज़ें मीटर रीडिंग का ऐसा काम मिला है। मैंने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से आईटीआई की है, अलग अलग ट्रेड में अलग अलग जॉब है तो इसके लिए मैं मिली है।
0: क्या टेक्नीशियन वगैरह के लिए आपको जॉब मिला है?
1: जी हाँ, टेक्नीशियन के लिए जॉब मिला है मेरे को।
0: मासिक सैलरी क्या रहेगी?
1: सर ने बताया कि 15,000 करीबन आपकी मासिक सैलरी रहेगी और साथ ही पेट्रोल डीजल ये फ्री रहेगा। जो मैं देखे आया हूँ सर ने बता दिया, कॉल करके बुला लेंगे, करना चाहते हैं करने के लिए आया।
2: आईटीआई से जुड़ी डीजल मैकेनिक में देखी और एलआई से देखी, एग्रीकल्चर सेक्टर में देखी। मेरे को आईटीआई से इसमें डीजल मैकेनिक में, डीजल मैकेनिक एक कंपनी में जॉब मिली। इसमें प्राइवेट सेक्टर के जितने भी रोजगार है, जैसे अपन फिर बाद में इनसे सीख के खुद का एक व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं, तो इसमें हम प्राइवेट सेक्टर की जॉब करते हैं और फिर इससे अपन को कुछ सीखने को मिलता है तो अपन खुद का एक व्यवसाय भी डाल सकते हैं, जिसमें अपन को बाद में अपना मतलब ये जो कंपनी अपन को जितना प्लेसमेंट देती है कई गुना अपन बाद में इनकम और कर सकते हैं। मेरे को मीडिया के माध्यम से ये रोजगार मिलने की सूचना प्राप्त हुई। मैंने यहाँ आके महसूस किया कि इसमें जिन बच्चों को सरकारी जॉब करने में मतलब ये उसमें सिलेक्शन पाने में मुसीबत आ रही है, मतलब पढ़ाई नहीं हो पा रही या फिर उस हिसाब का माहौल नहीं है पढ़ाई का, किसी बच्चे को जल्दी अपने परिवार को कमा के मतलब कमाना है या इस वजह से इसमें मतलब जल्दी जिस बच्चे के घर वाले आर्थिक व्यवस्था से कमजोर है तो उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा सुविधाजनक है प्लेसमेंट रोजगार। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अपने जो सरकार होती है ये उतनी सीटें तो नहीं निकाल पाती जितने हर साल ग्रेजुएशन करते हैं, तो उतने बच्चों के लिए तो पूर्व के लिए पर्याप्त सीटें तो नहीं निकाल सकते, इस वजह से ये प्राइवेट कंपनियां रोजगार देने का अच्छा कार्य कर रही है। फिर भी इन्होंने में भी बेरोजगारी के मुकाबले इतनी सीटें नहीं होती, इस वजह से इसमें भी बहुत से बच्चों को बेरोजगार रहना पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं प्राइवेट कंपनियों को धन्यवाद कहना चाहूंगा कि ये अपने भारत देश के युवाओं को रोजगार दे रही है, तो इसके लिए मैं इसको धन्यवाद देता हूँ। गवर्नमेंट में जो पैसा नहीं मिलता वो प्राइवेट में मिल जाता है, बस उसके अपन को स्किल अपनी स्किल को डेवलप करना पड़ता है समय के अनुसार। जैसे समय परिवर्तन होगा, जैसे AI का जमाना बढ़ता जाएगा, तो अपन को युवाओं को अपनी स्किल में भी परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि आज सरकारी जॉब में एक लेवल की तनख्वाह मिलती है भाई, इस तनख्वाह इस लेवल पे इस तनख्वाह, लेकिन प्राइवेट जॉब में अगर आपकी स्किल टॉप है तो फिर उस हिसाब से आपका पैसा भी गवर्नमेंट जॉब से ज्यादा मिलेगा। वह अपना स्वरोजगार तो वह जो है अपनी खुद की स्किल से, अगर उसकी स्किल अच्छी है तो वह खुद के भी व्यवसाय चला सकता है और खुद अगर उसमें जो गवर्नमेंट जॉब से ज्यादा कमा सकता है। मतलब मेरे को नया 15,000 से 19,000 के समथिंग मासिक वेतन मिल जाएगा। महंगाई के जमाने में तो उसका तो अलग दृष्टिकोण होता है, अपन अपने खर्चे को अपने परिवार को ऐसे देखा जाए तो ये सभी दृष्टिकोण से अलग अलग होता है। किसी के लिए कुछ वो उसका खर्चा कितना है उसके ऊपर निर्भर करता है कि भाई ये दिया है जो पेमेंट है। ऐसे 15,000 से 19,000 के मासिक वेतन में एक परिवार अपना लगभग लगभग गुजारा कर सकता है। इसमें बीच बीच में जैसे अपने स्किल के साथ साथ अपने जो कार्य करने का गति बढ़ेगी और अपन जो इसके पुराने कर्मचारी होते जाएंगे और अपनी लेवल बढ़ती जाएगी, हम उस जिस कंपनी में अपन कार्य कर रहे हैं उसमें अगर अपन अच्छे जागरूक हो गए

0: तो अपन को वहां ऊपर की पोस्ट मिलने पर हमारा पेमेंट भी बढ़ता जाएगा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी अपने भारत देश के जितने भी युवा है जो ग्रेजुएशन करने के बाद या फिर वो 10th 12th पास करने के बाद में जैसे सरकारी जॉब के पीछे लगते हैं, वैसे उनको अपनी स्किल को भी साथ में रखना चाहिए। जैसे आईटीआई करके इसमें अपने स्किल को सुधारा जा सकता है, उसकी वो खुद की स्किल पे कार्य कर सकते, क्योंकि सरकारी जॉब मिलना सभी को पर्याप्त नहीं हो सकता। भारत देश में एक क्लास में 100 बच्चे होते हैं तो उनमें से सारों को सरकारी जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। तो इस वजह से बच्चे को अपनी स्किल भी रखनी चाहिए, स्किल से वो अपना खुद का व्यवसाय चला सकता है, दूसरे पे निर्भर नहीं रह के खुद पे निर्भर हो सकता है। इसमें जैसे क्वालिफिकेशन चेक किया जाएगा, जिसकी क्वालिफिकेशन टॉप रहेगी उनको जल्दी प्लेसमेंट मिल जाएगा, और जिनकी क्वालिफिकेशन कम रहेगी तो उनके हिसाब से लेवल कम होता जाएगा और उनको जितनों इनकी जरूरत है वो उतने अचीव कर पाएंगे।
1: आप है मनोज सिंह, रोजगार अवसर प्रदान करने वाले कंपनी के मैनेजर।
2: नमस्कार, मेरा नाम अमित सिंह है और मैं ऑल राजस्थान के अंदर लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट संभालती है। लॉजिस्टिक में जैसे जो कंपनियां हैं जैसे कि डीमार्ट है, डीमार्ट एक बहुत बड़ा ब्रांड है जिसमें बच्चे पिकर पैकर नॉन कोर कैशियर की जॉब पाते हैं। सबको सैलरी उसमें 13,000 रुपये फिक्स रहता है, कोई भी टारगेट नहीं रहता, नॉन टारगेट जॉब रहती है, इजी वे में हर बच्चा उसको कर सकता है। बहुत सारे लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है जो हमारी कंपनी पूरे राजस्थान को कवर करती है।
1: क्या क्या क्वालिफिकेशन क्या हो सकता है?
2: क्वालिफिकेशन सर उसमें ओनली 10th और 12th पास चाहिए होता है कैंडिडेट का, और कोई भी एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता, टोटल फ्रेशर बच्चा ही हम काउंट करते हैं। एक्सपीरियंस वाला बच्चा सैलरी डिमांड हाई करता है, लेकिन हमारा जो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट होता है वो बच्चों को पहले ट्रेन करता है, एज ए फ्रेशर तौर पर उनको हायर करता है ताकि वो सीख के आगे बढ़े, और सीखने के बाद उनको सुपरवाइजर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैशियर ऐसी बड़ी पोस्ट पर उनको डेवलप किया जाता है ताकि उनका सैलरी ग्रोथ भी बढ़े और पोजिशन भी चेंज हो। फ्रेशर कैंडिडेट को सैलरी मिलेगा 13,000 रुपये उसके अकाउंट में इन एंड आता है। पीएपीसीआई मेडिकल की सुविधा अलग मिलती है, उसका एक ईसाई कार्ड भी बनता है, अगर कभी भविष्य में उसके साथ कुछ भी आनी जोक हो जाती है तो वो ईसाई हॉस्पिटल में अपना फ्री इलाज करा सकता है। जॉब पाने के लिए कैंडिडेट को मुझसे संपर्क करना पड़ेगा, अगर वो अपना रिज्यूम शेयर करेगा देन हमारी टीम से उसको कॉल जाएगा और वेरिफिकेशन के लिए उसको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। इंटरव्यू के दौरान कैंडिडेट से उसका नेम पूछा जाता है, उसका फादर्स नेम पूछा जाता है, वो किस एरिया में रहता है, वो आने जाने में उसको कोई दिक्कत तो नहीं है। विद इन 5 किलोमीटर के एरिया में जो कैंडिडेट रहता है उसको हम सबसे पहले अथॉरिटी देते हैं कि उसको हम देन सेलेक्ट कर पाए, क्योंकि उसको आने जाने में दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो लॉन्ग डिस्टेंस वाला बच्चा होता है उसको आने जाने में दिक्कत होती है, फिर सैलरी का इशू होता है, क्योंकि 13,000 रुपये में अगर कोई कैंडिडेट अदर लोकेशन से आता है तो उसको रहना भी पड़ता है, खाना भी पड़ता है, तो उसको हम सर्वाइव नहीं कर पाते। तो हमें लोकलिटी के हिसाब से कैंडिडेट हायर करना होता है। सर ये जॉब परमानेंटली होती है, जब तक बच्चा करना चाहता है, जब तक जॉब कर सकता है, देन अगर कैंडिडेट अपनी मर्जी से छोड़ना चाहता है वो उसका लुकआउट है, बट कंपनी उसको कभी नहीं निकालती। सैलरी में ग्रोथ तब होती है जब बच्चा कुछ सीख लेता है, कैंडिडेट जब 6 मंथ या 1 ईयर कंप्लीट कर लेता है उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। पोजीशन में वो सुपरवाइजर भी बन सकता है, टीम लीडर भी बन सकता है, कंप्यूटर ऑपरेटर भी बन सकता है। तो जब पोजीशन चेंज होती है तो उसका सैलरी भी ग्रोथ होता है। कहना चाहूंगा कि जितने भी कैंडिडेट हैं ऑल ओवर राजस्थान मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं उस कंपनी में एचआर पोजीशन पर हूं और मैं फ्रेशर ही कैंडिडेट हायर करता हूं। तो ऑल राजस्थान जितने भी कैंडिडेट हैं मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
1: इस कार्यक्रम के संयोजक तेजराम मीणा, प्रस्तुति हिमांशु नामा और प्रस्तुति सहयोग धनवीर मीणा का।

श्रोताओं, अभी आप कैंपस प्लेसमेंट शिविर की रिकॉर्डिंग पर आधारित रेडियो रिपोर्ट सुन रहे थे। प्रस्तुति धनवीर मीणा की थी।

0: 1927 से पहले भारत के पास ऐसा कोई सशक्त माध्यम नहीं था जो भारत को एक सूत्र में पिरो सके। 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे से पहली बार रेडियो की आवाज गूंजी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के नाम से। 8 जून 1936 को इसे नया नाम मिला ऑल इंडिया रेडियो। एक ऐसी आवाज जो हर दिल तक पहुंची। धीरे धीरे ये सिर्फ एक आवाज नहीं रही, ये बनी भरोसे की अटूट पहचान, सूचना का सटीक स्रोत और भावनाओं की मजबूत डोर। यहीं से शुरू हुई आकाशवाणी की गौरवशाली यात्रा जो आज भी हर सुबह हर घर में गूंजती है।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी से प्रसारित कार्यक्रम। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना आपको दे देते हैं। आरोग्य वाणी कार्यक्रम में बुधवार दिनांक 27 मई यानी कल प्रातः 8:15 पर फोन इन कार्यक्रम का विषय रहेगा तंबाकू से होने वाले कैंसर। जो श्रोता विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं वे टेलीफोन करके सीधे डॉक्टर मनीष गौतम से बात कर सकते हैं। समय एक बार फिर से सुन लीजिए, बुधवार दिनांक 27 मई को प्रातः 8:15 से 9 बजे तक। हमारे टेलीफोन नंबर होंगे 0744-29411-42। सूचना समाप्त हुई।
2: लाखों तक पहुंचाएं अपनी बात, अपना विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी से आज। चंबल चैनल का फोन नंबर 0744-23-22-442। ईमेल aircota@gmail.com। आकाशवाणी को बनाएं अपना ब्रांड एम्बेसडर। आकाशवाणी जनवाणी लाभ।

कार्यक्रम संबंधी एक और सूचना आपको दे देते हैं। बुधवार यानी कल दिनांक 27 मई 2026 को सायं 7 बजे से 7:30 बजे तक सजीव फोन इन कार्यक्रम का विषय रहेगा ग्रीष्म काल में मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन एवं खरीफ फसलों की तैयारी। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर गोपाल लाल मीणा, मृदा वैज्ञानिक डडवाड़ा कोटा। आप इस सजीव फोन इन कार्यक्रम में प्रसारण के दौरान विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर होंगे 0744-29-411-42। प्रसारण समय बुधवार सायं 7 बजे से 7:30 बजे तक।

0: जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए। ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
1: तो शुरू आकाशवाणी की चंबल चैनल से कुछ अच्छा सा फिल्म संगीत गुनगुनाते हुए आपके लिए लाए हैं। आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत का ये पहला नगमा।

आकाशवाणी की चंबल चैनल से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गीत फिल्म राम तेरी गंगा मैली से। लता मंगेशकर और साथियों की गाए इस गीत को संगीत से सजाया है रविंद्र जैन ने और लिखा है हसरत।

और आइए अब सुनते हैं नदीम श्रवण का संगीत। फिल्म परदेश के इस गीत को आवाज दी है कुमार सानू ने और बोल है आनंद बख्शी के।

लाखों तक पहुंचाएं अपनी बात, अपना विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी से आज। चंबल चैनल का फोन नंबर 07442322442, ईमेल aircota@gmail.com। आकाशवाणी को बनाएं अपना ब्रांड एम्बेसडर। आकाशवाणी, जनवाणी, लाभवाणी।

आइए सुनते हैं आनंद मिलिंद का संगीत। फिल्म सनम के इस गीत को लिखा है समीर ने और आवाजें अलका याग्निक और कुमार सानू की।

आकाशवाणी के चंबल चैनल से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम संबंधी एक सूचना एक बार पुनः सुन लीजिए। आरोग्यवाणी कार्यक्रम में बुधवार दिनांक 27 मई यानी कल प्रातः 8:15 पर फोन इन कार्यक्रम का विषय है तंबाकू से होने वाले कैंसर। जो श्रोता इस विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं वे टेलीफोन करके सीधे डॉक्टर मनीष गौतम से बात कर सकते हैं। समय एक बार फिर से सुन लीजिए, बुधवार दिनांक 27 मई को प्रातः 8:15 से 9 बजे तक। हमारे टेलीफोन नंबर होंगे 0744

29411-42। सूचना समाप्त हुई। और आइए अब सुनिए फिल्म। फटा पोस्टर निकला हीरो। फिल्म का गाना, आवाजें हैं आतिफ असलम और चिन्मय श्रीपदा की, गीत इरशाद कामिल का और संगीत प्रीतम का है।

FM 102 और 103 पर आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है FM 102 और 103.6 मेगाहर्ट्ज़।

अभी आप आनंद बख्शी का लिखा हुआ ये गीत सुन रहे थे। फिल्म धर्मवीर के इस गीत को संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और आवाज थी मोहम्मद रफी की।

मैं चंदन हूँ बहू हूँ, इशारों को अगर समझ

अभी आपने मोहम्मद रफी और आशा भोसले की युगल स्वरों में फिल्म धर्मा का ये गीत सुना। इस गीत को लिखा था वर्माला मलिक ने और संगीत से सजाया था सोनिक ओमी ने। इसके साथ ही आज का फिल्म संगीत अब खत्म हुआ।

श्रोताओं, आपको बता दें बुधवार दिनांक 27 मई को सायं 7 बजे से 7:30 बजे तक सजीव फोन इन कार्यक्रम का विषय रहेगा ग्रीष्म काल में मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन एवं खरीफ फसलों की तैयारी। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर गोपाल लाल मीणा, मृदा वैज्ञानिक डडवाड़ा कोटा। सजीव फोन इन कार्यक्रम में प्रसारण के दौरान विशेषज्ञ से आप बात कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर होंगे 0744-29-411-42। और आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है, FM 102 और 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलो हर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:45 होने को है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या होगी, जिसे हम रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित कर दी जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य

0: प्रति क्विंटल 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य में ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अगले महीने अहमदाबाद में होगी और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्र मोहन ने पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठी मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
1: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये घोषणा की।
3: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
4: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
5: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
0: बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की।
6: काउंटर टेररिज्म इज अ सिग्निफिकेंट पिलर ऑफ
7: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता

0: बल दिया गया।
1: टेररिस्ट एंटिटीज, फाइनेंसेस एंड स्पॉन्सर्स।
2: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने नई गति पकड़ी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ बैठक के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम की आपूर्ति सहित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा हुई। जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस टिप्पणी पर करने का अधिकार नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। एफकैट 1 ऑफ 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 के नागपट्टनम तंजावुर खंड पर 14 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले तिरुवरूर बाईपास के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 129 और राष्ट्रीय राजमार्ग 134A पर 2 अतिरिक्त ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये मार्ग तिरुचिरापल्ली और कोयम्बटूर जैसे औद्योगिक केंद्रों को राईकाल और नागपट्टनम जैसे बंदरगाह शहरों से जोड़ेंगे। श्री गडकरी ने आज पंजाब में 4000 किलोमीटर से अधिक और दिल्ली तथा हरियाणा में 3000 किलोमीटर से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव की प्रगति की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि

0: वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2014 में आज ही के दिन श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर अनेक जन कल्याणकारी पहलें की है, जिनका उद्देश्य नागरिकों का उत्थान करना रहा है। गरीबों और मध्यम वर्ग के कल्याण से लेकर महिलाओं, किसानों और युवाओं के सशक्तिकरण तक मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इसी तरह मोदी सरकार ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। मोदी सरकार ने वस्तु और सेवा कर GST और डिजिटल भुगतान जैसे संरचनात्मक सुधार भी लागू किए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने विरासत संरक्षण, संस्कृति पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोहित कुमार ने 65 किलोग्राम और चंद्र मोहन ने 79 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट का पहला क्वालिफायर मुकाबला गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 189 रन बना लिए हैं। इससे पहले गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए किया। और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य के ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 102 और 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

मेरे जीवन साथी, ये थी फिल्म जिसका गीत अभी हम सुन रहे थे। आवाज थी किशोर कुमार की, गीत मजरू सुल्तानपुरी का और संगीत था आर डी बर्मन का। आकाशवाणी के चंबल चैनल से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आसमान में चंद्रमा की सुंदरता देख रहा है ये सारा जहां, तुम जरा मेरी रूह से पूछ कर देखो किस कदर तेरे साथ होने से चमक निखरा हुआ है ये जहां।

अभी आपने हसरत जयपुरी के बोल लता मंगेशकर के स्वर में सुने। फिल्म अनाड़ी के इस गीत को संगीत से सजाया था शंकर जयकिशन ने। और आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का अगला गीत। रात में सिर्फ आशिक ही नहीं जागते, कुछ जिम्मेदारियां भी रात में सोने नहीं देती। आवाजी मोहम्मद रफी आशा भोसले की, शैलेंद्र की गीत रचना है और संगीत है शंकर जयकिशन।

अभी आपने फिल्म धर्मात्मा में मुकेश और कंचन को सुना। इंदिवर के बोलों को संगीत से सजाया था कल्याण जी आनंद जी ने। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चंबल चैनल से। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूं मैं, पर जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूं मैं।

फिल्म हमराज में ये थे महेंद्र कपूर, साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ गीत था और संगीत था रवि का। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना आपको दे देते हैं। कार्यक्रम आपकी सेहत में शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को प्रातः 8:15 से 9 बजे तक आप सुनेंगे श्वसन रोग कारण बचाव और उपचार। इस विषय पर जानकारी सुनेगा हमारे अतिथि विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर विनोद कुमार जांगीड़। कार्यक्रम में आप विषय पर आधारित अपने प्रश्न भी कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर होंगे 29411 42 और एसटीडी कोड है 0744। अवश्य सुनिएगा कार्यक्रम आपकी सेहत है शनिवार 30 मई को प्रातः 8:15 से 9 बजे तक। सूचना समाप्त हुई।

पेइंग गेस्ट, ये है फिल्म जिसका गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। आवाजें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की, नगमा मजरूह सुल्तानपुरी का और मौसी की एसडी बर्मन की।

नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे, ये थी फिल्म जिसका गीत अभी आपने सुना। गीत रचना थी राजेंद्र किशन की और संगीत था मदन मोहन का, आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। तू पास हो तो हर दुआ कबूल होती है, तू दूर हो तो हर खुशी अधूरी लगती है। आइए सुनते हैं फिल्म पतंगा में मोहम्मद रफी को, नीरज की रचना है और

किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में गाए इस गीत को संगीत से सजाया था आर डी बर्मन ने। आनंद बख्शी के बोलों को बोल थे फिल्म थी आपकी कसम। ये प्रसारण आकाशवाणी के चंबल चैनल से किया जा रहा है। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। क्या चाहूं मैं रब से तुम्हें पानी के बाद, किसका करूं मैं इंतजार अब तुम्हारे आने के बाद।

अभी आपने नौशाद का संगीत सुना। फिल्म राम और श्याम के इस गीत को लिखा था शकील बदायूनी ने और आवाज थी मोहम्मद रफी की। आकाशवाणी की चंबल चैनल से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गीत हमने लिया है फिल्म नीलकमल से, आवाज एक बार फिर मोहम्मद रफी की है, गीत साहिर लुधियानवी का और संगीत है रवि का। तुम्हारी आंखों की चमक ही मेरी खुशी है, तुम मेरी दुनिया की सबसे खूबसूरत बंदगी हो।

तेरी एक मुस्कान पूरे दिन की थकान मिटा देती है, तेरी एक नजर दिल को सुकून दे देती है। तू है इसलिए जीवन खूबसूरत है।

अभी आप फिल्म जंगली में मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर को सुन रहे थे। गीत था हसरत जयपुरी का और संगीत था शंकर जयकिशन का। इसके साथ ही अब कार्यक्रम फिल्म संगीत से हमें अनुमति दीजिए। सोती हुई आंखों को सलाम हमारा, मीठे सुनहरे सपनों को आदाब हमारा, दिल में रहे प्यार का एहसास सदा जिंदा, आज की रात का यही पैगाम हमारा। आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है, एफएम 102.103.6 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलो हर्ट्ज पर। 10 बजने को हैं, कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई से प्रसारित कार्यक्रम।

प्यार दर्द का दूसरा नाम है। उस दर्द का एहसास भी भला लगता है। प्यार के लम्हे बड़े छोटे होते हैं। उन लम्हों को अपनी मुट्ठी में कैद कर लेने को जी चाहता है। उन लम्हों को

प्यारा सा साथ, भला सा साथ, भला सा एहसास, भली सी आवाज, भली सी सूरत, भला किसे नहीं भली लगती है। मिलता है ऐसा सलूना सा साथ तो जीवन की बगिया महक उठती है। हर शाख की कोपलें हरी होती हैं, मन में खिल उठते हैं रंग बिरंगे फूल।

रात भर झड़ती रही चांदनी आसमान से, रात भर सितारे खेलते रहे अटखेलियां चांद से, रात भर हवा गाती रही उदास गीत, पत्तियां सरसराती रहीं और कानाफूसी करती रहीं पेड़ों से, रात भर जुगनू भटकते रहे किसी की खोज में, रात भर यादों के दिए झिलमिलाते रहे मन के आंगन में, रात भर इंतजार करते रहे किसी के आने का।

यादों के रंग से सजाए हैं ख्वाब, मालूम है कुछ ख्वाब कभी पूरे नहीं होते, कुछ ख्वाबों का ताल्लुक हकीकत से नहीं होता। ये ऐसे ख्वाब हैं जिन्हें हम देखते हैं और अपने दिल के करीब रखना चाहते हैं, ये ख्वाब सिर्फ इंतज़ार होते हैं।

वही रात होगी, वही चांद, वही सितारे, वही आसमान, ये हवाएं, लेकिन मंजर सुना सुना सा होगा। कहीं कुछ कमी महसूस होगी, यूं लगेगा ये चांद नहीं है रोशन, मध्यम है सितारे, खामोश है हवा, उदास है आसमान। कहीं कुछ कम होगा, कहीं कुछ नम होगा, होगा सिर्फ यादों का मंजर।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
4: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: एक खुशखबरी,
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: FM 102 और 103.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है। रात्रि के 11 बजने को है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार होंगे जिन्हें हम अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये बात कही।
2: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए।

0: क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। एनआईए के सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल विभिन्न वीडियो क्लिप के साथ घटना के दिन के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करके संदिग्धों की पहचान की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसले दिए। शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की अपील पर आज अपना फैसला सुनाया। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित होगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। The Center has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah today said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Nilokar. Census Commissioner, along with the former IAS officer Durga Shankar Mishra, former IPS officer Balaji Srivastav and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary, Foreigners 1, in the Home Ministry will serve as the member secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty but also to national security, law and order, profound changes in social structure and the preservation of tribal society. Union Home Minister Amit Shah today said that the government is in a process of installing anti-drone system within the next 6 months to curb the smuggling of narcotics and weapons through drones. Addressing BSF personnel at the Sanshu border outpost in Rajasthan's Bikaner district, the Home Minister said while threats originating across the border remains crucial, equal attention must be paid to internal elements aiding such threats within the country.
2: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार,
3: द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रिपेयरिंग टू रोल आउट एंटी ड्रोन सिस्टम फॉर ड्रोन्स एंड सिमिलर एरियाज थ्रेट विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ। हाउएवर